0: में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया। अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणि ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणि ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पवीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रुत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिव दत्त विभूषणे प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथो च चित विधि से करके शिव जी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की। दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहाँ हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है। क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चलते आगे आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोम

0: स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं, और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्तया नीराजनम अथा करोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि वर वधु भी खा लेते हैं, प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता।

0: जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
1: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं बस वही लगभग वही
0: हो जाते हैं।
1: हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
0: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था, प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
1: क्योंकि एक
0: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
1: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
0: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
1: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
0: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है। और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही, अक्षत तथा कुशोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाएं तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोगों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताहा सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधू दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को, पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वरिया मास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विध सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्षगणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका, तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासि च किंचन वाच्य महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मादेव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था, इसलिए देख रहे हो।
1: बहुत सुंदर,
0: देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: दोस्तों। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है।

0: آپ اپنے طریقے سے سمجھائیں سبھی لسنرز کو.
1: جیسا کہ دوسرا ادھیائے میں شری کرشن ارجن سے بات کر رہے ہیں, اور ارجن کیونکہ وشاد میں ہے تو سب سے پہلے خود کا گیان ہونا ضروری ہے, کیونکہ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم سوئم کو بھول جاتے ہیں. اور شریمد بھگوت گیتا کا جو دوسرا ادھیائے ہے وہ پورا ہی اپنی سیلف ریئلائزیشن پر ہی فوکس کر رہا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا بن کر کے چل رہے ہیں. تو اس میں ایک بہت سندر شلوک کے دوارا بھی کہا گیا ہے, نہ جائےتے مریتے وا کداچن نائم بھوتوا بھویتا وا نہ بھوئے اجو نتیا شاشوتویم پرانو نہ ہرنتے ہنیامانے شریرے. अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है. मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है. अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है. और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं. अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे. तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता. तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए. आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं.
2: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है. और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं. और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
2: बिन बुलाए मेहमान.
1: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने. तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है. तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है. आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार. अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है. तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं. अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P, अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर. तो ये सात गुण आत्मा में निहित है. इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है. अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं. आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है. ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
1: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
1: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
1: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना उसमें बहुत फर्क होता है, तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है। और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
4: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है। और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
1: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जनम बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अति

0: होकर कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से मन आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहां खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है, आज अकई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूं तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं। और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी। माना अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है तो, इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें।

0: वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
0: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
0: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
2: रेडियो मानव रचना, रेडियो मानव रचना।
3: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ओम शांति।
4: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी। इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बता कर करूँ, इवन इफ यू नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन जहां मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टूडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज and just change somewhere else. आपको क्या पता चलेगा? Nothing. And majority children are doing that. How difficult is it कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जाओ? Children are doing that.
3: I think it's happening every day.
4: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
3: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, definitely.
4: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया। अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा। आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों?

0: बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस, एनर्जी ब्लॉकेज थे. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं वी कैन टेल आवर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दें. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे वो अपनी बात शेयर करेगा बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी है आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है ये बहुत ज़्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है, क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए सुनते गए, अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं, आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
1: यस, वेरी ट्रू.
0: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत ईजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं तो फिर वो एक बात एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
1: वंडरफुल. सो लेट बी एक्चुअली, अगर हम,
0: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. You know, it's most important is to understand कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
0: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट.
1: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट, यू नो, पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
0: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
1: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
0: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माई लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
1: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो, एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
0: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है, जब वो नीचे फ्लो कर रहा है, एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे, बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है। वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं। लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
1: जीवन।
0: किसको?
1: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना।
0: एब्सोल्युटली, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा में जो कुछ आता है
1: उसको जीवन देते।
0: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बीइंग, उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बीइंग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग बीइंग। दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर।
1: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस।
0: दैट्स माय जर्नी। मैं भी तो उसी तरह हूँ। आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके, देर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माई वे, आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स ऑल्सो ओके, बट वॉट इज माई मेन पर्पज इन लाइफ? बिकॉज वॉट्स माई पर्पज इन लाइफ, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि वॉट्स माई पर्पज इन लाइफ। पर्पज इन लाइफ इज कि यू आर फ्लोइंग, स्टैगनेंट वाटर नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है, फ्लो करो, और आपके फ्लो होने में, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है
1: उन्हें नरिश,
0: और नरिश करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं। इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क। एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
1: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा।
0: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
1: and give them happiness, you know?
0: ये मेरी responsibility है। तो imagine how the day will pass, and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think is satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
1: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही।
0: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी। स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली। आई हैव टू गो टू वर्क।
1: वर्क इज अ स्ट्रेस। इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया, द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क।
0: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट। अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलती है। स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू
1: वंडरफुल, यू नो, वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए, वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
0: you know, flow,
1: I am nourishing.
0: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे, और वो अपने आप nourish होते
1: जाएंगे. You know, at times we stay there.
0: रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है?
1: कई बार अपने साथ लोगों को, कईयों को ले चलते हैं. They can be part of your flow.
0: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को nourish करें, ये बहुत important है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारे जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
1: हमसे होके।
0: आई फील ब्यूटीफुल
1: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
0: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज को जरूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, तो मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हो। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड। तो ये जब अंदर की आवाज आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
1: बात करना बंद कर देते हैं।
0: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे। दैट्स गुड फॉर मी एंड आई शुड फॉलो दैट। तो बी क्वाइट लेट गो लेट बी एक्सेप्ट एवरीथिंग पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम एंड लिसन इनसाइड। सिंपल सिंपल थिंग्स सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं बहुत डिफिकल्ट तो वे सिंपल सिंपल। हाँ,
1: और हर बार की तरह
0: स्टार्ट डूइंग दैट।
1: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव पे के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की। वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है उसको दूर कर सकती है वो है पीस शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
0: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए। मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। बट वॉट वी डिडंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आवर सेल्व्स। तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माय फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है। और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ। और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, अक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे,
2: watch it
0: and see it. तो what happens कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं, और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है. अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी.
0: हम खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है, और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है. तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है. अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी. सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर, एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन. ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग. तो अवेयरनेस, अक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए, और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज. तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था. तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान
0: वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है.
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है. और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता, या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम अ वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस. सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
0: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते. अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा. लेकिन वो एक एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है. लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा. क्योंकि अवेयरनेस जाएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो. एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से है. जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज.
2: यस, यू नो वी ऑलवेज बीन सेइंग इट्स जस्ट अ यू नो थॉट वे. सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ. इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह है कि हम इतने गिल्ट और रैंक, मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया.
0: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था आपने, यू नो. सो इट इज जस्ट
2: बिकम अ
0: वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पे कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग के, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है, वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस?
0: पीस इज अ वर्ड व्हिच वी यूज वेरी ऑफन बट रेयरली अंडरस्टूड. यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर पीस. हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, बट वी आर नॉट अवेयर कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. तो क्या होगा, वो होगी भी तो पता नहीं चलेगा कि वो है. एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग सब शांति अनुभव करते हैं सारा दिन में, लेकिन वो एक नेचुरल स्थिति है. लेकिन उसको हम तब रियलाइज नहीं कर पाते. हम रियलाइज किसको करते हैं, जब हम स्ट्रेस में या टेंशन में होते हैं, क्योंकि वो अननेचुरल है. You know, and at that time we say, I want peace. Peace is basically a state of the being. ये सिर्फ एक स्थिति है, मुझ आत्मा की एक स्थिति है, जिसका result क्या होगा कि जो मेरी thoughts होंगे वो बहुत positive और focused होंगे. अंदर एक silence होगा. एक है silence, एक है noise. You know, तो peace doesn't mean कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत peaceful है, अंदर बहुत noise है. और नॉइज क्या है, ये सब डिस्टर्बेंसेस, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
2: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं, एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
2: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
2: उसके लिए.
0: एब्सोल्युट
2: है ना. लेकिन मेरे अगर मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
2: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती हूँ
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाती हूँ आपके पास लेके अपना प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन, संडे वाला दिन आपके पास जानू मैं, और मैं बहुत सारी बातें लेकर के आती हूँ। अच्छा, आज ना कुछ बात करूंगी आपसे जरूरी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है डिमेंशिया के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और साथ ही बच्चों की हेल्थ के बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले डिमेंशिया की बात करेंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने कोई डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मैनेवर 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग आप सुन रहे हैं और मैं आपके साथ यानी कि आरजे साक्षी आपके साथ है। संडे का आज दिन है और वैसे ना हम सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी में विटामिंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इनकी कमी से सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बीमारी भी भाई आपको परेशान कर सकती है, तो ये कितनी गंभीर बात है। और बिल्कुल ये सच

बात है, मतलब ऐसा नहीं कि बस मैंने ऐसे कह दिया, बिल्कुल सच बात है, क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर बॉडी में कुछ खास विटामिन्स की कमी हो जाए तो डिमेंशिया का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आज इसी के बारे में बात करने वाली हूँ आपको, बड़ी आसान सी भाषा में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये जो विटामिन्स है अगर इनकी कमी रही तो डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। बात करेंगे इस पर, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel life।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए आज संडे का दिन है और मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ। बात कर रहे हैं हम डिमेंशिया की। देखिए अगर खान पान में कमी होती है और कमी में अगर हम विटामिंस की बात करें, अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई विटामिन मिनरल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं सबसे पहली बात। और अगर आप घर का खाना खाते हैं तो उसमें आपको विटामिंस मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। और विटामिंस में भी अगर हम बात करें तो कुछ ज़रूरी विटामिंस जैसे कि विटामिन 2 की हम बात करें, B2 की बात करें, विटामिन डी की बात करें, B6 की बात करें, B12 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और ऐसे में अगर इन विटामिंस की कमी हो तो देखिए लोगों में डिमेंशिया का देखिए जो असर है, यानी कि जो डिमेंशिया होने का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक देखिए अगर एक रिसर्च जो है वो पाई गई है, अगर B12 की कमी हो या फिर विटामिन डी की कमी हो, B6 की, B12 की कमी हो, तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है आगे चलकर। और साथ ही अगर आप इस खतरे को कम करना चाहते हैं, घर का खाना खाइए, जितने भी जरूरी चीजें हैं जिनमें विटामिन्स और आपको मिनरल्स मिल रहे हैं वो आप जरूर इनटेक करना शुरू करें, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इनफैक्ट जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि बस कोई एक रोटी और सब्जी बस दे दी, लेकिन एक जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए कि वो ग्रीन वेजीज से भरी होनी चाहिए। आधी प्लेट में आपकी जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो होनी चाहिए, चाहे पालक है या फिर कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और साथ ही सैलड हो गया, और साथ ही कुछ पोर्शन आपका काव्स का भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। और कैल्शियम के लिए ज़रूरी है कि आप मखानों का सेवन कर सकते हैं। तो मखाने जो हैं ये पेट के लिए भी सही रहते हैं और फाइबर भी है, कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसा कैल्शियम जो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा बल्कि इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगी जो बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, अगर कैल्शियम का इंटेक करना चाहते हैं, बच्चों को हम ये कहते हैं कि भाई बच्चों के लिए ना बड़ा सही होता है ये कह देना कि हम तो चिप्स खाएंगे, लेकिन पेरेंट्स भी यही करते हैं, चिप्स दे देते हैं, लेकिन आप उन्हें चिप्स की जगह घर पर ही आप उन्हें मसाला कोट करके आप उन्हें दे सकते हैं, जो मखाने हैं वो दे सकते हैं, ताकि उनको सही लगे, अच्छा लगे और खाएं और उनको कैल्शियम भी मिले। तो इसीलिए सेहत पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा ध्यान रखें खान पान का। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ बता दूँ आपको, देखिए हम बातें कर रहे हैं और पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, पैकेट वाले बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्नैक्स हो गए, इंस्टेंट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों को बड़ी पसंद आती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, बच्चे को जो पसंद है खाने में वो बच्चे को दे देते हैं, लेकिन यही आप गलत कर रहे हैं। इंस्टेंट नूडल्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बच्चों को बड़ी पसंद भी आती है, लेकिन अगर बच्चा नियमित रूप से इसका सेवन कर रहा है तो शारीरिक और मानसिक सेहत पर गंभीर असर जो है, प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। कई सारी ऐसी रिसर्च में भी पाया गया है कि बच्चे जो हैं अगर जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, कैलोरी, चीनी, नमक और साथ ही साथ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, जबकि इसमें प्रोटीन, विटामिंस और साथ ही जो मिनरल्स हैं, जो तत्व हैं, वो फाइबर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को उनके चाहे हाइट की अगर हम बात करें, कई सारी फीमेल्स जो हैं वो बड़ी परेशान होती है कि हमारे बच्चे की ना हाइट नहीं बढ़ रही है, मेल भी अगर हम सभी पेरेंट्स की बात करें, बच्चे की हाइट नहीं बन रही है। बच्चा अगर विटामिंस मिनरल्स नहीं लेगा तो बच्चे की हाइट बढ़ेगी कैसे? अगर बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं है, बच्चा अगर बाहर का खाना खा रहा है तो कैसे हो पाएगा? बाहर के खाने में आपको शुगर सॉल्ट के अलावा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वहां पर आपको विटामिंस तो नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर देखिए, आजकल मैं भी कुछ हेल्दी ऑप्शंस देख रही थी, जब मैंने चिप्स वहां पर देखे, एक नॉर्मल जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जहां पर आप खाना अपना फूड जो है ऑर्डर कर सके, आप वहां पर चिप्स देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर आपको हेल्दी ऑप्शंस भी आएंगे, जैसे कि केनुआ के आप जो है वो ले सकते हैं, केनुआ बॉल्स ले सकते हैं, वो बड़े चटपट से बड़े टेस्टी लगते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आप केनुआ जो है उसके पफ्ड बॉल्स जो है वो खा रहे हैं। या फिर आप मखाने ले सकते हैं, आजकल अलग अलग तरीके के जो है फ्लेवर्स के, चाहे पीरी पीरी की बात करें या फिर हम सॉल्ट एंड पेपर की बात करें, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो स्वाद के मखाने जो है वो भी आने लगे हैं। तो वाई नॉट हेल्दी ऑप्शन को आप चूज़ करें, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंट नूडल चूज़ कर रहे हैं या फिर आप ऐसी चीज़ सूट कर ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही, लेकिन आप फिर भी ले रहे हैं, बच्चे के लिए फिर भी ले जा रहे हैं और बच्चा जो है ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर अभी से बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, अगर वो अभी से हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, तो आगे चल के आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है और आपसे ज्यादा बच्चों को हो सकती है, क्योंकि ना ही वो फोकस रख पाएंगे और ना ही वो फिजिकल एक्टिविटी में रहेंगे और ना दिमाग और ना ही शरीर उनका जो है वो बैलेंस बना पाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बच्चों का ख्याल रखना, उनके खान पान का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं रखते हैं, थकावट या और भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो उन्हें जो है वो घर बना लेती हैं, उनके शरीर को घर बना लेती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, या फिर हाई BP, फैटी लिवर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये समस्या का जोखिम बच्चों में ही काफ़ी कम उम्र से बढ़ जाता है अगर उनका ख्याल ना रखा जाए। ज़्यादा चीनी हो गई या फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हो गए जो कि उनके दांतों के लिए भी सही नहीं है, ज़्यादा अगर मीठा खा रहे हैं दांत खराब हो जाते हैं, दांत में कीड़े लग गए हैं, ना ही डॉक्टर के पास जाना है, बस ट्रीटमेंट घर पर ही चल रहा है कि हाँ चलो ठीक है हो गया, तो ऐसे में देखिए बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आपको समझना होगा कि बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए क्या सही है, ताकि उनका माइंड और उनकी बॉडी दोनों ही हेल्थी रह सके। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रही है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ अभी हमारे पास ना एक खास मैसेज जो है वो आ गया है। मैसेज आया है हमारी लिसनर मोहिनी जी की ओर से, जिन्होंने लिख के भेजा है कि नाक से गर्मी के मौसम में खून जो है वो आ चुका है। देखिए, गर्मियों का टाइम जो है वो चल रहा है, ये तो बहुत मतलब बड़ी बात है ये, और ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि काफ़ी परेशानजनक भी करने वाली बात है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब प्रॉब्लम बढ़ रही है। गर्मियों का मौसम आते ही कई लोगों के नाक से खून आ जाता है और उसका सामना करना पड़ता है। इसे देख कर घबराना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर मामलों में कोई गंभीर बात वैसे नहीं होती है। और देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना, नाक के अंदर की जो परत और खून की नसें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। तेज़ गर्मी, सूखी हवा, लू या शरीर में पानी की कमी की वजह से नाक के अंदर की जो परत होती है वो सूख कर काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो जाती है, और ऐसे में छोटी सी नस चटक जाती है और खून बहने लग जाता है, और इसी वजह से हो जाती है नोज़ ब्लीडिंग। तो इसके अलावा गर्मियों में हमें जो है, अगर हम लंबे टाइम तक एसी में रहते हैं, जिससे नाक का रास्ता और ज़्यादा सूख जाता है। जब नाक पहले से ही सूखी और इरिटेटेड होती है, तो इसमें बार बार नाक जब आप रगड़ते हैं तो ज़ोर से नाक साफ़ करने, या नाक में अगर आप देखिए उंगली डाल के अगर अपनी नाक साफ़ करें, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, हाइजेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये कर रहे हैं तो तुरंत ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे में इसको करना तो सबसे पहले आप बंद कर दीजिए। अगर आपकी नाक सूखी हुई है तो कोशिश कीजिए आप नारियल का तेल डाल लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए, इससे काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोग नाक को जो है वो नाक से खून आते ही वो अपना सिर पीछे की तरफ झुका लेते हैं। डॉक्टर के अनुसार ये एक बहुत ही आम गलती है, ऐसे में ये जो है आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर पीछे करने से खून गले के रास्ते पेट में जा सकता है, और इसी के साथ ही लोगों को बार बार चेक करने से भी बचना चाहिए कि खून बह रहा है या नहीं, खून आना बंद हुआ या नहीं। बार बार नाक को छूने से या खून का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ब्लीडिंग दोबारा से शुरू हो जाती है, इसीलिए कोशिश ये ना करें। ज़्यादातर जो नोज़ ब्लीडिंग है वो खतरनाक नहीं होती है, और इसे घर पर ही शांति से रोक देना चाहिए। अगर नाक से खून आ जाए तो इसमें आप आसान कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन वो क्या है वो उसके लिए तो आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मैरिव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बहुत सारी होती हैं बातें. और देखिए गर्मी की वजह से नोज ब्लीडिंग जो है वो अगर हो रही है तो ज़्यादातर नोज ब्लीडिंग खतरनाक नहीं होती है और इसे घर पर ही शांति से रोका जा सकता है. अगर नाक से खून आ जाए तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आगे की तरफ झुके और सीधे बैठ जाएं और अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लें. इसके बाद नाक के आगे आपको नाक के आगे वाला जो हिस्सा है इसको अपनी उंगलियों के करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्के से आपको पिंच करके रखना है. और नाक बंद होने के कारण इस देखिए दौरान अपने मुंह से सांस आपको लेती रहनी है, ना कि नाक से. खून के बहाव को धीमा करने के लिए आप नाक या गालों पर कोल्ड प्रेस कंप्रेस भी जो है वो इस्तेमाल उसका कर सकते हैं. इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यानी कि कोई जेल पैड अगर कोल्ड जेल पैड हो वो आप लगा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा जरूर मिलेगा. चलिए इसी के साथ एक वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का, जिसके बाद होंगी बातें. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना और 7.8 FM. फील गुड.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें। गर्मी का मौसम चल रहा है और इस बीच हमारे पास आ चुका एक संदेश, और ये जानना चाहती है हमारी लिसनर मोहिनी जी कि कैसे जो है अगर नाक की ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये तो मैंने आपको जरूर बताया, लेकिन गर्मी के मौसम में ना हाइड्रेशन सबसे अहम भूमिका निभाता है। भरपूर मात्रा में लिक्विड डाइट लें ताकि बॉडी और नाक के अंदर नमी बनी रहे, और इससे सूखापन कम होगा और जलन से राहत आपको जरूर मिलेगी। कुछ मामलों में नाक की कमी जो नमी है इसको बनाए रखने के लिए देखिए स्लाइन नोजल स्प्रे का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ह्यूमिडिफायर का हवा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तो वो भी सही रहता है। और साथ ही यूं तो देखिए नोज ब्लीडिंग आसानी से घर पर रुक जाती है, लेकिन अगर नहीं रुक रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास आप लेकर के जाएं, क्योंकि यह कोई और अन्य बीमारी का संकेत हो सकती है। जब जब देखिए बार बार खून से अगर आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर खून आने के साथ चक्कर महसूस हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर किसी चोट लगने के बाद नाक से खून बह रहा है, तो इसका मतलब है मेडिकेशन की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, ना ही घर पर बैठ के इलाज लेने की। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ देखिए आपको बता दूँ, वक्त आपको बताने का कि अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारी इंटरनेट ऐप डाउनलोड करनी है। आपको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में जाके लिखिए वहां पर रेडियो मानव रचना, जैसे आप ऐप देखेंगे वहां पर उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी। तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइव।
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें। एक सवाल हमारे पास आया है हमारे लिसनर मनीष जी का, जिन्होंने लिखा है कि आंखों में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। अगर आपको कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या फिर कुछ दूर का देख रहे हैं और आपकी आंखें स्क्वीज हो रही हैं, आप ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में दर्द आपको उसकी वजह से हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आई टेस्ट अपना कराएं। हो सकता है आपको चश्मा लगे और तब भी ये सिम्टम्स जो है वो आते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और चश्मे को आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप बुरे

रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, बल्कि हर किसी पे अच्छा लगता है। और साथ ही अगर आप देखिए इसी बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी आंखें जो है और ज्यादा वीक हो जाएंगी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखें ही, साथ ही साथ अपनी आंखों का, अपने ओरल हेल्थ का भी ख्याल रखें। हर 4 से 6 महीने में आप डेंटिस्ट के पास जाइए, और अगर आपकी दांतों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल हेल्थ चेकअप अपने दांतों का जो है चेकअप करा के आइए। और वही बात रहेगी कि देखिए अपनी सेहत का आपको बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना है। और आज बहुत सारी बातें हुई है, डिमेंशिया के बारे में बात करी है, बच्चों के खान पान के बारे में बात करी, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा खाना जो है, अच्छा खाना, टाइम पर सोना और टाइम पर जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर बार नींद आती रहती है, फोकस पावर नहीं होता है, और प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर आप एक अच्छी देखिए चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो जरूरी है टाइम पर आपको खाना, टाइम पर सोना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाज़त लेने का, यानी कि अब साक्षी कहेगी कि भाई मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब ये मुलाकात होगी आपसे कल, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। कोशिश कीजिए अगर आप कुछ नॉर्मल बॉडी टेस्ट करा सकें जिससे आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाए तो वो आप जरूर कराइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम। वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। ये शो यूं तो बहुत खास है, अगर आप एक रेगुलर लिसनर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर भैया आपने पहली बार हमारा ये शो सुना है या सुन रहे हैं पहली बार, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्टार्टअप स्टोरीज लेकर के आते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू मोर अवेयर ऑफ थिंग्स जो आपके आसपास हैं, मेक यू मोर अवेयर ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री, मेक यू मोर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हुआ, किन किन लोगों का योगदान रहा, कौन कौन सी कंपनीज हैं, फाउंडर्स कौन है, बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। आज ऐसी एक और खास शो लेकर के आए, फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, एट फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द इंडस्ट्री पार्ट, देन वी गोना टॉक अबाउट द कंपनी पार्ट। तो कहीं जाइएगा मत फिलहाल, क्योंकि हम ले रहे हैं म्यूजिकल ब्रेक। मेरा सलाम कबूल करिए, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मींस कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए इन गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पर, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने हैं, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा। उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपनी स्किन के ऊपर, और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड फील लाइव।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं जोकर है, ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतर्त यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 एफएम। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार

0: तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस इंडस्ट्री ने। सेकंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। और जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यानी कि ब्यूटी टेक को एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट, ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। सेकंड, एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड, फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर।

दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेस होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए, हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा, कल्चर, सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक जो हमने इंडस्ट्री के बारे में बात करी है आप समझ पाए हैं। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली रिवील करते हैं आज की कंपनी। सो दिस कंपनी इज डीकंस्ट्रक्ट एंड ये बहुत अमेजिंग पार्ट है। देखिए, कई सालों तक फॉर लिटरली ईयर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचा गया है थ्रू ड्रीम्स, मतलब ग्लोइंग फेसेस, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, फेयरनेस प्रोमिसेस, ठीक है, गोरे हो जाएं, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट कर लें, आपके इमोशनल एक आप कह सकते हो ट्रिगर के साथ साथ प्रोडक्ट्स जो हैं एसोसिएट किए गए और फिर वो बेचे गए। बट अब जो कंज्यूमर है वो नई जनरेशन का है। आज का कंज्यूमर सवाल पूछता है, आज का कंज्यूमर ये जानने में इंटरेस्टेड है। उसको ये नहीं जानना है कि मैं गोरा हूंगा नहीं होऊंगा, उसको ये जानना है कि एग्जैक्टली मेरी स्किन के ऊपर जा क्या रहा है, उसको ये जानना है कि इंग्रेडिएंट कौन सा है जो काम कर रहा है, उसको ये जानना है कि स्किन केयर की साइंस क्या है या बस ये एक मार्केटिंग गिमिक है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट टुडेज जनरेशन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग। सो डीकंस्ट्रक्ट यहां पर आती है उस जनरेशन के उन सवालों के जवाब लेकर। एक बेंगलुरु बेस्ड D2C स्किन केयर स्टार्टअप है जो फोकस करता है साइंस बैक्ड इंग्रेडिएंट फोकस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि स्किन केयर आप करिए बट हम आपको एजुकेट करेंगे पहले। ठीक है, कंज्यूमर्स को इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया जाता है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना इज नॉट द थिंग, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करना इज नॉट द थिंग। द मेन थिंग इज कि हम आपको एजुकेट करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, जो आपके सवाल उनके जवाब हम आपको देंगे। इस ब्रांड के पास फेस सीरम्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं, मॉइस्चराइजर हैं, फेस वॉशेज हैं, हेयर केयर सोल्यूशंस हैं। इंफॉर्मेशन ओवर इम्पल्सिव, दिस इज द मिशन ऑफ दिस कंपनी। मीनिंग डोंट जस्ट बाय स्किन केयर, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट आपको कन्विंस कर सकती है और अगर आप उससे कन्विंस होकर स्किन केयर करना चाह रहे हैं तो नॉट अ गुड आइडिया। अंडरस्टैंड योर स्किन एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टेडियम फील गुड फील।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहां, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की कंपनी हमारी डी कंस्ट्रक्ट कैसे स्टार्ट हुई, बहुत ही अच्छी एक अमेजिंग सी स्टोरी है। सो ये जो इंडियन ब्यूटी मार्केट है, ये टू एक्सट्रीम्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक साइड पर आपको दिखाई देगा ट्रेडिशनल ब्यूटी ब्रांड्स, जो वहां पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, सेलिब्रिटीज उनकी एड्स करते हैं, इमोशनल प्रोमिसेस करते हैं। दूसरा साइड है जो रियल एक साइड है, जिसके ऊपर अब ज्यादा बात होती है, विच इज साइंटिफिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इंटिमिडेटिंग लगते हैं, बट एक्चुअली आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आते हैं। यहां इन दोनों के बीच में ना एक गैप था, तो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं मालिनी आद्रपुर रेड्डी, उन्होंने नोटिस किया कि कस्टमर जो है उनको इफेक्टिव स्किन केयर चाहिए, बट इंग्रेडिएंट्स के नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, कॉम्बिनेशंस के नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं चाहिए उनको। तो 2020-21 के अराउंड उन्होंने इस एक कंपनी को स्टार्ट किया, मतलब विद इन दिस फेज ऑफ 2020-2021, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये छोटा सा एक सवाल पूछा कि क्या हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, जवाब मिला हाँ, देन व्हाई नॉट। तो स्किन केयर से लेकर के वो जो साइंस है स्किन का, उसको एक्सेसिबल बना दिया। इवन द नेम डी कंस्ट्रक्ट, ये भी रिप्रेजेंट करता है ब्रेकिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर पार्ट्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्किन केयर साइंस फॉर नॉर्मल कंज्यूमर्स। तो ये है हमारी आज की कंपनी। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए, फील गुड फील लाइफ।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं? मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: सत्ता तेज जय। अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: फील गुड फील लाइव शो को आगे बढ़ाते हैं। मालिनी अदापुर रेड्डी ये हमारी फाउंडर हैं, जो डीकंस्ट्रक्ट कंपनी है, जो हमारी आज की स्टडी है उसके फाउंडर का नाम है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो मालिनी कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड बिजनेस बैकग्राउंड। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी फ्रॉम IIT खड़गपुर, लेटर ऑन MBA किया फ्रॉम INSEAD। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको सिखाता है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, डेटा बेस्ड थिंकिंग कैसी होती है। MBA आपको सिखाता है कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना होता है, बिजनेस स्ट्रेटजी को कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, हाउ एग्जैक्टली टू रिप्रेजेंट योर ब्रांड। एंड व्हेन यू कंबाइन दीज टू थिंग्स ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। दैट्स हाउ शी गॉट All these skills and apart from this, इनका एक अच्छा खासा experience रहा है। She has worked with multiple companies, जिसमें Procter & Gamble एक company शामिल है, Flipkart शामिल है, Kraft Heinz जो है वो शामिल है। इन तमाम companies में इनका जो experience रहा वो रहा product development का, supply operations का, marketing का, consumer insights का। So basically the core point is engineering from IIT, MBA from INSEAD, apart from this she has worked in multiple domains with multiple companies and वहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा खासा जो है experience मिला। So problem जो उन्होंने उस time पर देखी थी वो था कि information जो है overloaded थी, active ingredients का एक fear था। ठीक है, लोगों ने नाम सुने, आज भी बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज होते हैं रेटिनॉल क्या होता है एंड नियासिनमाइड क्या होता है, AHC BHC क्या होता है, बट एग्जैक्टली क्या होता है किसको पता है कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है, साइंस बेस्ड क्या एविडेंस का। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी रियलाइज। उसके बाद अनरियलिस्टिक मार्केटिंग से सब लोग परेशान थे। This cream will change your life. No, there is a particular ingredient that gonna solve this particular specific problem. That should be the correct tagline. Exactly, that's what she triggered. ऐसा नहीं होता कि एक क्रीम लगा लो सब ठीक हो जाएगा। No, it is not going to work like this.

रादर यू शुड नो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये नायसिनमाइड है, यहाँ पर मुझे रेटिनॉल मिल रहा है, रेटिनॉल ऐसे काम करता है मेरी स्किन के लिए ठीक होगा, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा, ये होता है साइंस बेस्ड नॉलेज होना, फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज होना, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

Dim tana na dir tana na dir na dir na dim tana na dir tana tana dir na dim tana na dir tana tana dir na dim tana na dir tana na dim tana na dir tana dir tana. उम्मीद है कि आपको गाने पसंद आए, साथ साथ उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि शो आपको पसंद आ रहा है। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। डीकंस्ट्रक्ट हमारी आज की कंपनी है। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ डीकंस्ट्रक्ट। फर्स्ट इज साइंस फर्स्ट अप्रोच, जो हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली साइंस बेस्ड एविडेंसेस जो है उनके आधार पर फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है, उसी को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया जाता है। सेकेंड, बिगनर फ्रेंडली स्किन केयर। यू डोंट नीड a high budget to maintain a skincare routine. All you need is just some knowledge and good products. Third is transparency. Ingredients, usage, skin concerns, sab kuch, science behind formulations, everything is being printed there. उसके बाद key drivers आते हैं कुछ, ठीक है, जो सबसे पहला तो मैं बोलूँगा कि लोग अब एजुकेट हो गए हैं। ब्यूटी कंज्यूमर्स जो हैं उनको अब एजुकेशन चाहिए। पहले वो नहीं पढ़ने वाले इस पचड़े में कि भैया मेरे को गोरा कर दो या मेरे को ग्लो दे दो, वो सिंपल एक चीज़ फॉलो करते हैं कि मुझे एजुकेट कर दो। सेकेंड पॉइंट आता है डी टू सी रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो बढ़ा है। थर्ड इज सोशल मीडिया एजुकेशन, ऑल थैंक्स टू ऑल द डर्माटोलॉजिस्ट क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स जिन्होंने इंग्रेडिएंट्स की बात करनी शुरू करी है और हम लोगों को अवेयर सिटीजन बनाया है। उसके बाद आता है ट्रस्ट थ्रू सिंप्लिसिटी। बहुत बड़ा इनोवेशन यहाँ पर यही है दुनिया में कि उसको और कॉम्प्लेक्स मत करो, कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दो। दैट्स द बिगेस्ट इनोवेशन आई वुड से फॉर द ह्यूमैनिटी। दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। So that is the story of our today's company, which is Reconstruct. अब इसी के साथ अपने शो को यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगा। आशा करता हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे बताइए जरा 8010781078 पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, शो आपको कैसा लगा। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर और शो। लेकिन तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए, सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। दिस इज आरजे सागर साइन।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और टाइम है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके लिए हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाता है, वो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। और इस प्रोग्राम में नॉलेज पार्टनर है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर किसी के घर में एक नन्ही किलकारी जरूर आती है, लेकिन ये नन्ही किलकारी जब आती है आपके घर तो एक डिस्कशन उसके आने से पहले काफी होता है कि बच्चे की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन। तो चाइल्ड बर्थ नॉर्मल होना चाहिए या फिर सिजेरियन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं। बहुत सारे लोग फैमिलीज को या मदर को कन्विंस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सिजेरियन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को पसंद भी नहीं करते हैं। कुछ पुराने ख्यालों के लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेस्ट होती है क्योंकि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सिजेरियन भी कंफर्टेबल होती है और इसमें भी रिकवरी अब जल्दी ही हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। सो ऐसे कुछ सवाल हमारे मन में हैं या फिर आपके मन में हैं। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मदर हैं तो अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत आसान है 8010781078, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर दीप्ति, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच।
2: डॉक्टर दीप्ति, अब हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर कोई इंसान जो है वो दुनिया में आया है और ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है पूरी फैमिली के लिए जब कोई बच्चा घर में आता है। तो यहाँ पर हर बच्चे के जन्म से पहले ये डिस्कशन जरूर होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए या सिजेरियन होनी चाहिए। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ, दोनों में से क्या कंफर्टेबल, क्या बेटर होता है, फिर उसके बाद हम एक एक करके सवाल भी लेंगे और चर्चा भी करेंगे।
3: दीक्षा, नॉर्मल डिलीवरी को हम नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है, इट्स ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। डॉक्टर को वो प्रोसेस सिर्फ असिस्ट करना होता है, सिजेरियन डॉक्टर को करना होता है। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेटर होती है फॉर पेशेंट रिकवरी। चाइल्ड के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है फॉर आगे की जो फ्यूचर उसकी ग्रोथ होती है। बट ये हर पेशेंट के लिए सेम सिचुएशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई विल से अपने एक्सपीरियंस के साथ कि अगर एक नॉर्मल डिफिकल्ट डिलीवरी है उससे बेटर है कि एक इजी सिजेरियन हो, बिकॉज डिफिकल्ट नॉर्मल डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लेटर लाइफ में मदर को और बेबी को दोनों को बहुत लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप कर सकती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिजेरियन विल बी बेटर। अगर हम एक जनरल बात करें तो इट्स नॉर्मल डिलीवरी, तो दैट मीन्स नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर।
2: जी बिल्कुल, नॉर्मल प्रोसेस हमेशा बेटर ही होता है, लेकिन कई केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी एक बहुत बड़ा जो तकलीफ है वो एक माँ को दे जाती है, क्योंकि इतने घंटों का लेबर पेन या फिर इतनी ज़्यादा तकलीफों के बाद जब नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है तो उसे जेरे नहीं करना पड़ता है। तो कई कई घंटे जो है वो एक मदर परेशानी में रहती है, 12-12, 14-14 घंटे, और उसके बाद फिर सिजेरियन करना होता है। सो अक्सर मदर्स ये बोलती हैं कि इससे अच्छा तो पहले ही सिजेरियन करा लेते, हम नॉर्मल के लिए ट्राई ही नहीं करते। सो डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल हैं लेकिन मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग और बहुत सालों से ये कहते हैं कि आजकल सी सेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं, आज से 20 साल पहले भी ये कहते थे और अब भी यही कहते हैं, तो सी सेक्शन इतने ज़्यादा क्यों होने लग गए हैं?

0: सिजेरियन रेट्स ऑब्वियसली पहले से बहुत इंक्रीज हुआ है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा सिजेरियन रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा होता है लाइफस्टाइल। पहले की अगर आप अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को अगर आप देखते हैं, तो जो उनका लाइफस्टाइल था, दे यूज टू हैव सिटिंग किचन,
1: एब्सोल्युटली
0: वो सब काम घर में नीचे बैठकर करते थे, उनकी वॉशिंग जो होती थी वो नीचे जमीन में बैठकर होती थी, खाना वो नीचे बैठ के बनाते थे। अगर फील्ड वर्कर्स की आप बात करते हो तो वो पूरा दिन स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठते हैं, तो इन लोगों की लेबर बहुत ईजी होती थी, देयर पेल्विसेस वर वेरी वाइड। लेकिन जैसे जैसे हम एक सिटिंग कल्चर में आ गए हैं, आज अगर हम देखते हैं तो फिजिकली स्पेशली अर्बन एरियाज में फीमेल्स बहुत ज्यादा घर में काम नहीं कर रही हैं, वी ऑल आर वर्किंग मोर मेंटली, हम फिजिकल वर्क उतना नहीं कर रहे हैं,
1: और जो घर में भी कर रहे हैं वो भी जैसे वॉशिंग मशीन खड़े होकर है, या खाना आप खड़े होकर बना रहे हैं, तो बैठने वाला जो एक पोजिशन आपने स्क्वैटिंग की वो तो ना के बराबर होती है।
0: यस, इसके साथ साथ हमारा फिर वो उसी हिसाब से जो पेल्विस है वो उतना ओपन नहीं होता। इसके साथ एक रीजन ये भी है कि ओवर द एजेस, नॉट द ईयर्स, ओवर द एजेस सो मैनी एरास जो हमारे निकल गए, जो बेबी का हेड साइज है वो इंक्रीज हो रहा है।
1: ओके,
0: यस, इट्स अ लाइक जैसे अगर आप एप्स की पिक्चर्स देखते हो,
1: हाँ,
0: तो हमारा जो हेड साइज था वो छोटा
1: थोड़ा वैसा होता,
0: तो जैसे जैसे ह्यूमन रेस जो है वो आगे एडवांस हो रही है, हेड साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। इन एनी केस वी आर यूजिंग आवर ब्रेन्स मोर देन आवर बॉडीज, तो उस हिसाब से हमारा जो हेड साइज है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है।
1: ओके, सो इस वजह से,
0: यस। एंड थर्ड रीजन कि हमारे को अपनी कंट्री का मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट डिक्रीज करना है। तो जब आप किसी एक टर्शरी केयर सेंटर की बात करते हो, वहाँ पे हमेशा सिजेरियंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वी गेट मोर रेफर्ड पेशेंट्स, जो मिसमैनेज्ड पेशेंट्स हैं, जो प्रोलॉन्ग लेबर में रहे, ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास सिजेरियन ही एक बेस्ट ऑप्शन होती है, बिकॉज हमें मदर और बेबी की सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर रखनी है, ये नहीं देखना है कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो रहा है कि सिजेरियन हो रहा है।
1: बिल्कुल, यानी बहुत ध्यान रखना होता है एक मदर का, वॉर्म टू बी का इतना ज़्यादा ख्याल हम रखते तो हैं, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, खासतौर पर से मैं रूरल एरिया की बात करना चाहूँगी, जहाँ पे कुछ मिसमैनेज, जैसे आपने कहा कि सिचुएशन होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लास्ट मिनट सिजेरियन ही होते हैं, और सिजेरियन को लेकर लोगों का नज़रिया भी बदला है, अब लोग इतना डरते भी नहीं हैं सिजेरियन कराने से। इसके बारे में और भी बहुत सारे सवाल हैं, ऑफ कोर्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति गोयल स्टूडियो मौजूद हैं, जो शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, और सब कुछ वेल रहे इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस तो जरूरी होती है। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल, शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और डॉक्टर दीप्ति से आज हम बात करें हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में। एक बच्चे का जन्म सबसे खूबसूरत होता है। जी हाँ, आपके जीवन में एक नई जिंदगी आती है और एक नई जिंदगी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े प्रोसेस में जाती है, लेकिन इसमें भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हेल्थ को लेकर और चाइल्ड बर्थ को लेकर। कभी कोई कहता है सिजेरियन की तरफ चलें, तो कभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स भी किया जाता है मदर्स को। लेकिन क्या नॉर्मल डिलीवरी हमेशा फायदेमंद होती है या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? ऐसे कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब हमारे साथ दे रही हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल। सो डॉक्टर दीप्ति, नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो पहले मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहूँगी। आपने बताया कि इसमें ये क्योंकि नॉर्मल है, प्रोसेस ही शुरू से यही है ह्यूमन बॉडी का, इसलिए इसको नॉर्मल कहा जाता है। सो इसके सबसे ज़्यादा फायदे क्या होते हैं?
1: इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद मदर की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। कोई डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई डूज एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस फॉर फ्यू डेज एंड देन यू विल बी बैक टू वर्क। आप अपना एक्सरसाइज रूटीन वापस फॉलो कर सकते हो, आप अपना वर्क जल्दी ज्वाइन कर सकते हो।
0: ओके
1: और आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती,
0: डिपेंडेंसी
1: नहीं रहती है। और अगर हम बेबी की बात करते हैं तो बेबी की लंग्स की मेच्योरिटी, उसकी क्राय, जब वो एक बर्थ कैनाल से बेबी पास होता है तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं लंग्स की वो अच्छे से स्क्वीज आउट होती हैं, तो बेबी के लिए भी एक हेल्थ बेनिफिट उसमें होता है।
0: ओके, यानी माँ और बच्चे दोनों के लिए बेनिफिट होता है। इसमें आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो 40 दिन के लिए 40 डेज का एक पीरियड होता है जिसमें मदर को घर में रखा जाता है, बच्चे को उसके साथ रखा जाता है, फ़ैन भी बंद कर देते हैं गर्मी का मौसम है फिर भी एसी या कूलर नहीं चलाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये रिकवरी को देखकर की जाती हैं। सो क्या ये प्रोसेस सही है 40 दिन, या फिर इससे कम टाइम में भी सब कुछ बेटर हो सकता है?
1: नहीं, इसके लिए मैं कहूँगी कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स थी दे वर वेरी इंटेलिजेंट, और जो यूट्रस की हीलिंग है वो ऑलमोस्ट 6 वीक्स में होती है।
0: ओके,
1: जो मदर की जो यूट्रस का साइज बड़ा हुआ है वो वापस नॉर्मल होने में, उसकी सिक्रीशंस को पूरा वॉश आउट होने में, स्टिचेस को हील होने में 6 वीक्स का ही टाइम लगता है।
0: ओके,
1: तो दैट 40 डेज वॉज वेरी गुड पीरियड जो शुरू से चला आ रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिथ बन गई हैं, जैसे कि अभी आपने फैन की बात की, कि गर्मियों में भी फैन बंद कर देते हैं और कवर करके रखते हैं, ईयर्स में कॉटन प्लग लगा देते हैं कि हवा नहीं जानी चाहिए, तो इन सब चीजों से मदर को नुकसान होता है। बिकॉज एक्सेसिव स्वेटिंग से बहुत डिहाइड्रेशन होती है। आप फीड करा रहे हो, फिर आपको स्वेटिंग से एक तो वाटर लॉस हो रहा है, साथ में आपकी हाइजीन का एक इश्यू बन रहा है। तो उन सब चीजों से मदर को नुकसान होता है। 40 डेज रिकवरी पीरियड इज ए गुड टाइम, बट उन मिथ्स को हमें छोड़कर आगे बढ़ना होगा।
0: जैसे बहुत सारे लोग नहाने नहीं देते हैं मदर्स को काफी दिनों तक, कि 11 दिनों तक आप मत नहाइए, 6 दिनों तक मिनिमम होता है, तो क्या ये भी करना जरूरी है नॉर्मल डिलीवरी में?
1: नॉट एट ऑल, इवन नॉट इन सिजेरियन।
0: अच्छा,
1: हम सिजेरियन में भी आफ्टर 2-3 डेज अपने पेशेंट्स को, मदर्स को बोलते हैं कि आप अच्छे से बात लीजिए, ड्रेसिंग्स वाटरप्रूफ होती हैं। तो आप तो नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात कर रहे हैं उसमें तो हमें day 1 से हम पेशेंट्स को बात दे सकते हैं।
0: ओके,
1: एंड किसी भी डिलीवरी, सिजेरियन या कोई भी सर्जरी के बाद हाइजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो जो एक मिथ बना हुआ है कि वाटर चला जाएगा, सोप लग जाएगा, स्टिचेस पक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हाइजीन अगर रहती है तो हमारी हीलिंग बेटर
0: होती है। जी जी जी। अब इसमें 40 दिनों का आपने जो बोला वो एकदम ठीक है, लेकिन बहुत सारे आजकल हमने देखा है लोग जो हैं, मदर्स जो हैं वर्किंग है या सेलिब्रिटीज़ को अक्सर देखा है कि 11 दिनों में 21 दिनों में वो वापस काम पे जाना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, या हमने देखा है सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो 11 या 21 दिनों में कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, थोड़ा सा आउटिंग कर रहे हैं, क्या ये ठीक है बाहर निकलना इस तरीके से घूमना फिरना या फिर वापस उस काम पर लौटना?
1: इट्स अप टू अ पर्सन्स ओन कॉल। अगर उसकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है, अगर आप किसी एक ऐसे बंदे से बात करोगे जो कि रेगुलर जिम करता है, तो ऑब्वियसली उसकी रिकवरी किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी प्रोसेस के बाद बहुत फास्ट होगी।
0: ओके,
1: तो अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है कि आप उठ के जाओ, आप अपना ऑफिस वर्क करो, तो वो आप कर सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी में तो किसी भी, इवन फॉर वेट लिफ्टिंग, कोई हमारी तरफ से मना नहीं होता है, आप सब कुछ यू कैन कैरी ऑन ऑल द एक्टिविटीज.
0: ओके, एक डॉक्टर साहब आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है या अवेयरनेस है, बहुत सारी जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं जो फिजिकली अपने आप को बहुत फिट रखना चाहती हैं, योगा और जिम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर रही होती है. बहुत सारी वीडियोस हमने देखे हैं वायरल होते कि वो 7 मंथ है या 9 मंथ है वो प्रॉपर योग कर रही हैं और वेट लिफ्टिंग भी चल रही है उसमें और एरोबिक्स भी चल रहा है. सो क्या ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं?
1: अगर आप रेगुलरली प्री प्रेगनेंसी पीरियड में जिम कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, देन इट्स वेरी गुड. बट इट शुड नॉट बी स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज ए न्यू एक्सरसाइज. आप स्विमिंग करते हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, यू कैन डू एवरीथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय योर डॉक्टर. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर मना करेंगे कि आपको ये सब नहीं करना है. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप पहले से ये सब कर रहे थे तो आप कंटिन्यू करो, बट डोंट स्टार्ट हैवी एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ न्यू वन. लेकिन माइल्ड योगा, माइल्ड एक्सरसाइजेज ये सब रिकमेंडेड है. जैसे मैंने बोला कि पेल्विस ओपन करना है, प्रीनेटल योगा होता है, हमें पेल्विस ओपन करना है, बैक की मसल्स को रिलैक्स करना है, थाइज में थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन सब चीजों के लिए अगर आप योगा और माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो तो दैट इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन.
0: ओके, यानी माइल्ड एक्सरसाइजेस कीजिए, लेकिन कोई एक्सरसाइज ऐसी मत कीजिए जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, और वो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू करें, क्योंकि उसके फ़ायदे होने की जगह नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं. डॉक्टर दीप्ति, अब बहुत अहम सवाल, फ़ायदे बहुत सारे बता दिए आपने बेनिफिट्स नॉर्मल डिलीवरी के, लेकिन मैं कुछ जानना चाहूँगी कि क्या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कुछ केसेस में?
1: नॉर्मल डिलीवरी का एज सच अगर सब कुछ प्रोसेस नॉर्मल है, बेबी हेल्दी है, मदर हेल्दी है, तो कोई नुकसान नहीं है. लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी है तो नुकसान होता है. नॉर्मल डिलीवरी जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस भी बहुत पेनफुल होते हैं, यू हैव टू सिट ऑन दो स्टिचेस. उसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर उन स्टिचेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है. बहुत सारी मदर्स के लिए 1 मंथ बिल्कुल बेड पे बैठना, चेयर पे बैठना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उन लोगों को स्टिचेस के लिए ट्यूब भी यूज़ करनी पड़ती है जिसके ऊपर वो सिट करके फीड करा सके. तो इट कैन बी दैट मच पेनफुल ऑल्सो. साथ ही अगर आपको बेबी का साइज बहुत बड़ा है और एक डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी की जा रही है जिसमें वजाइनल टेयर्स हो सकते हैं, जो कि आपको ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपको ओटी तक ले जा सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के साथ कभी भी हमें रिस्क लेके नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी चाहिए. बेबी को भी डिस्ट्रेस होने के चांसेस नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा होते हैं. जब पेन्स आते हैं तो बेबी के ऊपर भी स्ट्रेस होता है. तो ऐसे में अगर बेबी की हार्ट बीट डिप हो रही है या बेबी ने अगर पॉटी कर दी है, जिसको हम मिकोनियम कहते हैं, अगर वो हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बेबी के लिए रिस्की हो सकती है.
0: ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिजेरियन रिकमेंड करते हैं?
1: यस.
0: सो हर चीज़ के फायदे हैं और हर चीज़ के नुकसान भी हैं. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है और बहुत अच्छे से होती भी है, सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर मदर्स को बहुत ट्रॉमा भी सहना पड़ता है, और उस केस में अगर डॉक्टर रिकमेंड करें सिजेरियन तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है. बहुत सारी और भी बातें करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ. और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप भी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और उसके बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर डॉक्टर दीप्ति गोयल से हुई ये सारी बातचीत आप कभी भी शेयर कर सकते हैं.

0: मशहूर हो जाए।
1: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है डॉक्टर दीप्ति गोयल से, हमारी आज की एक्सपर्ट, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम बात करें आज चाइल्ड बर्थ में नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरीज क्या बेटर हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पहले ये इन्फॉर्मेशन आस पड़ोस के लोग, बड़े बुजुर्ग या फिर घर की लेडीज़ के थ्रू आती थी, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन आपके क्लिक पर हैं, बहुत सारे वीडियोस के तौर पर, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे आर्टिकल्स के तौर पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि ये एक बहुत पुराना प्रोसेस है, इंसान का जन्म जो है वो एक नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन मेडिकल साइंस के आने से इसमें मोर्टालिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए सिजेरियन सेक्शंस अब ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल भी बिगड़ गया है। सो ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ सवाल, क्या बेटर है नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन, नॉर्मल है तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, सिजेरियन है तो क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कमियाँ हो सकती हैं, हमें बता रही हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल। सो डॉक्टर दीप्ति, अभी आपने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत सिंपल है और बहुत रिकवरी वाइज बहुत अच्छा रहता है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ सी सेक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आजकल की लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ईजी ऑप्शन है, क्या ये ईजी ऑप्शन है?
2: सिजेरियन इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी ऑप्शन। सिजेरियन भी पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत मुश्किल पीरियड होता है, इट्स नॉट ईजी। देर आर 7 लेयर्स जो सिजेरियन में ओपन होती हैं, तो हाउ कैन इट बी ईजी? इट्स नॉट एन ईजी ऑप्शन, बट येस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बिकॉज ऑफ एनेस्थीजिया पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, बट आफ्टर सिजेरियन रिकवरी में टाइम लगता है।
1: जी जी जी, यानी रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस किस सिचुएशन में सिजेरियन आप रेकमेंड करती हैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अक्सर बोलते हैं कि कई डॉक्टर्स ना जब डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही होती, बहुत लेट होता है, ये अक्सर हमने सुना है कि जब डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लग रहा होता है तो डॉक्टर्स फटाफट सिजेरियन करके जो है वो करना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोसेस में समय ना लगे, जल्दी हो जाए काम। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉइंट अपने लाते रहते हैं अक्सर।
2: बिल्कुल, हम ये प्रॉब्लम्स जो है वो डेली फेस करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: पेशेंट्स आके हमें ऐसे ही बोलते हैं कि सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे बेबी भी बिल्कुल ठीक है, मदर भी बिल्कुल ठीक है, हमने एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को एडमिट किया है, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि एडमिट नॉर्मल के लिए करने के बाद भी हमें सिजेरियन करना पड़े, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस मतलब बेबी की हार्ट बीट जो है वो कम होने लगी है। जैसे मैंने बताया कि जब पेन्स आते हैं तो मदर के साथ साथ बेबी को भी स्ट्रेस होता है, उसका भी ब्लड फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जब पेन चला जाता है तो वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। जब बेबी वीक होता है या कोई और इंट्रिंसिक प्रॉब्लम होती है, लेबर बहुत लंबी चली होती है, तो ऐसे केसेस में बेबी उस स्ट्रेस को नहीं ले पाता और उसका हार्ट बीट डिप होने लगता है या फिर वो मेकोनियम पास कर देता है, जिसमें हम कहते हैं कि ग्रीन कलर का जो वाटर है वो हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। उसके साथ साथ एक प्रोग्रेस ऑफ लेबर का एक रूल होता है। आप ऐसे नहीं है कि आप आज एडमिट कर रहे हैं और आप 3 दिन तक डिलीवरी के लिए वेट करते रहेंगे। अगर आज हमने पेशेंट को एडमिट किया है तो बिफोर टुमोरोज नाइट पेशेंट शुड हैव बीन डिलीवर्ड। अगर हम उससे ज़्यादा पेन्स में पेशेंट को रखते हैं तो वो बेबी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, मदर के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है, बेबी की हार्ट बीट डिप हो सकती है और किसी भी कॉम्प्लिकेशन में वो दोनों लैंड अप कर सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस में एक डिक्टम होता है, सन शुड नॉट सेट ट्वाइस एंड राइज ट्वाइस ड्यूरिंग लेबर। तो ये हमें फॉलो करना पड़ता है विद इन 36 आवर्स, मतलब इट शुड नॉट बी 48 आवर्स। 36 आवर्स में आपको डिलीवरी हो जानी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है या पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है जो कि मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर बहुत देर से 7-8 आवर्स से एक ही फाइंडिंग पे पेशेंट रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम फिर सिजेरियन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
1: जी, यानी ये सिचुएशन जैसे डायबिटीज़ बहुत लोगों को हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या हाई बीपी हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे और मदर दोनों की सेफ्टी के लिए सिजेरियन किया जाता है। डॉक्टर साहब, सिजेरियन में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? जैसे नॉर्मल में आपने बताया कि लास्ट मिनट पर कॉम्प्लिकेशंस आती है तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है, क्या सिजेरियन में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं?
2: सिजेरियन कॉम्प्लिकेशंस आर जस्ट लाइक एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि इन्फेक्शन का रिस्क होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है. अगर बहुत देर से पेशेंट लेबर में था तो यूट्रस जो है वो डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, उसको हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं. जिसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कि आपने सुना होगा कि डिलीवरी हुई और अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई. तो नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट कि इस पेशेंट को होगी कि नहीं होगी. हमें थोड़ा एक आइडिया होता है पेशेंट प्रोफाइल से कि इस पेशेंट को हाई रिस्क है पीपीएच का, बट सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमारी पीपीएच ही होती है. आफ्टर सिजेरियन या नॉर्मल के बाद भी हो सकता है, बट सिजेरियन में भी उसका रिस्क काफ़ी होता है.
1: ओके. तो ऐसे सिचुएशन में एक डॉक्टर की टीम को और फैमिली को क्या तैयारी करनी चाहिए?
2: मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डिलीवरी शुड बी ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल. किसी छोटी जगह पे कभी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए. डिलीवरी हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मदर के लिए अगर जरूरत पड़े तो आईसीयू अवेलेबल हो, बेबी के लिए अगर जरूरत पड़े तो आईसीयू अवेलेबल हो, ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड अवेलेबल हो. अगर को सर्जन की जरूरत पड़ रही है, हमारे आईसीयू स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ रही है, फिजिशियन की जरूरत पड़ रही है, तो वो सारे डॉक्टर्स एज ए टीम वहाँ पर अवेलेबल हो. ऐसी जगह हमेशा डिलीवरी होनी चाहिए. छोटी जगह डिलीवरी मैक्सिमम टाइम्स हो सकता है सही हो, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं देन इट कैन टेक अ टोल ऑन लाइफ आल्सो.
1: बिल्कुल बिल्कुल. सो एक अच्छा सिस्टम होगा जहाँ पर पीडियाट्रिशियंस अच्छे हों, जहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी हो, जहाँ पर एक पूरा सेटअप हो जो मदर और बेबी को हेल्प कर सकता है, वो होना ज़रूरी है. डॉक्टर साहब, बहुत सारी लेडीज़ को ये कहा जाता है कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चे का जन्म होना चाहिए. फैमिलीज इसमें बहुत बिलीव करती हैं. सो सबके अपने अपने बिलीव होते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस हफ्ते से किस हफ्ते तक ये जो मुहूर्त वाली चीज़ है या जो डे और टाइम देखकर जो चाइल्ड बर्थ प्लान किया जाता है वो ठीक रहता है? क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो वेट करते हैं कि नहीं 40 हफ्ते हो जाएं, उसके बाद कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है. कई लोग कहते हैं नहीं पहले कर दीजिए, ये मुहूर्त बहुत अच्छा है.
2: हमारा बेबी फुल टर्म 38 वीक्स पे हो जाता है.
1: ओके.
2: 38 वीक्स के बाद अगर किसी मेडिकल रीजन से या किसी और रीजन से हमें डिलीवरी करनी पड़ती है तो वी कैन प्लान द डिलीवरी.
1: ओके.
2: मुहूर्त डिलीवरी नहीं होती, मुहूर्त सिजेरियन होता है. नॉर्मल डिलीवरी को मुहूर्त में प्लान करना इज नॉट पॉसिबल. अगर कभी किसी पेशेंट का हमें ऑलरेडी पता है कि सिजेरियन ही होगा, जैसे कि मान लीजिए उसके पहले 2 सिजेरियन हो चुके हैं और हम 3rd सिजेरियन प्लान कर रहे हैं, या बेबी उसका ट्रांसवर्स पोजीशन में है, या उल्टा बच्चा जिसे हम कहते हैं उल्टा है, किसी का प्लेसेंटा बिल्कुल कवरिंग कॉज है, या कोई और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें पता है कि हमें इस पेशेंट का सिजेरियन ही करना है, ऐसे पेशेंट्स को हम एक ऑप्शन दे सकते हैं इफ देयर इज नो मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन. अगर पेशेंट हमें कहता है कि हमारा मुहूर्त 1.5 महीना पहले का है तो हम नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन जब हमारा बेबी फुल टर्म हो गया है उसके बाद एक दिन पहले या एक दिन बाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता
1: नहीं
2: है. बट वो एक दिन एट 34 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आफ्टर 38 वीक्स वी कैन एडजस्ट. मतलब इट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, इट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेडिकल इंडिकेशन.
1: बिल्कुल बिल्कुल. कि जब होना है तभी उसको नॉर्मल प्रोसेस से लेके चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. लेकिन हाँ, अगर एक दो दिन आगे पीछे का कुछ ऐसा मुहूर्त है तो वो आप प्लान कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ट्विंस की. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्विंस हैं तो सिजेरियन ही होगा, ऐसा होता है?
2: ट्विंस में सिजेरियन ही होगा नहीं होता, बट सिजेरियन का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. ट्विंस में एक बेबी अगर हमारा नॉर्मली डिलीवर हो गया है तो कभी कभी सेकेंड बेबी की पोजीशन ऐसी होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेकेंड बेबी के लिए करना पड़ता है. तो जहां हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि फिर हम पेशेंट को नॉर्मल के भी पेन्स देंगे और सिजेरियन भी करेंगे, तो दैट इज नॉट अ थॉटफुल आइडिया. तो ऐसे केसेस में फिर हम डायरेक्ट सिजेरियन करते हैं. बट अगर दोनों बेबीज बिल्कुल सही अलाइंड है, उनका वेट ठीक है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम ट्विंस में भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं.
1: ओके. यानी नॉर्मल के चांसेस हो सकते हैं. और ट्विंस में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सही टाइम क्या होता है, क्योंकि जनरली ट्विंस डिलीवरी जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल चाइल्ड.
2: ट्विंस में हमेशा मेच्योरिटी 2 वीक्स पहले आती है.
1: ओके.
2: जो मेच्योरिटी 40 वीक्स पे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आती है वो मेच्योरिटी ट्विंस में 38 वीक्स पे आती है. तो ट्विन डिलीवरीज हमेशा पहले हो जाती हैं. उनके वेट्स कम होते हैं बट वो बेबीज मैच्योर होते हैं. साथ ही यूट्रस जो है वो ओवर डिस्टेंडेड होता है तो उसमें अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शंस टाइम से पहले स्टार्ट हो जाती हैं. दैट इज द रीजन कि ट्विन डिलीवरीज पहले हो जाती हैं.
1: जी बिल्कुल. सो बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, खास तौर पर से फर्स्ट टाइम मदर्स को, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो गया है। चीजें बहुत सारी हमें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, लेकिन ये चीजें सही हो, ये जानकारी सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो एक्सपर्ट के द्वारा दी गई जानकारी बहुत जरूरी होती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं मॉम टू बी, तो जरूर कीजिए 8010781078 पर अपने सवाल पूछिए, और हमारी ऐप डाउनलोड करके रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ढूंढ सकते हैं। आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर दीप्ति गोयल के साथ हुई ये सारी बातचीत कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कीजिए। बहुत सारी बातें और भी करेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

बिम बुमक बिम बुमक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है नॉर्मल वर्सेस सी सेक्शन डिलीवरीज के बारे में। चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, लेकिन अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मदर को, फैमिली को, बच्चे को हर तरीके से तैयार भी रहना पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके डॉक्टर का। सो ऐसी ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर दीप्ति गोयल, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर दीप्ति, एक और बहुत ज़्यादा आजकल जो चर्चा हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है लोग उसको नहीं सहना चाहते, और फॉरेन में ये बहुत कॉमन है, एपिड्यूरल की बात होती है कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। इंडिया में लोग अभी उसको समझ नहीं पाए हैं कंसेप्ट को, तो मैं आपसे चाहूँगी कि ये ज़रूर हमें बताएं।
1: पेनलेस वजाइनल डिलीवरी इज़ द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज

0: अगर मैं आज की डेट में बात करती हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स हमसे सिजेरियन की रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनको पेन्स नहीं लेने हैं, तो उसके लिए हमारे पास पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन होता है। पेनलेस डिलीवरी के लिए हम एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एनल्जीजिया आई विल से हम देते हैं कि बैक में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि ड्रिप के जैसे फ्लो करता है पूरा टाइम।
1: ओके,
0: जैसे ड्रिप हमें एक कैनुला लगा दिया जाता है और उससे आईवी ड्रिप हमारी फ्लो होती है
1: बैक में पेशेंट के।
0: तो वो कैनुला नहीं होता, इट्स लाइक वेरी थिन स्ट्रिप जिसको हम स्पाइन में इंसर्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, और उसके थ्रू वो मेडिसिन पूरी हमारी चलती है। उसका बेनिफिट ये है कि आपको पेन्स फील होने बंद हो जाते हैं, पेन्स आने बंद नहीं होते। प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है कि पेन्स बंद हो जाएंगे फिर डिलीवरी कैसे होगी। पेन्स आ रहे हैं बट आपकी सिर्फ सेंसेशंस ब्लॉक होती हैं।
1: ओके,
0: तो पेशेंट उठ के घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: कोई एक्सरसाइज करनी है वो कर सकते हैं, यूरिन पास करने के लिए जा सकते हैं, बट उनको पेन्स फील होने बंद हो जाते हैं और वो आराम से एग्जॉस्ट नहीं होते, आराम से अपनी डिलीवरी के लिए रेडी रहते हैं। जब पुश करने का टाइम होता है तो हम एपिड्यूरल को ऑफ कर देते हैं और पेशेंट को थोड़ी थोड़ी सेंसेशन आने लगती है, वहां पे हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी करा पाते हैं, पेशेंट बहुत कंफर्टेबली कराते हैं।
1: और ये कॉमन होने लगा है इंडिया में,
0: ये कॉमन होने लगा है। नाउ वी आर ऑफरिंग दैट फैसिलिटी टू ऑल आवर पेशेंट्स। आई विल से दैट इज द राइट ऑफ एवरी मदर। व्हाई टू सफर पेन, व्हाई टू सफर पेन।
1: बिल्कुल। सो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है और होता भी है कि आफ्टर दिस इंजेक्शन जो हम नॉर्मली सिजेरियन में देखते हैं बैक में जो इंजेक्शन लगता है उससे बाद में बैक पेन बहुत सालों तक रहता है, क्या इससे भी रहता है?
0: इससे बैक पेन होने का जो परसेंटेज है वो हार्डली 5% है।
1: अच्छा,
0: लेकिन बैकएक जो है वो पोस्ट डिलीवरी आई विल से 70% मदर्स को होता है। उसका रीज़न ये इंजेक्शंस नहीं होते, ना ही सिजेरियन में जो इंजेक्शन लगता है वो होता है, ना ही जो एपिड्यूरल में इंजेक्शन लगता है वो होता है। उसका रीज़न होता है आपकी बैक की जो मसल्स हैं वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारा जो टमी है वो एक तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो एक इररेगुलर वेट गेन हो रहा है हमारा, पूरी बॉडी पे नहीं हो रहा,
1: ऐसे हो जाते हैं।
0: तो बैक को बहुत काम करना पड़ता है हमें इरेक्ट पोस्चर में रखने के लिए, हमारी मसल्स एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। पोस्ट डिलीवरी हमें उसके लिए एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, लेकिन हम पूरे टाइम बेबी के साथ बिजी होते हैं, फीड कराने में लोगों का पोस्चर बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो इन सब चीजों की वजह से बैकएक होता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी होगी, बैक स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, बट एपिड्यूरल कैन नॉट बी द रीजन एवरी टाइम फॉर अ बैकएक।
1: ओके, एपिड्यूरल एक रीजन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और ये ट्रीटमेंट IVF IUI के नाम से काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ बेटर भी हुई है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि IVF, क्योंकि ये काफ़ी प्रीशियस प्रेगनेंसीज मानी जाती हैं, इसमें कभी ट्विंस होते हैं कभी सिंगल होता है, लेकिन ये काफ़ी प्रीशियस होती है बिकॉज इस प्रोसेस में बहुत कुछ झेलना पड़ता है मदर को, तो क्या इसमें सिजेरियन ही कराना पड़ता है?
0: ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है और ना ही ऐसी कोई गाइडलाइन है कि अगर IVF कंसीव किया है तो सिजेरियन ही कराना है। अगर पेशेंट नॉर्मली लेबर में एडवांस कर रहा है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो, बट यस वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि बेबी को या मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एवरीथिंग गोज फाइन, गो फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी, बट इफ इट्स रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड देन आई विल से कि यू शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन।
1: ओके, वो ज़्यादा बेटर है, किसी भी तरीके की रिस्क लेने से बेटर है कि आप सी सेक्शन की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, पर उसकी तैयारी कैसे करनी है वो इंटरनेट पर देख देख के प्रीनेटल योगा या इन सब की प्रिपरेशंस करते हैं, बट एक्चुअली में क्या करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़ा जा सके?
0: इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड यू आर प्रोसीडिंग फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी, सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि हाँ, पेन्स जब स्टार्ट होंगे तो मुझे उन पेन्स को थोड़ा बेयर करना है, बिकॉज हम जो पेनलेस का इंजेक्शन देते हैं वो भी हम स्टार्टिंग से नहीं दे सकते, उसके लिए भी एटलीस्ट 3-4 centimeters की डायलिटेशन होनी चाहिए, उसके बाद हम वो इंजेक्शन पेशेंट्स को दे सकते हैं
1: जी।
0: उसके साथ साथ आपको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि पहले लोग बहुत फिजिकली एक्टिव थे इसलिए नॉर्मल डिलीवरी होती थी, तो अब वो वन डे में नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको पूरा 9 months अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, एंटीनेटल क्लासेस होती हैं जो कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, लमास सेशंस होते हैं कि आपको लेबर में कैसे बिहेव करना है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं वो सब सिखाया जाता है ताकि आपकी लेबर जो है वो स्मूथली निकल सके। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनका, अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेज का नाम लूँ तो कैट एंड काउ पोजेज हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज हैं, कीगल्स हैं, डक वॉक है, स्क्वाट्स हैं, तो वो राइट टाइम पे राइट एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हो,
1: पर एक्सपर्ट की गाइडेंस में करना चाहिए।
0: यस, ऑब्वियसली। यस,
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जब डाइट की बात करते हैं तो मदर्स को बहुत ज़्यादा घी और बहुत सारी पंजीरी और दूध और ये सारी चीज़ें जो हैं पहले ही खिलानी शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ ईजी हो जाएगा, बाद में भी बहुत कुछ खिलाते हैं। इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो ऑफकोर्स होता होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वेट गेन बहुत ड्रास्टिकली होता है। सो ये कितना सही है?
0: एक हमारी सोसाइटी में कॉमन मिथ है कि अगर आप पेशेंट मदर को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसको घी पिला दो, हाँ, तो उसका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और जो हमारा बर्थ कैनाल है, दे आर नॉट कनेक्टेड एनीवे। जो आप घी पियोगे वो सिर्फ इंटेस्टाइन में जाएगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, फैट बन के डिपॉजिट होगा। उसके साथ साथ जब आपको पेन्स आएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है, तो अगर आपका स्टमक ज़्यादा फुल होगा तो उस वजह से आपको वॉमिटिंग्स और अनइजीनेस ज़्यादा होती है। तो उस घी के लिए तो मैं बिल्कुल बिग नो है। जो हमारा घी का क्वांटिटी प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी है, आई विल से कि मॉडरेशन में जितना आप कुकिंग के लिए आप जो भी घी ऑयल आप यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करो। उसके अलावा घी का कोई बहुत ज़्यादा मेजर बेनिफिट नहीं है। हमारी एक अगर हम हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की बात करें उसके हिसाब से जितनी फैट रिक्वायरमेंट है हमें वही लेना है। अगर किसी चीज़ का बेनिफिट है तो वो प्रोटीन इनटेक है। आपको अपनी डाइट में पल्सेस हैं, एग्स हैं, पनीर है, बेसन है, सोयाबीन है, इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ाना है जिससे कि आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो, हीलिंग फास्ट हो, चाहे नॉर्मल है चाहे सिजेरियन है। योर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर हीलिंग।
1: ओके जी, यानी प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी चाहिए, पनीर है, टोफू है, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर लेते रहें तो वो बॉडी को आपकी स्ट्रांग बनाने में मदद करती है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि अगर इस विषय पर हम बात करें तो काफ़ी घंटों तक बात हो सकती है, बट हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सो बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब देने के लिए आपने गाइड किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो मानव रचना और इस तरीके से गाइड करने के लिए।
0: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच।
1: जी हाँ, नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी, कोई मन में सवाल अगर रह गया है और आपने ये पूरा एपिसोड नहीं सुना है तो इसे आप सुन सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड करके। रेडियो मानव रचना और पॉडकास्ट सेक्शन में जाके आरजी दीक्षा के फोल्डर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डॉक्टर दीप्ति गोयल के साथ हुई बातचीत मिल जाएगी। इस टॉपिक पर एक मॉम टू बी को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए एक्सपर्ट के द्वारा, तो ज़रूर ये जानकारी उनके साथ शेयर कीजिए और साथ ही सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। ऑल इज वेल में आज बस इतना ही। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: यार हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था, और साथ ही PCOD हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को सीरियसली लेते हुए INFS से न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की पढ़ाई भी की, और फिर जो हुआ वो तो सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इम्प्रूव की, स्ट्रेंथ वापस पाई, और जहां उन्हें बेसिक मूवमेंट से भी रोका गया था वहीं आज वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करती हैं, साथ ही वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और एंड्योरेंस एक्टिविटीज जैसे रनिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
0: ओके, तो सिमरन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
1: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 केजी तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ, और कोविड के टाइम

0: पर जब मैंने अपने फादर को लूज किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
1: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपकी तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
0: जी,
1: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
0: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपनी हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना, और सबसे बड़ी बात क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 किलो वेट गिर जाए
1: जी।
0: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
1: जी।
0: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
1: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
0: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 kg के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज होते ही चले गए। फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है, क्यों ना मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूं एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूं। तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4-4.5 साल।
1: और आप इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही हैं मतलब बहुत उम्दा, मैं कहूंगी आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग, वो तो देखकर ही आपको लग रहा है। सो उस टाइम पे आपका क्या कितना वेट था?
0: हाँ, तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं, और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं, मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, तो मुझे आज भी याद है कि 78 किलो का वजन मैंने देखा था स्केल पर
1: जी।
0: और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई। तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही, और ऐसा बोलूंगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देख कर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी। और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे। तो वो 78 केजी का मार्क मुझे याद है, और एट द एंड 1.5 ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 केजीस पे थी।
1: वाओ, सुपर सुन के भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफर, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ। सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
0: तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय, और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी। जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता है ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, वही चीज़ हुई। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया अरे आप लिफ्ट मत कीजिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है। और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए। तो ये और भी बड़ा एक रीज़न बन गया कि मैं कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 में आप ऐसा तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं आज के बाद ये सब काम बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूं, मैं ऑलरेडी अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तो मुझे लगा मैं इसी पे प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके नीज़ में पेन है, यानी कि अगर आपको लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि गूंद कम हो गई है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार्टिलेज ख़राब हो रही है, उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, वो रिपेयर नहीं होगा
1: जी.
0: लेकिन कर क्या सकते हैं हम, अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं.
1: अच्छा.
0: तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है. अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है. तो वही अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया. एंड फिर एक जिद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया एक डेढ़ साल के बाद
1: जी.
0: तो 10 किलोमीटर्स पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया.
1: वाओ, वंडरफुल. सो एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज के लिए भी उतनी जरूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
0: हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है. तो आयरन ही देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें मुझे लगता है डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें. लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज कर रहे हैं 1% रफली हर साल. सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट यू आर लूजिंग इट. अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा. और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स. तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं तो इंडिया में 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं और सबसे बड़ी बात उनमें से लगभग 80% महिलाएं हैं. यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s-50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिटन हो जाते हैं क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं. ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है.
1: अच्छा.
0: तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं. तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं. अगर आप 20s-30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी. तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन इसमें कोई फ़र्क नहीं है. मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है.
1: बिल्कुल.
0: तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए. और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है. मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है. जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया. लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है
1: जी.
0: तो मैं कहूँगी विमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा. और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे. तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप और पुलअप्स करने के शौक रखती है. मुझे बोलती है मुझे बार पर लटकाओ, मुझे पुलअप करना है. पुशअप करके दिखाया उसने मुझे, स्क्वाट्स करके दिखाया. मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कल्चर की तरह फिटनेस आगे लेकर जा रही हूँ. तो विमेन को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है.
1: बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई है कि विमेन को बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि हमें नहीं पता मसल ट्रेनिंग क्या है. हमें तो लगता है कि बस वेट कम करना है, डाइट कर लो या योगा या जिम चले जाओ एक घंटा. और वहाँ पे भी जिम में भी नहीं समझ आता है अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा ना हो, क्योंकि खुद से तो नहीं कर सकते हैं लोग. सो मतलब आपका ये कहना है कि मसल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की.
0: बिल्कुल.
1: बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे. सो दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफ़ेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जांपल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इनटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ, मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और मेरे कितने सारे मेंटीज़, आई थिंक मैंने 400-500 लाइफ्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं। बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं, और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका
0: जी। मतलब आपने जो 5 चीज़ें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर पोर्शन आपको पता होना चाहिए,
1: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी। अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती हूँ, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते। लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया हाँ, लेकिन उसमें
0: सबकी बॉडी अलग अलग,
1: बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा। यहीं पर स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है, और कोचिंग भी काम आती है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, या वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन कोचेस
0: देखे हमने, आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखे हैं, मतलब मैंने तो
1: जी। तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ, और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो
0: जी। तो सिमरन, आपने बात की आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन करिए, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
1: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 से 120 मेंटीज हैं, और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ। आप देखेंगे ऐप पर, जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है, और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है, सो मोर देन 500 पीपल मैं।
0: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
1: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं, तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोज भी होती हैं, तो वो वीडियोज के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं, तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते, एज वाइज, हार्मोनल wise we have to see a lot of things, same for nutrition, तो वहाँ plans होता है, and फिर weekly हम अपने mentees से connect करते हैं, जहाँ पे वो अपना स्टैट्स अपने मेजरमेंट्स डालते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है. क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
0: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज़ में गुरु होना तो बहुत ज़रूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत ज़रूरी है. सो आपके जितने भी आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
1: फिटर बहुत सारी कंट्रीज़ में कर रहा है, मोर देन 100 countries. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज जो हैं NRIs भी हैं
0: जी,
1: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज़्यादा हैं. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें घर के काम, उनके बच्चे, और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प भी हो जाती है, और यहाँ पर लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसा मेरा मैं देखती हूँ, मेंटीज के साथ काम करती हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर आप बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है.
0: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमेन के लिए क्यों इतनी जरूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ मिथ्स बहुत ज्यादा हैं?
1: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपीनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%. या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा विमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ये इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
0: जी.
1: बहुत सारी विमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज़्यादा वर्किंग है, घर के काम उनके ख़त्म नहीं होते. फिर भी वही हैं जो स्ट्रेंथ लूज़ कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं. लेकिन समझिए, ट्रेनिंग और काम एक ही चीज़ नहीं है.
0: अच्छा.
1: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
0: अच्छा.
1: अब बॉडी, अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है, ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए. रोज़ मैं एक ही

0: काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है, उसके लिए हमें प्रोटीन इंटेक भी अच्छा चाहिए। तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है।
1: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है। यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है। अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं, तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी। वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा। तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरी रिक्वायरमेंट ही कम है, हम जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेन करें। ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की ज़रूरत है। अब वो जो डेफिशिएट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहाँ फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी।
1: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बिल्कुल ही नहीं पता हमें, जिसने आपने इतनी इसमें, आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी।
0: धन्यवाद।
1: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पर मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपके जैसी जर्नी पर हैं, तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए, तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज़ को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक, जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए। तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं, बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया। मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं एक घंटे से डेढ़ घंटा या दो घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने ढाई घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपनी वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए या कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया। तो उसमें भी मुझे एक डेढ़ घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं ये PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल, 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है। तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड है।
0: अच्छा
1: जी। और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनी मोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है? ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए, प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो। मैं थी ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा।
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं, तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर और जो आज भी हैं। तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो पांच चीज़ें हम अभी बात कर रहे थे, यू नो, वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहाँ अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं PCOD थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स किसी से भी वो ले सकते हैं, तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा BMR अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा ना दूध ना चावल कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन PCOD आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
0: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
1: देखो मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, वो परांठे मेरी मम्मी के तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजीज की अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, और फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना। हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्स ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसी बैलेंसिंग की हमें जरूरत है।
0: मतलब चीजें वही है, बस तरीका
1: बदल गया, स्ट्रक्चर आ गया जो मेरी बॉडी के लिए सही है, कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो और कुछ नहीं, जितना आपका बॉडी वेट है कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन तो खाइए। ये तो RDA रिकमेंडेड है कि अगर मैं आज 60 किलो की हूँ तो 60 ग्राम तो मिनिमम मुझे खाना चाहिए। ये कोई थ्राइविंग नंबर नहीं है
0: जी,
1: ये सर्वाइवल नंबर है कि अगर आप ये भी नहीं खा रहे तो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं कर रहे। और आप हैरान हो जाएंगे इंडियन प्लेटिंग्स देखकर कि उसमें आपको बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
0: हाँ जी।
1: तो कैसे हम कहे कि हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, ट्रेनिंग हम करते नहीं, झाड़ू पोछा घर का काम को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं, तो अगर हमारा मसल जा रहा है, ऊपर से हम प्रोटीन खा नहीं रहे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके की कंडीशंस। और PCOD एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है। अगर PCOD है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है, आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे। मुझे भी PCOD के काफी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया जहाँ मैं 125 mg की पिल ले रही थी। लेकिन देखिए यही लाइफस्टाइल, यही 5 चीज़ें फॉलो करते करते मैं आज PCOD से भी बाहर हूँ। मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, फिर सूटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
0: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत। मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी RO लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क पानी वगैरह का।
1: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है। तो जहाँ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहाँ हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है, शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि you know, आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है। आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं।
0: जी, और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही जरूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
1: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें, डिपेंड करता है। कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है, कोशिश करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी जाएं। लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। मैं भी इन्हीं 24 घंटे

0: हो जाता है एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है. सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से डे वन शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप डे टू पे पहुँचे, आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया. फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं. तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे. वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा. आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर PCOD या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी.
1: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के. क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का, तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर. और काफी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा.
0: थैंक यू गौरी.
1: सिमरन, अभी हमने बात की PCOD, PCOS, थायराइड, और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है. सो क्या डायबिटीज भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकती है, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज़ या फिर मिथ है?
0: नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है. मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज के साथ काम कर रही हूँ और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं, जहाँ पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया है, जहाँ HbA1c 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं. तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं. अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, आज 7-8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
1: जी.
0: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है, तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है. तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
1: जी.
0: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जाँच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3-6 महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए. जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं. हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुंच गए हैं या कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है. डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं. ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है.
1: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे. तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बोलते हैं अरे हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे, तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी. हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद उनके एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है, और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, हम भी तो यही तो वही तो गड़बड़ है, वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है. आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है. हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है. तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना, और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं, तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का. तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका HbA1c, आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं. जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं
1: जी. मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
0: बच हैं. तो सकते हैं 100%. तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है, तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया. तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40, आप बाहर की विमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग. मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफ़ी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है
1: जी.
0: एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी विमेन अच्छी हट्टी कट्टी विमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी विमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं।

0: हैं जो शायद शायद नहीं बोलूंगी डेफिनेटली, तभी वो इन विमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है. घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है आप ले रहे हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स.
1: जी, और साथियों अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM.

0: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं। तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे, बट ये डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
1: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज़ होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ, लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वजन तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था, आपका BMR आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है, तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई। तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है। क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया, स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
0: नहीं कर पाएंगे।
1: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से BMR थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिएट कर रही हूँ तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है, अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूँ या मैं तो फास्टिंग या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या आप 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
0: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
1: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता है कि 7 बज गए हैं अभी, चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड, यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस, अडैप्टिव बॉडी अडैप्ट कर जाती है, और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लैटियो हिट करेंगे, फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं।
0: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है।
1: बिल्कुल होगी, अगर आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें
0: जी। तो सिमरन, हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी, सुनी, और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, तो आप रेडी हैं उसके लिए?
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, तो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड।
0: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
1: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म।
0: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
1: डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी।
0: अच्छा, स्मार्ट आंसर। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
1: जो आप सस्टेन कर पाए।
0: नाइस। एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
1: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा।
0: वाओ, सुपर, थैंक यू सो मच। तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है। सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं। तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, जैसे आपने बात की कला की जी, बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल
0: जी।
1: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर हमें पता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पांच चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, वो शेयर करूं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एक गोल क्रिएट करिए, उस गोल को देखिए, आप वीकली अपना प्रोग्रेस लीजिए, नॉट ओनली थ्रू वेट बट थ्रू इंचेज ऑल्सो, और उसको रखते हुए आप आगे चलते जाइए, और एग्रेसिव अप्रोच मत रखिए। ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको एग्रेसिव कैलोरी डेफिशिट की ज़रूरत है। बैलेंस रखते हुए, छोटे से डेफिशिट के साथ, लिटिल बिट स्टिम्युलेशन ऑफ मसल्स के साथ, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं
0: जी। थैंक यू सो मच सिमरन, इतना अच्छे तरीके से आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
1: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर। मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर, और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहे, तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच, आई एम ऑल देयर टू गाइड देम। एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा।
0: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच, एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो, और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे। सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में। तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ शिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
3: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ, एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। हमारे शो हर एपिसोड बहुत खास लेकर के आता है, जहां पर हम आपको कुछ वैल्यूज देने की कोशिश करते हैं। सो वी ट्राई टू डिकोड मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स, मल्टीपल स्किल सेट्स, यहाँ पर आपके लिए एक टेक अवे हो सकता है कि यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स इन अ वन सिंगल शो. आज का शो हमारा अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल टीम यहाँ पर बैठी हुई है. जो टीम है ये है खरोंच, एक वेब सीरीज आई है जो यूट्यूब पर आ चुकी है ऑलरेडी, और बहुत सुंदर सुंदर कलाकार हैं, बहुत सुंदर काम किया है सभी लोगों ने. उसकी पूरी जो कास्ट है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है. खरोंच वेब सीरीज का नाम है, इसको डायरेक्ट किया है रजत शर्मा ने, लिखा भी रजत शर्मा ने है, और प्रोड्यूसर है इसके पंकज पलवलिया. पंकज भाई खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अभी YouTube की तरफ उन्होंने रुख लिया है अपना. साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं मोंटी. मोंटी जो कई बार हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, कई दफ़ा आप इनकी आवाज़ हमारे रेडियो के माध्यम से सुन चुके हैं. हरियाणा के बहुत अच्छे कलाकार हैं. पगड़ी के नाम से इन्हें बहुत जाना जाता है क्योंकि पगड़ी बांधने में बहुत मशहूर हैं. साथ साथ दो और कलाकार हैं हमारे साथ, हल्लू भाई जिनका ओरिजिनल नाम हरविंदर है लेकिन मुझे मना किया गया है हरविंदर नाम ना लूँ क्योंकि हल्लू नाम से लोग जानते हैं. एंड साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं सोनू भाई. सबसे पहले मैं आप चारों का स्वागत करूँगा, शुक्रिया आने के लिए.
4: थैंक यू,
5: बहुत बहुत धन्यवाद.
3: सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा पंकज भाई आपसे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, लोगों को आपके बारे में क्या पता होना चाहिए. इस टाइम पूरा फरीदाबाद और कुछ हिस्सा गुड़गांव का आपको सुन रहा है.
4: जी बेसिकली तो हम एक कंटेंट क्रिएटर ही हैं और फनी कंटेंट हम बनाते हैं. कॉमेडी की रील हमने स्टार्टिंग की थी बनाने की, तो उसको बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए. उसके लिए हमने फिर से एक बार टीम जोड़ी, अपनी टीम बढ़ाई, और उसके बाद में हमने ये जो वेब सीरीज है इसमें हमें भाई मिले थे रजत शर्मा जी, जो पहले भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड तक भी वो काम कर चुके हैं. तो उनके साथ उनके सानिध्य में मिलकर और टीम का हमारा अच्छा प्यार बना करके हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट लेकर के अभी आए हैं.
3: जी जी हेलो भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई.
6: मैं भी एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ. मैं भाई के साथ रहता हूँ, भाई मेरे बड़े भाई भी कह सकता हूँ, गुरुजी भी है मेरे, जिन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाई है ऐसे ऐसे करना, एक्टिंग वगैरह जो भी. जो आज मैं खरोंच के लिए यहाँ पर आया हूँ तो भाई ने मुझे एक ऐसा अहम किरदार दिया है जो मैं बता नहीं सकता. आप सभी को देखनी पड़ेगी उसके लिए वेब सीरीज खरोंच यूट्यूब पे जाकर. आज के टाइम में हर कोई रील तो बना ही रहा है, तो हमने सोचा कुछ हम अलग दिखाएं आपके लोगों को.
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मंडी जी आपसे बात करना चाहूंगा, आप बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं.
5: सबसे पहले तो सारे मानव रचना के जितने भी लिसनर हैं सारे ने मेरी राम राम. इसमें हमने खरोंच वेब सीरीज जो कि यूट्यूब चैनल सत्या साचा फिल्म पर आई है, इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, एपिसोड 1, 2 और 3. अच्छा बीच में से देखोगे तो स्वाद भी नहीं आवेगा. आपने शुरू तो देखोगे जब मेरा लगेगा कि भाई इसका मतलब सिस्टम है क्या, ये स्टोरी क्या है. और जैसे एक बॉलीवुड लेवल पे एक मूवी में वेब सीरीज में काम होता है, उससे भी अप लेवल का काम करने की पंकज भाई, रजत भाई ने, सुभाष भाई ने, देसी भाई ने टीम में काम करने की कोशिश करी है. और इसी में एक छोटी सी अहम भूमिका मेरे को भी निभाने का मौका मिला है.
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. मैंने कुछ कुछ ग्लिम्पसेस देखे थे उसके, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब वो दिखाई दिया वहाँ पर कि प्रोडक्शन कितना अच्छे लेवल का आप लोगों ने किया है, मतलब जनरली बहुत अच्छा था. पंकज भाई मेरे आपसे एक प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को कुछ नहीं पता है खरोंच के बारे में.
4: जी जी जी.
3: आप अगर इस कहानी को समअप करके इस तरीके से हमारे लोगों को बता सकें कि वो देखने पर मजबूर हो जाएं, तो प्लीज़ इस कहानी का थोड़ा बहुत एक ट्रेलर अपने मुंह से बताइए.
4: ये एक जो वेब सीरीज है ये क्राइम के ऊपर आधारित है. इसमें क्या होता है कि ये एक गांव की स्टोरी है और इसमें जो हमारे जो मेन किरदार है उसके साथ किसी टाइम में कुछ गलत होता है, तो वो चीज़ एक सस्पेंस के तौर पे अभी हम लेके चल रहे हैं उस चीज़ को. लेकिन इसमें क्या है कि इस गांव के अंदर कोई भी अपराध नहीं हो रहा है पिछले 5 साल से, किसी भी प्रकार का कोई अपराध. लेकिन ऐसा कोई स्थान होता नहीं है जहां कुछ ना कुछ अपराध नहीं हो. तो अपराध क्या है कि वहां पर जो एक बाबा हैं और सरपंच हैं उनके अंडर में कोई भी चीज़ें थाने तक नहीं पहुँच पा रही है, प्रशासन के पास नहीं पहुँच पा रही है, वो दबा रहे हैं सारी चीज़ों को जो भी कुछ गाँव में हो रहा है. तो उस चीज़ की जो आज के टाइम में रियलिटी भी होती है कहीं कहीं जगह पर, आप देखोगे आप थोड़ा सा बैकवर्ड में जाओगे तो वहाँ पर यही होता है कि पंचायत वगैरह में यहाँ पर दबा के या किसी भी प्रकार से प्यार से भी और उससे भी आदमी को रोक दिया जाता है. तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे उनको हम त्रुटि बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कमी बोल सकते हैं, उनको दिखाने की मेन कोशिश इसमें की गई है. और क्राइम ऐसा है कि इसमें जो मर्डर हो रहे हैं, जितने मर्डर होंगे उसमें सस्पेंस इतना है कि ये ही नहीं समझ में आएगा आपको लास्ट तक कि ये मर्डर कर कौन रहा है. और अभी हम आपको ये बता भी नहीं सकते, उसके लिए आपको अभी स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा वो सारी चीजें।
3: फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें मुझे करनी है, खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स जब यहाँ पर आते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है पर्सनली। विल टॉक अबाउट ऑन सो मेनी थिंग्स, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर ये गाने आपको पसंद आए तो हमें बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर खरोंच जो सीरीज है उसकी टीम मौजूद है, और खासतौर पर कंटेंट क्रिएशन की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन मेरा अगेन पंकज भाई आपसे रहने वाला है। प्लीज हमें बताइए कि कंटेंट क्रिएशन की जो आपकी जर्नी हुई, कब शुरुआत हुई, कब आपको ऐसा लगा कि ये मुझे करना है और ऐसे करना है?
1: ये स्टार्टिंग में इसका तो पता ही नहीं था कि ये चीज हमें मतलब इस लाइन में भी जाना है। जो एक्चुअल बात है तो उस टाइम क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था तो छुट्टियां मिल गई थी और गांव में रहने का टाइम मिल गया था, फ्री टाइम था, और उस टाइम टिकटॉक चलता था। अभी जो बहन है तो उस टाइम हमने छोटी छोटी रील जो हम बैठते हैं आज के टाइम में जो हमारे मनोरंजन की चीज़ होती हैं गांव में बैठते हैं, तो वो हमने शूट करनी शुरू कर दी थी और वो शूट करके हमने अपलोड की थी, तो उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लोग पसंद कर रहे थे उस चीज़ को। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस चीज़ पर हम आगे बढ़ते चले गए कि यही चीज़ करनी है, तो उसके बाद में हमने अच्छा एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद में हम यहाँ पर पहुँचे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बार हल्लू भाई से भी बात करना चाहूँगा। आप बताइए आपकी कंटेंट क्रिएशन की जो यात्रा रही, कैसे शुरुआत हुई, कब लगा कि ये मुझे करना है?
2: जैसे कि पंकज भाई ने बताया सेम ऐसे ही मेरा सिस्टम है। लॉकडाउन लगो, लॉकडाउन ने बहुत सारे क्रिएटर निकाले हैं। उस टाइम हम पबजी खेलते थे और टिकटॉक थी, तो वैसे ही नॉर्मली रील बना लेते थे। फिर मुझे पंकज भाई के बारे में पता चला, उनकी भाई भी रील बनाते, क्यों ना मैं भाई गैल टीम में रहने लगूँ। तो मैंने भाई से संपर्क किया, भाई ने बताया कोई दिक्कत नहीं आ जाओ, तो फिर हम साथ में रह के रील बनाने लगे।
0: पंकज भाई बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो गए हैं क्योंकि अब कंटेंट क्रिएशन एक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी निकल के सामने आई है, जहां पर आपको पैसा भी उसका मिलता है, जहां पर आपको काम भी उससे मिलता है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर जो हमारी आवाज सुन रहे हैं वो कंटेंट क्रिएट करना भी चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसे शुरुआत की जाए, हाउ टू फिगर इट आउट?
1: ऐसा होता है स्टार्टिंग में तो हमें बहुत आसान सा लगता है कि चीज़ें हमारे पास बहुत सारे इतने कंटेंट हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना किसी भी लाइन की, या फनी हो या हमारा कोई व्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर लगता है कि अब यार सारा कुछ खत्म हो चुका है इस पृथ्वी पर, इस चीज़ की कुछ बची नहीं है चीज़ें। तो इसमें क्या है कि सबसे मेन है कि टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप इस चीज़ में कर रहे हो तो साइड में भी अपना कुछ कर रहे हो तो उसको करते रहो। अगर प्रॉपर इस पर डिपेंड हो जाओगे तो फिर उसमें दिक्कत आनी पॉसिबिलिटीज हैं कंटेंट क्रिएशन में। दूसरा ये है कि अगर जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमारा भी यही था कि स्टार्टिंग में हम भी अच्छा कर रहे थे, बाद में हमें लगने लग गया था कि अब कैसे करें आगे। फिर मुझे एक वेब सीरीज थी स्टेज ऐप की मेवात, वहाँ काम करने का मुझे मौका मिला था, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी थी वहाँ पर कि किस प्रकार से होता है। कि समझ लो कि थिएटर तो हमने नहीं किया लेकिन उस जैसी चीज़ें बहुत सारी हमें सीखने के लिए मिली थी। तो जो भी भाई इस लाइन में अगर ट्राई कर रहे हैं तो उनसे ये कहूँगा कि अगर अपना जो काम आप कर रहे हो साइड में उसे जरूर करते रहें।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत आसान है, हो जाएगा। जब आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आप अब प्रोसेस में घुस चुके हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है हर काम में दुनिया के, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, फिर वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, वो एक्चुअल जर्नी होती है। जस्ट परस्यू दैट पर्टिकुलर ड्रीम एंड उस तरीके से आप वहाँ से निकल गए, अगर वहाँ तक आप पहुँच गए उस प्रोसेस तक जहाँ पर आपको ये जादू ही लगने लगता है सब, वहाँ से एक्चुअल एक यात्रा की शुरुआत होती है। चीज दैट पार्ट। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शोमिया की बात करेंगे। और कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, मॉन्टी से जानना चाहेंगे, पंकज भाई से बात करना चाहेंगे। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइव।

सुबह पे जिस तरह शाम का

0: एक और बार अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं आरजे सागर, शो यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ एंड राइट नाउ यू लिसन टू रेडियो मानवश्रम 107.8 FM। खरोच वेब सीरीज की टीम हमारे बीच में मौजूद है, जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ। आइए अब आगे अपने इस कारवां को लेकर के चलते हैं बातचीत के। और अगला प्रश्न मेरा मोंटी से रहने वाला है। मोंटी, आप बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम खरोच?
1: देखिए, खरोच तो अब हमने अब करी है, उससे पहले से ही आप को मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी टीम को, रेडियो मानवश्रम की टीम को, कि हम शुरू से ही मतलब हरियाणवी चीज़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में रहे। तो मैं थिएटर भी करता था कॉलेज टाइम पे। मैंने धीरे धीरे देखा कि थिएटर में मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना डांस में आता था, खासकर फोक डांस में, हरियाणवी फोक डांस। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मज़ा आने लगा, करने लगा, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने भी लगा। फिर पता चला कि इसमें आगे मैं कुछ और अच्छा बड़ा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने एक टीम बनाई, टीम बना के मैंने अपना एक खुद का एक ग्रुप तैयार करके उसको बाहर लेके जाना, दूसरे जगहों पर जाना, पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में जाना, विदेश में जाना बच्चों के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, हमारी टीम के आर्टिस्ट भी खुश होते हैं, घूमना भी मिल जाता है और काम भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। हमें जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े होंगे तब तक हमें ये पता होगा कि माता पिता की सेवा क्या है, बड़े छोटों का आदर सम्मान क्या है। और जो अपनी संस्कृति को छोड़ के उससे परे हो जाता है, तो आपने कई चीज़ें शहरों में सेक्टरों में ये देखी होंगी कि एक ही जगह पे सास ससुर, मतलब बहुत बड़ी से बड़ी फैमिली के मेंबर और छोटे मेंबर, बहू बेटी सब ऐसे रह लेते हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप संस्कृति से जुड़ोगे तो हमारे जो बुजुर्ग कहते आए कि वही बहू, मतलब वही ससुर की खाट वही बहू का पीसना, ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो इज्जत नहीं रह जाती। तो उन चीज़ों को हमने हरियाणवी अपनी संस्कृति में जब हम बड़े इसमें घुसे तो समझ में आया कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारा आदर सम्मान करने का तरीका क्या है। उसी के साथ मैं थोड़ी सी दो बातें पंकज भाई ने बताई थी अभी खरोच के लिए कि मतलब एक ऐसा गांव है जहां पर पुलिस के पास कोई केस जाता ही नहीं है, लेकिन अगर आप आज से मैं कहूंगा आप सन 2000 से अब तक ऐसी बहुत सी चीज़ें रही हैं कि गांवों से लोग शहरों में गए हैं, गांवों में अभी भी रह रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, पंचायतों में फैसले नहीं होते। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले जो पंचायतों में पंच होते थे वो परमेश्वर होते थे, मतलब भगवान का रूप माना जाता था, और वो सही फैसला करते थे। उनको परख करने की बड़ी अच्छी टेक्निक थी कि कौन गलत है और कौन सही। और ये सच है कि आज वो टेक्निक होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। आज हमारे पास तो मतलब पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी ही नहीं, तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ बना दी, AI एक ऐसी चीज़ आई है जिससे बहुत सारी चीज़ों का काम भी ख़त्म हो रहा है। तो अब इतना कुछ होने के बाद भी लोग साफ साफ फैसला नहीं करना चाहते, तो इसलिए अब लोग पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जब आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहां जाओगे? तो इसीलिए कानून बनाया है, कानून के पास जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए बहुत सारे लोग शायद सुन के मेरी बात को बुरा भी मान जाएं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी इंसान को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अब सामने कौन बंदा सही है कौन गलत है ये फैसला इंसान नहीं करता, कागज करते हैं। जिसके पास सबूत है वो सही है, चाहे उसके वो गलत हो या सही हो वो सही है। और ऐसे बहुत सारे लोग आज अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर भी अपना समय काट रहे हैं बेचारे, जिनकी कोई गलती नहीं है, और बिना गलती के भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खरोच के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें भी, इसमें वही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेंगी। मैंने वो चीज़ महसूस करी है 3 एपिसोड में, और अभी तो कारवा बाकी है।
0: बिल्कुल, ज़रूर आपको खरोच देखनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि आपने संस्कृति का एक मुद्दा छेड़ा है, तो क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग हरियाणा में बैठे हुए हैं और हम सब लोग हैं भी हरियाणवी, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर जानना चाहूँगा पंकज भाई आपसे भी, मोंटी भाई आपसे भी, और आप दोनों के लिए भी फ्लोर ओपन है। ऐसा क्यों हुआ है कि बाकी तमाम जो कल्चर्स हैं, गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है, बंगाली कल्चर है या पंजाबी कल्चर है, हर कल्चर को हमने कमर्शियल लेवल पर देखा है, बट अभी बीते कुछ टाइम से हरियाणा भी थोड़ा सा उठ रहा है, हरियाणा कल्चर, मैं इस चीज को अग्री करूंगा। डांडा न्योलियाला, सुमित पारता है, ये सारे अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं, ये इसको लेकर के जा रहे हैं थोड़ा ऊपर लेवल पे। पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणवी कल्चर को इतना लेट क्यों नवाजा गया है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पंकज भाई आपसे है, खास तौर पे क्योंकि आप पलवल से हैं, मैं खुद पलवल से हूँ, हमारे यहाँ की जो भाषा है पलवल फरीदाबाद की, इसको अभी भी नहीं समझा गया है। आज भी अगर आप हरियाणा सुनेंगे तो आपके मुंह में वही आएगा कि केकरा है, कड़ेजा है, लेकिन एक्चुअली
2: हमारी ब्रिज में आ जाता
0: है, हमारा ब्रिज टच है, उसको हरियाणा में नहीं गिना जाता है। तो दो क्वेश्चन है मेरे।
2: पहला तो ये है कि जो अपने हरियाणा की है ये भाषा नहीं है, ये बोली है, और बोली में भी हमारे अंतर है क्योंकि एक साइड में तो बागड़ आ गया जो हमारा महेंद्रगढ़ साइड है, वहाँ की भाषा अलग है, फिर रोहतक की अलग है, फिर थोड़ा सा हम चलेंगे केथल और करनाल की, और फिर हमारा तो बिल्कुल ये गुड़गावा से आधा गुड़गावा लगा लो फरीदाबाद और पलवल का तो पूरा ही बिल्कुल ही भाषा ही अलग है, उनकी फिर भी कहीं ना कहीं टच हो जाता है। और कारण क्या रहा है कि हमारी जो लेट इस चीज़ पे हुई है कि हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा जो ग्रो की है तो उससे हमें भी दिखना शुरू हो गया है, लेकिन हमारा जो सिनेमा है उसने बहुत लेट टाइम से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है कि अभी थोड़ा सा हम जो दिखने लग गए हैं सभी जगह। अब आप देखोगे तो हमारे जो एक्टर हैं, पहले क्या होता था कि कुछ भी जाकर के बॉलीवुड में बोल दो भाई के कर रहा है, तो मतलब कि उसमें आपका हरियाणवी टच होना चाहिए, के बोल दो बस, ये होता था। अब जैसे हमारे जयदीप पहलावत भाई हैं, वो क्लियर प्योर हरियाणवी बोलते हैं, पहले इनको अलाउड नहीं था। हमारे यहाँ से ही एक एक्टर थे, अभी गदर में भी उन्होंने काम किया था, हमारे गुरुजी भी हैं संदीप शर्मा जी, तो वो बता

0: कहते हैं कि घाट घाट पे पानी बदले, कोस कोस पे वाणी। हर घाट पे आप जाओगे, किसी कुएं का पानी मीठा है तो उसी के बगल में दूसरे कुएं का पानी खारा भी हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हमारे हरियाणा के साथ है। हम जब किसी भी क्षेत्र में, अब जो हमारे हरियाणा का ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात करें, हमसे पहले बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बना के बैठे हैं। लेकिन समय का दौर ऐसा आता है, देखिए, एक तो हमारी वाणी को, हमारी जो बोली है उसको अब लोग पसंद करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के बाद दबी हैं। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री डाउन चली गई थी, हॉलीवुड इंडस्ट्री तक डाउन गई, पंजाब इंडस्ट्री गानों के मामले में सबसे आगे चलती थी, धीरे धीरे वो भी डाउन गई। और एक ऐसा दौर आया कि हरियाणा का जो आदमी है ना, वो आप कहीं भी देख लेना, मैं ये नहीं कहता सिर्फ भारत के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी रह रहा होगा ना, उस वो इतना बेहतर से, अंदर से इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब उसको जल्दी से बीमारी नहीं पकड़ती, वो जल्दी से थकता नहीं है, हार नहीं मानता। तो करते तो हम भी आ रहे हैं पीछे से, हमारे जो बहुत पुराने, जो हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से जो कलाकार काम कर रहे हैं वो भी करते आ रहे हैं। अब हम, हमारे बाद पहले कुछ आए हैं, फिर अब जैसा कि पंकज भाई ने बताया हम भी आए हैं। ये एक ऐसा दौर है कि हर किसी का एक दौर आता है। अब लोगों को जाके समझ में आ रहा है कि यस, भारत के अंदर हरियाणा स्ट्रांग है, हरियाणवी स्ट्रांग है। अब हरियाणा की बोली को बॉलीवुड में भी तवज्जो मिल रहा है, वरना पहले हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम करते हैं उन्होंने अपनी भाषा छोड़ी है। जैसा कि आपने बताया था अभी कि आप भी पलवल से हो और आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका जो रोजगार है, आप बुरा मत मानिएगा, आपका जो रोजगार है वो हिंदी और इंग्लिश की जो भाषा है उसको बोलने से है। और पंकज भाई ने, रजत भाई ने, देसी भाई ने इस चीज़ की बहुत अच्छी पहल करी है कि वो जो चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अब चाहते तो हम बेशक पलवल में शूट कर रहे हैं, खरौच कोई पर्टिकुलर पलवल का या फरीदाबाद का नाम नहीं है, एक वेब सीरीज का नाम है जिसे आप यहाँ हरियाणा के अंदर भी बैठ के देख सकते हो, पंजाब के अंदर बैठ के भी देख सकते हो, और यूट्यूब तो विश्व में चलता है, विश्व के किसी भी कोने में जाके बैठ के देख सकते हो। लेकिन उन्होंने इस पे अपनी भाषा में काम कराया, आप जब इसको देखोगे तो इसमें जो है हरियाणवी, जो आप रोहतक की तरफ जो पश्चिम बेल्ट है उसकी तरफ चलोगे तो खड़ी बोली जो बोलते हैं, अड़े कड़े की, जो कई बार मैं भी बोलता हूँ, वो भाषा नहीं है। जो हमारी मातृ बोली है, हम जो बोलते हैं, जो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, जिनसे हमने जीवन पाया है, जो हमारे माता पिता बोलते हैं हमारे, वो भाषा हम इस खरौच वेब सीरीज में बोल रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे, आप देखोगे कि आसपास का जो हमारा लोकल एरिया है, लाइक पलवल मेवात तक, इधर नुहू मेवात तक, इधर आपका फरीदाबाद तक, गुड़गांवा तक, आपका नवेडा गाजियाबाद तक, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है अकॉर्डिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। तो ये कमी है, हरियाणा का आदमी अपने आप को सर्वप्रिय बताता है तो उसी के बगल में दूसरा भी हरियाणवी बैठा, उसको तवज्जो नहीं देना चाहता। यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्री नीचे थी, अगर हरियाणवी इंडस्ट्री ऊपर आ रही है तो अब इसका कारण ये है कि धीरे धीरे आप ये चीज नोट करोगे कि हरियाणा के कलाकारों में एकता बढ़ रही है और इसीलिए लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब माँ बाप भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उसमें उनको चीजें दिखाई दे रही है, फ्यूचर दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखता था। तो ये कारण है हरियाणा लेट ग्रो कर रहा है।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है, और मुझे लगता है कि इसका इतिहास भी बहुत रिच रहा है हरियाणा का। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दादा लक्ष्मीचंद जैसे साहित्यकार हरियाणा में हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस सुरेश वादकर साहब जो बॉलीवुड में इतने सारे गाने गाए हैं, उन्होंने भी हरियाणवी इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी। उनका एक गाना था मेरे पाछा पाछा आवड़ का, कौन सा मतलब तेरा ऐसा है, वादकर साहब की आवाज में है। इसके अलावा भाल सिंह एक कलाकार हुए थे, दिलराज कौर एक कलाकार हुई हैं, कोशिश की गई है, चंद्रावल जैसी फिल्में बनी हैं, धाकड़ छोरा जैसी फिल्में बनी हैं, बट उसके बाद वो चीज़ें गिनी चुनी ही आपको चीज़ें उंगलियों पर याद होंगी कि ये हुई हैं। आप ऐसे बल्क में चीज़ें नहीं बता सकते हो कि हाँ इतना कुछ हुआ है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बट अब लकीली वो टाइम आ रहा है यहाँ पर कि लोग इस बोली को, इस भाषा को अडेप्ट करने लगे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है। लेकिन अभी मैं ये बात बोलूंगा कि जो आप हरियाणवी सुनते हो वो हरियाणवी अभी भी आप वही सुन रहे हो जो खड़ी है। पलवल फरीदाबाद की भाषा ब्रिज टच है, जिसमें प्योरली बोला जाता है कहाँ जा रहो, कहाँ कू जा रहो, उसके वेरिएशन आपको हर जगह पर नजर आएंगे।
0: यस
1: लाइक दिस। सो आई एम डन विद माय क्वेश्चन, मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर

0: कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ, पंकज भाई, मोंटू भाई, हल्लू भाई, सोनू भाई, आप कहना चाहते हो प्लीज फील फ्री।
1: तो हम ये कहना चाहेंगे जितने भी हमारे श्रोतागण इसको सुन रहे हैं तो एक बार जा करके इस वेब सीरीज को जरूर देखें, और ये एक फैमिली वेब सीरीज है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी अपशब्द यूज नहीं किए गए हैं, और इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। हमारा प्रयास यही रहा है कि हम जो ये OTT पे भी कर सकते थे, ये इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे सभी जो हमारे जो लोकल एरिया है तो वो सभी इसको देख पाएं और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के साथ में, और देखें और अपना जो भी आपको लगता है कि हम क्या चीज़ इसमें अलग से कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।
2: आप मतलब अपने अपनी लाइफ के लिए फ्री हैं, आप हमें बता सकते हो। मैं बार बार, हम जो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, उसमें भी ये चीज़ें हम बोलते रहते हैं कि अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो या जिसको हम सुधार सकते हो या कोई भी चीज़ हम अच्छी कर सकते हो, तो सभी रेडियो मानव रचना 107.8 से मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर एक बार जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ पैसे से खरीद के देखने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए फ्री में करी है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हम जान सकते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी वेब सीरीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अलग अलग आर्टिस्टों के लिए भी बोल सकते हैं किसकी आपको क्या चीज़ बेहतर लगी, किसकी क्या चीज़ बेहतर नहीं लगी और क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गुरुतुल्य आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सहायता कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उन सबका स्वागत है और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं पंकज पलवलिया भाई का, देसी सुभाष भाई का, देसी के नाम से उनको जानते हैं, सुभाष बहुत बीमार है वरना वो भी साथ आते, और रजत, स्पेशली रजत शर्मा भाई का, कि इतना अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिला कि हमें भी काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उसमें मैं मोंटी शर्मा केतन शास्त्री का करेक्टर कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, मतलब मैं एक पत्रकार हूँ उसमें। और स्पेशल थैंक्स रेडियो मानवरचना का, सागर भाई का, आरजे सागर का, जो हमें इतना कीमती समय दिया और आपके स्टूडियो में आके हमें लोगों तक अपनी बात और आवाज़ पहुंचाने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मोंटी भाई। मैं भी यहाँ पर आप लोगों से बात बोलना चाहूँगा, जाइए जाकर के खरोंच चेक करिए, आपको अच्छी लगे, आपको अच्छी ना लगे, आपको कोई चीज़ बेहतर लगे, कोई बहुत अच्छी लगे, कुछ बहुत ख़राब भी लग सकती है, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि देखिए इट टेक्स सो मच करेज टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल। अगर एक पूरी टीम मिली है जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, अपना टाइम दिया है, इतने एफर्ट्स मारे हैं, तो जाकर के मुझे लगता है कि एक बार देखनी ज़रूर चाहिए आपको। आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो बात आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन एटलीस्ट कलाकारों की रिस्पेक्ट के लिए, उनकी इज्जत के लिए एक बार जाकर के चेक ज़रूर करिएगा खरोच।
2: और एक और बात है भाई, देखो अपनी देसी भाषा में कह रहा हूँ, बिल्कुल जा भाषा में मैंने या फिल्म में काम करे हो, तो बात इतनी सी है कि केतन शास्त्री ज़रूर देखिए और बताइए कैसा हिसाब किताब रहे हो, अगर कोई खराबी लगी हो तो आप बताइए, सुधारेंगे। बाकी पंकज भाई ने शुरुआत में ही जो धक्का से लगवाए हुए रहता
1: ये लाइन कटवाएंगे
0: जी बिल्कुल, गो चेक इट आउट, दिस इज खरोंच ऑन यूट्यूब अवेलेबल, जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर अपने शो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, तो आज हमने खरोंच टीम से बात करी जहाँ पर मोंटी भाई, पंकज पलवलिया भाई, हल्लू भाई और सोनू भाई, चार लोग हमारे बीच मौजूद थे, और हमने कोशिश करी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर टचअप करने की। प्राइमरली हमने बात करी हरियाणवी कल्चर की, हमने बात करी कंटेंट क्रिएशन की, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बात करी इस पर्टिकुलर वेब सीरीज। फिलहाल इसी नोट पर चलते हैं, अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मोंटी भाई, थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू हल्लू भाई, शुक्रिया आप सभी का। ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

फाइबर और प्राकृतिक शर्करा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसकी बाजार में लगातार मांग बनी रहती है। किसान भाइयों, सीताफल का उपयोग केवल फल के रूप में ही नहीं होता, बल्कि इससे शरबत बनता है, मिठाइयां बनती हैं, आइसक्रीम भी बनती हैं और वाइन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि इसकी व्यावसायिक खेती तेजी से लोकप्रिय होती जा रही है। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार भी बागवानी फसलों को बढ़ावा दे रही है और कई राज्यों में बागवानी मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है। कम लागत और बेहतर मुनाफे के कारण सीताफल की खेती छोटे और मध्यम किसानों के लिए भी लाभदायक साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, सीताफल के बारे में आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था सीताफल के बारे में, सीताफल केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और ये पाचन तंत्र को एकदम मजबूत कर देता है और शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक रसायनों और फ्री रेडिकल्स के बचाने में भी बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिलाओं को सीताफल खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये एनीमिया को कम करने और गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, त्वचा को स्वस्थ बनाने, बालों को पोषण देने और शरीर की कमजोरी दूर करने में भी उपयोगी माना जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण बाजार में सीताफल की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करके अच्छे दाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सीताफल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो जानना जरूरी हैं, जैसे इसकी बुवाई कब होनी चाहिए या इसका सही समय क्या है या फिर जलवायु कौन सी होनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात कर रहा हूं सीताफल के बारे में। देखिए, सीताफल की खेती के लिए सही समय और अनुकूल जलवायु का चयन बहुत जरूरी होता है। इसकी जो बुवाई है साल में दो बार की जा सकती है, पहला समय जुलाई से अगस्त के बीच और दूसरा फरवरी से मार्च के बीच सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये जो फल है ना किसान भाइयों, सीताफल, ये गर्म और हल्की शुष्क जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड और पाला नहीं पड़ता, वहां इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जहाँ तापमान संतुलित बना रहे। गर्म मौसम में पौधे तेजी से विकसित होते हैं और फलों की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, उस मिट्टी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं, अगर हम सीताफल की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। देखिए, सीताफल की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, पहली बात तो यह है। लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कमजोर और पथरीली जमीन पर भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करवाना बेहद जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि पीएच मान की जानकारी मिल सके और सीताफल की खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान जो है 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करते समय 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं और हर एक गड्ढे के बीच लगभग 5x5 मीटर की दूरी रखी जाती है। खुदाई के बाद गड्ढों को 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़

दिया जाता है ताकि मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और जीवाणु नष्ट हो सकें। इसके बाद गड्ढों में सड़ी हुई गोबर खाद, खली और एनपीके उर्वरक मिलाकर भराई की जाती है। अब सवाल आता है कि इसकी बुवाई का समय क्या होता है या इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो किसान भाइयों सीताफल की बुवाई के बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बुवाई की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप काम करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सीताफल की बुवाई के लिए पौध तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाना अधिक फायदेमंद माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हैं, पॉलिथीन की जो थैली होती है, उन पॉलिथीन की थैलियों में मिट्टी भरकर उसमें बीज डालना चाहिए, और पौध तैयार होने के बाद इन्हें खेत में रोपित किया जाता है। इससे पौधों की जो वृद्धि है वो बेहतर होती है और नुकसान की संभावना कम हो जाती है। गड्ढों में खाद और उर्वरक डालने के बाद 3 से 4 दिनों तक सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो सके। इसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है। पौधों की उचित दूरी बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों, ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और पोषण मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार अगर शुरुआत में पौधों की सही देखभाल की जाए तो आगे चलकर उत्पादन काफ़ी बेहतर मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आप जो भी फसल अपने खेत में बोएं उसका उत्पादन बेहतर से बेहतर हो। तो चलिए कुछ और भी बातें हैं आपको बताऊंगा सीताफल के बारे में, कि इसमें खाद और उर्वरक का जो प्रबंधन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के प्रबंधन के बारे में। सीताफल की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग करना बेहद आवश्यक होता है। प्रति पेड़ लगभग 20 से 22 किलोग्राम जैविक खाद या गोबर की खाद देना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही 40 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश की मात्रा भी हर साल दी जानी चाहिए। हालांकि किसान भाइयों, उर्वरकों का उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर होता है। होता क्या है किसान भाइयों, जैविक खाद जो है ना, उसका उपयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक बनी रहती है और पौधों को आवश्यक पोषण मिलता रहता है। संतुलित पोषण मिलने से पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और फलों की गुणवत्ता भी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। अब सवाल आता है सिंचाई का, कि सिंचाई और इसकी देखभाल कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारी उपज और भी बेहतर हो सके। तो किसान भाइयों, सिंचाई और इसकी देखभाल के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बस सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, देखिए सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। सीताफल की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। ड्रिप सिंचाई और छिड़काव विधि इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। गर्मियों के मौसम की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में पौधों को हर 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। और किसान भाइयों, पौधों की नियमित देखभाल, खरपतवार नियंत्रण और समय समय पर छिड़काव करने से रोगों और कीटों से बचाव किया जा सकता है। एक पूर्ण रूप से विकसित पौधे से हर साल लगभग 100 फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जो करीब मेरे ख्याल से 50 किलोग्राम उत्पादन के बराबर होता है। अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके आप लोग उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।
2: अरे है।

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دیکھیے کسان بھائیو، سیتا پھل کی کھیتی کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے میں نے کر لی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سیتا پھل کی کھیتی کم لاگت میں ادھک منافع دینے والی فصل مانی جاتی ہے۔ ایک ایکڑ کھیت میں لگ بھگ 400 سے 450 پودے لگائے جا سکتے ہیں، اس سے سالانہ لگ بھگ 30 کوئنٹل تک उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में सीताफल की अच्छी कीमत मिलने के कारण किसान इससे सालाना 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आप लोग आधुनिक तकनीकों और उचित प्रबंधन के साथ खेती करें तो मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में बागवानी फसलों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और सीताफल की खेती किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में इसकी खेती और अधिक लोकप्रिय होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम भी आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। पहले एपिसोड में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी उनके बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का भी जिक्र किया था। अदम भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सत्ता के बचे हुए अवशेषों के आधार पर कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इसके अलावा महंगाई पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों को दुगना दाम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह का लेखन है अदम गोंडवी का। इनके बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में। उन्होंने अलग अलग विषय पर अपनी गजलें लिखी हैं, यहाँ तक कि आज की जो राजनीति है, आज की राजनीति पर व्यंग करते हुए वो कहते हैं, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहें, माइक रहे, माला रहे। लेकिन दोस्तों, अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कुछ कहना चाहते हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अदम गोंडवी स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच, भेदभाव और सांप्रदायिकता की समस्या पर मुखर होकर कहते हैं, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। अरे

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी आज की नौकरशाही में विद्यमान फीताशाही और पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का भी बखूबी बयान करते हुए कहते हैं, जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इसके अलावा दोस्तों, गांधी जी के सपनों के भारत की तस्वीर को धूमिल होता देखकर अदम अचानक बोल पड़ते हैं कि देखना सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। इसके अलावा दोस्तों, गांधीवाद को धूल धूसरित होता देखकर अदम सपाट लहजे में कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जो कहना चाहते हैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा, सुनते रहिए करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है गजलकार अदम गोंडवी के बारे में और उनकी कुछ रचनाओं का जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। गांधीवाद को धूल धूसरे थोता देखकर अदम सपाट लहजे में कहते हैं, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, वो जिसके हाथ में छाले हैं पैरों में बेवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। इधर एक दिन की आमदनी का औसत है चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चिरों की कमाई है। इसके अलावा दोस्तों, नई पीढ़ी की अगर हम बात करें, नई पीढ़ी के वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित अदम पीड़ा के स्वर में बोल पड़ते हैं। आप कहते हैं, इसे जिस देश का स्वर्णिम अतीत, वो कहानी है महज प्रतिरोध की संतरास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अदम गोंडवी ये जो सामाजिक दुर्दशा है उसको देखकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। अब वो अपनी गजल के माध्यम से कैसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, अदम गौंडवी सामाजिक दुर्दशा को देखते हुए झूठ लिखना स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए वो कह उठते हैं, घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नशीली है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अदम अपनी कविताओं में व्यक्त किए गए भाव का कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, याद रखिए, यूं नहीं ढलते हैं कविता में विचार, होता है परिपाक धीमी आंच पर एहसास की। तो ये अंदाज है अदम गौंडवी का। देखिए दोस्तों, अदम गौंडवी के कुछ प्रमुख गजल संग्रह हैं, उनका जिक्र भी आपसे करना चाहता हूं, जैसे धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। ये इनके प्रमुख गजल संग्रह हैं। कभी मौका लगे तो आप जरूर पढ़िएगा। इनके शब्दों से आपको सच्चाई की महक आती महसूस होगी। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अदम गोंडवी के बारे में आज आपसे बात हो रही है। इनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने आपके साथ साझा कर ली हैं, लेकिन मैं इनकी कुछ उपलब्धियां हैं वो भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 1998 में इन्हें दुष्यंत कुमार पुरस्कार और 2001 में शहीद शोभा संस्थान द्वारा माटी रतन सम्मान दिया गया था। आलोचकों का मानना है कि अदम को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो काबिल थे। अदम सत्ता के किसी पद्म सम्मान की परवाह किए बगैर हमेशा भारत की आम आवाम की आवाज बनते रहे। सत्ता प्रतिष्ठानों और

आज की व्यवस्था को चुनौती देने वाले अदम 18 दिसंबर 2011 को शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन नारों के रूप में तब्दील उनकी रचनाएं भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी गूंजती रहती हैं और ता जिंदगी गूंजती रहेंगी। इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा।
1: खैनी, गुटका, जर्दा, पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
2: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
3: स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ संडे शाम 4 से 5, और करते हैं हम कुछ ट्रेंड से जुड़ी हुई बातें। साथ ही ट्रेंडिंग टॉपिक के अलावा लेकर आ जाती हूँ मैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक डे की बातें, कोई ऐसे टॉपिक के बारे में बातें जो हम सब से जुड़ी हुई है, जो हम सब के लिए ज़रूरी है। और आज भी कुछ ऐसा ही विषय लेकर आ गई हूं मैं आपके लिए, क्योंकि ये विषय सिर्फ एक सोशल इशू ही नहीं है, बल्कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हम सबकी जिम्मेदारी इससे जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बचपन। यानी कि बचपन वो जिंदगी का दौर होता है जहां पर सपने होते हैं, स्कूल होता है और दोस्त होते हैं, खेल कूद होता है, और हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। लेकिन दुनिया में आज भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में किताबों की जगह काम के औजार हैं। कुछ बच्चे फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ खेतों में, तो कुछ वर्कशॉप्स में, और कुछ घरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर डे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO ने साल 2002 में की थी। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो भी बच्चे चाइल्ड लेबर की समस्या से गुजर रहे हैं, समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2026 की थीम है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। फुटबॉल की भाषा में रेड कार्ड एक वार्निंग नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन का प्रतीक माना जाता है। इस थीम के जरिए दुनिया को ये संदेश दिया जा रहा है कि बच्चों से मजदूरी करवाना स्वीकार नहीं किया जा सकता, और हर बच्चे को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और बेहतर भविष्य मिलना जरूरी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लेटेस्ट ग्लोबल एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में अब भी लगभग 138 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में शामिल है, और इनमें से करीब 54 मिलियन बच्चे हजार्डस के खतरनाक काम कर रहे हैं, यानी ऐसे काम करते हैं जो सेहत, सुरक्षा और विकास के लिए खतरा बन सकता है। आज के स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कि चाइल्ड लेबर आखिर होता क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है, और बच्चों का इसके जीवन पर क्या असर पड़ता है। जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल में, पर उससे पहले लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
4: क्या कहा?

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में। दोस्तों, जब हम चाइल्ड लेबर शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में किसी चाय की दुकान पर, फैक्ट्री पर या फिर वर्कशॉप में काम करते हुए बच्चों की तस्वीर आती है ना। लेकिन सच ये है कि चाइल्ड लेबर सिर्फ एक देश या फिर एक शहर तक ही सीमित नहीं रहा है। ये किसी एक शहर की समस्या नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल चैलेंज है जो दुनिया के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करता है। लेटेस्ट ग्लोबल एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 138 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में शामिल है। यानी कि करोड़ों बच्चे आज भी अपना बचपन जीने, स्कूल जाने के लिए और अपने सपनों को पूरे करने के बजाय काम करने पर मजबूर हैं। इनमें से करीब 54 मिलियन बच्चे हजार्डस यानी कि खतरनाक काम कर रहे हैं, जो उनकी सेहत, सुरक्षा और विकास के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 के बाद चाइल्ड लेबर के मामलों में काफी कमी आई है। उस समय दुनिया में चाइल्ड लेबर करने वाले बच्चे की संख्या लगभग 246 मिलियन थी, यानी पिछले दो दशकों में काफी प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोग्रेस अभी काफी नहीं है और दुनिया 2025 तक चाइल्ड लेबर को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। जब एक बच्चा स्कूल में होना चाहिए तब वो रोजगार के लिए काम कर रहा होता है, जब उसे खेलना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए तब वो जिम्मेदारियों की बोझ तले दबा होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइल्ड लेबर और एजुकेशन का गहरा संबंध है। जितने ज्यादा बच्चे स्कूल से दूर होते हैं उनके चाइल्ड लेबर में शामिल होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब बच्चे काम करने लगते हैं तो उनके लिए शिक्षा पूरी करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है, बल्कि 138 मिलियन बच्चों के पीछे 138 मिलियन सपने हैं जो बेहतर मुकामों और सुरक्षित बचपन के हकदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बच्चे चाइल्ड लेबर में पहुंचते क्यों हैं? कौन सी परिस्थितियां उन्हें स्कूल जाने की जगह काम तक ले जाती है? इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं होस्ती हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि चाइल्ड लेबर आज भी दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बच्चे काम करने पर मजबूर क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि उनके हाथों में किताबों की जगह काम आ जाता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइल्ड लेबर के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है गरीबी। कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर रोज की बेसिक

0: जरूरतें पूरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ बच्चों को कम उम्र में काम करना पड़ता है ताकि घर की आमदनी में योगदान दे सके। दूसरा बड़ा कारण है शिक्षा तक पहुंच की कमी। जी हाँ, जब स्कूल दूर होगा, पढ़ाई का खर्चा ज्यादा होगा और एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी ना हो तो कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल से दूर होने के बाद उनके लिए काम में लग जाना आसान होता है। इसके अलावा कुछ सामाजिक और पारिवारिक कारण भी होते हैं। कई जगहों पर लोगों को लगता है कि बच्चे को छोटी उम्र से काम सीखना चाहिए। कुछ केसेस में बच्चे परिवार के बिजनेस या फिर काम में मदद करते करते पूरी तरह मजदूरी में शामिल हो जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक क्राइसिस भी चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दे सकती है। जब किसी परिवार की इकोनॉमिक अचानक से प्रभावित हो जाती है तो बच्चों पर भी इसका असर काफी पड़ता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स चाइल्ड लेबर को सिर्फ लेबर इशू नहीं कहते हैं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक इशू भी मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर काम करने वाला बच्चा चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं आता है। जी हाँ, अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित परिस्थितियों में सीमित समय के लिए किसी पारिवारिक गतिविधि में मदद करता है तो उसे चाइल्ड लेबर में नहीं माना जाता। चाइल्ड लेबर वो है जो बच्चों को शिक्षा, सेहत और सुरक्षा के विकास को उनके प्रभावित करता है तो वो चाइल्ड लेबर में आता है। दोस्तों, जब हम चाइल्ड लेबर के कारण को समझते हैं तब हमें ये भी समझ में आता है कि समस्या का समाधान सिर्फ कानून से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सुधार से भी जुड़ा हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: क्या कहा?

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं ट्रेंड वाली। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इस ट्रेंडिंग तड़का के एपिसोड में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक हम मानते कि हमारे बच्चों से नहीं जुड़ा है, पर किसी के तो बच्चों से जुड़ा हुआ है, हमारे देश से जुड़ा है, हमारी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। बच्चे चाहे किसी के भी हो, वो हम सबका भविष्य है। दोस्तों अगर किसी एक चीज को चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा विकल्प कहा जाए तो वो है शिक्षा। एजुकेशन सिर्फ पढ़ने लिखने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा जरिया होता है जहाँ पर बच्चों को बेहतर भविष्य, नए अवसर और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है। जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेता है, बल्कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखता है, अपनी सोच को विकसित करता है, नए सपने देखता है और अपने लिए एक बेहतर कल की तैयारी करता है। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल की जगह काम करने लगता है, तब उसके जीवन के कई अवसर सीमित हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइल्ड लेबर और स्कूल ड्रॉपआउट का बहुत गहरा संबंध होता है। कई बच्चे आर्थिक परिस्थितियों की वजह से स्कूल को छोड़ देते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे लंबे समय तक काम करते रहते हैं, उनके लिए पढ़ाई जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाता है जहां पर शिक्षा की कमी और गरीबी एक दूसरे को बढ़ावा देती रहती है। यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ जैसे संस्थान लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन चाइल्ड लेबर को काम करने के लिए सबसे प्रभावित तरीकों में से एक है। जब बच्चों को स्कूल में रहने का मौका मिलता है तो उनके चाइल्ड लेबर में शामिल होने की संभावना कम हो जाती है। भारत में भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि हर बच्चा स्कूल जा सके और अपने अधिकारों का लाभ उठा सके। दोस्तों सोचिए, अगर एक बच्चा आज स्कूल से दूर हो जाता है तो उसका असर सिर्फ उस पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसके पूरे भविष्य पर पड़ सकता है। एक शिक्षित बच्चा कल एक टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर या फिर किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति बन सकता है। लेकिन जब बचपन से ही मजदूरी में बीत जाए तो उनके कई सपने ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए, काम पर नहीं, क्योंकि बचपन सीखने, बढ़ने और सपने देखने के लिए होता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। जी हां, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में, जो कि 12 जून को मनाया जाता है इस दिन को, क्योंकि इसलिए ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके इसके बारे में, लोगों को बता सके इसके बारे में। तो दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस और चाइल्ड लेबर के साथ उसके कनेक्शन को समझा, लेकिन चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं बल्कि कानून भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कई कानून प्रावधान किए गए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कानून है चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिससे बाद में और मजबूत बनाया गया। इस कानून के तहत 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पर भी काम नहीं कर सकता है, उसको अगर कोई रोजगार देता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे स्कूल जा सके और अपने बचपन को सुरक्षित तरीके से जी सके। इसके अलावा कानून में एडोलेसेंस यानी कि 14 से 18 साल के बच्चों के लिए भी विशेष सुरक्षा दी गई है। उन्हें हजार्डस या फिर खतरनाक कामों में लगाना मना है। ऐसा काम जो उनकी सेहत, सुरक्षा या फिर विकास के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, उनमें बच्चों को भागीदारी कानूनी रूप से स्वीकार नहीं की जाती है। भारत का संविधान भी बच्चों के अधिकारों को महत्वता देता है। आर्टिकल 21A के तहत 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। इसी के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है। संविधान का आर्टिकल 24 में भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस और अन्य खतरनाक स्थलों पर काम करने से सुरक्षा प्रदान करता है। वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते। दोस्तों, कानून बनाना जरूरी है, लेकिन उनका पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए सरकार, स्कूल्स, कम्युनिटीज, एम्प्लॉयज और आम नागरिक सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखना चाहिए कि हर बच्चा सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान का हकदार है। ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि एक बुनियादी मानव अधिकार भी है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज की इस खास ट्रेंडिंग तड़का के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में। दोस्तों, जब भी चाइल्ड लेबर जैसे बड़े सोशल इशू की बात होती है तो कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सरकार या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन सच में ये है कि समस्या को कम करने में हम सबका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला कदम है जागरूकता। चाइल्ड लेबर को पहचानना और समझना जरूरी है। अगर हम किसी बच्चे को ऐसे काम में देखते हैं जो उसकी पढ़ाई, सेहत और सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, तो हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार लोग इसे आम बात समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही छोटी सी चुप्पी किसी बच्चे का भविष्य को प्रभावित कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। जी हाँ, जब हम किसी दुकान, वर्कशॉप या फिर अन्य व्यवसायिक स्थल पर किसी को काम करते हुए पाते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वहाँ बच्चे से काम तो नहीं कराया जा रहा। जागरूक कंज्यूमर्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। अवेयरनेस को फैलाना भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। स्कूलों, कॉलेजेस, कम्युनिटीज और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर चाइल्ड लेबर के बारे में बात करना लोगों को इस मुद्दे को समझाने में मदद करता है। कई बार जानकारी की कमी भी समस्या को बढ़ावा दे सकती है। आज दुनिया भर में कई ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सफलता तभी संभव हो सकती है जब समाज का हर व्यक्ति इस अभियान का हिस्सा बने। कभी कभी लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति क्या बदलाव ला सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक आवाज, एक जागरूक फैसला और एक जिम्मेदार सोच भी किसी बच्चे के जीवन में बड़ा अंतर लेकर आ सकती है। तो दोस्तों, चाइल्ड लेबर के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता, जागरूकता और जिम्मेदारी की भी लड़ाई है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज ट्रेंडिंग तड़का के इस खास एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में। दोस्तों, आज के पूरे प्रोग्राम में हमने चाइल्ड लेबर के बारे में कई पहलुओं को समझा। हमने जाना कि चाइल्ड लेबर सिर्फ एक सोशल इशू ही नहीं है बल्कि एक ऐसी चुनौती है जो बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और सेहत और भविष्य से जुड़ी हुई है। हमने देखा कि कैसे दुनिया भर में आज भी करोड़ों बच्चे चाइल्ड लेबर में शामिल हैं, लेकिन ये सिर्फ एक संख्या ही नहीं है बल्कि उन बच्चों की कहानी है जिनके सपने, उनकी पढ़ाई और उनका बचपन प्रभावित होता है। हमने ये भी समझा कि गरीबी, शिक्षा तक सीमित पहुंच और मानसिक और सामाजिक परिस्थितियां इस समस्या के बड़े कारण हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने एजुकेशन का महत्व पर भी बात करी है, साथ ही शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती है बल्कि बच्चों को नए अवसर देती है, आत्मविश्वास उनका बेहतर करती है और साथ ही जीवन की राह भी दिखाती है। इसीलिए दुनिया भर में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइल्ड लेबर को कम करने के सबसे प्रभावित तरीके में से एक ही है, वो है कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए। हमने भारत में चाइल्ड लेबर से जुड़े कानून और बच्चों के अधिकारों के बारे में भी जाना। ये कानून हमें याद दिलाते हैं कि हर बच्चा सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा का अधिकार रखता है, लेकिन कानून के साथ साथ समाज की जागरूकता और भागीदारी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का उद्देश्य सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है इस मुद्दे पर बात करने का, बल्कि इस दिन का संदेश ये है कि हम सब मिलकर ऐसी दुनिया बनाए जहां पर बच्चे को अपने बचपन छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर ना होना पड़े। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का थीम था रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। ये थीम हमें एक मजबूत संदेश देती है। जैसे खेल में रेड कार्ड किसी गलत चीज को रोकने का प्रतीक होता है, वैसे ही हमें भी चाइल्ड लेबर को स्पष्ट रूप से आविष्कार करना होगा और हर बच्चे के अधिकारों को समर्थन करना होगा। दोस्तों, हर बच्चा सपने देखने का हकदार है, हर बच्चा स्कूल जाने का हकदार है, हर बच्चा सुरक्षित स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन बिताने का हकदार है। और जब हम बच्चों को ये अवसर देते हैं तब हम सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे देश के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। प्रोग्राम था ट्रेंडिंग तड़का और आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए और याद रखिए, हर बच्चा बचपन का हकदार है। और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, feel like

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग ले एक वादा।
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं फरीदाबाद पुलिस के एक ऐसे अधिकारी से जो विभिन्न विभागों की देखरेख कर रहे हैं, शहर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश तभी कामयाब होती है जब आप और हम मिलकर इसमें पुलिस का साथ देते हैं। हम कमियां तो बहुत निकाल लेते हैं लेकिन कई बार अपनी कोशिशों से पीछे हट जाते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले हमसे प्यार से बात नहीं करते, पर क्या आपने देखा है कि वो 12-14 घंटे किस तरीकों से सड़कों पर खड़े रहकर बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में आपकी सेवा के लिए तत्पर भी रहते हैं। चाहे एक्सीडेंट हो या फिर किसी तरीके का कोई झगड़े का मामला, हर जगह पुलिस पहुंचती है और कोशिश करती है कि चीजों को वहीं पर सॉर्ट किया जाए। किसी की डेथ भी हो जाती है तो बॉडी को हाथ लगाने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आता, अक्सर पुलिस ही आती है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, पुलिस वाले हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ परेशानियां होती हैं उनसे तो आप तो इधर उधर मुंह बनाकर चले जाते हैं, पर वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। खास तौर पर से मैं ट्रैफिक की बात करूं, क्योंकि ट्रैफिक तो हम सब अपने सामने 2400 घंटे देखते हैं। हम सुबह ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं के लिए भी निकलें, हमें ट्रैफिक दिखता ही दिखता है। और उन ट्रैफिक की जिम्मेदारी भी निभाती है ट्रैफिक पुलिस। कैसे? ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो या फिर बारिश हो रही हो, ट्रैफिक पुलिस आपको हमेशा सड़कों पर दिख जाएगी। बारिश में भी घुटनों घुटनों पानी भरा हो और आप अगर ट्रैफिक में फंस गए हो या बारिश में फंस गए हो, तो पुलिस वाला ही आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल कर लाता है। जी हाँ, लेकिन इस बढ़ते हुए एक्सीडेंट और ट्रैफिक पे जो मैनेज हो रही है आजकल, या फिर हम कहें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा वॉयलेट करने लगे हैं लोग, इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या कदम उठा रही है, खासतौर पर से फरीदाबाद पुलिस, इस पर आज हम चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद जयवीर सिंह जी, जो कि इंस्पेक्टर हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी। तो जयवीर जी, आपने हाल ही में ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है वो फरीदाबाद पुलिस के साथ निभानी शुरू की है, उठाई है।
1: जी मैम।
0: तो मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी।
1: जी मैम।
0: मैं सवाल वो पूछूंगी जो एक आम इंसान से जुड़े हुए हैं।
1: जी।
0: हम फरीदाबाद की बात करते हैं और कुछ साल पहले फरीदाबाद शहर में लोगों को सीट बेल्ट लगाने में भी दिक्कत होती थी।
1: जी मैम।
0: यहाँ पर अक्सर वो लोग देखे जाते थे जो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच के सीट बेल्ट लगाते थे।
1: जी मैम।
0: उससे पहले सीट बेल्ट नहीं लगाते थे।
1: जी मैम।
0: अगर बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं तो भी हेलमेट दिल्ली बॉर्डर के पास ही लगाया जाता था।
1: यस मैम।
0: लेकिन अब ये ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या फिर जेवर एयरपोर्ट को जाने वाली सड़कें एक्सप्रेसवेज बन गए हैं।
1: जी मैम।
0: जहाँ पर लगातार हाईवे पर एक के बाद एक 7 फ्लाईओवर्स बन गए हैं, जहां पर सूरजकुंड रोड इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि आप गुड़गांव जाएं या फिर दिल्ली जाएं, आपको ट्रैफिक तेज रफ्तार से चलता हुआ मिलेगा।
1: जी मैम।
0: तो ऐसी परिस्थिति में जयवीर जी, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि कौन सी ऐसी सबसे कॉमन मिस्टेक है या गलती है जो हम जैसे नॉर्मल नागरिक करते हैं और ट्रैफिक को खराब कर देते हैं या फिर एक्सीडेंट्स को बढ़ा देते हैं?
1: जी मैम। ड्राइविंग करता है तो आदमी का आजकल स्ट्रेस में बहुत रहता है या फोन पे बिजी रहता है।
0: जी।
1: वो अपने फोन पे बिजी होने के कारण सीट बेल्ट भी लगानी ध्यान नहीं रहती उनको। पहली गलती ये करता है।
0: जी।
1: और फिर वो सीट बेल्ट भी लगाता है, फिर ध्यान फोन पे, जैसे फोन पे चलाता है वहाँ पकड़ से फोन आ गया या दोस्त है या जैसे ऑफिस जा रहा है वहाँ से आ गया, तो ये चीज इसके लिए हम उसको रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग का चलान करते हैं।
0: जी जी, यानी दो तीन चीजें ऐसी हैं जो वो नहीं करते हैं।
1: और जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहा था उसका चलान करते हैं हम, और स्पीड में है तो उसका चलान करते हैं, और हमें ये लगता है भाई नशे में लगता है तो उसको चेक करके उसको अगर उसका नशे का संबंधित है वो चलान भी करते हैं हम।
0: जी जी। जयवीर जी, नशे की आपने बात करी है तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वहाँ पर जो ठेके खुले हुए हैं, जिनको भाषा में, सिंपल भाषा में कहते हैं या फिर अंग्रेजी में आप वाइन शॉप्स भी कह सकते हैं, दूर से जगमगाती हुई दिख जाती है, ऐसा लगता है कोई 5-स्टार होटल खुला हुआ है, और वहां पर धड़ल्ले से आपको गाड़ियां दिख जाएंगी खड़ी।
1: जी मैम।
0: क्या जयवीर जी आपको लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है शहर में अपराध और ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स बढ़ने का?
1: जी मैम।
0: तो पुलिस इसको रोकने के लिए क्या करे?
1: पुलिस जैसे मैम ये रोड पे आते हैं तो हम जैसे नाका लगाते हैं।
0: जी जी।
1: जैसे जिला पुलिस के द्वारा, जैसे फरीदाबाद पुलिस के द्वारा सप्ताह में एक दिन या दो दिन जैसी भी आवश्यकता है, तो जैसे CIA है, जिला पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मिलके हम जैसे पूरी नाइट को भी 10-11 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक नाका लगाते हैं,
0: जब मेन टाइम होता है लोगों के पी के जाने का।
1: उस टाइम हम उनको अच्छी तरह चेक करते हैं, जो जो भी ड्रिंक करे मिलता है तो हम उसका उनका भारी से भारी चालान करते हैं।
0: कितना चालान होता है सर इसमें? क्या गाड़ी इंपाउंड करने का भी कुछ सिस्टम है या सिर्फ चालान करके?
1: चालान ही का सिस्टम है,
0: चालान का सिस्टम। सो लोग डरते हैं इससे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि एक बार चालान 10,000-15,000 दे दिया, उसके बाद फिर से वही चीज चल रही है।
1: वैसे ये डरते नहीं मैम, आजकल फिर एक ये हो गया मैम, जैसे चालान कर देते हैं, ऑनलाइन चालान होते हैं, तो ये बात देखते हैं कोर्ट लगेगी।
0: हाँ
1: तो कोर्ट में जैसे माफ हो जाता है,
0: कोर्ट में माफ हो जाता है, चलिए ठीक है आप आधा दे दीजिए।
1: हाँ आधा दे दीजिए
0: जी जी जी।
1: हाँ इसलिए फिर भाई आजकल क्या है, जैसे माँ बाप की कमाई यूज करते हो ना कि अपनी उसमें दुख महसूस होता है, तो ये माँ बाप जैसे बाप दादा है उनकी कमाई के लिए थोड़ा तो ही नहीं देते अपनी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, माता पिता ने बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी हैं, पैसे काफी दे दिए हैं, फोन अच्छे हैं उनके पास, तो उनको ये अफसोस नहीं होता कि हमारी जेब से 10-15,000 रुपए चला।
1: ये मायने नहीं रखते
0: जी, ये मायने नहीं,
1: उनके लिए मायने नहीं रखते
0: जी जी।
1: उनके जो जैसे कई बार पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स सॉरी फील करते हैं, बच्चे सॉरी फील नहीं करते, उनको कहते हैं आप चालान करिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेरेंट्स को दुख होता है, बच्चों को दुख नहीं होता। सो बहुत सारी बातें दोस्तों सुरक्षा संवाद में चलती रहेंगे, हमारे साथ जयवीर सिंह जी मौजूद हैं और जयवीर सिंह जी से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं फरीदाबाद के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078, या फिर आप ये सारी बातचीत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं, अलग अलग रील्स के माध्यम से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम रेडियो मानव रचना और फेसबुक पर भी, और इसके साथ साथ हमारी इंटरनेट ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर में मिल जाएगी। पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में आपको मिल जाएगी सारी बातचीत ट्रैफिक इंचार्ज जयवीर सिंह के साथ हुई। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक जी, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। कार्यक्रम सुरक्षा संवाद एक ऐसा प्रोग्राम सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर। और इस सीरीज में बहुत सारी बातें हम करते हैं पुलिस अधिकारियों से मिलकर, कभी ट्रैफिक के बारे में, कभी महिला सुरक्षा के बारे में, कभी साइबर फ्रॉड के बारे में, तो कभी किसी और मुद्दे के बारे में। लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करें वो है ट्रैफिक, यानी रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद श्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इनके साथ जारी हैं, आइए जानते हैं और भी कुछ खास पहलू। तो जयवीर जी, जब हम बच्चों और पेरेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मैं अंडर एज ड्राइविंग की बात जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं, महंगी महंगी फीस है
1: जी,
0: और इन स्कूलों के बाहर हमने देखा है कि अक्सर बच्चे, स्कूल वाले प्रशासन मना करता है कि बच्चे स्कूटी या बाइक ना लाएं, लेकिन अब बच्चे स्कूटी बाइक से ज्यादा 18 साल से कम की उम्र में गाड़ियां भी ले आते हैं, खासतौर पर से एग्जाम वाले दिन कि आज तो 3 घंटे में बाहर निकलेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए जयवीर जी क्या किया जा रहा है?
1: ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा था, इनको मैम अपना इनका जैसे लाइसेंस नहीं है तो इन पर फाइन करते हैं। माँ बाप को जो पेरेंट्स को हो उनको भी बुला गए, कभी कभी समझाते भी हैं और चलान भी करते हैं, जो उसके बाद भी बावजूद नहीं जैसे बार बार चलान जाते हैं तो गाड़ी को भी इम्पाउंड कर लेते हैं और माँ बाप के पेरेंट्स के ऊपर भी मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है,
0: FIR वगैरह दर्ज हो जाते हैं।
1: FIR माँ बाप का, इसमें दोष माँ बाप का ज्यादा माना जाता है, ना कि बच्चा 18 साल से नीचे बच्चा नाबालिग रहता है, तो उसकी बजाय पेरेंट्स पर ज्यादा कार्रवाई होती
0: यानी
1: है।
0: आपने गाड़ी दी क्यों बच्चे?
1: हाँ, बच्चे को, क्यों? उसमें गलती पेरेंट्स की रहती है, पेरेंट्स जो अपने बच्चों को थोड़ा समझाए गाइड
0: जी,
1: तब जान कितनी अहमियत रखती है हमारे लिए
0: जी जी। तो इन बच्चों को सर आपने देखा है कि इन बच्चों को डर लगता है पुलिस से या नहीं लगता?
1: नहीं है, आजकल क्या है मैम, जो पहले पिटाई वाला था ना
0: जी, वो तो
1: स्कूल का लाले या पुलिस का लाले, वो तो रहा नहीं, ये नियम अनुसार जो है कानून के हिसाब से कार्रवाई करते हैं
0: जी,
1: कार्रवाई में वो इतना डरते नहीं
0: बिल्कुल, मतलब उनको लगता है कि चलो पेरेंट्स पे ये चीज हो रही है, हम तो बचे हुए
1: हैं। हां, पेरेंट्स से ही परेशान होते हैं वो
0: वैसे।
1: हां,
0: तो देखिए दोस्तों, बहुत ही एक विडंबना है आज के टाइम में, आयरनी है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और अगर बच्चे पे कोई, बच्चे की गलती से वो फंसते भी हैं तो पेरेंट्स ही फंसते हैं, और इसमें भी बच्चे को कई बार अफसोस नहीं होता है, उसे ये ग्लानी नहीं होती है, उसे ये तकलीफ नहीं होती कि उसके पेरेंट्स ही इस चीज़ में फंस रहे हैं, वो नहीं फंस रहा है। सो ये जिम्मेदारी जो है ये बच्चे की भी बनती है, सिर्फ पेरेंट्स की या स्कूल की नहीं बनती है कि आप गाड़ी ना दें, बच्चे को इस तरीके से समझाएं। और मुझे लगता है थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इस मामले में जरूरी है, थोड़ी सी तो देखिए कठोरता चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करेंगे तब तक चीजें जो हैं वो मुझे लगता है कई केसेस में नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। तो जयवीर जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा शहर को और ज्यादा बेहतर बनाने की। हेलमेट और सीट बेल्ट
1: जी मैम,
0: पहनना कितना जरूरी है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि हमने कई बार समझाया, घर वालों ने भी कई बार समझाया, पर लोग समझते नहीं
1: है। ये बहुत जरूरी है मैम, हेलमेट पहनना, जैसे टू व्हीलर पर चलता है उसका पैर भी फिसल जाता है या कोई और कोई ओवरटेक कर देते हैं उसको, तो चोट लगनी ही है उसको मैम, तो हेलमेट तो बहुत जरूरी है। उसमें जैसे हमारा सिर बच जाता है तो जान बच जाती है, अगर जो हेलमेट नहीं है तो उसमें जान भी जाने का खतरा बहुत ज्यादा
0: रहता है। जयवीर जी, छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं स्कूटर के या बाइक के आगे बैठे होते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो उनके लिए कोई हेलमेट नहीं होता है और उनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो क्या इसका सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है, एक पुलिस अधिकारी हैं आप और ट्रैफिक इंचार्ज हैं, क्या सोल्यूशन है इसका?
1: जी मैम, बच्चे को भी पीछे बैठा जैसे उस पर अलाउड ही 2 आदमी अलाउड है, ये अनऑथराइज है भाई, जैसे 3-3, 4-4 जैसे 3 राइडिंग का हम चलान करते हैं।
0: अच्छा, मतलब चलान कर सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और बीच में दो बच्चे बैठे हैं।
1: हाँ, 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: ओके,
1: अगर तो 3 बैठे हैं तो 3 राइडिंग का चलान होता है।
0: पर फिर वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, ये भी आप सोच के कई बार छोड़ भी देते होंगे।
1: हाँ, वैसे उसमें थोड़ा
0: समझा के। तो इसमें क्या बच्चों के भी हेलमेट मिलते हैं मार्केट में?
1: बिल्कुल मिलते हैं मैम,
0: मिलते हैं बच्चों के हेलमेट। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ ये चीज़ के बच्चों के हेलमेट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो उनका हेलमेट जरूर लेंगे।
1: 14-15 साल का बच्चा है उसका तो हेलमेट मिल जाता है
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए पेरेंट्स को। और जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं तो सब अपनी नानी दादी के घर जाते हैं, स्कूटी पे बैठ के जा रहे हैं या बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके जा रहे हैं, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा। इसकी जगह अगर आप बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे चले जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा, बहुत बहुत सेफ है, ना गर्मी लगेगी और ना ही कोई एक्सीडेंट होने का खतरा होगा।
1: आजकल तो ये जैसे भाई ऐप आ रहे हैं, ओला है, उबर है, टैक्सी वगैरह भी हो जाते हैं, जो ज्यादा स्ट्रेंथ है ना
0: जी,
1: दो से ज्यादा स्ट्रेंथ है तो अपनी वो फोर व्हीलर व्हीकल को ज्यादा,
0: बिल्कुल मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक बाइक पे पांच जने बैठ के जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है।
1: हाँ, ये बहुत खतरनाक है
0: जी। जयबी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज स्पीड होती है कि आप उनको देख के डर जाते हैं, आपके साथ से निकलते हैं, और स्कूटी वाले लोग जो हैं, टू व्हीलर वाले, वो घबरा जाते हैं और बहुत बार वो गिर भी जाते हैं इस चक्कर में कि कोई गाड़ी वाला इतनी तेज निकला है। और ओवर स्पीडिंग का कंसेप्ट लोग समझते नहीं है, मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि ओवर स्पीडिंग जो है, जैसे 50 लिखा है, 60 लिखा है, 70 लिखा है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करें तो इंटरसेप्टर कैसे पकड़ता है?
1: वो जैसे हम ये मोबाइल ये वाकी टाकी सेट होते हैं मैम
0: जी,
1: उसी टाइम हम कॉल कर देते हैं भाई, जो भी जैसे भाई यहाँ से अंकीर चौक है या बाटा चौक है, जहाँ भी जाओ कंट्रोल में मैसेज कर देते हैं भाई इस नंबर की गाड़ी है, बाइक है, तो इसको अपना पकड़ लो, इसको इंपाउंड कर लो। तो जैसे सभी जो नाके हैं, जड्डो हैं, एरिया सभी सक्रिय हो जाता है, उस पर जहाँ भी जिधर कभी आते हैं वहीं वो कंट्रोल कर देते हैं।
0: जी जी, ये जो इंटरसेप्टर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ये इनका काम ओवर स्पीडिंग पकड़ना होता है।
1: ओवर स्पीडिंग है, जैसे जाम लग रहा है मैम, वहाँ पे भी जैसे भाई एक मुलाजिम की ड्यूटी है या दो की है, वो उनसे काम नहीं चलता, व्हीकल तरफ जाता है तो वो गाड़ी से जल्दी पहुंच जाते हैं, जो भी नजदीक है ना उसको हम मैसेज कर देते हैं, फोन भी कर देते हैं और वायरलेस साइट पर भी मैसेज दे देते हैं।
0: तो इंटरसेप्टर जो है वैसे ओवर स्पीडिंग पकड़ने के लिए उसमें कैमरास वगैरह लगे होते हैं।
1: हाँ, उसमें जैसे अगर जो उसका कंट्रोल में आता है ठीक नहीं, तो उससे वीटी भी कर देते हैं भाई, अगला जो अगला ट्रैफिक पॉइंट है वो जैसे हम बैरियर लगाते हैं, बैरियर लगा देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ हाँ,
0: तो ये गाड़ी जो है इसे पकड़ना है।
1: हाँ हाँ, इसे पकड़ना है
0: तो ये नजर में रखने के लिए।
1: हाँ, कंट्रोल से वीटी हो जाती है सभी के पास, भाई इस नंबर की गाड़ी है तो ये राउंड अप करनी है
0: जी। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप वीआईपी मूवमेंट में भी काफी इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ के भी निकल जाते हैं आज के टाइम में
1: जी मैम,
0: सिर्फ बचने के लिए
1: जी मैम,
0: वो आगे जाके पकड़े जाते हैं, तो उनके साथ सुलूक क्या होता है?
1: सुलूक तो मैम जो अपना नियम अनुसार कार्रवाई है वही होती है
0: जी जी।
1: हाँ, उसके एफआईआर होती है और जो चलान है ज्यादा से ज्यादा होता है उसका
0: जी जी।
1: हाँ, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है पूरी,
0: मतलब एफआईआर वगैरह होगी, फिर उसके बाद जो है वो केस चलेगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। ठीक है, ये बात तो होगी जी ओवर स्पीडिंग की, लेकिन आगे बात करते हैं स्कूल और कॉलेज के बच्चों को
1: जी मैम,
0: सर क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: स्कूल और कॉलेज के बच्चों को मैम, जैसे भाई अपना टू व्हीलर पर चला है तो हेलमेट लगा के चलना चाहिए, अगर तो 18 साल से ऊपर है तो अपना लाइसेंस बनवाओ, डीएल बनवाओ, उसके बाद ही व्हीकल चलाना चाहिए रोड पे
0: जी जी जी।
1: और अपना जैसे फोर व्हीलर पर है तो सीट बेल्ट लगाओ और आउट स्पीड में नहीं चलाओ,
0: जो स्पीड है
1: हाँ हाँ, रॉन्ग साइड में मत चलाओ।
0: तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं 8010781078 पर पूछ सकते हैं। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: तो दोस्तों बातें चल रही हैं बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के बारे में, और ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले अधिकारी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, जयबीर सिंह जी जो कि ट्रैफिक इंचार्ज हैं और एनआईटी एरिया की पूरी देखरेख करते हैं। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में आइए जानते हैं कुछ और ट्रैफिक नियमों से जुड़ी हुई बातें और कैसे एक आम इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है बढ़ते हुए ट्रैफिक को भी और उसके प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। सर अब मैं चालान की बात पूछना चाहूंगी आपसे। 2025-26 में बहुत चालान कटे हैं, बहुत ज्यादा, तो कुछ आंकड़ा मुझे देंगे फरीदाबाद में कितने चालान कटे हैं पिछले 3-4 महीनों में?
1: हाँ जी मैम, ये मैम जैसे टोटल ऑफेंस चालान है ये जनवरी महीने में 57,866 है।
0: 57,000 चालान, ये सिर्फ फरीदाबाद का आंकड़ा?
1: हाँ ये ऑफेंस इन चालान है, जो टोटल चालान है वह 52,690 है मैम
0: जी।
1: और ये फरवरी महीने के जो टोटल ऑफेंस इन चालान है ये 45,200 है।
0: अच्छा
1: हाँ, और जो टोटल चालान है ये 40,807 है।
0: मतलब आपने एक महीने में 57,000 के आसपास, जनवरी की बात मैं करूं जिसमें हाँ, न्यू ईयर भी आता है हाँ और सिक्योरिटी भी बहुत होती है 26 जनवरी को लेके,
1: जी मैम,
0: उस दौरान आपने 57,000 चालान जो है वो करे,
1: जी मैम,
0: तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सिर्फ फरीदाबाद के।
1: हाँ, फरीदाबाद ही है।
0: तो आप दोस्तों सुन रहे हैं कि 57,000 चालान अगर एक शहर में और आपके अपने शहर में एक महीने में चालान हो रहे हैं तो कितने लोग ट्रैफिक के रूल्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं तब जाके ये चालान होते हैं।
1: टोटल तो मैम ये 32,99,400 है मैम
0: कैश जो कलेक्ट किया आपने।
1: हाँ, जो टोटल कैश है मैम
0: जी,
1: जो इतने रुपए के
0: जी, यानी टोटल अगर मैं इसको पैसे में कैलकुलेट करूं तो 32 लाख के आसपास पैसा जो है वो चालान जो है वो किए गए, मतलब
1: 32,99,400
0: यानी आप 33 लाख के आसपास मान लें कि इतना पैसा का चालान जो है, इतने रुपए का चालान जो है वो किया गया है। अब मैं आपसे जयबीर जी एक और चीज पूछना चाहूंगी, चालान को लेकर लोगों में इस टाइम इतना डर नहीं है?
1: जी मैम,
0: डर इसलिए भी नहीं है जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो कोर्ट में जाते हैं और वहां पर थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, इसलिए उनको लगता है कि 4-5 चालान हो गए, 6 चालान हो गए, जब गाड़ी बेचेंगे तब उसको माफ करवा लेंगे। ये ज्यादातर लड़कों के दिमाग में, मैं कहूँ यंग लड़कों के दिमाग में ये चीज रहती है।
1: जी मैम,
0: सो इसको कैसे रोका जाए या चालान की प्रक्रिया क्या है आज की तारीख में? अगर सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैंने रेड लाइट तोड़ दी और मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका और चालान बनाया, तो पहली बात तो चालान रेड लाइट जंपिंग का है कितना? 5,000 है। 5,000 चालान है। अब 5,000 चालान को मैं वहाँ कैसे पे करूँ? अगर मेरे पास 5,000 नहीं है तो मैं कैसे पे कर सकती हूँ?
1: वो मैम अब तो जैसे या तो चालान ब्रांच है हमारी, जैसे अपना DCP ऑफिस है ना सेक्टर 12 में जो लघु सचिवालय है उसमें चालान ब्रांच है
0: जी,
1: वहाँ जाके भर सकते हैं आप।
0: अच्छा, वहाँ जाकर मैं चालान भर सकती हूँ
1: जी मैम।
0: ओके,
1: और अब ये जैसे QR है ये कम काम कर रहा है, हमारी जो मशीन है ना वहाँ भी जमा करा सकते हैं। जो हम मौके पर जो चालान करते हैं, इंटरनेट कम चलने की वजह से कई बार काम कम करता है, उसकी बजाय चालान ब्रांच में जो ट्रैफिक पुलिस है सेक्टर 12 लघु सचिवालय में वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं
0: जी, जी।
1: और जो मौके पर भी जमा कराना चाहो है तो मौके पर भी हो जाता है, कई बार इंटरनेट की वजह से सर्वर
0: रुक जाता, हाँ, सर्वर
1: रुक जाता है जी। और बाकी जैसे कोर्ट की में जाना चाहता है तो कोर्ट में भी, और जैसे कोर्ट लगती स्पेशल
0: जी जी
1: 2-3 महीने में
0: तो उसका नोटिस आता है उस व्यक्ति के पास कि आपके चालान बचे हैं वो बकाया
1: नहीं, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं अखबार में, निकाल देते हैं भाई इस तारीख की
0: अदालत लग

0: पहुंचे।
1: हाँ, अपना जो चलान भरना चाहो तो भर सकता है अपना, वहाँ जज साहब के सम्मुख पेश हो गए, जो भी उसकी वे गलती है, जो भी सॉरी फील करता है, तो उसमें कुछ उसके उनके माफ कर देते हैं।
0: जी जी जी, यानी अगर आपके चालान ऑलरेडी कट चुके हैं, आपको फाइन जो है वो लगाया गया है और आपने अभी तक वो फाइन नहीं भरा है, तो आप अगर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं किसी वजह से, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अखबार में ऐड देखते रहिए, अगर कोई ऐसी ट्रैफिक की अदालत का जहां पर चालान जो है वो आपको सबमिट कराने हैं, फाइन जमा करना है, इसका कोई ऐड आपको दिखता है लोकल अखबार में, तो आप जरूर उसका लाभ उठाएं और वहां पर जाकर अपने चालान भरें। शायद यही वजह है जयबीर जी के लोगों में डर थोड़ा कम हो गया कि चालान का अमाउंट जो है वो 5,000 से 2,500 हो जाएगा।
1: जी जी मैम
0: जी, ये दिक्कत है। तो लोगों में बेसिकली मुझे लगता है कि डर कम हो गया है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से भी हल्के में ले लेते हैं
1: जी मैम
0: ट्रैफिक रूल्स को।
1: जी मैम,
0: पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने एरिया को, क्योंकि आप NIT के ट्रैफिक इंचार्ज है और NIT में वो सारी सड़कें आती हैं जहां पर दिन भर ट्रैफिक होता
1: जी
0: है, नीलम फ्लाईओवर भी NIT में आता है, बाटा फ्लाईओवर भी NIT में आता है, ओल्ड का अंडरपास भी NIT में आता है, और ऐसी परिस्थिति में
1: जी मैम
0: कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, क्या प्लान है आपका?
1: इसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने मुलाजिम लगा के और गाड़ी को रोक रोक के, जैसे बत्ती पे है तो वो रोक रोक के चलाते हैं, जो ट्रैफिक है वो दाएं बाएं से नहीं घुसे, नियम अनुसार ही चलाए
0: जी। और जयबीर जी, अगर कोई व्यक्ति अपने सामने कोई अपराध होते हुए देख रहा है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करें, जैसे मैं आज आपको आज का अपना किस्सा बताना चाहती हूँ। मैं सुबह ऑफिस आ रही थी सूरजकुंड रोड से
1: जी,
0: और अचानक से अनखीर वाले गोल चक्कर पे आगे एक ऑटो वाला अचानक से आ गया, तो सबकी गाड़ियां रुक गई
1: जी मैम,
0: लेकिन मेरे पीछे बिल्कुल एक वैगनआर थी
1: जी मैम,
0: और उस वैगनआर वाले ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया कि मुझे निकलना है, रास्ता दो
1: जी मैम,
0: और बजाता ही जा रहा है, नॉन स्टॉप हॉर्न बजाता जा रहा है, आसपास वाले सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही उसको आगे निकलने का रास्ता मिला
1: जी मैम,
0: वो आगे गया और उसने पीछे वाले सबको देख के जोर जोर से शीशे के अंदर से ही अपनी गालियां देना शुरू कर दिया
1: जी मैम,
0: बदतमीजी करी
1: जी मैम।
0: अब गाड़ी का नंबर भी बहुत सारे लोगों ने नोट किया, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या करें, क्योंकि वो बहुत तेज आगे निकला और बहुत सारे लोगों रैश ड्राइव करता हुआ ओवर स्पीडिंग में आगे निकल गया। अब ऐसे में अगर मेरे जैसी कोई महिला है और वो फंसना नहीं चाहती किसी चक्कर में कि भाई उसको कल को कोई परेशान करे या कोई पुलिस स्टेशन में बुलाए, तो वो क्या करे?
1: जी मैम, उसकी वीडियो बना के और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है,
0: पर सर जैसे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती उस टाइम, तो क्या करना चाहिए? अब गाड़ी का नंबर मुझे
1: नंबर नोट करके उसकी डिटेल लिख जाती है मैम
0: जी,
1: हमारे पास भी निकल आएगी।
0: अच्छा,
1: हाँ मशीन हमारे पास, उसका जो भी उसका नाम है, एड्रेस है, वो सभी निकल आएगा और उसके अपने बयान दिए जाएंगे, जैसे जो अपना DCP की साहब की Gmail ID है उस पर डाल सकते हो आप
0: जी जी,
1: फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस,
0: मतलब उसमें अपनी कंप्लेंट।
1: हाँ हाँ, मतलब उस पर फिर उसको गाड़ी का राउंड अप करेंगे, उस पर जो जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई है, वो की जाएगी नियम अनुसार
0: जी। यानी मतलब अगर मामला सुबह का भी है तो दोपहर में भी कंप्लेंट कर सकते हैं जी। और इसके अलावा कोई फोन नंबर जो आप देना चाहें जिस पे कॉल करके हम ये सारी जो सिचुएशन है ये बता सकते हैं?
1: हाँ हाँ, ये हमारा जैसे PS ट्रैफिक पुलिस फरीदाबाद का नंबर है 01292225999
0: जी। तो दोस्तों, अगर आप फरीदाबाद शहर में हैं और आप किसी तरीके का ऐसा ट्रैफिक वॉयलेट होते हुए देख रहे हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन ट्रैफिक में कॉल करना है 01292225999। सिंपल सा नंबर है, 3 बार 2 फिर 5 और 3 बार 9, बहुत सिंपल सा नंबर है। इस नंबर को आप अपने फोन में सेव भी कर सकते हैं
1: जी।
0: जब भी आपको दिखे ऐसी परिस्थिति कि कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, राह चलते रोड रेज कर रहा है, या फिर आपकी गाड़ी को टक्कर मार गया है, या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट आप देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार फिर बता देती हूँ, 01292225999। तो बातों का सिलसिला जारी है दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। अगर आप भी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नंबर है बहुत आसान, 8010781078।

ತಾನು ತದರೆ ನಾ ಸಪ್ತಸುರನ ತಿಲಕ.

प्रकृत चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन छन के छन नन नन नन नन

0: Dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na dir tana dum tana dir na dim tana na
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, और ट्रैफिक को ठीक रखने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्या चालान करना ही सही है, कभी कभी स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, मुझे भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हम आप सड़कों पर जाते हुए देखते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, जो रॉन्ग साइड जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर स्पीडिंग कर जाते हैं, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे गलियां, चाहे हाईवे, कहीं पर भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और जब इनका चालान काटा जाता है तो फिर ये इधर उधर फोन मिलाना शुरू कर देते हैं। आपके भी नोन को इस कैटेगरी में आते हैं तो हमें जरूर बताइएगा 8010781078 पर, या फिर आप अगर कभी ऐसे सिचुएशन होते हुए देखें तो 112 पे कॉल भी कर सकते हैं, खुद भी एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको कोई शख्स ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ता हुआ मिलता है तो बस आपको ये बातचीत, ये जानकारी या फिर कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया, फरीदाबाद पुलिस ट्विटर यानी एक्स और इंस्टाग्राम पर डालनी है, या फिर आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी नंबर आपको असाइन किया जाएगा, जो भी पुलिस अधिकारी आप तक पहुंचेंगे, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बात चल रही है बहुत सारी ट्रैफिक से जुड़ी हुई। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जयवीर सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज NIT फरीदाबाद। जयवीर जी, ट्रैफिक की बात तो हमने कर ली है और बहुत सारी बातें आपने कर ली हैं। हाल ही में डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा था कि एक्सप्रेस वे पर अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, बीच में एक बहुत बड़े वकील थे जिनकी डेथ हो गई रॉन्ग साइड गाड़ी आने की वजह से, और अक्सर एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पर होते रहते हैं, तो ऐसे में एक्सप्रेस वेज के एक्सीडेंट्स रोकने के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि रॉन्ग साइड कोई आएगा तो गाड़ी इंपाउंड कर ली जाएगी।
2: बिल्कुल मैम।
1: तो क्या ऐसा होगा या हो रहा है?
2: हाँ हो रहा मैम, जैसे वहाँ पर हमारी ड्यूटी रहती है, गाड़ी रहती है इंटरसेप्टर वगैरह, जो रॉन्ग साइड मिलता है उसका चालान करते हैं। अगर जो किसी कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है तो तुरंत क्रेन को बुला के अपना साइड में करवा के, जो लोकल पुलिस से बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई करते, जिसकी वजह से
1: तो रॉन्ग साइड गाड़ियों को क्या आप इंपाउंड कर रहे हैं अभी, क्योंकि रॉन्ग साइड बहुत कॉमन है हमारे देश में।
2: हाँ, ये जो भी रॉन्ग साइड गाड़ी चलती है हमारे DCP साहब के आदेश के अनुसार उन गाड़ियों को हम राउंड अप कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, फरीदाबाद पुलिस भी अब स्ट्रिक्ट हो गई है रॉन्ग साइड को लेकर। तो अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, खासतौर पर से एक्सप्रेस वे से, जो कि सबसे खतरनाक होता है अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर गाड़ियां 100, 80, 110 की स्पीड में चलती हैं।
2: जी मैम।
1: वहां से अगर रॉन्ग साइड आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को चालान तो देना ही पड़ेगा, जो कि काफी हैवी चालान है, पेनल्टी काफी हैवी है। इसके साथ साथ फरीदाबाद पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकती है, यानी इंपाउंड भी कर सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई है तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी पर FIR, आप पर FIR दर्ज कर सकती है। ये हाल ही में अभियान चलाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, जिसमें 22 और 23 मई के सिर्फ दो दिन में 1170 FIR हो चुकी है रॉन्ग साइड वालों की। बाकी चीजों की हम बात नहीं करें, हम सिर्फ रॉन्ग साइड की बात करें, क्योंकि रॉन्ग साइड एक ऐसा रूल ब्रेक है जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस 110 गुना बढ़ जाते हैं।
2: जी मैम।
1: आप सीधे सीधे अपनी रोड पे चल रहे हैं, आप अपनी धुन में आराम से चल रहे हैं, सामने से अगर कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो एक्सीडेंट होना लाजमी है। तो इसीलिए रॉन्ग साइड को बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस लेके चल रही है, चाहे वो फरीदाबाद पुलिस हो या कोई और पुलिस हो। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्यों ऐसी गलती करें जिससे जो है आपको ही नुकसान हो। तो क्या कहना चाहेंगे जयवीर जी, अब चलते चलते लोगों से कुछ जानकारी देना
2: चाहिए? उनको स्पेशल अभियान चला जाता है, समझाया भी जाता है भाई रॉन्ग साइड में कितना, मतलब खुद को भी कैजुअल्टी है और आगे से आने वाला हाथ अपना टारगेट करके चलता है।
1: जी।
2: और वो एकदम व्हीकल देखता है, सहम जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और स्पीड में गाड़ी रहती है, उस कारण बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है उसको भी और खुद को भी, और आसपास है तो उसको दूसरे व्हीकल आगे पीछे उनको भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है
1: जी। तो मैं बस जयबीर जी आपसे अब ये चाहूंगी चलते चलते आप हमें थोड़े चालान का अमाउंट बता दें।
2: जी मैम।
1: कुछ चालान ऐसे होते हैं जैसे सीट बेल्ट ना पहनना, कितना उसका चालान है, या फिर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस बहुत सारे लोग निकल लेते हैं
2: इनके ज्यादातर 5,000 के चालान है मैम
1: जी।
2: जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता है तो 5,000 रुपए चालान है इसके
1: जी।
2: सेक्शन 318 लगती है
1: जी। अंडर एज ड्राइविंग का कितना चालान है
2: इनका भी 5,000 रुपए चालान है।
1: 5,000 रुपए चालान, और इसमें पेरेंट्स को भी जो है उन पर कार्रवाई होगी।
2: हाँ, कार्रवाई होगी
1: जी जी। साथ ही ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां हमने बहुत देखी हैं, रोकी भी जाती हैं सड़कों पर, ऐसा नहीं है
2: जी मैम,
1: लेकिन ओवरलोडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि साथ में चलता हुआ ट्रक है, गाड़ी है, उस पे से पत्थर गिर गए
2: जी मैम,
1: तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं
2: जी मैम। ये मैम सेंक्शन 113(3), 194(1) के तहत कार्रवाई होती है, उनके FIR भी होती है और उनका भारी चालान किया जाता है
1: जी जी। यानी इसमें FIR का सीधा,
2: FIR का इसका सीधा FIR का वो।
1: इसके अलावा सर मैं आपसे जानना चाहूंगी मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है गाड़ी चलाते हुए, इसका कितना चालान है?
2: इसमें मैम 10,000 का चालान है और 184 सेंक्शन के तहत कार्रवाई की जाती है
1: जी। यानी 10,000 का चालान है सिर्फ फोन का इस्तेमाल करने
2: जी मैम
1: जी। अगर आप अपना फोन का इस्तेमाल करें गाड़ी चलाते हुए जो कि बहुत कॉमन है, तो 10,000 रुपए का चालान आप पर हो सकता है। इसके साथ साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग की बात आपने करी थी, बहुत बड़ा अभियान जो है वो फरीदाबाद पुलिस द्वारा चलाया भी जाता है, अक्सर सैटरडे संडे नाइट को बहुत लोगों को देखा गया है कि वो पकड़े भी जाते हैं
2: जी मैम।
1: सो ऐसे में कितना चालान होता है?
2: इसमें मैम 185 सेक्शन 185(88) के तहत FIR भी होती है,
1: सीधा
2: FIR उसमें कोर्ट उनका कोर्ट में पेशी होती है और वहीं उनका भरा जाता है, अमाउंट भरा जाता है
1: जी। एक समस्या और है जयबीर जी जो मुझे लगता है पूरे देश में, गलत पार्किंग करना, इतनी गलत पार्किंग हो रही है मोहल्लों में, गलियों में, मार्केट में, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? कितना?
2: इसमें 500 से 1500 तक अमाउंट का चालान का हमें,
1: यानी आपने अगर गलत गाड़ी पार्क,
2: जैसे हम मौका देख भाई कहाँ पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करती है ना, 500 से 1500 तक चलान रहता है
1: जी जी,
2: तो ट्रैफिक में बाधा पहुंचाते हैं
1: जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि कहीं भी पार्किंग कर रहे हैं, एक तो अगर मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले एरिया में गाड़ी ना लेके जाएं, दूर खड़ी करें
2: जी मैम।
1: और अगर आप किसी वजह से लेके भी जा रहे हैं सो आप ऐसी जगह पर पार्क करें जहां पर रास्ता ना रुके, क्योंकि अगर ट्रैफिक लगा रास्ता रुका तो आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी, फंसी जाएगी। इसके साथ साथ जयवीर जी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है सीट बेल्ट का ना लगाना
2: जी मैम।
1: तो फरीदाबाद में इसका कितना चालान है?
2: इसका मैम 1,000 रुपए चालान है, जो सीट बेल्ट लगाता है ना
1: जी जी,
2: 1,000 रुपए चालान है इसका
1: जी, 1,000 रुपए चालान है। और एक समस्या और बहुत बड़ी है जो यंगस्टर्स के साथ देखी गई है, गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ मजाक करना
2: जी मैम।
1: गाड़ी का नंबर अगर 8055 है तो उसको ऐसे फॉन्ट में लिखवाएंगे कि वो बॉस दिखता है
2: जी मैम,
1: और गाड़ी के नंबर ऐसे डिजाइन से बनाए जाएंगे, यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो नहीं लगवाते,
2: नहीं लगाते मैम।
1: तो इसका कितना चालान है और क्या कार्रवाई होती
2: है? इसका 500 से 1500 रुपए तक चालान है,
1: सिर्फ 500 से 1500 रुपए चालान है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो गलत नंबर की, जो नंबर प्लेट एक्सचेंज कर ली जाती है, बदल दी जाती है, इसकी वजह से भी होते हैं, और बाद में ये चीज जो है वो खुल के आती है। सो
2: इनको जैसे अभियान भी चलाते हैं, चेक भी करते हैं कि जैसे RC के साथ भी मिलान करते हैं, जैसे मशीन में हम नंबर डालते हैं तो उसको पता भी लग जाता है भाई इस बंदे की है और दूसरे का नाम है ये
1: जी जी, क्योंकि गाड़ी के शीशे पे जो नंबर लिखा हुआ वो अलग होता है और गाड़ी की नंबर प्लेट पे नंबर है वो अलग होता है, तो ऐसे में नकली नंबर जी जी
2: जी।
1: तो बहुत सारे चालान और उनके अमाउंट हमने आपको बता दिए हैं, उम्मीद है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के साथ साथ अपने शहर को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सेफ बनाएंगे। जयबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए
2: जी मैम,
1: और आपने जानकारी दी, थैंक यू सो मच।

के बिना प्रीत भी नहीं हो सकती है, कई चीजें आसानी से ठीक नहीं हो सकती हैं। तो चालान और स्ट्रिक्टनेस अगर ट्रैफिक पुलिस आपके लिए कर रही है तो उसको समझिए, उसकी जरूरत को समझिए, सिर्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक पुलिस का साथ नहीं देंगे तो फिर आप जिंदगियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। हमारे देश में लगभग 2.25 लाख लोग हर साल अपनी जान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं और 4 से 5 लाख घायल हो जाते हैं, और घायल भी ऐसे जो कई बार ठीक भी नहीं हो पाते। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, उनके रूल्स को फॉलो करिए। ट्रैफिक रूल्स आपकी सुरक्षा के लिए बने हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते ही आपको इन सब रूल्स को समझना है और इन्हें फॉलो करना है। बस अपना ख्याल रखिए। सुरक्षा संवाद में आज बस इतना ही, फिर से होगी मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ, आपकी सुरक्षा को लेकर करेंगे बातचीत और वार्तालाप। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे, संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम उन लोगों के साथ चलते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं या मानवता की राह पर चलते हैं, मानवता के अलग अलग किस्म के काम करते हैं। और आप जानते ही हैं कि ऐसे खास कहानियां, ऐसे खास एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आती हूं, जिनमें कि मैं आपको उन शख्स से मिलवाती हूं, उन लोगों से मिलवाती हूं, उनकी कहानियां सुनवाती हूं जो मानवता के काम करते हैं। आज इस कड़ी में एक बहुत ही फेमस शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, गुठली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी। भाई ये आम की जितनी भी गुठलियां है ना, वो आपसे मांगते हैं और ये कहते हैं कि गुठलियां मुझे भेजिए और उसके बाद मैं इनका पेड़ लगाकर लोगों को बांटूंगा। तो अब ये पूरा सफर कैसा था, कैसे बने ये गुठली मैन ऑफ इंडिया, और दरअसल काम करना कितना जोखिम भरा था, कितना मुश्किल था, कितना आसान था, ये सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं और उसके लिए हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में। जसमीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि आपने जनरसली आपके ऑडियंस के लिए मेरे को चुना है, एंड थैंक यू सो मच।
1: जसमीत जी सबसे पहला सवाल, गुठली मैन ऑफ इंडिया बनने का जो सफर था ये कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ?
2: देखिए कहां और कैसे का ये है कि थोड़ा इट्स एंड बिट्स है कि 2016-17 में मैं मेरी टूरिंग के लिए, मैं बाय एजुकेशन मैं एक डॉक्टर हूं और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हूं, तो उस टूरिंग के लिए मैं जब भी बी टाउन्स में जाता तो किसानों को देखता और किसान मुझे हर वक्त गरीबी दिखता, एंड मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि लैंडलॉर्ड्स होकर ये गरीब क्यों है। तो जब और घुसा अंदर में तो देखा कि ये पैडी फार्मिंग करते हैं एंड 1500 से 2000 रुपये कमाते हैं महीने के, एंड बहुत पानी यूज होता है, बहुत केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, इनकी सेहत खराब, सॉइल की हेल्थ खराब, एंड घर की जो वुमेन है उनकी भी हालात बहुत खराब, क्योंकि किसी भी घर में जब पैसा कम जाता है तो वुमेन सबसे पहले ब्रंट लेती है। तो सारा कुछ ये करते कराते ये एक सिचुएशन दिखी। उसके बाद ट्रेवल्स करने से क्या है कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस फील करता था, तो वो फील भी दिख रही थी कि भी एक्चुअली हम सबसे ज्यादा पोल्यूटेड, वर्ल्ड के जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें इंडिया काफी नाम आगे है और हीट में भी हम बहुत आगे हैं, तो जो एक्चुअली फील करता था मैं। एंड जब देखा कि लोग क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे, तो देखता कि लोग मीटिंग्स करते हैं इंटेलेक्चुअली साउंड करने के लिए ना, कप ऑफ टीज एंड इंटेलेक्चुअल मीटिंग्स, एनवायरमेंटल समिट्स, वहाँ बातें होती हैं, हाँ बहुत गर्मी है, पेड़ लगाने पड़ेंगे, इट्स टू मच हीट, वी नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ये वर्ड बोलते हैं, तो जस्ट साउंड इंटेलेक्चुअल, बट द मोमेंट द कप ऑफ टी, द डिनर, द लंच इज ओवर या मे बी वो समिट इज ओवर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज का तो होता पता नहीं दिखा मुझे। तो सारा कुछ मिला के मुझे लगा कि शायद मे बी इंटेंशन की बात तो एक तरफ है, मे बी शायद हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सा पेड़, कैसा पेड़, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, किधर करना है। तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों के पास चले जाता हूँ, एंड बच्चों से जब मैंने बातें की कि भी स्कूल्स के बच्चों को मैं अगर बता दूं पर्यावरण के बारे में, किसान के बारे में, भी किसान के आम अगर पेड़ लगा दें, तो बच्चों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो नीम के पेड़, जामुन के पेड़, तो बच्चे कहते भी नो ठीक है पेड़, बट नीम जामुन इज नॉट देयर सब्जेक्ट। एंड जब मुझे बताना पड़ा उनको कि डिफॉरेस्टेशन में आम के पेड़ भी कट रहे हैं और आम का भी आने वाले दिनों में आपके प्लेट पे आम कम हो सकता है, देन दे वेर वेरी कंसर्न्ड कि भाई मेरे आम के साथ क्यों ऐसा खतरा हो सकता है। तो वहां से पूरा मिशन का एक जन्म हुआ कि किसान राजी था मैंगो पेड़ लगाने के लिए, वो दूसरा को पेड़ लगाने के लिए रेडी नहीं था अपनी जमीन पर, पर्यावरण कहता था कि मुझे एक पेड़ ऐसा दे दो जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, मैंगो पेड़ इज अ पेड़ जो बायोडाइवर्सिटी को फुल्ली सपोर्ट करता है, एंड बच्चा कह रहा था कि कुछ मेरे सब्जेक्ट का लाओ तभी तो मैं एंट्री लूँ इस पूरे मिशन में, तो मैंगो इज अगेन द सब्जेक्ट। तो वहां से मैंने बातें लोगों को चालू की कि मुद्दा तो था पर्यावरण और किसान का भला करना, लेकिन सब्जेक्ट मैंने बना दिया गुठली को, एंड लोगों से कहना चालू किया भी मैंगो खाइए, गुठलियां दीजिए, मैं उसका पौधा बनाऊंगा, पौधा बना के मैं किसानों को फ्री में दे दूंगा। अब लोगों ने बोला कि सरदार पागल हो गया, भाई ये गुठलियां मांग रहा है, लोग आम मांगते हैं, ये गुठलियां मांग रहा है, तो किसी ने गुटली मैन, किसी ने गुटली सिंह, किसी ने मैंगो सिंह, किसी ने गर्बज सिंह, अलग अलग अलग नाम दिए। वो करते करते करते गुटली मैन का सफर कोविड आ गया। कोविड तक लोग गुटलियां उतनी दे नहीं रहे थे। देन फिर सोशल मीडिया का अपना प्लस पॉइंट 2021-22 के करीब स्लोली एंड स्टेडली सोशल मीडिया ने बस इस चीज को बहुत आगे बढ़ा दिया। एंड मोर देन 130 स्कूल्स अभी तक दे हैव कॉल्ड मी फॉर इंटरेक्टिव सेशंस। वो मेरे इस पूरे मिशन के साथ हैं। वो मुझे गुटलियां भेजते हैं, मुझे भी अपने स्कूल में बुलाते हैं। मिलिट्री इज अ पार्ट, एनसीसी इज अ पार्ट, प्रीति जिंटा इज अ पार्ट, रवि शास्त्री जी इज अ पार्ट। तो इस तरीके से मेरे पे फिर एक बस डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम ही गुटली मैन है। वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर सत्येंद्र फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू वो शूट की गई है। एंड विच हैज वॉन मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो एज द बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म। के एक गार्बेज से कैसे इन्वायरमेंट का कुछ काम हो सकता है इन द लैंड्स ऑफ फार्मर, कि फार्मर को भी अपग्रेड कर दिया जाए। तो यहाँ से ये सारा कुछ मिला के आप कह सकते हैं 16-17 से शुरू हुआ और अभी हम 26 में हैं।
1: वाओ, कितना इंटरेस्टिंग, लेकिन शायद बहुत ही कम शब्दों में जसमीत जी आपने अपना गुटली मैन का सफर सुनाया। सुनने में सच बताऊं बिल्कुल वैसा ही उन मीटिंग्स की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान लगा। बट आई एम डैम श्योर कि ये सफर बहुत मुश्किल था। तो ये सफर कैसा था दोस्तों, ये हम जानेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले लेने वाली हूँ एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आज आप बिंदास भावना के साथ नहीं, आप गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ हैं, जो बहुत ही फेमस भी कहलाते हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया। जसमीत जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, दरअसल मुझे इस प्रोसेस से लेकर जाइए ना, जहां आपके पास बहुत सारे आम की गुठली आती है और उसके बाद वो पौधा बनकर किसानों तक जाती है, कैसे करते हैं ये सारा प्रोसेस?
1: देखिए, ऐसा है कि ये गुठलियों का सफर जो ऐसा है कि पूरे इंडिया में, ऑल अक्रॉस इंडिया, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसने मुझे गुठलियां नहीं दी है, चाहे दो, चाहे बीस, कोई 20,000, कोई 200, कोई 1,00,000 गुठली मुझे भेजते हैं, वो बाय पार्सल्स भेजते हैं। एंड

0: कोई बाई हैंड भी दे जाते हैं। अभी जैसे आज की डेट बात करते करते तंजानिया से किसी ने मुझे आम भेज दिए, बोलते आम खा लीजिएगा उसकी गुठलियाँ आप रख लीजिएगा। सो दिस इज द वे थिंग्स आर हैपनिंग एंड मैं उनको जब गुठलियाँ मुझे मिल जाती हैं तो मैं उनको अंकुरित करने के लिए जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन प्रोसेस में डालता हूँ एंड ये जर्मिनेशन प्रोसेस इट टेक्स अराउंड 7 to 8 months। उसके बाद इसकी ग्राफ्टिंग होती है। ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है ये ऑल अक्रॉस इंडिया से मिक्स मेरे को गुठलियाँ आती हैं। टोटल गुठलियाँ जो है किसी अलग अलग ब्रीड्स की हैं। तो जब भी हम किसान को कोई पेड़ देते हैं तो किसान के लिए ब्रीड जानना बहुत जरूरी है। जस्ट रैंडमली मैं कोई पौधा उसको नहीं दे सकता क्योंकि मैंगो का पेड़ 10 से 15 साल लेता बड़ा होने में एंड इसीलिए इसी रीजन से किसान उसको लगाना नहीं चाहता है क्योंकि इतना टाइम किसके पास है। तो मैं उसको ग्राफ्टिंग जब कर देता हूँ, ग्राफ्टिंग करने के बाद उसको हैंड ओवर करता हूँ। दैट इज अ लोकल हैबिटेट मैंगो ट्री विच टेक्स अराउंड 3 इयर्स टू ग्रो। 3 साल में वो फ्रूट देना चालू कर देता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। प्रोसेस में काफी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में उनको बताता हूँ, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, मल्चिंग के बारे में, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की। तो उस आदत से उनको निकालना, उस सॉइल को भी उस पूरी कंडीशन से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। मतलब जस्ट रैंडमली हमने कल तक उस पैडी फार्मिंग में थे और आज हम पेड़ लगा लेंगे, वो नहीं है। देयर इज अ प्रोसेस।
1: तो भाई देखिए, आज हमने ये प्रोसेस समझ लिया और एक्चुअली जब जसमीत जी ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी कि 10-15 साल एक पेड़ को हम बढ़ते हुए देखते थे। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर के गार्डन में आम के पेड़ होते थे और जब वो लगाए जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम इन पेड़ के फलों को खाओगे। बट अगर देखा जाए तो आजकल के जमाने में हम वो फल खरीद कर खा रहे हैं। जसमीत जी, वाकई ये सफर और ये प्रोसेस काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आपने बहुत सारे किसानों के लिए ये आसान बना दिया है, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन बन गए हैं। दोस्तों, मुझे जसमीत सिंह जी से बहुत बातें करनी है, तो जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। एक छोटा सा प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइफ।

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी यानी गुटली मैन ऑफ इंडिया के साथ। भाई देखिए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व आम खाता है, और आम आदमी भी आम खाता है और खास आदमी भी आम खाता है, और आम तो सबका फेवरेट होता है। सो जसमीत जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इस प्रोसेस को रेप्लिकेट भी किया जा सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनेंगे और खासतौर पर हमारे इंटरनेट रेडियो के जरिए तो आपको पूरे विश्व में लोग सुनेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या इसे रेप्लिकेट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो क्या आपकी ही इस मुहिम को कहीं और भी आगे ले जाया जा सकता है?
1: जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया आपने, और समहाउ पता नहीं आज मेरी मैनिफेस्टेशन है कि मैं सुबह ही आज इसके बारे में सोच रहा था कि कहीं ना कहीं ये मिशन जो है मैंने डूएबल है, ये मैंने बता दिया भाई, ये डूएबल है, ये हो सकता है। नाउ अगर हमें देखिए, आज की डेट में मोर देन मतलब पता नहीं कितने करोड़ मैंगोज ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड खाए जाते हैं, और उसकी गुठलियां हम रॉट करने के लिए फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हम गार्बेज क्रिएट कर रहे हैं, हमें इतना ही ह्यूमिलेशन, इतना ही गिल्ट फील होता है। बट द थिंग इज, मैं आपको बताऊं कि पेड़ तो हम लगा नहीं रहे हैं, उसके लिए हम अलग से अपने दिमाग में ड्रामा करते हैं, कभी अर्थ डे कभी इन्वायरमेंट डे। 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे जो मना रहे, दैट इज अ फार्स, कि एक दिन हम इन्वायरमेंट डे बना रहे हैं जिसके कारण हम आजू बाजू जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, उस भरी गर्मियों में कॉर्पोरेट के मेमोज आते हैं कि आप पेड़ लगाइए। अरे पेड़ लगाइए, पेड़ जिंदा रहेगा क्या इतनी गर्मी में? तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, ये जो गुठलियां हम भेज देते हैं मतलब फेंक देते हैं रॉट करने के लिए, उससे प्रोड्यूस होता है मिथेन गैस, एंड दैट इज अगेन हीट। मतलब हमने और हीट प्रोड्यूस करने के लिए गुठलियों को रॉट करने के लिए दे दिया। तो उससे बेटर है कि आप या तो उस गुठलियों को आप पौधे बनाइए अपने एंड पे पौधे बनाकर आप किसी को वो दान कर दीजिए। एक दूसरा, आपसे नहीं हो रहा, आप किसी भी किसी जगह पर जाके इसको रोपण कराइए गुठलियों को, वो भी नहीं हो रहा तो मैं तो कह रहा हूँ कि आम खाइए, कोई भी ब्रीड का आम खाइए, उसकी पल्प साफ करिए, उसको सुखाइए, 2 से 1 दिन लगता है छाव में धूप में, सुखा के 9831459390 मुझे कॉल करके कनेक्ट करिए और मुझे गुठलियां भेज दीजिए, मैं इनसे पौधे बनाऊंगा और पौधे बना के किसानों को दे दूंगा। ये तो हो गया मेरा हिस्सा। अब मैं चाहता हूं कि आपके श्रोतागण सुने और इसको थोड़ा सा गौर भी करें कि मुझे ऑल इंडिया में कम से कम 100 से 200 नर्सरीज बनानी है। अगर कोई सोशल माइंड के बंदे जिनकी कुछ जमीनों पे भी थोड़ा सा होल्ड हो कोई, वो जमीनें मुझे सोशली चाहिए, और ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जिससे कि हम जैसे पंजाब में पंजाब की गुठलियां वहीं इकट्ठी करके वहीं पे लोकल किसानों को गाइड करके उनकी टीम बनाकर उनको सारा कुछ नेचुरल फार्मिंग के बताकर हम ये हैंड होल्ड कर दें उनको, उसी तरीके से गुजरात, उसी तरीके से दिल्ली, उसी तरीके से अलग अलग जगहें। तो उससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये बहुत जल्दी रेप्लीकेट हो जाएगा। और मुझे रेप्लीकेट क्यों करना है मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में अगर हमने इंडिया को ही 2000 करोड़ पेड़ नहीं दिए तो इंडिया का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री बढ़ने के पूरे आसार हैं, और 3 से 5% GDP डाउन होने के पूरे आसार हैं। अब कोई बोले कि एनवायरमेंट और GDP का क्या लेना देना, तो मैं उसको यही कहूंगा कि आज की डेट में क्लाइमेट एक स्पेकुलेटिव क्लाइमेट बन चुका है, कभी भी हीट वेव, कभी भी बाढ़, कभी भी कुछ, तो उससे क्रॉप साइकिल्स पूरी डिस्टर्ब हो जा रही है, अचानक कहीं पे भी पानी आ जाने से डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अब गरीब जो है सबसे पहले असर करेगा, क्योंकि वो गांव में है उसकी क्रॉप खराब होगी, शहर वाला गरीब भी सबसे पहले असर में आ जाएगा, मिडिल क्लास का बंदा इन्फ्लेशन की मार में आएगा, गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो रीएलोकेट हो जाते हैं टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ कैलमिटीज, सडन फोर्स मेजर कॉज जो अचानक से फ्लड आ गया उसको, तो उस जो फंड उनका रीएलोकेट हुआ जो सही जगह पर जाना था, उसके कारण जो GDP पे असर आना है आने वाले दिनों पे, वो एक असर है। एंड द रिच क्लास जो बोलता है सानू की मैनू की, मैं तो एसी ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा क्या लेना देना एनवायरमेंट के साथ, ठीक है गर्म है तो गर्म है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी ही तो इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्री में, आप ही तो इंडस्ट्रियस्ट हैं, तो आने वाले दिनों में अगर वर्क फोर्स की एफिकेसी कम हो जाएगी, अगर साइकोलॉजिकली वो डाउन हो जाएंगे, टेम्परेचर इतना शूट अप करेगा, तो आज प्रोडक्टिविटी पे असर आएगा, और प्रोडक्टिविटी डाउन मतलब आपकी प्रॉफिट डाउन, आपकी प्रॉफिट डाउन मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क। सो थिंग इज, अगर कोई बोलता है एनवायरमेंट मेरा कोई लेना देना नहीं है, एवरी क्लास एवरी स्टार्टअप हैज अ कनेक्शन विथ एनवायरमेंट, एंड इसको रेप्लीकेट होना बहुत जरूरी है जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए गुठली ऑल अक्रॉस इंडिया में पाई जाती है, और हमें ऑल अक्रॉस इंडिया में पेड़ चाहिए, नॉट इन दी पॉकेट्स। मुझे किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आपका ऑडियंस के थ्रू ही मैं कहूँ कि मेरे को अगर कोई पूछे, जैसे कि मैं इधर उधर भी कहते आया हूँ, मैं भारत सरकार को, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये कहना चाहूंगा कि अक्रॉस इंडियन बोर्ड्स क्लास 10 में हम अगर 10 पेड़ के लिए क्लास 10 में 3 से 5 नंबर दे दें बच्चों को, तो माँ बाप भी मिलके ये पेड़ बढ़ाएंगे। कैसे होगा, कैसे ऑडिट होगा, क्या होगा, मैं बता दूंगा। नहीं मतलब अगर किसी ने मजाक में बोला तो तुम संभालोगे क्या मिनिस्ट्री, अगर ये सेवा मुझे करनी पड़ी तो ये सेवा करने को भी मैं तैयार हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री में या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में। तो वहां से क्या है कि पूरे ऑल इंडिया, अक्रॉस इंडिया में ये वेजिटेशन, ये फॉरेस्ट पूरा क्रिएट होगा, जिससे कि हमारा, हम कहते हैं ना, इंडिया पोल्यूटेड है, इंडिया हीटेड है, नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। दिल्ली का पोल्यूशन हटाने से इंडिया की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है, या चेन्नई की प्रॉब्लम इंडिया है, तो इंडिया को एज अ होल देखना पड़ेगा। सो ये आपने जैसे कहा, ये रेप्लिकेबल पूरा है अपने अपने लेवल पे, बंदा माइक्रो लेवल पे 4 गुठलियां 5 गुठलियां, उससे ज्यादा वो आगे बढ़ा दे, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा मुझे दे दे, एंड स्कूल्स की गुठलियां जो है 20,000 25,000 50,000 लाख वो मुझे भेज दे। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट।
0: मैं देखो, मैंने बचपन में ना एक कहावत सुनी थी, आम के आम गुठलियों के दाम, लेकिन आज मुझे उन गुठलियों के दाम नजर आ रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। तो ये गुठलियां वाकई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं, लेकिन इस बदलाव के लिए पहला कदम आप सबको उठाना पड़ेगा हमारे साथ। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं गुटली मैन ऑफ इंडिया यानी जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ। जसमीत जी, अब एक बड़ा दिल को लगता हुआ सवाल, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, सुन तो लिया, समझ तो लिया, प्रोसेस भी जान लिया, लेकिन बहुत आसान तो नहीं है। मैं समझ पाती हूँ जब हम कोई काम करते हैं वो बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे रियल टाइम चैलेंजेस बताइए कि क्या आते हैं।
1: रियल टाइम चैलेंजेस देखिए कि सबसे पहले तो जो आया था मेरे साथ के भी मेरे पे लोगों ने बिलीव ही नहीं किया था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीधा ही मुझे ब्लैंक पॉइंट ब्लैंक मेरे दोस्त यार मुझे मतलब कहीं पे अरे गुटली होगा, गुटली पता नहीं, चलो चलो चलो कमरे छोड़ के चले जाते, बात ही नहीं सुनते गुटलियां देने में, क्योंकि गुटलियां उनको हैंड ओवर करनी है। आम खा लिया गुटलियां तो फेंकने की आदत है, उस आदत से निकलना है, मुझे गुटलियां देनी है। तो ये आदत, ये पूरा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में ये दिक्कत आ रही थी। करते करते कोविड तक तो मेरे हाथ में लोग गुटली देते थे, समझ लीजिए 20-25-50, वो भी दया करके कि अच्छा तू मांग रहा है रख ले। अब टेक्निकली मैं आपको बताऊं, मैंगो गुटली के एक जेनेटिक इशू है, आप अगर 1000 गुटली मुझे देंगे तो 10-15% ही गुटली अंकुरित होगी। दिस इज वन जेनेटिक इशू ऑफ मैंगो। वन सेकेंड, हमें आदत पड़ गई है अप्रैल के महीने में मैंगो खाने की। उस टाइम अभी भी आप देखिएगा कई पेड़ों में जो मैंगो है वो ग्रीन है, लेकिन मार्केट में आपको एकदम येलो ब्यूटीफुल मैंगो मिलेगा। ये सारा कार्बाइड का आर्टिफिशियल रैपन मैंगो है। ये आर्टिफिशियल मैंगो क्या कर रहा है, पल्प को आपके खाने लायक बना दे रहा है, लेकिन जो गुटली है वो जर्मिनेशन लायक तो बनी नहीं अभी तक, अभी भी वो कच्ची है, तो कच्ची गुटली जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगी। तो लोगों को इतना टेक्निकली तो मालूम नहीं, लोग बस बाजार में जाते हैं आम खा लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू कि प्लीज कार्बाइड का मैंगो मत खाइए। कार्बाइड को हटाने के लिए कितना धोना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, और लेकिन हो क्या क्या सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको कैंसर के कोई रोग हो सकते हैं, आपको पेट के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो प्लीज अवॉइड ईटिंग मैंगो आउट ऑफ द साइकिल। आप थोड़ा सा वक्त देखें, जैसे अब जो टाइम आ रहा है ये टाइम मैंगो के पकने का टाइम है, तो यहाँ से मैंगो जो मिलेगा वो आर्टिफिशियल राइपन नहीं है। लेकिन अभी तक जो आप खा चुके हैं आपके पेट में, और आप कई बंदा बोलता भी होगा भाई मैंने मैंगो खाया मेरा पेट क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि वो कार्बाइड जो है उसके पेट को खराब कर रहा है। अब रह गया कि ये सारा कनेक्ट करना, इतनी गुटली कट्टी कहाँ से करूं, ये बड़ा चैलेंज था। तो स्कूल्स को बोलता है, स्कूल्स ने भी नहीं सुना। करते करते एक दिन अपनी बिटिया को मैंने बोला कि मेरी एक रील बनाओ, एंड रील बस मैंने फ्लोट की तो वो कई बंदे उसमें से जुड़ने लगे, फोन आना चालू हुआ। वहां से करते करते करते थोड़ा सा सूथिंग आउट हुआ है। अभी तक मुझे 21 लाख गुटलियां मिली हैं। मेरा टारगेट समझ लीजिए 200 करोड़ गुटलियां का है, टारगेट मेरा 20 करोड़ पेड़ लगाने का है। अभी तक मैंने 8 लाख पेड़ जो है वितरण किए हैं अंडर ट्री का लंगर। मैं ट्री के लंगर लगाता हूं जिसमें कि मैं उसमें वितरण कर देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इच्छा है कि मैं 20 करोड़ पेड़ लगाऊं, क्योंकि भारत को चाहिए 2000 करोड़ पेड़, लेकिन 2000 करोड़ का टारगेट लेना इज इम्प्रैक्टिकल, बिना मतलब की बेवकूफ वाली बातें करनी नहीं है। जो प्रैक्टिकल है उसको पहले के एक स्टेप को लेके करें, एंड अगर ये रेप्लिकेट हो गया, मेरी बात किसी ने सही बंदे ने सुन ली, या मेरे को एक कोई सही पावरफुल पोजिशन मिल गई, तो उसको आराम से मैं उसको रेप्लिकेट कर दूंगा विद इन 5 ईयर्स। और स्कूल में अगर ये चालू हो गया तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। सो दिक्कतें नाम की थी, दिक्कतें जैसे मेरी वाइफ को नहीं समझ में आ रहा था शुरू में कि भाई क्या आम के घर घर में गुटली गुटली पूरी बदबू फैल गई, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, दोस्तों यारों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन विजन मेरे अंदर क्लियर थी। तो उससे जिन्होंने 2-4 बंदे जो साथ चले थे स्टार्टिंग में वो छोड़ गए, बोलते नहीं नहीं ये मतलब पता नहीं कचरा उठाता है, कहाँ कहाँ कचरा क्या करेगा। तो सारा कुछ मिला के दोज वेर हिकअप्स, लेकिन मैं उन हिकअप्स को ना ज्यादा अब दिमाग लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इसके साथ मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं दिमाग लगाना चाहता। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, अमृतसर से वो कैलकटा आई, मेरे फादर 30 थे, शी वॉज जस्ट क्लास 8 पास, सिर्फ गुरमुखी जानती थी। कैलकटा आके उन्होंने हिंदी बंगला इंग्लिश सीखी, क्लास 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया, एक स्कूल की स्थापना की। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग कोर्स किया कि अगर वॉर एस्केलेट हो गई तो आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स। सो मैं उस माँ का बेटा हूँ, एंड देन शी डाइड ऑफ अ मोटर न्यूरॉन डिजीज बाय द एज ऑफ 54। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने क्या ना कोई लिमिट देखी नहीं, जब मुझे लगता था कि और नहीं पढ़ेगी और पढ़ूंगी, जब मुझे लगता था कि और कुछ नहीं करूंगी मैं स्कूल की स्थापना करूंगी। तो एक लिमिटलेस सा पन मेरे अंदर है। तो ये सारी जो चैलेंजेस है, ठीक है, थी, कोई भी मिशन में अगर चैलेंज नहीं रहेगा, पागलपंथी नहीं रहेगी तो किस बात का मिशन है वो? अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है, हिकअप्स ही नहीं है, तो वो मिशन मतलब कैसे बनेगा? वो तो फिर कोई बिजनेस है, वो तो कोई धंधा है, उसमें भी बहुत सारे हिकअप्स आते हैं।
0: भाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से जसमीत जी आपने समझाया है कि चैलेंजेस नहीं होंगे तो उन हर्डल्स को क्रॉस करने का जो कहना चाहिए सेटिस्फेक्शन है वो भी नहीं आएगा। एंड आज जसमीत जी एक सफर लेकर चल रहे हैं जहां ये कह रहे हैं भाई मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है 2,000 करोड़ पेड़ों का, लेकिन भाई अगर रियल टाइम की हम बात करें तो हम इसे सच कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी सी है, आप और मैं, हम सब एक साथ आ जाएं और हम अपना अपना शेयर ले लें तो शायद हम इस पूरी सच्चाई को एक रियल सच बना सकते हैं। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो बस करिएगा सिर्फ इस गाने का इंतजार। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं जसमीत सिंह अरोड़ा जी के साथ, जो कि गुटली मैन ऑफ इंडिया है। जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे बताइए कि कोई आपके साथ कैसे जुड़ सकता है, क्या क्या तरीके हैं जो आपके साथ, चाहे कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपके इस इनिशिएटिव को रेप्लिकेट करना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है?
1: देखिए, मैं सबको यही कहूंगा कि खुले हाथ से आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो आप मेरी पोस्ट को आगे बढ़ाइए जितनी दूर तक। आप अगर व्हाट्सएप में मेरा मैसेज देख रहे हैं, जितनी दूर तक भेज दीजिए। जैसे आप मीडिया जगत में है, तो मैं सारे मीडिया जगत को कहूंगा कि हर मीडिया जगत अगर हर लैंग्वेज में इसको मतलब रिले करे, आगे एयर करे, तो बहुत जल्दी ये बात आएगी। एंड लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो सबसे पहले वो गुटलियां मुझे दे सकते हैं। उनको और भी आगे बढ़ना है तो मैंने जैसे बताया, उनके पास अगर कोई लैंड है, कोई अगर उनके पास सोशल बैंड ऑफ माइंड है, तो मैं चाहूंगा कि उसको एक नर्सरी बनाना, नर्सरी कन्वर्ट करके मैं उस इलाके को कवर करना चाहूंगा। उसके बाद अगर कोई स्कूल ओनर सुन रहा है अगर, तो मैं चाहूंगा स्कूल ओनर को कि मुझे अपने स्कूल में मुझे बुलाइए, मैं इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूं और गुटली मिशन के साथ बनिए। अगर मिलिट्री है, एनसीसी कैडेट्स हैं, गवर्नमेंटल डिप्लोमेट्स हैं, तो अपनी अपनी पावर्स के साथ हर बंदा जुड़ सकता है। मैं तो किसी से कह रहा हूं कि जो कचरा आप फेंक दे रहे हो वो कचरा मुझे दे दो, बस साफ सुथरा करके गुटली को। अगर ब्लैक हो गई तो मुझे मत भेजिए सफेद करके, क्योंकि ब्लैक गुटली फंगस लग गई, सफेद गुटली जो है वो जर्मिनेट होगी। तो मेरे साथ जुड़ना इज अ वेरी इजी टास्क। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सफर नहीं है। मेरा नंबर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 9831459390। मुझे कॉल करिए एंड बस हम जुड़ जाए, वन एक सेकंड की तो बात है।
0: वाकई जसमीत जी, आपके साथ अब हमारे सभी लिसनर

0: प्रेशर जिसने जो देना देगा, इन्वायरमेंट भी देगा, इन्वायरमेंट के अपने प्रेशर्स उस पे आएंगे। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि आज अगर हम स्पेकुलेटिव क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इन्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा दुविधा देने वाला है। वन सेकेंड, एलपीजी के साथ ही वापस बोलता हूँ कि एलपीजी सिलेंडर पे हमने जो करना था कर लिया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जो आपके लिसनर्स हैं, मैं ये बात उनको पूछना चाहूंगा कि अगर आपके हाथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी का दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए कि एलपीजी से तो 1000 आदमी का खाना बन सकता है, खिचड़ी बन जाएगी, एलपीजी का काम हो गया। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है एक हाथ में है माँ बाबू जी, आपके बच्चे, आपका स्पाउस, उस टाइम में वो सेल्फिश पना सॉल्व किसके साथ करेंगे? पेड़ ही तो ऑक्सीजन देता है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? जिसके पास इसका आंसर हो मुझे जरूर कॉल करे 9831459390 पे कि हाँ इस सेल्फिश पने को ना मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। बस ये मेरा एक लास्ट लोगों को कहना है, नहीं तो खाइए गुठलियां मुझे भेज दीजिए।
1: भाई कितना आसान है, आई मीन एज सिंपल एज दैट, आम खाइए, गुटलियां गुटली मैन को भेज दीजिए और वो आपकी गुटलियों को पेड़ बना के वापस आप ही के देश में, आप ही के पर्यावरण में भेज रहे हैं, फिर और आम खाइए। सो जरूरी ये है कि आप इस इनिशिएटिव से इसलिए जुड़े क्योंकि इससे आपका डायरेक्टली फायदा है। तहे दिल से धन्यवाद जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा कि अब हम आपके मिशन का एक हिस्सा है। जरूर जरूर जरूर।
0: देखिए ये पूरा पर्यावरण का काम मैं कर रहा हूँ किसानों के खेतों पे, किसानों के साथ। तो आज अगर किसी को लग रहा है कि किसान के बारे में मुझे क्यों सोचना है, मैं तो सिटी में बैठा हूँ, तो मैं बता दूँ कि इंडिया एज अ कृषि प्रधान देश, 45 करोड़ जनता जो है वो रूरल इकोनॉमी पे बिलोंग करती है, एंड हमारे शहर में जो वेजिटेबल और फ्रूट आप खा रहे हैं, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ विलेज नॉट फ्रॉम अ फैक्ट्री। तो दिमाग में ये बंदे बात रखें कि किसान का कितना बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में।
1: वाकई दोस्तों, अगर हम आज अपनी प्लेट में खाना देख रहे हैं और जिन ग्रीन वेजिटेबल्स को आप हेल्दी कहते हैं ना अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो वो आ कहाँ से रहा है? तो अगर इस खाने को आप खाना चाहते हैं, यू वांट टू लिव हैप्पीली, तो उसके लिए आपको मोबाइल फोन्स की नहीं लेकिन किसानों की जरूरत होगी। तो ये अहमियत हमें समझनी बहुत जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच जसमीत जी हमारे इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू
1: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, कहीं नहीं जाने वाले हैं आप, जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रेस्ट 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइफ।

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आती थी और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ, और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: રેડિયો 107.8 એફએમ પર ઢેર સારી મસ્તી, ખૂબ સારા ફન, ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की, उनकी कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपने काम से, अपनी सोच से और अपनी जिंदगी के जरिए दुनिया पर एक अहम छाप छोड़ी है। दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, आज भी लेकर आ गई मैं आपके लिए कोई ऐसी कहानी, एक ऐसी जर्नी जो आपको इंस्पायर करेगी, साथ ही आपको मोटिवेट करेगी कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस होना हर कोई चाहता है। दोस्तों आज की कहानी किसी बिजनेस लीडर या फिर किसी साइंटिस्ट या फिर किसी पॉलिटिशियन की नहीं है। आज जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने हमें सिखाया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई काम नहीं होता। सोचिए अगर आपके सामने कोई बीमार हो, भूखा हो या फिर बिल्कुल अकेला हो तो आप क्या करेंगे? हो सकता है हम में से कई लोग उनकी मदद करना चाहें लेकिन अक्सर हम अपनी बिजी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं उन्हें देखकर भी। लेकिन एक महिला ऐसी थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही उन लोगों के नाम कर दी जिनके पास कोई नहीं था। जी हाँ, और वो थी मदर टेरेसा। जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा का नाम सुनते ही सेवा, दया और करुणा की तस्वीर आपके सामने आ जाती होगी। उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों, बीमारों, अनाथों और लाचार लोगों की सेवा में समर्पित कर दी। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोपजी नाम के शहर में हुआ था जो उस समय ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। उनका बचपन का नाम एंजिस गोनेक्शा था। बचपन से ही उनके अंदर दूसरों की मदद करने की बहुत भावना होती थी। उनकी माँ अक्सर जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी और यही संस्कार मदर टेरेसा को भी मिले। दोस्तों एक बात बहुत खास है इसमें, जो कि है कि हर महान व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा मकसद होता है जो आम लोगों से उनको अलग बना देता है, और मदर टेरेसा के लिए भी वो मकसद था इंसानियत की सेवा करना। उन्होंने कभी सफलता को पैशन, शोहरत या फिर किसी पद से नहीं जोड़ा। उनका मानना था कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की जिंदगी में भी खुशी ला सकते हैं तो वही असली सफलता होती है। आज दुनिया भर में उन्हें प्रेम, दया और निष्काम सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके काम ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों मदर टेरेसा की ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी जितनी हमें सुनने में लगती है। एक छोटे से शहर की एक लड़की का दुनिया की सबसे प्रेरणादायक महिलाओं में शामिल होना, इसके पीछे बहुत ही संघर्ष था, त्याग था और एक दृढ़ संकल्प था। तो दोस्तों ऐसा बनने के लिए आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं अपनी लाइफ को, अपनी सक्सेस को दूसरों के लिए समर्पित कर दूंगा या फिर कर दूंगी। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित कर दी। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मदर टेरेसा को दुनिया दया, करुणा और निष्काम सेवा के प्रतीक के रूप में याद करती है। लेकिन हर महान कहानी की तरह उनकी कहानी भी बचपन से ही शुरू होती है। दोस्तों, मदर टेरेसा का बचपन का नाम एंजिस गोनेक्सा था। उनका जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता एक व्यापारी थे और उनकी माँ बहुत दयालु और धार्मिक स्वभाव की थी। बचपन में एंजिस ने अपने माँ को अक्सर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए देखा। वही बात है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। उनकी माँ का एक सिद्धांत था, अगर किसी के पास खाना नहीं है तो उसे अपने घर के खाने में हिस्सा दो। ये छोटी छोटी सी बातें ही आगे चलकर एंजिस के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब एंजिस सिर्फ 8 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। ये उनकी जिंदगी का एक मुश्किल दौर था, लेकिन उनकी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। दोस्तों, कई बार जिंदगी की कठिनाइयां ही हमें अंदर से मजबूत बना देती है कुछ करने के लिए। एंजिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनका झुकाव धर्म और सेवा की तरफ बढ़ता गया। वो मिशनरीज की कहानियां सुना करती थी जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की मदद करते थे। इन कहानियों ने उनके दिल पर गहरा असर छोड़ा। सिर्फ 18 साल की उम्र में एंजिस ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार और अपनी सुविधाजनक जिंदगी को छोड़कर नन बनने का मन बना लिया। ये फैसला आसान तो नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि अपने परिवार से दूर रहना और पूरी जिंदगी सेवा के लिए समर्पित कर देना। लेकिन जब किसी इंसान के पास एक बड़ा मकसद होता है तो वो मुश्किल फैसले लेने से नहीं डरता। इसी फैसले के बाद एंजिस आयरलैंड गई और फिर उन्हें भारत भेजा गया। उन्हें शायद उस समय ये नहीं पता था कि आने वाले सालों में भारत ही उनकी कर्म भूमि बनेगा और यहीं से उनकी पहचान पूरी दुनिया में बनेगी। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आगे जाने मदर टेरेसा के बारे में, भारत आने की बाद की कहानी, उनके कामों को, कि उन्होंने कैसे उन्होंने लोगों की मदद की। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा की प्रेरणादायक जिंदगी के सफर को आज हम करीब से जान रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे बचपन से ही एंजिस के अंदर सेवा और दया की भावना थी और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी को इंसानियत की सेवा के लिए समर्पित करने का फैसला लिया था। दोस्तों, अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एंजिस भारत आई। यही आकर उन्होंने टेरेसा नाम अपनाया और धीरे धीरे मदर टेरेसा के नाम से पहचानी जाने लगी। उनकी पहली पोस्टिंग कोलकाता में हुई थी। उस समय कोलकाता बहुत बड़ा और व्यस्त शहर था, लेकिन यहाँ गरीबी और संघर्ष भी बहुत ज्यादा था। मदर टेरेसा ने कोलकाता से एसटी मैरी स्कूल में टीचर के रूप में काम करना शुरू किया। वो बच्चों को पढ़ाती थी और अपने काम को पूरी लगन के साथ करती थी। दोस्तों, जिंदगी बाहर से देखने पर अक्सर एक जैसी लग सकती है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी घटना हमारी पूरी सोच को बदल देती है। मदर टेरेसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्कूल में पढ़ाते हुए वो रोज स्कूल के आसपास की बस्तियों और सड़कों पर रहने वाले लोगों को देखती थी। उन्होंने देखा कि कई लोग भूख, बीमारी और गरीबी से जूझ रहे थे। बहुत से लोगों के पास ना इलाज था, ना सहारा था, ना ही कोई अपना। ये सब देखकर उनका दिल बहुत दुखी होता था। फिर साल आया 1946। उसमें उन्होंने उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया कि वो कॉल विद इन अ कॉल कहती थी, दार्जिलिंग की ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें स्कूल की दीवारों से बाहर निकलकर सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच काम करना चाहिए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब उनके सामने एक मुश्किल फैसला था। एक तरफ एक सुरक्षित और स्थिर जीवन था और दूसरी तरफ था मुश्किलों से भरा हुआ सफर। वो था सेवा का रास्ता, लेकिन मदर टेरेसा ने उस दूसरे रास्ते को चुना, यानी कि उस मुश्किल रास्ते को। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की मदद में और उनके नाम कर देंगी। दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती थी उन्हें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी का असली मकसद हमें तब मिलता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। अगले सेगमेंट में बात करेंगे उनके बारे में और भी बहुत सारी, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा जहां पर हम बात करते हैं मोटिवेशनल स्टोरीज की, मोटिवेशनल जर्नी की, जो हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं उनका नाम है मदर टेरेसा। जो यहाँ मदर टेरेसा की जिंदगी के उस अध्याय पर है हम, जहाँ पर उन्होंने अपना सपना एक मिशन में बदलना शुरू कर दिया। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे कोलकाता की सड़कों पर गरीब और दुख को देखकर मदर टेरेसा ने अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़ने और सबसे जरूरतमंद लोगों के बीच में काम करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, किसी बड़े सपने को सच करना कभी आसान नहीं होता। सोचिए, आपके पास ना ज्यादा पैसे हो, ना बड़े रिसोर्सेज और ना ही कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक मकसद हो और उस पर पूरा विश्वास हो। मदर टेरेसा की शुरुआत कुछ ऐसी ही थी। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने नर्सिंग की बेसिक ट्रेनिंग ली ताकि वो बीमार लोगों की बेहतर तरह से सेवा कर सकें। इसके बाद उन्होंने कोलकाता की बस्तियों में जाकर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उनके पास बहुत कम साधन थे, कई बार उन्हें लोगों से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन को छोड़ा नहीं। दोस्तों, मदर टेरेसा का मानना था कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, चाहे आपकी मदद कितनी भी छोटी क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। साल था 1950 जिसमें उन्होंने मिशनरीज की चैरिटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था उन लोगों की सेवा करना जिनके पास कोई नहीं था, जो बीमार थे, अनाथ थे या फिर वृद्ध और सड़कों पर जीने वाले लोग थे। धीरे धीरे लोग उनके मिशन से जुड़ने लगे, वॉलंटियर और सिस्टर्स उनके साथ काम करने लगी। जो काम एक व्यक्ति ने शुरू किया था, अब वो बड़ी सेवा आंदोलन में बदलने लगा था। मदर टेरेसा अक्सर कोलकाता की सड़कों पर जाकर उन लोगों को उठाती थी जो बीमारी या फिर लाचारी की वजह से अकेले छोड़ दिए गए थे। वो उन्हें इलाज, खाना और सबसे जरूरी प्यार और सम्मान देने की कोशिश करती थी। दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वो सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं करती थी, बल्कि उन्हें ये एहसास कराती थी उनकी जिंदगी की भी कीमत है। आज की दुनिया में हम सफलता को अक्सर पैसा या फिर पोजीशन या फिर पॉपुलैरिटी से जोड़ देते हैं, लेकिन मदर टेरेसा ने दिखाया कि असली सफलता किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बनने में होती है। लेकिन हर मिशन के साथ चुनौतियां भी आती है। मदर टेरेसा को भी मुश्किलों, आलोचनाओं और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। क्या थी वो परिस्थितियां, जानेंगे इसके बारे में भी, पर अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की जिंदगी की, उनकी जिंदगी के उस पहलू की, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर कम बात होती है। दोस्तों, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की, अपनी पूरी जिंदगी गरीबों, बीमारों और लाचार लोगों की सेवा में लगा दी। लेकिन दोस्तों, हर महान काम के साथ कुछ मुश्किलें और चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। जी हाँ, मदर टेरेसा का सफर में भी ऐसा ही हुआ। शुरुआती दिनों में तो उनके पास पैसे बहुत कम थे, कई बार खाने, दवाइयों और रहने की व्यवस्था तक के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि रिसोर्सेस कम है तो काम रोक दिया जाएगा। उनका मानना था कि अगर नीयत साफ हो और मकसद बड़ा हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। दोस्तों, एक और बात जो मदर टेरेसा को अलग बनाती है और वो है उनका धैर्य। जब आप कुछ अलग करते हैं तो लोग आपकी तारीफ भी करते हैं और कुछ होते हैं जो आपकी आलोचना भी करते हैं। मदर टेरेसा को भी कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठाते थे, कुछ उनकी सोच से सहमत नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान कभी विवादों पर नहीं लगाया। वो हमेशा कहती थी कि मेरा काम लोगों की सेवा करना है और मैं वही करती रहूंगी। सोची दोस्तों, आज हम में से कितने लोग सिर्फ दूसरों की बातों से अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, कभी किसी की नेगेटिव कमेंट से, तो कभी किसी के ओपिनियन से, तो कभी किसी की क्रिटिसिज्म हमें अपने लक्ष्य से भटका देती है। लेकिन मदर टेरेसा हमें सिखाती है कि अगर आपको अपने काम की सच्चाई पर विश्वास है तो हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है अपने काम को जारी रखना और एक छुपी रखना। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका मिशन और आगे बढ़ता गया। दुनिया भर से लोग उनके काम को देखने लगे और उनकी संस्था नए देशों तक पहुंचने लगी और हजारों लोग उनके साथ जुड़े। दोस्तों, मदर टेरेसा की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपका मकसद दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना है तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा की जिंदगी के उस पड़ाव पर है जहाँ उनके निष्काम सेवा को पूरी दुनिया ने सलाम किया। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मदर टेरेसा ने मुश्किलों, कमियां और आलोचनाओं के बावजूद अपने काम को कभी नहीं रोका। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक बात पर था, इंसानियत की सेवा करना। और जब किसी के काम के पीछे सच्चाई, लगन और समर्पण हो तो दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। दोस्तों, धीरे धीरे मदर टेरेसा का काम भारत की सीमाओं से बाहर भी पहचाना जाने लगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी कई देशों तक पहुंच गई और हजारों वॉलंटियर्स उनके मिशन का हिस्सा बनने लगे। उनकी सेवा और योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी मदर टेरेसा की सोच अलग थी। जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये सम्मान उन गरीबों और जरूरतमंद लोगों के नाम है जिनकी सेवा करने का उन्हें मौका मिला। इसके अलावा भारत सरकार ने भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। लेकिन दोस्तों, मदर टेरेसा की असली पहचान अवार्ड नहीं थे, उनकी असली पहचान थी उनकी सोच। और यहीं से हमें उनके सक्सेस मंत्रा भी मिलते हैं, जो कि सबसे पहले सक्सेस मंत्रा है, छोटे काम भी बड़े प्यार से करिए। जी हाँ, कोई भी छोटा काम हो उसे बहुत ही लगन से करिए, बहुत ही प्यार से करिए। दूसरा है इंसानियत सबसे पहले। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या फिर पहचान नहीं देखी, उनके लिए हर इंसान बराबर था। तीसरा है निष्काम सेवा ही असली सफलता है। और चौथा मंत्र, विनम्रता आपको महान बना देती है। इतनी प्रसिद्धि और सम्मान मिलने के बाद भी मदर टेरेसा हमेशा सादगी और नम्रता के साथ जीती रही। दोस्तों, उनकी जिंदगी हमें बताती है कि महान बनने के लिए महान काम करना जरूरी नहीं होता है, बल्कि हर काम को महान भावना के साथ करना जरूरी होता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की प्रेरणादायक जिंदगी के सफर की। और अब हम आ पहुंचे हैं इस अंतिम पड़ाव में। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे एक साधारण लड़की एंजेल मदर टेरेसा बनी, कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा, भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया और मिशनरी ऑफ चैरिटीज की स्थापना की और अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों की सेवा में लगा दी जिनके पास कोई सहारा नहीं था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आज के युवा मदर टेरेसा की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली सीख है, हर इंसान के प्रति संवेदनशील बनाइए। आज हम सब अपनी पढ़ाई, करियर और प्रोफेशनल गोल्स में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार दूसरों की परेशानियों को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। मदर टेरेसा हमें सिखाती है कि एक अच्छा इंसान बनना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आप एक सफल इंसान बनते हो। और दूसरी सीख है, छोटी शुरुआत से घबराइए मत। जब मदर टेरेसा ने अपने मिशन को शुरू किया था तब उनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहाँ पे वो खड़ी थी और धीरे धीरे उनका काम पूरी दुनिया तक पहुँच गया। और तीसरी सीख है, अपने काम को दिल से कीजिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर किसी फील्ड का काम में क्यों ना हो, अगर आप अपने काम में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं तो उसका प्रभाव जरूर दिखता है। और सबसे बड़ी सीख, असली सफलता सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं होती है बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में भी होती है। मदर टेरेसा ने कभी दान, पद या फिर किसी प्रसिद्धि के पीछे भाग कर काम नहीं किया, फिर भी दुनिया ने उन्हें इतना सम्मान दिया क्योंकि जब आपका मकसद सच्चा होता है तो पहचान और सम्मान खुद ब खुद आपके पास पहुंच जाती है। दोस्तों, मदर टेरेसा की विरासत आज भी दुनिया भर में जिंदा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी ही देशों में सेवा का काम कर रही है और लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी सोच से प्रेरित होकर दूसरों की मदद कर रहे हैं। जाते जाते मदर टेरेसा की एक बहुत खूबसूरत बात याद आ रही है, तो वो ये है कि हम सब बड़े काम नहीं कर सकते लेकिन हम छोटे काम बहुत बड़े प्यार के साथ कर सकते हैं। शायद इसी एक सोच में उनकी पूरी जिंदगी का सार छुपा हुआ है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरती स्नेहा और प्रोग्राम था सक्सेस मंत्रा। फिर से मुलाकात होगी एक और महान व्यक्ति की कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए और अपनी जिंदगी में इंसानियत को हमेशा जिंदा रखिए। और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, feel like

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन,
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: हेलो पीपल, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ आपके लिए खास कार्यक्रम रेडियो रीबूट, जहाँ पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो आजकल के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त और आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम रेडियो रीबूट। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मुद्दे की, एक ऐसी ही चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका असर हर घर तक पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की और उनके इंपैक्ट की जो हमारी जनरेशन पर पड़ रहा है। और आज का जमाना रील्स का, लाइक्स का और फॉलोअर्स का है। हर दूसरा बच्चा या फिर हर दूसरा जेन जी, क्या कहे तो हर दूसरी जनरेशन किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करती है, चाहे वो गेमिंग हो, फैशन हो, फिटनेस हो या फिर डेली इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो। कभी तो लगता है कि जैसे सोशल मीडिया ही उनकी दुनिया बन गई है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दुनिया उन्हें इंस्पायर कर रही है या फिर कंफ्यूज, क्या इन्फ्लुएंसर कल्चर उन्हें क्रिएटिविटी सिखा रहा है या बस एक कॉम्पिटिशन के रेस में डाल रहा है, क्या लोगों की इंडिविजुअलिटी कहीं सच में सोशल मीडिया की वैलिडेशन के बीच में तो नहीं खोती जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या पेरेंट्स को चिंता करनी चाहिए या समझदारी से बैलेंस बनाना चाहिए। इसी टॉपिक पर बस आज हम बात करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लुएंसर कल्चर ने हमारी नई जनरेशन के सोचने, बोलने और जीने के तरीके को किस तरीके से बदल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज इस थॉट प्रोवोकिंग और इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि रेडियो रीबूट में हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम लोगों की सोच बदलते हैं और लोगों की POV भी जानते हैं। तो चलिए आज इसी बात पर हम आ गए हैं मानव रचना के स्टूडेंट से कुछ बातें करने, बच्चों के कुछ थॉट्स के बारे में जानेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कहे तो उनके इंपैक्ट से क्या समझ रहे हैं और क्या जानते हैं। सो सबसे पहले मेरे साथ है मुस्कान, आइए जानते हैं मुस्कान से कि वो उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या राय है। मुस्कान, स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
3: Hi, so this is Muskan from BA BEd course, which is the School of Education and Humanities from the third year, fifth sem. So I'm really glad to be with the Radio Manav Rachna, and yeah, I'll definitely tell about my views on this.
2: So Muskan, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, आपको क्या लगता है कि असलियत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कौन? क्या हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर जो कि थोड़ा सा फेमस होने के बाद कहता है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, क्या वो सच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है?
3: So in today's generation, social media influencers has a huge impact on everyone's life. ये वो एक वैसे इंडिविजुअल है जिन्होंने बहुत सारी पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट गेन किया है थ्रू ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे YouTube, TikTok और Instagram, जो कि हर एक यूथ देखता है। और फिर अभी के जनरेशन ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया है सर्टेन जैसे फिटनेस ट्रेंड्स पे या फिटनेस टिप्स पे, बहुत लोग रिलाई करते हैं फॉर सर्टेन फैशन टिप्स। इनफैक्ट कई लाइक फीमेल यूथ फोकस करती है ऐसे सर्टेन मेकअप टिप्स एंड मैनी मोर। और इफ़ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव साइड, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि जस्ट इट मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। आप अपने घर पे रहकर सिंपली स्क्रॉल कर और बहुत कन्वीनियंसी के साथ आपको बहुत सारे फिटनेस टिप्स मिल जाते हैं, आपको अपने एपेटाइट के बारे में पता लगता है कि व्हाट ऑल यू कैन ऐड, सर्टेन फैशन ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है। बट एज वी नो कि एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव साइड, तो टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, एवरी वन टूडे वॉन्ट्स टू बी अ इन्फ्लुएंसर, बट उसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स फॉलोअर्स, लाइक्स, अटेंशन, जो कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ऐसा कंपेरिजन बेस कर देती है, बिकॉज पीपल लूज देयर सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में वो भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं कि दे वॉन्ट टू गेन फॉलोअर्स, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत लाइक्स चाहिए। तो यार डेफिनेटली एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड।
2: मुस्कान, मुझे ऐसा लगता है आपके आंसर ने हमारे ऑडियंस को इतना तो समझा दिया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असलियत में होते क्या हैं। मैं आपसे ये एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि असलियत में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहचान करे कैसे?
3: इफ यू टॉक अबाउट रियलिटी तो इट इज डिफिकल्ट टू नो, बट हाँ हम सर्टेन एस्पेक्ट्स पे रिलाई कर सकते हैं. क्यों नहीं पॉजिटिव साइड पे फोकस करना, बिकॉज अभी के जनरेशन में एवरीथिंग हैज अ फ्यूचर, एवरीथिंग वी कैन रिलाई ऑन इट कि हम अपना एक फ्यूचर देख सकते हैं बींग अ एंटरप्रेन्योर और बींग अ इन्फ्लुएंसर. तो हाँ, टू सी अ गुड साइड सोशल मीडिया, आप अगर पॉजिटिव वे में ले जाए तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोग को अच्छे लेसन्स दे सकते हैं जो कि उसे एक पॉजिटिव साइड में ले जाएगी, ना कि हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पर फोकस कर पाएंगे.
4: बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुस्कान.
3: थैंक यू सो मच.
4: अब हमारे साथ जुड़ गई है राशि. राशि से जानते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में. सो राशि, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर जगह है, और शायद उनके इन्फ्लुएंस से हम भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, पर आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो सच में रियल न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर फेक न्यूज़ के पीछे कुछ ऐसे प्रमोशंस करते हैं जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर हमारे असर पड़ता है?
3: सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर का मेन रोल क्या है, हमें मोटिवेट करना, एक गुड वे में लाइफस्टाइल को शो करना. सो लाइक जितना हम लोगों ने देखा है, हम लोग रील्स देखते हैं एट्सेट्रा एंड ऑल, तो हमने ये देखा है कि वो सिर्फ एक हैप्पी एंड गुड लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ शो करते हैं. सो बेसिकली विच इन गुड लग्जरी लाइफ, ट्रैवलिंग, ईटिंग एट फैंसी प्लेसेज एंड ऑल, बट आई गेस ये एक गुड पार्ट भी है, बिकॉज जो यहाँ बेसिकली अगर हम लोगों को देखते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी करने का ट्राई करते हैं और वो उससे बहुत मोटिवेट भी होते हैं. तो अगर इन्फ्लुएंसर्स ही बहुत ही ऐसा डिमोटिवेटिंग और नेगेटिव वे शो करेंगे तो शायद वो भी एक रॉन्ग वे हो जाएगा. बट आई बिलीव कि इट शुड बी न्यूट्रल. प्लस इफ वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, तो लाइक ब्लाइंडली किसी भी चीज़ पे बिलीव करना इज़ हार्मफुल. सो लाइक पीपल शुड ऑलवेज always not try to copy like what influencers are telling. They should live in reality.
4: तो आपके आंसर में एक चीज़ थी कि कोई भी चीज़ को हम एक बार रीचेक करें. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि राशि, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के टाइम में अगर हम देखें हमारी यूथ, 60% हमारी यूथ ऐसी है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन को और मिसलीडिंग चीज़ों को बिना रीचेक करे उसे शेयर कर देती है, अपनी स्टोरीज पर लगा देती है, आसपास में फ्रेंडों के पास शेयर कर रही है, तो क्या ये सही है? आप अपना क्या POV देना चाहेंगी उन लिसनर्स को जो ऐसा कर रहे हैं?
3: सी बेसिकली दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन भी अगर हम पास ऑन करते हैं, पहले तो बिना कन्फर्म करे हमें कभी भी नहीं पास ऑन करनी चाहिए, क्योंकि वही र्यूमर्स बहुत गलत चीज़ है. एंड ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी रॉन्ग, एंड लाइक वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन गवर्नमेंट वेरीफाइड न्यूज़, जो कि हमारे वेरीफाइड न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में आती है. एंड कभी भी वी शुड नॉट लाइक प्रमोट और लाइक शेयर द फेक न्यूज़. एंड आई नो सम इन्फ्लुएंसर्स डू दिस थिंग टू गेट व्यूज एंड ऑल दो स्टफ, बट दिस इज़ रियली रॉन्ग. एंड लाइक बींग लाइक ऑडियंस, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग भी पहले क्रॉस चेक करें एंड देन उस पर बिलीव करें.
4: बिल्कुल, थैंक यू सो मच राशि.
3: वेलकम.
4: अब हमारे साथ है आयुषी. आयुषी से जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए उनके क्या POV है. सो आयुषी, आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना में.
5: हेलो.
4: सो आयुषी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि हमारा इंडिया top 3 कंट्रीज में से आता है सोशल मीडिया फ्रॉड के केसेस में, तो आप मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जो क्रिप्टो करेंसीज हो गई या फिर कोई ऐसे स्कैम्स जिसको फॉरवर्ड करा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है कि आप इसे खेलिए, उनका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो उससे कैसे बचें?
5: जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इन चीज़ों में स्कैम हो जाता है उनके साथ, क्योंकि उनको लगता है जो वो क्रिएटर्स लाइक इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी देखते हैं, उनको लगता है दे आर लाइक दे ब्लाइंडली फॉलो देम. सो इस वजह से वो अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, अननोन लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ही स्कैम हो जाता है, उनका अकाउंट हैक हो जाता है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड वेरीफाई इट बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक.
4: सो आयुषी, आपने कहा कि ओवर शेयरिंग हो रही है. ओवर शेयरिंग तो हम सब देखते हैं कि हम रील स्क्रॉल करने बैठते हैं, हम पता नहीं 25-30 रील ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, चाहे वो रियल हो या फेक न्यूज़ हो या कोई भी चीज़ हो. तो आप मुझे एक बात बताइए कि ओवर शेयरिंग से कैसे बचें?
5: सो एक्चुअली आजकल जैसे स्टूडेंट्स एंड ऑल ये सब क्या करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट पे सीरियसली दे शेयर दे प्राइवेसी एंड यू नो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, एंड वो कुछ भी शेयर कर देते हैं, लाइक उनकी लोकेशन हो गई जहाँ वो पार्टी कर रहे हैं या कहीं भी वो घूमने जा रहे हैं. इससे क्या होता है, साइबर क्राइम्स की जो रेट है काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो उनका अकाउंट हैक कर लेते हैं, जो दैट डैमेजेस देयर प्राइवेसी. सो वी नीड टू थिंक बिफोर वी पोस्ट एंड ऑल्सो हमें अपनी यू नो सेटिंग्स में जाके एडवांस सेटिंग्स ऑन कर लेनी चाहिए फॉर प्राइवेसी रीजंस एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट सो दैट्स ऑल आई हैव टू से.
4: अच्छा तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी आपके पास ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसे फॉलो रिक्वेस्ट आई हो जो कि फेक आईडी से हो? ऐसा बहुत बार होता है लड़कियों के साथ, हमने देखा है कि कोई ना कोई ऐसे लड़के की इमेज लगा करके और उनके पास फॉलो रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप उन्हें कैसे पहचानते हैं?
5: पहली बात तो एक्चुअली अननोन रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, जो म्यूचुअल्स होते हैं मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ. सो ये चीज़ है.
4: तो आप हमारे ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स क्या एक मैसेज देना चाहेंगे?
5: मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि थिंक बिफोर यू पोस्ट एंड अपनी पर्सनल डिटेल्स डोंट ओवरशेयर इट ऑन सोशल मीडिया.
4: थैंक यू सो मच.
5: थैंक यू.
4: ओके सो कीते मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आज हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमें हर जगह से ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये तो हमने देखा है, अपनी अनरियलिस्टिक दुनिया को दिखाना, लोगों को बताना कि हम कितने खुश हैं या हमेशा एक कहीं तो पॉजिटिव साइड को ही दिखाना लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि हम अगर उन्हें फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली तो क्या वो सही है, क्या उन्हें कॉपी करते करते कहीं हम अपनी रियल दुनिया से पीछे तो नहीं भाग रहे?
3: येस आई फील कि वो अनरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड्स क्रिएट तो करते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ हो गई या समर ट्रिप्स हो गई, उसमें वो अपना लाइक प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए, तो हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, सो हम अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं एंड हम अपना फोकस, जो हमारा जो रियल फोकस होना चाहिए लाइक स्टडीज़ हो गई, जैसे मेरा स्टडीज़ है तो उससे हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, तो आई वुड से कि हाँ हम थोड़ा अपने इंडिविजुअलिटी खो रहे हैं और वो ट्रेंड हम भी चाह रहे हैं कि हम भी ऐसा करें.
4: सो कीर्ति मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज़्यादा वल्गैरिटी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं बिकॉज ऑफ चंद कहीं तो फॉलोअर्स या फिर लाइक्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सच में सही है, कहीं ये आगे चल करके उनके लिए एक मुसीबत ना बन जाए?
3: हाँ मुझे लगता है कि वल्गर कंटेंट जो थोड़ा है लाइक थोड़े ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा सा नहीं होता, वो नेगेटिविटी तो थोड़ा फैला रहा है एंड उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं रादर दैन जो इन्फॉर्मेशन, जो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन यूथ को पहुँचा सकते हैं. सो आई फील कि इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, ये सिर्फ अभी के लिए है, बाद में जाके धीरे धीरे वो नेगेटिविटी ही और फैलाएंगे आएंगे.
4: ओके सो कीते आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारे लिसनर्स को
3: कि If we use social media, like social, everything has its own pros and cons. So social media, अगर आप अच्छे से use करें with a proper time limit, सही है social media. अगर ज़्यादा usage करें या थोड़ा navigate हो जाए आप wrong उसमें चले जाएँ तो इट्स
4: कहीं ना कहीं वो गलत इम्पैक्ट डालेगा हमारे ऊपर.
3: हाँ जी
4: बिल्कुल. थैंक यू सो मच कीर्ति. अब हमारे साथ है पारस. पारस हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की अगर बात कर रहे हैं तो शेयरिंग की भी बात होती है, शेयरिंग जो हम देखते हैं कि आज के टाइम में यूथ हर चीज़ को शेयर कर रहा है, चाहे अपनी फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो या कहीं घूमने गए हो, हर चीज़ को सोशल मीडिया पर शेयर करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ें जो नॉर्मल लग रही है क्या ये सही है सच में?
6: नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आजकल देखो अब क्या होता है, आजकल लोग अपने ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब और सोशल मीडिया व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, लेकिन पहले क्या वो करता था, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को असाइड वो सारे काम करते थे, लेकिन अब क्या होता है बी इट फूड, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, ट्रैवल, तो वो सब सारा का सारा अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया ऐप्स पर शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ वो अलग अलग हो जाती है और वो अपने इमोशन भूल जाते हैं.
4: आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो शायद नेगेटिविटी और ट्रोलिंग से ज़्यादा फेमस होते हैं. ये चीज़ तो हम सबने देखी होगी कि अगर कोई इंसान एक बार ट्रोलिंग के फेज में आ जाए तो उसके बाद उसका नाम हर जगह होता है, तो क्या ये सही है, क्या हम आज के टाइम में ट्रोल होकर के अपने आप को फेमस करके अपने कल के जीवन के लिए क्या ये सही कर रहे हैं?
6: हाँ, जैसे कि मान लो कोई किसी इंसान ने अपनी रिलेशनशिप अपलोड कर रखी है किसी सोशल मीडिया ऐप पे, लेकिन उससे क्या होता है कई इन्फ्लुएंसर उसको अपने सोशल मीडिया ऐप में डाल के उन लाइक्स के लिए और कमेंट्स के लिए वो लोगों की ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन वो ट्रोलिंग क्या होता है कि जिसके ऊपर ट्रोलिंग की जा रही है वो उसको पसंद नहीं आती, उससे उसके जो फैमिली में होता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसको उसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है और जिससे उससे क्या होता है उसकी लाइफ ऐसी हो जाती है.
4: अपना कोई एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को?
6: या मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया और अपनी पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखो। आप करो सोशल मीडिया के अंदर अपनी कंटेंट करो, पोस्ट करो, लेकिन पर्सनल लाइफ को भी अपना असाइड करके थोड़ा कम करो।
4: थैंक यू सो मच पैरल।
6: थैंक यू।
4: अब हमारे साथ है कुछ कुछ से जानते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं कुछ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में सोशल मीडिया को देखकर ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत आसान हो गई है, ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नॉर्मल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको मुझे एक बात बताइए कि हम जब उन लोगों को देखते हैं हमें ये लगता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा आसान है तो हम वो चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं, पर मुझे एक चीज़ जाननी है कि उसकी वजह से हम जो अपनी लाइफ का जो असली फोकस है उसे खो करके हम कहीं उस दुनिया में तो नहीं जा रहे जो सच में फेम के लिए या फिर एक पॉपुलैरिटी के लिए बनी हो।
7: सोशल मीडिया फेम को बहुत ओवरनाइट फेम की तरह देखा जा रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत सालों की मेहनत और फेलियर्स को छुपा देता है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ओवरनाइट फेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा और आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत किए कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमें अपनी लाइफ में अचीव करना है वो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, हम किसी और के भरोसे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आजकल बहुत लोग ट्रोलिंग की मदद से सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमें अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करना चाहिए।
4: कुछ मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि वायरल ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी करते हैं, चाहे वो बात हो अगर हम बात करें वीडियोस की, चाहे वो वल्गर वीडियोस हो या फिर हेरेसमेंट की वीडियोस हो या फिर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट या फिर कोई ऐसे मान लो कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। पर आपको क्या लगता है कि ये सच में एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है या फिर ये हमारे जान के लिए एक रिस्क हो सकता है या कहीं ये इंसान को क्राइम की तरफ लेकर जा रहा है?
7: अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी को हैरेस करके या किसी वल्गैरिटी को यूज़ करके फेमस हो रहे हैं तो वो खाली एंटरटेनमेंट तो नहीं रह जाता, मेरे हिसाब से वो क्राइम की तरफ चला जाता है। हमें ये दूसरों की ये समझना चाहिए कि दूसरों की डिग्निटी और प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी चाहिए, हमें किसी और मेरे हिसाब से इन क्राइम्स के लिए हमें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए उनको, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो, ताकि जो लोग इस तरीके से फेम पाने की कोशिश करते हैं वो दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढे और मेहनत करके ही आगे बढ़े।
2: तो दोस्तों आज के रेडियो रीबूट एपिसोड में हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के वर्ल्ड में एक नजर डाली है, एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर ग्लैमरस भी है, ग्रोथ भी है, पर कंफ्यूजन भी साथ में है। हमने समझा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन तक ही लिमिटेड नहीं है, ये बच्चों के सेल्फ इमेज, उनके ड्रीम्स और उनके डिसीजन तक पहुंच चुका है। कहीं ये इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया है तो कहीं कंपैरिजन का प्रेशर लेकर आ रहा है, और ये रीजन बहुत बड़ा है। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लुएंसर हमेशा बुरा नहीं होता, अगर लोगों को राइट डायरेक्शन दी जाए वो डिजिटल वर्ल्ड में सीख भी सकते हैं नए स्किल्स, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी भी। जरूरत है सिर्फ एक बैलेंस और एक अवेयरनेस की, बच्चों को समझने की, बच्चों को समझाने की, ना कि उन्हें रोकने की। सोशल मीडिया को विलन नहीं बनाना बल्कि एक स्मार्ट फ्रेंड की तरह उसे यूज करना सीखना होगा, जिससे हम इंस्पायर हो पर उनके स्लेव्स ना बने। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के लिए मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। आप बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, जहाँ पर हर बात होती है दिल से। तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए, फील गुड फील लाइव।
8: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानवरचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आज आती हूँ आपके पास लेके अपना प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन, संडे वाला दिन आपके पास जानू मैं, और मैं बहुत सारी बातें लेकर के आती। अच्छा, आज ना कुछ बात करूंगी आपसे जरूरी, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है डिमेंशिया के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और साथ ही बच्चों की हेल्थ के बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले डिमेंशिया की बात करेंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपने कोई डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानवरचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग आप सुन रहे हैं और मैं आपके साथ यानी कि आरजे साक्षी आपके साथ है। संडे का आज दिन है और वैसे ना हम सभी जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी में विटामिंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इनकी कमी से सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक बीमारी भी भाई आपको परेशान कर सकती है तो ये कितनी गंभीर बात है। और बिल्कुल ये सच बात है, मतलब ऐसा नहीं कि बस मैंने ऐसे कह दिया, बिल्कुल सच बात है क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अगर बॉडी में कुछ खास विटामिंस की कमी हो जाए तो डिमेंशिया का जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। आज इसी के बारे में बात करने वाली हूँ आपको, बड़ी आसान सी भाषा में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये जो वाइटमिन से अगर इनकी कमी रही तो डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। बात करेंगे इस पर, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए आज संडे का दिन है और मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ। बात कर रहे हैं हम डिमेंशिया की। देखिए अगर खान पान में कमी होती है और कमी में अगर हम वाइटमिन्स की बात करें, अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, तो उसमें आपको कोई वाइटमिन मिनरल्स आपको नहीं मिलने वाले हैं सबसे पहली बात। और अगर आप घर का खाना खाते हैं तो उसमें आपको वाइटमिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। और वाइटमिन्स में भी अगर हम बात करें तो कुछ ज़रूरी वाइटमिन्स, जैसे कि वाइटमिन 2 की हम बात करें, B2 की बात करें, वाइटमिन डी की बात करें, B6 की बात करें, B12 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और ऐसे में अगर इन वाइटमिन्स की कमी हो तो देखिए लोगों में डिमेंशिया का देखिए जो असर है, यानी कि जो डिमेंशिया होने का खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक देखिए अगर एक रिसर्च जो है वो पाई गई है, अगर B12 की कमी हो या फिर विटामिन डी की कमी हो, B6 की, B12 की कमी हो, तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है आगे चलकर। और साथ ही अगर आप इस खतरे को कम करना चाहते हैं, घर का खाना खाइए, जितने भी जरूरी चीजें हैं जिनमें विटामिंस और आपको मिनरल्स मिल रहे हैं वो आप जरूर इनटेक करना शुरू करें, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इनफैक्ट जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि बस कोई एक रोटी और सब्जी बस दे दी, लेकिन एक जो प्लेट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए कि वो ग्रीन वेजीज से भरी होनी चाहिए। आधी प्लेट में आपकी जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो होनी चाहिए, चाहे पालक है या फिर कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और साथ ही सैलड हो गया, और साथ ही कुछ पोर्शन आपका कार्ब्स का भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। और कैल्शियम के लिए ज़रूरी है कि आप मखानों का सेवन कर सकते हैं। तो मखाने जो हैं ये पेट के लिए भी सही रहते हैं और फाइबर भी है, कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसा कैल्शियम जो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा बल्कि इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगी जो बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, अगर कैल्शियम का इंटेक करना चाहते हैं, बच्चों को हम ये कहते हैं कि भाई बच्चों के लिए ना बड़ा सही होता है ये कह देना कि हम तो चिप्स खाएंगे, लेकिन पेरेंट्स भी यही करते हैं, चिप्स दे देते हैं, लेकिन आप उन्हें चिप्स की जगह घर पर ही आप उन्हें मसाला कोट करके आप उन्हें दे सकते हैं, जो मखाने हैं वो दे सकते हैं, ताकि उनको सही लगे, अच्छा लगे और खाएं और उनको कैल्शियम भी मिले। तो इसीलिए सेहत पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा ध्यान रखें खान पान का। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बता दूँ आपको, देखिए हम बातें कर रहे हैं और पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी पैकेट वाले, बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्नैक्स हो गए, इंस्टेंट फूड हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों को बड़ी पसंद आती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, बच्चे को जो पसंद है खाने में वो बच्चे को दे देते हैं, लेकिन यही आप गलत कर रहे हैं। इंस्टेंट नूडल्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, बच्चों को बड़ी पसंद भी आती है, लेकिन अगर बच्चा नियमित रूप से इसका सेवन कर रहा है तो शारीरिक और मानसिक सेहत पर गंभीर असर जो है, प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। कई सारी ऐसी रिसर्च में भी पाया गया है कि बच्चे जो हैं अगर जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, कैलोरी, चीनी, नमक और साथ ही साथ सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, जबकि इसमें प्रोटीन, विटामिंस और साथ ही जो मिनरल्स हैं, जो तत्व हैं, वो फाइबर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को उनके चाहे हाइट की अगर हम बात करें, कई सारी फीमेल्स जो हैं वो बड़ी परेशान होती है कि हमारे बच्चे की ना हाइट नहीं बढ़ रही है, मेल भी अगर हम सभी पेरेंट्स की बात करें, बच्चे की हाइट नहीं बन रही है। बच्चा अगर विटामिंस मिनरल्स नहीं लेगा तो बच्चे की हाइट बढ़ेगी कैसे? अगर बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं है, बच्चा अगर बाहर का खाना खा रहा है तो कैसे हो पाएगा? बाहर के खाने में आपको शुगर सॉल्ट के अलावा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वहां पर आपको विटामिंस तो नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर देखिए, आजकल मैं भी कुछ हेल्दी ऑप्शंस देख रही थी, जब मैंने चिप्स वहां पर देखे, एक नॉर्मल जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं जहां पर आप खाना अपना फूड जो है ऑर्डर कर सके, आप वहां पर चिप्स देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर आपको हेल्दी ऑप्शंस भी आएंगे, जैसे कि केनुआ के आप जो है वो ले सकते हैं, केनुआ बॉल्स ले सकते हैं, वो बड़े चटपट से बड़े टेस्टी लगते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आप केनुआ जो है उसके पफ्ड बॉल्स जो है वो खा रहे हैं। या फिर आप मखाने ले सकते हैं, आजकल अलग अलग तरीके के जो है फ्लेवर्स के, चाहे पिरी पिरी की बात करें या फिर हम सॉल्ट एंड पेपर की बात करें, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है वो स्वाद के मखाने जो है वो भी आने लगे हैं। तो वाई नॉट हेल्दी ऑप्शन को आप चूज़ करें, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंट नूडल चूज़ कर रहे हैं या फिर आप ऐसी चीज़ सूट कर ले रहे हैं जो कि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रही, लेकिन आप फिर भी ले रहे हैं, बच्चे के लिए फिर भी ले जा रहे हैं और बच्चा जो है ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर अभी से बच्चों को कंट्रोल नहीं किया, अगर वो अभी से हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं तो आगे चल के आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है और आपसे ज्यादा बच्चों को हो सकती है, क्योंकि ना ही वो फोकस रख पाएंगे और ना ही वो फिजिकल एक्टिविटी में रहेंगे और ना दिमाग और ना ही शरीर उनका जो है वो बैलेंस बना पाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बच्चों का ख्याल रखना, उनके खान पान का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं रखते हैं, थकावट या और भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो उन्हें जो है वो घर बना लेती हैं, उनके शरीर को घर बना लेती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है या फिर हाई BP, फैटी लिवर, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये समस्या का जोखिम बच्चों में ही काफ़ी कम उम्र से बढ़ जाता है अगर उनका ख्याल ना रखा जाए। ज़्यादा चीनी हो गई या फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हो गए जो कि उनके दांतों के लिए भी सही नहीं है, ज़्यादा अगर मीठा खा रहे हैं दांत खराब हो जाते हैं, दांत में कीड़े लग गए हैं, ना ही डॉक्टर के पास जाना है, बस ट्रीटमेंट घर पर ही चल रहा है कि हाँ चलो ठीक है हो गया, तो ऐसे में देखिए बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। आपको समझना होगा कि बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए क्या सही है, ताकि उनका माइंड उनकी बॉडी दोनों ही हेल्थी रह सके। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रही है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना और 7.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ अभी हमारे पास ना एक खास मैसेज जो है वो आ गया है। मैसेज आया है हमारी लिसनर मोहिनी जी की ओर से, जिन्होंने लिख के भेजा है कि नाक से गर्मी के मौसम में खून जो है वो आ चुका है। देखिए, गर्मियों का टाइम जो है वो चल रहा है, ये तो बहुत मतलब बड़ी बात है ये, और ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि काफ़ी परेशानजनक भी करने वाली बात है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि अब प्रॉब्लम बढ़ रही है। गर्मियों का मौसम आते ही कई लोगों के नाक से खून आ जाता है और उसका सामना करना पड़ता है। इसे देखकर घबराना काफ़ी ज़्यादा लाजमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर मामलों में कोई गंभीर बात वैसे नहीं होती है। और देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जान लेना, नाक के अंदर की जो परत और खून की नसें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। तेज़ गर्मी, सूखी हवा, लू या शरीर में पानी की कमी की वजह से नाक के अंदर की जो परत होती है वो सूख कर काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो जाती है, और ऐसे में छोटी सी नस चटक जाती है और खून बहने लग जाता है, और इसी वजह से हो जाती है नोज़ ब्लीडिंग। तो इसके अलावा गर्मियों में हमें जो है, अगर हम लंबे टाइम तक एसी में रहते हैं, जिससे नाक का रास्ता और ज़्यादा सूख जाता है। जब नाक पहले से ही सूखी और इरिटेटेड होती है, तो इसमें बार बार नाक जब आप रगड़ते हैं तो ज़ोर से नाक साफ करने, या नाक में अगर आप देखिए उंगली डाल के अगर अपनी नाक साफ करें, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, हाइजेनिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये कर रहे हैं तो तुरंत ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे में इसको करना तो सबसे पहले आप बंद कर दीजिए। अगर आपकी नाक सूखी हुई है तो कोशिश कीजिए आप नारियल का तेल डाल लीजिए, सरसों का तेल डाल लीजिए, इससे काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोग नाक को जो है वो नाक से खून आते ही वो अपना सिर पीछे की तरफ झुका लेते हैं। डॉक्टर के अनुसार ये एक बहुत ही आम गलती है, ऐसे में ये जो है आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर पीछे करने से खून गले के रास्ते पेट में जा सकता है, और इसी के साथ ही लोगों को बार बार चेक करने से भी बचना चाहिए कि खून बह रहा है या नहीं, खून आना बंद हुआ या नहीं। बार बार नाक को छूने से या खून का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ब्लीडिंग दोबारा से शुरू हो जाती है, इसीलिए कोशिश ये ना करें। ज़्यादातर जो नोज़ ब्लीडिंग है वो खतरनाक नहीं होती है, और इसे घर पर ही शांति से रोक देना चाहिए। अगर नाक से खून आ जाए तो इसमें आप आसान कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन वो क्या है वो उसके लिए तो आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और देखिए गर्मी की वजह से नोज ब्लीडिंग जो है वो अगर हो रही है तो ज़्यादातर नोज ब्लीडिंग खतरनाक नहीं होती है और इसे घर पर ही शांति से रोका जा सकता है. अगर नाक से खून आ जाए तो आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आगे की तरफ झुके और सीधे बैठ जाएं और अपने सिर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लें. इसके बाद नाक के आगे आपको नाक के आगे वाला जो हिस्सा है इसको अपनी उंगलियों के करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्के से आपको पिंच करके रखना है. और नाक बंद होने के कारण इस देखिए दौरान अपने मुंह से सांस आपको लेती रहनी है ना कि नाक से. खून के बहाव को धीमा करने के लिए आप नाक या गालों पर कोल्ड प्रेस कंप्रेस भी जो है वो इस्तेमाल उसका कर सकते हैं. इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, यानी कि कोई जेल पैड अगर कोल्ड जेल पैड हो वो आप लगा सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा जरूर मिलेगा. चलिए इसी के साथ एक वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक का, जिसके बाद होंगी बातें. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना और 7.8 FM. फील गुड.

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें, गर्मी का मौसम चल रहा है और इस बीच हमारे पास आटो का एक संदेश, और ये जानना चाहती हैं हमारी लिसनर मोहिनी जी कि कैसे जो है अगर नाक की ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में बात करें। देखिए, ये तो मैंने आपको जरूर बताया, लेकिन गर्मी के मौसम में ना हाइड्रेशन सबसे अहम भूमिका निभाता है। भरपूर मात्रा में लिक्विड डाइट लें ताकि बॉडी और नाक के अंदर नमी बनी रहे, और इससे सूखापन कम होगा और जलन से राहत आपको जरूर मिलेगी। कुछ मामलों में नाक की कमी, जो नमी है इसको बनाए रखने के लिए देखिए स्लाइन नोजल स्प्रे का भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ह्यूमिडिफायर का, हवा का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, तो वो भी सही रहता है। और साथ ही यूं तो देखिए नोज ब्लीडिंग आसानी से घर पर रुक जाती है, लेकिन अगर नहीं रुक रही है, काफी टाइम हो गया है, तो नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास आप लेकर के जाएं, क्योंकि कोई और अन्य बीमारी का संकेत हो सकती है। जब जब देखिए बार बार खून से अगर आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, और ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर खून आने के साथ चक्कर महसूस हो रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अगर किसी चोट लगने के बाद नाक से खून बह रहा है तो इसका मतलब है मेडिकेशन की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, ना ही घर पर बैठ के इलाज लेने की। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो,
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए आपको बता दूँ, वक्त आपको बताने का कि अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारी इंटरनेट ऐप डाउनलोड करनी है। आपको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉइड या मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में जाके लिखिए वहां पर रेडियो मानव रचना, जैसे आप ऐप देखेंगे वहां पर उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी। तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइव।
1: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन. बहुत सारी होती हैं बातें. एक सवाल हमारे पास आया है हमारे लिसनर मनीष जी का, जिन्होंने लिखा है कि आँखों में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या करना चाहिए. तो देखिए, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी. अगर आपको कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या फिर कुछ दूर का देख रहे हैं और आपकी आंखें स्क्वीज हो रही हैं, आप ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में दर्द आपको उसकी वजह से हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आई टेस्ट अपना कराएं. हो सकता है आपको चश्मा लगे, और तब भी ये सिम्टम्स जो है वो आते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है. और चश्मे को आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, बल्कि हर किसी पे अच्छा लगता है. और साथ ही अगर आप देखिए इसी बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी आँखें जो है और ज़्यादा वीक हो जाएंगी. तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखें ही, साथ ही साथ अपनी आँखों का, अपने ओरल हेल्थ का भी ख्याल रखें. हर 4 से 6 महीने में आप डेंटिस्ट के पास जाइए, और अगर आपकी दांतों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल हेल्थ चेकअप अपने दांतों का जो है चेकअप करा के आइए. और वही बात रहेगी कि देखिए अपनी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है. और आज बहुत सारी बातें हुई हैं, डिमेंशिया के बारे में बात करी है, बच्चों के खान पान के बारे में बात करी, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा खाना जो है, अच्छा खाना, टाइम पर सोना और टाइम पर जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हर बार नींद आती रहती है, फोकस पावर नहीं होता है, और प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है. और अगर आप एक अच्छी देखिए चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो जरूरी है टाइम पर आपको खाना, टाइम पर सोना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाजत लेने का, यानी कि अब साक्षी कहेगी कि भाई मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब देखिए मुलाकात होगी आपसे कल, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। कोशिश कीजिए अगर आप कुछ नॉर्मल बॉडी टेस्ट करा सके जिससे आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चल जाए तो वो आप जरूर कराइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मानोरचना 107.8 FM।
1: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आरजे सागर आ चुका हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ। ये शो यूं तो बहुत खास है अगर आप एक रेगुलर लिसनर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा और अगर भैया आपने पहली बार हमारा ये शो सुना है सुन रहे हैं पहली बार तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्टार्टअप स्टोरीज लेकर के आते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू मोर अवेयर ऑफ थिंग्स जो आपके आसपास हैं मेक यू मोर अवेयर ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री मेक यू मोर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको हम यहाँ पर बात करते हैं यानी कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हुआ किन किन लोगों का योगदान रहा कौन कौन सी कंपनीज हैं फाउंडर्स कौन है बैकग्राउंड क्या है तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। आज ऐसी एक और खास शो लेकर के आएं फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है एट फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द इंडस्ट्री पार्ट देन वी गोना टॉक अबाउट द कंपनी पार्ट तो कहीं जाइएगा मत फिलहाल क्योंकि हम ले रहे हैं म्यूजिकल ब्रेक मेरा सलाम कबूल करिए स्टे ट्यून्ड फील गुड फील लाइफ।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों, मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने हैं, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। AI पावर्ड, अगर आप बात करते हैं किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या AI पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल LED थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपनी स्किन के ऊपर, और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड फील लाइव।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं जोकर है, ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतर्त यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

0: फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान के पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज कि ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

वेलकम बैक। नाउ विद दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू गोना सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी।

आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एजेंट जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। उसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सोल्यूशन प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा, कल्चर, सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको वहाँ की कोई चीज़ देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

पुरस्कार चंदन का। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी तक जो हमने इंडस्ट्री के बारे में बात करी है आप समझ पाए हैं। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली रिवील करते हैं आज की कंपनी। सो दिस कंपनी इज डीकंस्ट्रक्ट एंड ये बहुत अमेजिंग पार्ट है। देखिए कई सालों तक फॉर लिटरली ईयर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बेचा गया है थ्रू ड्रीम्स, मतलब ग्लोइंग फेसेस, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, फेयरनेस प्रोमिसेस, ठीक है, गोरे हो जाएं, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट कर लें, आपके इमोशनल एक आप कह सकते हो ट्रिगर के साथ साथ प्रोडक्ट्स जो हैं एसोसिएट किए गए और फिर वो बेचे गए। बट अब जो कंज्यूमर है वो नई जनरेशन का है। आज का कंज्यूमर सवाल पूछता है, आज का कंज्यूमर ये जानने में इंटरेस्टेड है, उसको ये नहीं जानना है कि मैं गोरा होऊंगा नहीं होऊंगा, उसको ये जानना है कि एग्जैक्टली मेरी स्किन के ऊपर जा क्या रहा है, उसको ये जानना है कि इंग्रेडिएंट कौन सा है जो काम कर रहा है, उसको ये जानना है कि स्किन केयर की साइंस क्या है या बस ये एक मार्केटिंग गिमिक है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट टुडेज जनरेशन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग। सो डीकंस्ट्रक्ट यहां पर आती है उस जनरेशन के उन सवालों के जवाब लेकर। एक बेंगलुरु बेस्ड डी टू सी स्किन केयर स्टार्टअप है जो फोकस करता है साइंस बैक्ड इंग्रेडिएंट फोकस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि स्किन केयर आप करिए बट हम आपको एजुकेट करेंगे पहले। ठीक है, कंज्यूमर्स को इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया जाता है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना इज नॉट द थिंग, अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस करना इज नॉट द थिंग, द मेन थिंग इज कि हम आपको एजुकेट करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, जो आपके सवाल हैं उनके जवाब हम आपको देंगे। इस ब्रांड के पास फेस सीरम्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं, मॉइस्चराइजर हैं, फेस वॉशेज हैं, हेयर केयर सॉल्यूशंस हैं। इंफॉर्मेशन ओवर इंपल्सिव, दिस इज द मिशन ऑफ दिस कंपनी, मीनिंग डोंट जस्ट बाय स्किन केयर, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट आपको कन्विंस कर सकती है और अगर आप उससे कन्विंस हो कि स्किन केयर करना चाह रहे हैं तो नॉट अ गुड आइडिया। अंडरस्टैंड योर स्किन एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आके बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहां, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक, मैं आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की कंपनी हमारी डी कंस्ट्रक्ट कैसे स्टार्ट हुई, बहुत ही अच्छी एक अमेजिंग सी स्टोरी है। सो ये जो इंडियन ब्यूटी मार्केट है, ये भैया टू एक्सट्रीम्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक साइड पर आपको दिखाई देगा ट्रेडिशनल ब्यूटी ब्रांड्स, जो वहां पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, सेलिब्रिटीज उनकी एड्स करते हैं, इमोशनल प्रॉमिसेस करते हैं। दूसरा साइड है जो रियल एक साइड है, जिसके ऊपर अब ज्यादा बात होती है, विच इज साइंटिफिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इंटिमिडेटिंग लगते हैं, बट एक्चुअली आपके लिए सोल्यूशन लेकर के आते हैं। यहां इन दोनों के बीच में ना एक गैप था, तो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं मालिनी आदरपुर रेड्डी, उन्होंने नोटिस किया कि कस्टमर जो है उनको इफेक्टिव स्किन केयर चाहिए, बट इंग्रेडिएंट्स के नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, कॉम्बिनेशंस के नाम से कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, एग्जैजरेटेड क्लेम्स नहीं चाहिए उनको। तो 2020-21 के अराउंड उन्होंने इस एक कंपनी को स्टार्ट किया, मतलब विद इन दिस फेज ऑफ 2020 to 2021, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये छोटा सा एक सवाल पूछा कि क्या हम इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, जवाब मिला हाँ, देन व्हाई नॉट। तो स्किन केयर से लेकर के वो जो साइंस है स्किन का, उसको एक्सेसिबल बना दिया। इवन द नेम डी कंस्ट्रक्ट, ये भी रिप्रेजेंट करता है ब्रेकिंग समथिंग कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर पार्ट्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्किन केयर साइंस फॉर नॉर्मल कंज्यूमर्स। तो ये है हमारी आज की कंपनी। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए, फील गुड फील

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उससे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: सत्ता तेज जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: फील गुड फील लाइव शो को आगे बढ़ाते हैं। मालिनी अदापुर रेड्डी, ये हमारे फाउंडर हैं जो डीकंस्ट्रक्ट कंपनी है, जो हमारी आज की स्टडी है उसके फाउंडर का नाम है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो मालिनी कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड बिजनेस बैकग्राउंड। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी फ्रॉम IIT खड़गपुर, लेटर ऑन MBA किया फ्रॉम INSEAD। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंजीनियरिंग आपको सिखाता है प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, डेटा बेस्ड थिंकिंग कैसी होती है। MBA आपको सिखाता है कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना होता है, बिजनेस स्ट्रेटजी को कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, हाउ एग्जैक्टली टू रिप्रेजेंट योर ब्रांड। एंड व्हेन यू कंबाइन दीज टू थिंग्स ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। दैट्स हाउ शी गॉट All these skills and apart from this, इनका एक अच्छा खासा experience रहा है। She has worked with multiple companies, जिसमें Procter & Gamble एक company शामिल है, Flipkart शामिल है, Kraft Heinz जो है वो शामिल है। इन तमाम companies में इनका जो experience रहा वो रहा product development का, supply operations का, marketing का, consumer insights का। So basically the core point is engineering from IIT, MBA from INSEAD, apart from this she has worked in multiple domains with multiple companies and वहाँ से उन्हें काफ़ी अच्छा खासा जो है experience मिला। So problem जो उन्होंने उस time पर देखी थी वो था कि information जो है overloaded थी, active ingredients का एक fear था। ठीक है, लोगों ने नाम सुने, आज भी बहुत सारे लोग जो कन्फ्यूज होते हैं रेटिनॉल क्या होता है एंड नियासिनामाइड क्या होता है, AHA BHA क्या होता है, बट एग्जैक्टली क्या होता है, किसको पता है कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है, साइंस बेस्ड क्या एविडेंस है इसका। सो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी रियलाइज। उसके बाद अनरियलिस्टिक मार्केटिंग से सब लोग परेशान थे। दिस क्रीम विल चेंज योर लाइफ, नो, देयर इज अ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट दैट गोना सॉल्व दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, दैट शुड बी द करेक्ट टैगलाइन। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट शी ट्रिगर्ड। ऐसा नहीं होता कि एक क्रीम लगा लो सब ठीक हो जाएगा, नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। रादर यू शुड नो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नियासिनामाइड है, यहाँ पर मुझे रेटिनॉल मिल रहा है, रेटिनॉल ऐसे काम करता है, मेरी स्किन के लिए ठीक होगा, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होगा। ये होता है साइंस बेस्ड नॉलेज होना, फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज होना, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

ತಾನು ತದರೆ ನಾ ಸಪ್ತ ಸುರನ ತಿಲಕ.

0: Dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana dir na dim tanana dir tanum tanana
1: उम्मीद है कि आपको गाने पसंद आए, साथ साथ उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि शो आपको पसंद आ रहा है। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। डीकंस्ट्रक्ट हमारी आज की कंपनी है। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ डीकंस्ट्रक्ट। फर्स्ट इज साइंस फर्स्ट अप्रोच, जो हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली साइंस बेस्ड एविडेंसेस जो है उनके आधार पर फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है, उसी को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया जाता है। सेकेंड, बिगिनर फ्रेंडली स्किन केयर। यू डोंट नीड a high budget to maintain a skincare routine. All you need is just some knowledge and good products. Third is transparency. Ingredients, usage, skin concerns, sab kuch, science behind formulations, everything is being printed there. उसके बाद key drivers आते हैं कुछ, ठीक है, जो सबसे पहला तो मैं बोलूँगा कि लोग अब educate हो गए हैं। beauty consumers जो हैं उनको अब education चाहिए पहले। वो नहीं पढ़ने वाले इस पचड़े में कि भैया मेरे को गोरा कर दो या मेरे को ग्लो दे दो, वो सिंपल एक चीज़ फॉलो करते हैं कि मुझे एजुकेट कर दो। सेकंड पॉइंट आता है डी टू सी रेवोल्यूशन इन इंडिया जो बढ़ा है। थर्ड इज सोशल मीडिया एजुकेशन, ऑल थैंक्स टू ऑल द डर्मेटोलॉजिस्ट क्रिएटर्स एंड कंज्यूमर्स जिन्होंने इंग्रेडिएंट्स की बात करनी शुरू करी है और हम लोगों को अवेयर सिटीजन बनाया है। उसके बाद आता है ट्रस्ट थ्रू सिंप्लिसिटी। बहुत बड़ा इनोवेशन यहाँ पर यही है दुनिया में कि उसको और कॉम्प्लेक्स मत करो, कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दो। दैट्स द बिगेस्ट इनोवेशन आई वुड से फॉर द ह्यूमैनिटी। दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ आर टुडेज कंपनी विच इज रिकंस्ट्रक्ट। अब इसी के साथ अपने शो को यहाँ पर मैं खत्म करना चाहूंगा। आशा करता हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। मुझे बताइए जरा 8017 पर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, शो आपको कैसा लगा। फिलहाल चलता हूँ, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो ले। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए, सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। दिस इज आरजे सागर साइन।

0: यहाँ तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: पुल पे वहाँ अकेला क्या कर रहा है?
2: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
3: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
4: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ और टाइम है प्रोग्राम ऑल इज वेल का। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके लिए हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाता है, वो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। और इस प्रोग्राम में नॉलेज पार्टनर है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हर किसी के घर में एक नन्ही किलकारी जरूर आती है, लेकिन ये नन्ही किलकारी जब आती है आपके घर तो एक डिस्कशन उसके आने से पहले काफी होता है कि बच्चे की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी या सिजेरियन। तो चाइल्ड बर्थ नॉर्मल होना चाहिए या फिर सिजेरियन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं। बहुत सारे लोग फैमिलीज को या मदर को कन्विंस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सिजेरियन होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को पसंद भी नहीं करते हैं। कुछ पुराने ख्यालों के लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हमेशा बेस्ट होती है क्योंकि इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सिजेरियन भी कंफर्टेबल होती है और इसमें भी रिकवरी अब जल्दी ही हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। सो ऐसे कुछ सवाल हमारे मन में हैं या फिर आपके मन में हैं। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग मदर हैं तो अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। नंबर बहुत आसान है 8010781078, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर दीप्ति, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच।
4: डॉक्टर दीप्ति, अब हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर कोई इंसान जो है वो दुनिया में आया है और ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है पूरी फैमिली के लिए जब कोई बच्चा घर में आता है। तो यहाँ पर हर बच्चे के जन्म से पहले ये डिस्कशन ज़रूर होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होनी चाहिए या सिजेरियन होनी चाहिए। सो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ, दोनों में से क्या कंफर्टेबल, क्या बेटर होता है, फिर उसके बाद हम एक एक करके सवाल भी लेंगे और चर्चा भी करेंगे।
5: दीक्षा, नॉर्मल डिलीवरी को हम नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस है, इट्स ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। डॉक्टर को वो प्रोसेस सिर्फ असिस्ट करना होता है, सिजेरियन डॉक्टर को करना होता है। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी ही बेटर होती है फॉर पेशेंट रिकवरी। चाइल्ड के लिए भी नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है फॉर आगे की जो फ्यूचर उसकी ग्रोथ होती है। बट ये हर पेशेंट के लिए सेम सिचुएशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई विल से अपने एक्सपीरियंस के साथ कि अगर एक नॉर्मल डिफिकल्ट डिलीवरी है उससे बेटर है कि एक ईजी सिजेरियन हो, बिकॉज डिफिकल्ट नॉर्मल डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लेटर लाइफ में मदर को और बेबी को दोनों को बहुत लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप कर सकती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सिजेरियन विल बी बेटर। अगर हम एक जनरल बात करें तो इट्स नॉर्मल डिलीवरी, तो दैट मीन्स नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर।
4: जी बिल्कुल, नॉर्मल प्रोसेस हमेशा बेटर ही होता है, लेकिन कई केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी एक बहुत बड़ा जो तकलीफ है वो एक माँ को दे जाती है, क्योंकि इतने घंटों का लेबर पेन या फिर इतनी ज़्यादा तकलीफों के बाद जब नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है तो सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो कई कई घंटे जो है वो एक मदर परेशानी में रहती है, 12-12, 14-14 घंटे, और उसके बाद फिर सिजेरियन करना होता है। सो अक्सर मदर्स ये बोलती हैं कि इससे अच्छा तो पहले ही सिजेरियन करा लेते, हम नॉर्मल के लिए ट्राई ही नहीं करते। सो डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग और बहुत सालों से ये कहते हैं कि आजकल सी सेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं, आज से 20 साल पहले भी ये कहते थे और अब भी यही कहते हैं, तो सी सेक्शन इतने ज़्यादा क्यों होने लगे हैं?
5: सिजेरियन रेट्स ऑब्वियसली पहले से बहुत इंक्रीज हुआ है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा सिजेरियन रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा होता है लाइफस्टाइल। पहले की अगर आप अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को अगर आप देखते हैं, तो जो उनका लाइफस्टाइल था, दे यूज टू हैव सिटिंग किचन,
4: एब्सोल्युटली
5: वो सब काम घर में नीचे बैठकर करते थे, उनकी वॉशिंग जो होती थी वो नीचे जमीन में बैठकर होती थी, खाना वो नीचे बैठ के बनाते थे। अगर फील्ड वर्कर्स की आप बात करते हो तो वो पूरा दिन स्क्वाटिंग पोजिशन में बैठते हैं, तो इन लोगों की लेबर बहुत ईजी होती थी, देयर पेल्विसेस वर वेरी वाइड। लेकिन जैसे जैसे हम एक सिटिंग कल्चर में आ गए हैं, आज अगर हम देखते हैं तो फिजिकली स्पेशली अर्बन एरियाज में फीमेल्स बहुत ज्यादा घर में काम नहीं कर रही हैं, वी ऑल आर वर्किंग मोर मेंटली, हम फिजिकल वर्क उतना नहीं कर रहे हैं,
6: और जो घर में भी कर रहे हैं वो भी जैसे वॉशिंग मशीन खड़े होकर है या खाना आप खड़े होकर बना रहे हैं, तो बैठने वाला जो एक पोजिशन आपने स्क्वैटिंग कही वो तो ना के बराबर होती है।
5: यस, इसके साथ साथ हमारा फिर वो उसी हिसाब से जो पेल्विस है वो उतना ओपन नहीं होता। इसके साथ एक रीजन ये भी है कि ओवर द एजेस, नॉट द ईयर्स, ओवर द एजेस सो मैनी एरास जो हमारे निकल गए, जो बेबी का हेड साइज है वो इंक्रीज हो रहा है।
6: ओके,
5: यस, इट्स अ लाइक जैसे अगर आप एप्स की पिक्चर्स देखते हो,
6: हाँ,
5: तो हमारा जो हेड साइज था वो छोटा
6: थोड़ा वैसा होता,
5: तो जैसे जैसे ह्यूमन रेस जो है वो आगे एडवांस हो रही है, हेड साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, एंड इन एनी केस वी आर यूजिंग आवर ब्रेन्स मोर देन आवर बॉडीज, तो उस हिसाब से हमारा जो हेड साइज है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है।
6: ओके, सो इस वजह से,
5: यस, एंड थर्ड रीजन कि हमारे को अपनी कंट्री का मैटरनल मोर्टैलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टैलिटी रेट डिक्रीज करना है। तो जब आप किसी एक टर्शरी केयर सेंटर की बात करते हो, वहाँ पे हमेशा सिजेरियंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वी गेट मोर रेफर्ड पेशेंट्स, जो मिसमैनेज्ड पेशेंट्स हैं, जो प्रोलॉन्ग लेबर में रहे, ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास सिजेरियन ही एक बेस्ट ऑप्शन होती है, बिकॉज हमें मदर और बेबी की सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर रखनी है, ये नहीं देखना है कि पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो रहा है कि सिजेरियन हो रहा है।
6: बिल्कुल, यानी बहुत ध्यान रखना होता है एक मदर का, वॉर्म टू बी का इतना ज़्यादा ख्याल हम रखते तो हैं, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, खास तौर पर से मैं रूरल एरिया की बात करना चाहूँगी, जहाँ पे कुछ मिसमैनेज जैसे आपने कहा कि सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लास्ट मिनट सिजेरियन ही होते हैं, और सिजेरियन को लेकर लोगों का नज़रिया भी बदला है, अब लोग इतना डरते भी नहीं हैं सिजेरियन कराने से। इसके बारे में और भी बहुत सारे सवाल हैं, ऑफ कोर्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ज़रूर पूछिएगा। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति गोयल स्टूडियो मौजूद हैं, जो शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, नंबर बहुत आसान है 8010781078। अभी वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूं दीक्षा आपके

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन। मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, और सब कुछ वेल रहे इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस तो जरूरी होती है। और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल, शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और डॉक्टर दीप्ति से आज हम बात करें हैं चाइल्ड बर्थ के बारे में। एक बच्चे का जन्म सबसे खूबसूरत

0: होता है। जी हाँ, आपके जीवन में एक नई जिंदगी आती है और एक नई जिंदगी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े प्रोसेस में जाती है, लेकिन इसमें भी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, हेल्थ को लेकर और चाइल्ड बर्थ को लेकर। कभी कोई कहता है सिजेरियन की तरफ चलें, तो कभी नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोर्स भी किया जाता है मदर्स को। लेकिन क्या नॉर्मल डिलीवरी हमेशा फायदेमंद होती है या इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं? ऐसे कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब हमारे साथ दे रही हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल। सो डॉक्टर दीप्ति, नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात करते हैं तो पहले मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहूंगी। आपने बताया कि इसमें ये क्योंकि नॉर्मल है, प्रोसेस ही शुरू से यही है ह्यूमन बॉडी का, इसलिए इसको नॉर्मल कहा जाता है। सो इसके सबसे ज्यादा फायदे क्या होते हैं?
1: इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद मदर की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। कोई डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई डूज एंड डोंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस फॉर फ्यू डेज एंड देन यू विल बी बैक टू वर्क। आप अपना एक्सरसाइज रूटीन वापस फॉलो कर सकते हो, आप अपना वर्क जल्दी ज्वाइन कर सकते हो।
0: ओके
1: और आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती,
0: डिपेंडेंसी
1: नहीं रहती है। और अगर हम बेबी की बात करते हैं तो बेबी की लंग्स की मेच्योरिटी, उसकी क्राई, जब वो एक बर्थ कैनाल से बेबी पास होता है तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं लंग्स की वो अच्छे से स्क्वीज आउट होती हैं, तो बेबी के लिए भी एक हेल्थ बेनिफिट उसमें होता है।
0: ओके, यानी माँ और बच्चे दोनों के लिए बेनिफिट होता है। इसमें आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो 40 दिन के लिए, 40 डेज का एक पीरियड होता है जिसमें मदर को घर में रखा जाता है, बच्चे को उसके साथ रखा जाता है, फ़ैन भी बंद कर देते हैं गर्मी का मौसम है, फिर भी एसी या कूलर नहीं चलाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये रिकवरी को देखकर की जाती हैं। सो क्या ये प्रोसेस सही है 40 दिन, या फिर इससे कम टाइम में भी सब कुछ बेटर हो सकता है?
1: नहीं, इसके लिए मैं कहूँगी कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स थी दे वर वेरी इंटेलिजेंट, और जो यूट्रस की हीलिंग है वो ऑलमोस्ट 6 वीक्स में होती है।
0: ओके
1: जो मदर की जो यूट्रस का साइज बड़ा हुआ है वो वापस नॉर्मल होने में, उसकी सिक्रीशंस को पूरा वॉश आउट होने में, स्टिचेस को हील होने में 6 वीक्स का ही टाइम लगता है।
0: ओके
1: तो दैट 40 डेज वाज वेरी गुड पीरियड जो शुरू से चला आ रहा है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें मिथ बन गई हैं, जैसे कि अभी आपने फैन की बात की, कि गर्मियों में भी फैन बंद कर देते हैं और कवर करके रखते हैं, ईयर्स में कॉटन प्लग लगा देते हैं कि हवा नहीं जानी चाहिए, तो इन सब चीज़ों से मदर को नुकसान होता है, बिकॉज एक्सेसिव स्वेटिंग से बहुत डिहाइड्रेशन होती है। आप फीड करा रहे हो, फिर आपको स्वेटिंग से एक तो वाटर लॉस हो रहा है, साथ में आपकी हाइजीन का एक इश्यू बन रहा है, तो उन सब चीज़ों से मदर को नुकसान होता है। 40 डेज रिकवरी पीरियड इज़ ए गुड टाइम, बट उन मिथ्स को हमें छोड़कर आगे बढ़ना होगा।
0: जैसे बहुत सारे लोग नहाने नहीं देते हैं मदर्स को काफ़ी दिनों तक, कि 11 दिनों तक आप मत नहाएं, 6 दिनों तक मिनिमम होता है, तो क्या ये भी करना जरूरी है नॉर्मल डिलीवरी में?
1: नॉट एट ऑल, इवन नॉट इन सिजेरियन।
0: अच्छा,
1: हम सिजेरियन में भी आफ्टर 2-3 डेज अपने पेशेंट्स को, मदर्स को बोलते हैं कि आप अच्छे से बात लीजिए, ड्रेसिंग्स वाटरप्रूफ होती हैं। तो आप तो नॉर्मल डिलीवरी की जब हम बात कर रहे हैं उसमें तो हमें day 1 से हम पेशेंट्स को बात दे सकते हैं।
0: ओके
1: एंड किसी भी डिलीवरी, सिजेरियन या कोई भी सर्जरी के बाद हाइजीन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो जो एक मिथ बना हुआ है कि वाटर चला जाएगा, सोप लग जाएगा, स्टिचेस पक जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि हाइजीन अगर रहती है तो हमारी हीलिंग बेटर
0: फास्ट होती है। जी जी जी। अब इसमें 40 दिनों का आपने जो बोला वो एकदम ठीक है, लेकिन बहुत सारे आजकल हमने देखा है लोग जो हैं, मदर्स जो हैं वर्किंग है या सेलिब्रिटीज को अक्सर देखा है कि 11 दिनों में, 21 दिनों में वो वापस काम पे जाना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, या हमने देखा है सेलिब्रिटीज जो है वो 11 या 21 दिनों में कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, थोड़ा सा आउटिंग कर रहे हैं, क्या ये ठीक है बाहर निकलना इस तरीके से घूमना फिरना, या फिर वापस उस काम पे लौटना?
1: इट्स अप टू अ पर्सन्स ओन कॉल। अगर उसकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी है, अगर आप किसी एक ऐसे बंदे से बात करोगे जो कि रेगुलर जिम करता है, तो ऑब्वियसली उसकी रिकवरी किसी भी सर्जरी के बाद, किसी भी प्रोसेस के बाद बहुत फास्ट होगी।
0: ओके
1: तो अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है कि आप उठ के जाओ, आप अपना ऑफिस वर्क करो, तो वो आप कर सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी में तो भी किसी भी, इवन फॉर वेट लिफ्टिंग कोई हमारी तरफ से मना नहीं होता है, आप सब कुछ, यू कैन कैरी ऑन ऑल द एक्टिविटीज।
0: ओके एक डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है या अवेयरनेस है, बहुत सारी जो एक्सपेक्टिंग मदर्स होती हैं जो फिजिकली अपने आप को बहुत फिट रखना चाहती हैं, योगा और जिम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर रही होती है। बहुत सारी वीडियोज हमने देखे हैं वायरल होते कि वो 7 मंथ है या 9 मंथ है वो प्रॉपर योग कर रही हैं, और वेट लिफ्टिंग भी चल रही है उसमें, और एरोबिक्स भी चल रहा है। सो क्या ये सब चीज़ें ठीक रहती हैं?
1: अगर आप रेगुलरली प्री प्रेगनेंसी पीरियड में जिम कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, देन इट्स वेरी गुड। बट इट शुड नॉट बी स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज ए न्यू एक्सरसाइज. आप स्विमिंग करते हो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, यू कैन डू एवरीथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बाय योर डॉक्टर. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको डॉक्टर मना करेंगे कि आपको ये सब नहीं करना है. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आप पहले से ये सब कर रहे थे तो आप कंटिन्यू करो, बट डोंट स्टार्ट हैवी एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ न्यू वन. लेकिन माइल्ड योगा, माइल्ड एक्सरसाइजेस, ये सब रिकमेंडेड है. जैसे मैंने बोला कि पेल्विस ओपन करना होता है, प्रीनेटल योगा होता है, हमें पेल्विस ओपन करना है, बैक की मसल्स को रिलैक्स करना है, थाइज में थोड़ी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो मेंटल रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन सब चीजों के लिए अगर आप योगा और माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो तो दैट इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन.
0: ओके, यानी माइल्ड एक्सरसाइजेस कीजिए, लेकिन कोई एक्सरसाइज ऐसी मत कीजिए जो बहुत स्ट्रांग हो, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, और वो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही शुरू करें, क्योंकि उसके फ़ायदे होने की जगह नुकसान होने के चांसेस भी होते हैं. डॉक्टर दीप्ति, अब बहुत अहम सवाल, फ़ायदे बहुत सारे बता दिए आपने बेनिफिट्स नॉर्मल डिलीवरी के, लेकिन मैं कुछ जानना चाहूँगी कि क्या इसके कुछ नुकसान भी होते हैं कुछ केसेस में?
1: नॉर्मल डिलीवरी का एज सच, अगर सब कुछ प्रोसेस नॉर्मल है, बेबी हेल्दी है, मदर हेल्दी है, तो कोई नुकसान नहीं है. लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल डिलीवरी है तो नुकसान होता है. नॉर्मल डिलीवरी जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है. नॉर्मल डिलीवरी के स्टिचेस भी बहुत पेनफुल होते हैं, यू हैव टू सिट ऑन दो स्टिचेस. उसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो अगर उन स्टिचेस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है. बहुत सारी मदर्स के लिए 1 month बिल्कुल बेड पे बैठना, चेयर पे बैठना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उन लोगों को स्टिचेस के लिए ट्यूब भी यूज़ करनी पड़ती है जिसके ऊपर वो सिट करके फीड करा सके. तो इट कैन बी दैट मच पेनफुल ऑल्सो. साथ ही अगर आपको बेबी का साइज बहुत बड़ा है और एक डिफिकल्ट वजाइनल डिलीवरी की जा रही है जिसमें वजाइनल टेयर्स हो सकते हैं, जो कि आपको ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस हैं या आपको ओटी तक ले जा सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के साथ कभी भी हमें रिस्क लेके नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी चाहिए. बेबी को भी डिस्ट्रेस होने के चांसेस नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा होते हैं. जब पेन्स आते हैं तो बेबी के ऊपर भी स्ट्रेस होता है. तो ऐसे में अगर बेबी की हार्ट बीट डिप हो रही है या बेबी ने अगर पॉटी कर दी है, जिसको हम मिकोनियम कहते हैं, अगर वो हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो बेबी के लिए रिस्की हो सकती है.
0: ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिजेरियन रेकमेंड करते हैं?
1: यस.
0: सो हर चीज़ के फायदे हैं और हर चीज़ के नुकसान भी हैं. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है और बहुत अच्छे से होती भी है, सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर मदर्स को बहुत ट्रॉमा भी सहना पड़ता है, और उस केस में अगर डॉक्टर रिकमेंड करें सिजेरियन तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है. बहुत सारी और भी बातें करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप भी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और उसके बाद पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर डॉक्टर दीप्ति गोयल से हुई ये सारी बातचीत आप कभी भी शेयर कर सकते हैं.

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है डॉक्टर दीप्ति गोयल से, हमारी आज की एक्सपर्ट जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और हम बात करें आज चाइल्ड बर्थ में नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरीज क्या बेटर हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक मदर एक्सपेक्ट कर रही होती है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पहले ये इन्फॉर्मेशन आस पड़ोस के लोग, बड़े बुजुर्ग या फिर घर की लेडीज़ के थ्रू आती थी, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन आपके क्लिक पर हैं, बहुत सारे वीडियोस के तौर पर, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे आर्टिकल्स के तौर पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि ये एक बहुत पुराना प्रोसेस है, इंसान का जन्म जो है वो एक नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन मेडिकल साइंस के आने से इसमें मोर्टालिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए सिजेरियन सेक्शंस अब ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल भी बिगड़ गया है। सो ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ सवाल, क्या बेटर है नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन? नॉर्मल है तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, सिजेरियन है तो क्या बेनिफिट्स हैं और क्या कमियाँ हो सकती हैं, हमें बता रही हैं डॉक्टर दीप्ति गोयल। सो डॉक्टर दीप्ति, अभी आपने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत सिंपल है और बहुत रिकवरी वाइज बहुत अच्छा रहता है मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ सी सेक्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये आजकल की लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छा ईजी ऑप्शन है, क्या ये ईजी ऑप्शन है?
1: सिजेरियन इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी ऑप्शन। सिजेरियन भी पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत मुश्किल पीरियड होता है, इट्स नॉट ईजी। देर आर 7 लेयर्स जो सिजेरियन में ओपन होती हैं, तो हाउ कैन इट बी ईजी? इट्स नॉट एन ईजी ऑप्शन, बट येस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस बिकॉज ऑफ एनेस्थीजिया पेशेंट को पेन फील नहीं होता है, बट आफ्टर सिजेरियन रिकवरी में टाइम लगता है।
0: जी जी जी, यानी रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अब मैं आपसे जानना चाहूँ तो किस किस सिचुएशन में सिजेरियन आप रिकमेंड करती हैं एज अ डॉक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अक्सर बोलते हैं कि कई डॉक्टर्स ना जब डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही होती, बहुत लेट होता है, ये अक्सर हमने सुना है कि जब डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लग रहा होता है तो डॉक्टर्स फटाफट सिजेरियन करके जो है वो करना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोसेस में समय ना लगे, जल्दी हो जाए काम। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉइंट अपने लाते रहते हैं अक्सर।
1: बिल्कुल, हम ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेली फेस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पेशेंट्स आके हमें ऐसे ही बोलते हैं कि सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे बेबी भी बिल्कुल ठीक है, मदर भी बिल्कुल ठीक है, हमने एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को एडमिट किया है, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि एडमिट नॉर्मल के लिए करने के बाद भी हमें सिजेरियन करना पड़े, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस मतलब बेबी की हार्ट बीट जो है वो कम होने लगी है। जैसे मैंने बताया कि जब पेन्स आते हैं तो मदर के साथ साथ बेबी को भी स्ट्रेस होता है, उसका भी ब्लड फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जब पेन चला जाता है तो वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। जब बेबी वीक होता है या कोई और इंट्रिंसिक प्रॉब्लम होती है, लेबर बहुत लंबी चली होती है, तो ऐसे केसेस में बेबी उस स्ट्रेस को नहीं ले पाता और उसका हार्ट बीट डिप होने लगता है या फिर वो मिकोनियम पास कर देता है, जिसमें हम कहते हैं कि ग्रीन कलर का जो वाटर है वो हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। उसके साथ साथ एक प्रोग्रेस ऑफ लेबर का एक रूल होता है, आप ऐसे नहीं है कि आप आज एडमिट कर रहे हैं और आप 3 दिन तक डिलीवरी के लिए वेट करते रहेंगे। अगर आज हमने पेशेंट को एडमिट किया है तो बिफोर टुमोरोज नाइट पेशेंट शुड हैव बीन डिलीवर्ड। अगर हम उससे ज़्यादा पेन्स में पेशेंट को रखते हैं तो वो बेबी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, मदर के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है, बेबी की हार्ट बीट डिप हो सकती है और किसी भी कॉम्प्लिकेशन में वो दोनों लैंड अप कर सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस में एक डिक्टम होता है, सन शुड नॉट सेट ट्वाइस एंड राइज ट्वाइस ड्यूरिंग लेबर। तो ये हमें फॉलो करना पड़ता है विद इन 36 आवर्स, मतलब इट शुड नॉट बी 48
0: लेना पड़ता।
1: 36 आवर्स में आपको डिलीवरी हो जानी चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है या पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है जो कि मैनेज नहीं हो रहा है, या फिर बहुत देर से 7-8 आवर्स से एक ही फाइंडिंग पे पेशेंट रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम फिर सिजेरियन करना ज्यादा प्रेफर करते हैं।
0: जी, यानी ये सिचुएशन जैसे डायबिटीज बहुत लोगों को हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज है या हाई बीपी हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे और मदर दोनों की सेफ्टी के लिए सिजेरियन किया जाता है। डॉक्टर साहब, सिजेरियन में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? जैसे नॉर्मल में आपने बताया कि लास्ट मिनट पे कॉम्प्लिकेशंस आती है तो हमें सिजेरियन करना पड़ता है, क्या सिजेरियन में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं?
1: सिजेरियन कॉम्प्लिकेशंस आर जस्ट लाइक एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि इन्फेक्शन का रिस्क होता है, ब्लीडिंग का रिस्क होता है. अगर बहुत देर से पेशेंट लेबर में था तो यूट्रस जो है वो डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, उसको हम पोस्टपार्टम हैमरेज बोलते हैं. जिसमें बहुत हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, कि आपने सुना होगा कि डिलीवरी हुई और अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई. तो नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट कि इस पेशेंट को होगी कि नहीं होगी. हमें थोड़ा एक आइडिया होता है पेशेंट प्रोफाइल से कि इस पेशेंट को हाई रिस्क है पीपीएच का, बट सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमारी पीपीएच ही होती है. आफ्टर सिजेरियन या नॉर्मल के बाद भी हो सकता है, बट सिजेरियन में भी उसका रिस्क काफ़ी होता है.
0: ओके तो ऐसे सिचुएशन में एक डॉक्टर की टीम को और फैमिली को क्या तैयारी करनी चाहिए?
1: मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डिलीवरी शुड बी ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल. किसी छोटी जगह पे कभी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए. डिलीवरी हमेशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मदर के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आईसीयू अवेलेबल हो, बेबी के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आईसीयू अवेलेबल हो, ब्लड की ज़रूरत पड़े तो ब्लड अवेलेबल हो. अगर को सर्जन्स की ज़रूरत पड़ रही है, हमारे आईसीयू स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, फिजिशियन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सारे डॉक्टर्स एज ए टीम वहाँ पर अवेलेबल हो. ऐसी जगह हमेशा डिलीवरी होनी चाहिए. छोटी जगह डिलीवरी मैक्सिमम टाइम्स हो सकता है सही हो, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं देन इट कैन टेक अ टोल ऑन लाइफ आल्सो.
0: बिल्कुल बिल्कुल. सो एक अच्छा सिस्टम होगा जहाँ पर पीडियाट्रिशियंस अच्छे हों, जहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट अच्छी हो, जहाँ पर एक पूरा सेटअप हो जो मदर और बेबी को हेल्प कर सकता है, वो होना ज़रूरी है. डॉक्टर साहब, बहुत सारी लेडीज़ को ये कहा जाता है कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर बच्चे का जन्म होना चाहिए. फैमिलीज इसमें बहुत बिलीव करती हैं. सो सबके अपने अपने बिलीव होते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस हफ्ते से किस हफ्ते तक ये जो मुहूर्त वाली चीज़ है या जो डे और टाइम देखकर जो चाइल्ड बर्थ प्लान किया जाता है वो ठीक रहता है? क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो वेट करते हैं कि नहीं 40 हफ्ते हो जाएं, उसके बाद कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा बेहतर है. कई लोग कहते हैं नहीं पहले कर दीजिए, ये मुहूर्त बहुत अच्छा है.
1: हमारा बेबी फुल टर्म 38 वीक्स पे हो जाता है.
0: ओके
1: 38 वीक्स के बाद अगर किसी मेडिकल रीजन से या किसी और रीजन से हमें डिलीवरी करनी पड़ती है तो वी कैन प्लान द डिलीवरी.
0: ओके
1: मुहूर्त डिलीवरी नहीं होती, मुहूर्त सिजेरियन होता है. नॉर्मल डिलीवरी को मुहूर्त में प्लान करना इज नॉट पॉसिबल. अगर कभी किसी पेशेंट का हमें ऑलरेडी पता है कि सिजेरियन ही होगा, जैसे कि मान लीजिए उसके पहले 2 सिजेरियन हो चुके हैं और हम 3rd सिजेरियन प्लान कर रहे हैं, या बेबी उसका ट्रांसवर्स पोजीशन में है, या उल्टा बच्चा जिसे हम कहते हैं उल्टा है, किसी का प्लेसेंटा बिल्कुल कवरिंग कॉज है, या कोई और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें पता है कि हमें इस पेशेंट का सिजेरियन ही करना है, ऐसे पेशेंट्स को हम एक ऑप्शन दे सकते हैं इफ देयर इज नो मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन. अगर पेशेंट हमें कहता है कि हमारा मुहूर्त 1.5 महीना पहले का है तो हम नहीं कर सकते.
0: बिल्कुल.
1: लेकिन जब हमारा बेबी फुल टर्म हो गया है उसके बाद एक दिन पहले या एक दिन बाद में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता
0: नहीं
1: है, बट वो एक दिन एट 34 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आफ्टर 38 वीक्स वी कैन एडजस्ट. मतलब इट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, इट शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी. फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेडिकल इंडिकेशन.
0: बिल्कुल बिल्कुल. कि जब होना है तभी उसको नॉर्मल प्रोसेस से लेके चले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. लेकिन हाँ, अगर एक दो दिन आगे पीछे का कुछ ऐसा मुहूर्त है तो वो आप प्लान कर सकते हैं. डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं ट्विंस की. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्विंस हैं तो सिजेरियन ही होगा, ऐसा होता है?
1: ट्विंस में सिजेरियन ही होगा नहीं होता, बट सिजेरियन का जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. ट्विंस में एक बेबी अगर हमारा नॉर्मली डिलीवर हो गया है तो कभी कभी सेकेंड बेबी की पोजीशन ऐसी होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से हमें सिजेरियन सेकेंड बेबी के लिए करना पड़ता है. तो जहां हम ऐसा प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि फिर हम पेशेंट को नॉर्मल के भी पेन्स देंगे और सिजेरियन भी करेंगे, तो दैट इज नॉट अ थॉटफुल आइडिया. तो ऐसे केसेस में फिर हम डायरेक्ट सिजेरियन करते हैं. बट अगर दोनों बेबीज बिल्कुल सही अलाइंड है, उनका वेट ठीक है, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम ट्विंस में भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं.
0: ओके यानी नॉर्मल के चांसेस हो सकते हैं. और ट्विंस में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सही टाइम क्या होता है, क्योंकि जनरली ट्विंस डिलीवरी जल्दी हो जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल चाइल्ड.
1: ट्विंस में हमेशा मेच्योरिटी 2 वीक्स पहले आती है.
0: ओके
1: जो मेच्योरिटी 40 वीक्स पे नॉर्मल प्रेगनेंसी में आती है वो मेच्योरिटी ट्विंस में 38 वीक्स पे आती है. तो ट्विन डिलीवरीज हमेशा पहले हो जाती हैं, उनके वेट्स कम होते हैं बट वो बेबीज मैच्योर होते हैं. साथ ही यूट्रस जो है वो ओवर डिस्टेंडेड होता है तो उसमें अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शंस टाइम से पहले स्टार्ट हो जाती हैं. दैट इज द रीजन कि ट्विन डिलीवरीज पहले हो जाती हैं.
0: जी बिल्कुल. सो बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, खास तौर पर से फर्स्ट टाइम मदर्स को, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो गया है। चीजें बहुत सारी हमें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, लेकिन ये चीजें सही हो, ये जानकारी सही हो, ये जरूरी नहीं है। तो एक्सपर्ट के द्वारा दी गई जानकारी बहुत जरूरी होती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं मॉम टू बी, तो जरूर कीजिए। 8010781078 पर अपने सवाल पूछिए और हमारी ऐप डाउनलोड करके रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर ढूंढ सकते हैं। आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर दीप्ति गोयल के साथ हुई ये सारी बातचीत कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में शेयर कीजिए। बहुत सारी बातें और भी करेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम मैं हूं दीक्षा आपके साथ प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातचीत चल रही है नॉर्मल वर्सेस सी सेक्शन डिलीवरीज के बारे में। चाइल्ड बर्थ एक बहुत ही खूबसूरत लम्हा होता है, लेकिन अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मदर को, फैमिली को, बच्चे को हर तरीके से तैयार भी रहना पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है आपके डॉक्टर का। सो ऐसे ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर दीप्ति गोयल, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर दीप्ति, एक और बहुत ज़्यादा आजकल जो चर्चा हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन होता है लोग उसको नहीं सहना चाहते, और फॉरेन में ये बहुत कॉमन है, एपिड्यूरल की बात होती है कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। इंडिया में लोग अभी उसको समझ नहीं पाए हैं कंसेप्ट को, तो मैं आपसे चाहूँगी कि ये ज़रूर हमें बताएं।
1: पेनलेस वजाइनल डिलीवरी इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज अगर मैं आज की डेट में बात करती हूँ तो बहुत सारे पेशेंट्स हमसे सिजेरियन की रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि उनको पेन्स नहीं लेने हैं, तो उसके लिए हमारे पास पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन होता है। पेनलेस डिलीवरी के लिए हम एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया एनल्जीजिया आई विल से हम देते हैं कि बैक में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि ड्रिप के जैसे फ्लो करता है पूरा टाइम। जैसे ड्रिप हमें एक कैनुला लगा दिया जाता है और उससे आईवी ड्रिप हमारी फ्लो होती है
0: बैक में पेशेंट के।
1: तो वो कैनुला नहीं होता, इट्स लाइक वेरी थिन स्ट्रिप जिसको हम स्पाइन में इंसर्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, और उसके थ्रू वो मेडिसिन पूरी हमारी चलती है। उसका बेनिफिट ये है कि आपको पेन्स फील होने बंद हो जाते हैं, पेन्स आने बंद नहीं होते। प्रॉब्लम यही है, लोगों को लगता है कि पेन्स बंद हो जाएंगे फिर डिलीवरी कैसे होगी। पेन्स आ रहे हैं बट आपकी सिर्फ सेंसेशंस ब्लॉक होती हैं। तो पेशेंट उठ के घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं,
0: अच्छा
1: कोई एक्सरसाइज करनी है वो कर सकते हैं, यूरिन पास करने के लिए जा सकते हैं, बट उनको पेन्स फील होने बंद हो जाते हैं और वो आराम से एग्जॉस्ट नहीं होते, आराम से अपनी डिलीवरी के लिए रेडी रहते हैं। जब पुश करने का टाइम होता है तो हम एपिड्यूरल को ऑफ कर देते हैं और पेशेंट को थोड़ी थोड़ी सेंसेशन आने लगती है, वहां पे हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी करा पाते हैं, पेशेंट बहुत कंफर्टेबली कराते हैं।
0: और ये कॉमन होने लगा है इंडिया में,
1: ये कॉमन होने लगा है। नाउ वी आर ऑफरिंग दैट फैसिलिटी टू ऑल आवर पेशेंट्स। आई विल से दैट इज द राइट ऑफ एवरी मदर। व्हाई टू सफर पेन, व्हाई टू सफर पेन।
0: बिल्कुल। सो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है और होता भी है कि आफ्टर दिस इंजेक्शन जो हम नॉर्मली सिजेरियन में देखते हैं बैक में जो इंजेक्शन लगता है उससे बाद में बैक पेन बहुत सालों तक रहता है, क्या इससे भी रहता है?
1: इससे बैक पेन होने का जो परसेंटेज है वो हार्डली 5% है।
0: अच्छा।
1: लेकिन बैकएक जो है वो पोस्ट डिलीवरी आई विल से 70% मदर्स को होता है। उसका रीजन ये इंजेक्शंस नहीं होते, ना ही सिजेरियन में जो इंजेक्शन लगता है वो होता है, ना ही जो एपिड्यूरल में इंजेक्शन लगता है वो होता है। उसका रीजन होता है आपकी बैक की जो मसल्स हैं वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारा वेट गेन हो रहा है, हमारा जो टमी है वो एक तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो एक इररेगुलर वेट गेन हो रहा है हमारा, पूरी बॉडी पे नहीं हो रहा है,
0: ऐसे हो जाते हैं।
1: तो बैक को बहुत काम करना पड़ता है हमें इरेक्ट पोस्चर में रखने के लिए, हमारी मसल्स एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। पोस्ट डिलीवरी हमें उसके लिए एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, लेकिन हम पूरा टाइम बेबी के साथ बिजी होते हैं, फीड कराने में लोगों का पोस्चर बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो इन सब चीजों की वजह से बैकएक होता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी होगी, बैक स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, बट एपिड्यूरल कैन नॉट बी द रीजन एवरी टाइम फॉर अ बैकएक।
0: ओके, एपिड्यूरल एक रीजन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं और ये ट्रीटमेंट IVF, IUI के नाम से काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ बेटर भी हुई है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि IVF, क्योंकि ये काफ़ी प्रीशियस प्रेगनेंसीज मानी जाती हैं, इसमें कभी ट्विंस होते हैं कभी सिंगल होता है, लेकिन ये काफ़ी प्रीशियस होती है बिकॉज इस प्रोसेस में बहुत कुछ झेलना पड़ता है मदर को, तो क्या इसमें सिजेरियन ही कराना पड़ता है?
1: ऐसा कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है और ना ही ऐसी कोई गाइडलाइन है कि अगर IVF कंसीव किया है तो सिजेरियन ही कराना है। अगर पेशेंट नॉर्मली लेबर में एडवांस कर रहा है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हो, बट यस वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि बेबी को या मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर एवरीथिंग गोज फाइन, गो फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी, बट इफ इट्स रिस्की और कॉम्प्लिकेटेड देन आई विल से कि यू शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन।
0: ओके, ये वो ज़्यादा बेटर है, किसी भी तरीके की रिस्क लेने से बेटर है कि आप सी सेक्शन की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, पर उसकी तैयारी कैसे करनी है वो इंटरनेट पर देख देख के प्रीनेटल योगा या इन सब की प्रिपरेशंस करते हैं, बट एक्चुअली में क्या करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बढ़ा जा सके?
1: If everything is fine and you are proceeding for a normal delivery, सबसे पहले अपने आप को mentally strong बनाओ कि हाँ pains जब start होंगे तो मुझे उन pains को थोड़ा bear करना है. Because हम जो painless का injection देते हैं वो भी हम starting से नहीं दे सकते. उसके लिए भी at least 3 to 4 centimeter की dilatation होनी चाहिए, उसके बाद हम वो injection patients को दे सकते हैं. उसके साथ साथ आपको physically active रहना बहुत ज़रूरी है. Because जैसे मैंने बताया कि पहले लोग बहुत physically active थे इसलिए normal delivery होती थी. तो अब वो one day में नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको पूरा 9 months अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी. एंटीनेटल क्लासेस होती हैं जो कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस सिखाते हैं. लमास सेशंस होते हैं कि आपको लेबर में कैसे बिहेव करना है. ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, वो सब सिखाया जाता है ताकि आपकी लेबर जो है वो स्मूथली निकल सके. तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनका अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेस का नाम लूँ तो कैट एंड काउ पोजेज हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस हैं, कीगल्स हैं, डक वॉक है, स्क्वाट्स हैं. तो वो राइट टाइम पे राइट एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हो
0: पर एक्सपर्ट की गाइडेंस में.
1: यस ऑब्वियसली. यस
0: डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जब डाइट की बात करते हैं तो मदर्स को बहुत ज़्यादा घी और बहुत सारी पंजीरी और दूध और ये सारी चीज़ें जो हैं पहले ही खिलानी शुरू कर देते हैं कि ये सब कुछ ईजी हो जाएगा, बाद में भी बहुत कुछ खिलाते हैं. इसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो ऑफकोर्स होता होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वेट गेन बहुत ड्रास्टिकली होता है. सो ये कितना सही है?
1: एक हमारी सोसाइटी में कॉमन मिथ है कि अगर आप पेशेंट मदर को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो उसको घी पिला दो हाँ, तो उसका जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी. जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और जो हमारा बर्थ कैनाल है दे आर नॉट कनेक्टेड एनीवे. जो आप घी पियोगे वो सिर्फ इंटेस्टाइन में जाएगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, फैट बन के डिपॉजिट होगा. उसके साथ साथ जब आपको पेन्स आएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है. तो अगर आपका स्टमक ज़्यादा फुल होगा तो उस वजह से आपको वॉमिटिंग्स और अनइजीनेस ज़्यादा होती है. तो उस घी के लिए तो मैं बिल्कुल बिग नो है. जो हमारा घी का क्वांटिटी प्री डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी है, आई विल से कि मॉडरेशन में जितना आप कुकिंग के लिए आप जो भी घी ऑयल आप यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करो. उसके अलावा घी का कोई बहुत ज़्यादा मेजर बेनिफिट नहीं है. हमारी एक अगर हम हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की बात करें उसके हिसाब से जितनी फैट रिक्वायरमेंट है हमें वही लेना है. अगर किसी चीज़ का बेनिफिट है तो वो प्रोटीन इनटेक है. आपको अपनी डाइट में पल्सेस हैं, एग्स हैं, पनीर है, बेसन है, सोयाबीन है, इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ाना है जिससे कि आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो, हीलिंग फास्ट हो, चाहे नॉर्मल है चाहे सिजेरियन है. योर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर हीलिंग.
0: ओके जी, यानी प्रोटीन डाइट अच्छी लेनी चाहिए. पनीर है, टोफू है, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर लेते रहें तो वो बॉडी को आपकी स्ट्रांग बनाने में मदद करती है. डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि अगर इस विषय पर हम बात करें तो काफ़ी घंटों तक बात हो सकती है, बट हमारे पास लिमिटेड टाइम है. सो बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब देने के लिए आपने गाइड किया है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो मानव रचना और इस तरीके से गाइड करने के लिए.
1: थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच.
0: जी हाँ, नॉर्मल वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी. कोई मन में सवाल अगर रह गया है और आपने ये पूरा एपिसोड नहीं सुना है तो इसे आप सुन सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड करके. रेडियो मानव रचना और पॉडकास्ट सेक्शन में जाके आरजी दीक्षा के फोल्डर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डॉक्टर दीप्ति गोयल के साथ हुई बातचीत मिल जाएगी. इस टॉपिक पर एक मॉम टू बी को जानकारी ज़रूर होनी चाहिए एक्सपर्ट के द्वारा, तो ज़रूर ये जानकारी उनके साथ शेयर कीजिए. और साथ ही सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. All is well में आज बस इतना ही. दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों?
4: हेलो एवरीवन, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूँ गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। शी इज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच विद फिटर और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, जो आज हर एज ग्रुप के लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गाइड कर रही हैं। लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। उनकी अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लगभग 80 किलो से भी ज्यादा हो गया था, और साथ ही PCOD हाइपोथायराइड जैसे हार्मोनल इश्यूज से वो खुद भी जूझ रही थी। लो कॉन्फिडेंस और फिजिकली इतनी तकलीफ की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने चलने फिरने, दौड़ने और स्टेयर्स तक चढ़ने से मना भी कर दिया था। और इसी दौरान कोविड के वक्त फाइनेंशियल चैलेंजेस ने उनकी लाइफ को और भी मुश्किल बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब लाइफ टफेस्ट होती है तो वही से स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक भी शुरू होता है। उन्होंने एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सहारा लिया और अपनी जर्नी को सीरियसली लेते हुए INFS से न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की पढ़ाई भी की, और फिर जो हुआ वो तो सच में इंस्पायरिंग है। उन्होंने 26 से 28 केजी वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इम्प्रूव की, स्ट्रेंथ वापस पाई, और जहां उन्हें बेसिक मूवमेंट से भी रोका गया था वहीं आज वो कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करती हैं, साथ ही वेट लिफ्टिंग भी करती हैं और एंड्योरेंस एक्टिविटीज जैसे रनिंग में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ICN में भी स्टेज पर कदम रखा, जो उनकी मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आज वो लोगों को सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि अपने बॉडी को समझना, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाना और एक स्ट्रॉन्ग लाइफस्टाइल जीना सिखाती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलकर स्वागत करते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कोच सिमरन का। तो सिमरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे शो क्रिएटिव मंच में।
5: थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।
4: ओके, तो सिमरन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस अमेजिंग वंडरफुल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई, शुरुआत कैसे की आपने इस जर्नी की?
5: तो गौरी, मेरी फिटनेस जर्नी ऑनेस्टली एक चॉइस से ज़्यादा नेसेसिटी था। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा वेट 78-80 केजी तक चला गया, जहाँ मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं, बैक पेन, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ इम्पैक्ट हुआ। और कोविड के टाइम पर जब मैंने अपने फादर को लूज़ किया, उसके बाद हेल्थ मेरे लिए ऑप्शनल नहीं रहा, मुझे इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना ही पड़ा।
4: सो जब मतलब आपने जर्नी स्टार्ट किया, आपकी तो बहुत से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा होगा
5: जी,
4: फिजिकली भी और मेंटली, तो उसके बारे में आप हमें बताइए।
5: फिजिकली चैलेंजेस तो ऑलरेडी थे, इसीलिए ज़रूरी हो गया कि अभी हम अपनी हेल्थ पर काम करें, लेकिन मेंटल चैलेंज ज़्यादा बड़ा आया जब मैंने सोचा इस जर्नी को फॉलो करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेशेंस रखना, और सबसे बड़ी बात, क्विक रिजल्ट्स के ऑब्सेशन से बाहर आना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आज मैंने कुछ शुरू किया तो कल ही क्यों, दो हफ्ते बाद ही क्यों ना मेरा 2 किलो वेट गिर जाए
4: जी।
5: लेकिन तब समझ में आने लगा, क्योंकि मैंने अपना कुछ पढ़ाई करने के बाद ये जर्नी शुरू करी, तो एक माइंडसेट जरूर मेरा ये बन गया था कि मुझे क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स चाहिए
4: जी।
5: तो वो मेंटल ब्लॉक ज्यादा था, बट काम करते करते फिजिकली और मेंटली दोनों ही चीजों पे मैंने जीत पाई डेफिनेटली।
4: तो सिमरन, आपको कितना समय लगा अपने उस गोल को अचीव करने के लिए?
5: वैसे सच बोलूँ तो मुझे जर्नी शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है। शुरुआत तो मैंने कुछ किलो वेट कम करने के लिए ही की थी, लेकिन जब मैं इस जर्नी पर आ गई तो मेरे गोल्स भी चेंज होने लगे। सो अगर आप वजन की बात करेंगे तो आई थिंक मुझे 1-1.5 साल लगा पहला अपना 30 केजी के आसपास लूज़ करने के लिए, बट उसके बाद मेरे गोल्स चेंज चेंज होते ही चले गए. फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी की कॉम्पोजिशन के लिए मसल कितना ज़रूरी है. क्यों ना अब मैं मसल ट्रेनिंग करके थोड़ा गेनिंग करूँ एंड अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करूँ. तो आज मुझे इस जर्नी पे लगभग 4 साल हो गए, 4.5 साल.
6: और आप इतनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस लग रही है. मतलब बहुत उम्दा मैं कहूँगी आपने अपना एक जो वो चीज हासिल की है ना लाइफ में, बहुत अमेजिंग. वो तो देखकर ही आपको लग रहा है. सो उस टाइम पे आपका क्या कितना वेट था?
5: हाँ, तो मेरा आई थिंक 80 के आसपास थी मैं. और जिस दिन मैंने ये ठाना कि आज मैं, मतलब एक होता ना एक दिन जब आप सोचते हो कि आज तो स्टार्ट कर ही देंगे, कुछ दिनों से आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो. तो मुझे आज भी याद है कि 78 किलो का वजन मैंने देखा था स्केल पर. और खुद को जब मैं शीशे में देखती थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी क्या ये मैं हूँ, मैं ऐसी कब हो गई. तो वो मेरे सेकेंड बेबी के बाद जो शुरू के 5-6 महीने मैं उनके साथ बिजी रही. और ऐसा बोलूंगी कि 6 महीने बाद खुद को शीशे में देखकर होश आया कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं कैसी दिखने लगी, क्या मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही थी. और फिर फिजिकल चैलेंजेस अलग थे. तो वो 78 केजी का मार्क मुझे याद है. और एट दी एंड 1.5 ईयर के बाद जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टेज भी हिट किया तो मैं 52 केजीस पे थी.
6: वाओ, सुपर. सुन के भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल रहा होगा आपका ये सफ़र, लेकिन सीरियसली हैट्स ऑफ. सो सिमरन, जैसे आपको डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया था कि आपको चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, इवन स्टेयर्स चढ़ने में भी, तो मतलब क्या वो दिक्कतें रहती थी क्या, जैसे नी पेन वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे?
5: तो मुझे नी पेन, नी में क्रैकलिंग साउंड उठने बैठने पर, हालांकि मेरी उम्र शुरू के 30 सालों में ही थी, और बहुत ज़्यादा साउंड नी में आना, पेन होना सीढ़ी चढ़ते समय. और तब मैंने जस्ट ट्रेनिंग शुरू ही की थी. जैसे ही मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी तो जैसा होता है ना इंडिया में, वैसे ही सबको लगता है कि ट्रेनिंग करने से ही बीमार हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा. वही चीज़ हुई. डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी बोल दिया अरे आप लिफ्ट मत कीजिए. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर कि आपको जो चीज़ एक्चुअली हेल्प करने वाली है उसी को ही मना कर दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आज भी एक टैबू है. और तो और डॉक्टर की एडवाइस भी यही थी कि मुझे सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, मुझे बच्चों को उठाकर गोदी नहीं घूमना चाहिए, मुझे नीचे ज़मीन पर पालती मारकर नहीं बैठना चाहिए. तो ये और भी बड़ा एक रीज़न बन गया कि मैं कुछ करूं, क्योंकि ऑब्वियसली 30-32 में आप ऐसा तो लाइफ एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैं आज के बाद ये सब काम बंद कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है. तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूं, मैं ऑलरेडी अपना पढ़ाई शुरू कर चुकी थी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फिटनेस के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में, तो मुझे लगा मैं इसी पे प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगी. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके नीज़ में पेन है, यानी कि अगर आपको लगता है, जिसे हम बोल देते हैं कि गूंद कम हो गई है ना, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कार्टिलेज ख़राब हो रही है, उसको तो हम वापस नहीं डाल सकते, वो रिपेयर नहीं होगा. लेकिन कर क्या सकते हैं हम, अपनी बॉडी की वो मसल्स जो कि आपकी नी को या आपके आपको चलने फिरने में हेल्प करती है, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो आपकी क्वाड्स मसल, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स मसल, जो कि लेग चेन की वो मसल्स हैं, अगर वो ताकतवर हैं तो आपकी नी पे स्ट्रेन ही कम पड़ता है. लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको किसी कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसको बहुत ही माइंडफुली करना रहता है. अगर ऑलरेडी कहीं पेन है तो आपको इंजरी भी कॉज हो सकती है. तो वही, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करते हुए मैंने बहुत ध्यान से अपनी इंजरी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और बाकी सभी मसल्स को ऑब्वियसली ट्रेन किया. एंड फिर एक ज़िद ये भी हो गई कि मुझे चढ़ने के लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया गया था. तो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैराथन भी रन किया 1.5 साल के बाद, तो 10 किलोमीटर्स पे मैंने पोडियम फिनिश भी किया.
6: वाओ, वंडरफुल. सो एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगी कि मसल ट्रेनिंग क्या लेडीज़ के लिए भी उतनी ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी है?
5: हाँ बिल्कुल. मतलब ये तो आप देखिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैंने कहा कि एक टैबू है, और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये विमेन के लिए भी है. तो आयरन ही देखिए कि इंडिया में ही हम सबसे ज़्यादा इसमें, मुझे लगता है, डरते हैं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेन करें या ना करें. लेकिन अगर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं, जैसे कि आपने अगर कभी एक टर्म सुनी हो सार्कोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस. सार्कोपीनिया मतलब नेचुरली 30s के बाद आप अपने मसल्स को लूज़ कर रहे हैं 1% रफली हर साल. सो एक हम बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, यू आर लूजिंग इट. अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा. और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरसिस मतलब पोरस, हॉलो बोन्स। तो अगर इसके बारे में भी मैं आपसे डेटा शेयर करूं, तो इंडिया में 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड हैं, और सबसे बड़ी बात उनमें से लगभग 80% महिलाएं हैं। यानी कि जब हम देखते हैं कि 40s-50s के बाद अचानक से कोई गिरा या फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद बहुत इजीली फ्रैक्चर हो गया और फिर उनको बहुत टाइम भी लग जाता है, कभी कभी लोग बेड रिटन हो जाते हैं, क्योंकि इसको हम साइलेंट कंडीशन भी बोलते हैं। ये पता ही तब चलती है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। अच्छा। तब तक आपकी बोन्स बहुत वीक हो चुकी हैं। तो अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो आप इस सब के शिकार और ज़्यादा होने के चांसेस में हैं। अगर आप 20s-30s से ही अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दें तो ये कंडीशंस नहीं आएंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग करें, भले ही बीइंग अ मैन और बीइंग अ वुमन इसमें कोई फ़र्क नहीं है, मसल्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, सबकी बॉडी तो वही है, एनाटॉमी तो वही है। तो हमें मसल्स को ट्रेन करना चाहिए अपनी अपनी हड्डियों के लिए, अपनी मांसपेशियों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब एक वुमन ट्रेन करती है तो पूरा घर चेंज होता है। मैंने अपने घर में इसे ट्रेडिशन बनते देखा है। जहाँ हम इंडिया में कल्चर ट्रेडिशन की बात करते हैं, हम जो करते हैं, हमने अपने पेरेंट्स को पूजा करते देखा, हमने पूजा करना शुरू किया, हमने समझा कि भगवान है क्योंकि पेरेंट्स ने बताया, लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया कि हमें फिटनेस को देखना है, हमें न्यूट्रिशन में क्या खाना है। तो मैं कहूँगी वुमेन का ये करना तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आप करेंगे वो आपके बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। और इस सब का जो एक तरीका जो मैं देख रही हूँ मेरे घर में, मेरे छोटे बच्चे, मेरा बेटा 12 साल का हो जाएगा, मेरी बेटी 5 साल की होने वाली है, आप उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में पूछिए, आप उन्हें एक्सरसाइज की अहमियत पूछिए, वो आपको बताएंगे। तो मेरी डॉटर को कभी मैंने सिखाया नहीं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो पुशअप

0: बिल्कुल
1: फिर चाहे वो एक लड़का ही हो चाहे लड़की, चाहे
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं सिमरन यहाँ पे। सो दोस्तों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से अपनी इस वार्तालाप को जारी रखेंगे कोच सिमरन के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: सो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कोच सिमरन, जो हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके बता रही हैं वेट लॉस के, मसल ट्रेनिंग के। और ये खुद भी इन्होंने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है बॉडी का, बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया है। तो हमें अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है इनकी बात सुनने में। आगे और अपनी इस बात को जारी रखते हैं। तो सिमरन जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने अराउंड 26 to 28 kg वेट लॉस किया
1: जी,
0: तो सबसे इफेक्टिव चेंज क्या था जो आपने इम्प्लीमेंट किया?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा और ज़रूरी क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ेक्टिव चेंज क्या है। सबसे इफ़ेक्टिव चेंज है स्ट्रक्चर।
0: अच्छा,
1: अगर हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम सोचते रहेंगे हाँ आज कम खाकर देखती हूँ, दो दिन मैंने ये किया, आज फास्टिंग कर लेती हूँ, कल डिटॉक्स कर लेती हूँ, इस तरीके के स्ट्रक्चर से आप कभी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और उस स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, कैलोरीज को समझना। कैलोरी क्या है? एक एनर्जी यूनिट है। मैंने कोई खाना खाया, उसने मुझे कितनी एनर्जी दी, उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी सब में होती है, पानी को छोड़कर। सो कैलोरी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन का इनटेक फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अहमियत समझना, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो फैट लॉस का मतलब सिर्फ कम खाना खाना नहीं होता। स्मार्ट खाना, न्यूट्रिशनल आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मसल बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। सो यही इफेक्टिव चेंज है कि मैंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रक्चर डाला कि मुझे क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि मैं रिकवर कर पाऊँ, मेरा वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैं लाइफ में एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन बैठी हूँ, जिसको आप स्टेप काउंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि 10,000 स्टेप काउंट करना कोई मैजिकल है, लेकिन हम एक बस एक तरीका है अपने आप को याद दिलाने का कि इतना तो मुझे कम से कम चल देना चाहिए, 8,000, 10,000, 12,000, जो आपका डेली का कुछ मूवमेंट होना चाहिए। और आप जानेंगे गौरी, यही 5 चीज़ें हैं जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। आज भी मैं यही फॉलो करती हूँ, शुरुआत भी यहीं से।

0: हुई थी और मेरे कितने सारे मेंटीज, आई थिंक मैंने 400-500 लाइव्स को टच किया, ये सब भी यही करते हैं. बट सबको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, किसको कितना कैलोरी चाहिए, किसको कैसा स्ट्रेंथ ट्रेन करना चाहिए, यही एक स्ट्रक्चर है जो हम बिल्ड करते हैं और इसी स्ट्रक्चर पे टिका है फिटनेस आपका.
1: जी, मतलब आपने जो पांच चीजें बोली, जैसे कि एक अच्छी स्लीप लेनी बहुत जरूरी है और प्रॉपर पोर्शन आपको पता होना चाहिए,
0: क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेरी से अलग होगी. अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं नाप तोल करके खाना नहीं खाना चाहती, अगर मैं घर में एक जैसा ही खाना खाना चाहती हूँ, हम क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि मेरे को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी डॉटर की, मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की, या घर में और किसी की, या हमारे इन लॉज की, जो पेरेंट्स की, उन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है और सब एक जैसा न्यूट्रिशन नहीं खा सकते. लेकिन हम वो देखते आए हैं कि हमने दाल रोटी बनाई और सब खा लिया. हाँ, लेकिन उसमें
1: सबकी बॉडी अलग अलग,
0: बॉडी अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग खाना बनेगा. यहीं पे स्मार्ट न्यूट्रिशन काम आता है और कोचिंग भी काम आती है. जैसे मैं बहुत सारे लोगों को फिटर ऐप के थ्रू हेल्प कर रही हूँ, तो आप फिटर ऐप पर जाकर अगर सर्च करेंगे सिमरन कौर, आपको मैं न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोचेस में मिलूंगी, या वहाँ और बहुत सारे न्यूट्रिशन कोचेस.
1: हमने आपकी बहुत अमेजिंग वीडियोस देखी हैं, मतलब मैंने तो
0: जी. तो यही स्ट्रक्चर एज अ कोच भी मैं औरों के साथ बिल्ड करती हूँ और यही सबसे इफेक्टिव चेंज है जो आप लेकर आ सकते हो.
1: जी, तो सिमरन आपने बात की, आप कोच हैं जैसे कि, और बहुत से लोगों को आप ट्रेन करेंगे, तो अभी आपके अंडर कितने लोग हैं?
0: मेरे पास अभी एक्टिवली 100 से 120 मेंटीज. अच्छा. हैं और टोटल फिटर ऐप पर आई थिंक मैं ऑलमोस्ट 400 लाइव्स टच कर चुकी हूँ. आप देखेंगे ऐप पर जब सिमरन कौर सर्च करेंगे वहाँ पर है. और फिटर से पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, तो आई थिंक कुछ 100-150 लोगों को मैंने वहाँ भी ट्रेन किया है. सो मोर देन 500 पीपल मैं.
1: तो ये कैसे ऑनलाइन रहता है आपका?
0: हाँ, तो जैसे ऐप के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं या वहीं पे प्लान्स हम शेयर करते हैं, डाइट वर्कआउट प्लान शेयर होते हैं, तो मेरे मेंटीज मुझे अपने वर्कआउट की वीडियोस, चाहे वो होम वर्कआउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिगनर हैं, जैसे आपने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बिगनर हैं वो अपना वर्कआउट प्लान, वहाँ वीडियोज़ भी होती हैं, तो वो वीडियोज़ के थ्रू शेयर अपना स्टार्ट करते हैं. तो मैं बहुत पर्सनलाइज करके प्लान बनाती हूँ, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किसी को नी में पेन है, किसी को और कोई इशू है, सब एक जैसा ट्रेन भी नहीं कर सकते एज वाइज, हार्मोनल वाइज, वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, सेम फॉर न्यूट्रिशन. तो वहाँ प्लान्स होता है एंड फिर वीकली हम अपने मेंटीज से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपना स्टैट्स, अपने मेजरमेंट्स डालते हैं. अदरवाइज व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू हम डेली भी कनेक्ट करते हैं. अकाउंटेबिलिटी, इन्हीं पांच चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी, कि आज उनका डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर इनटेक और उनके स्टेप काउंट कैसे रहे, क्या स्ट्रगल है, क्योंकि कोचिंग बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या जो मैंने बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझा कि इस चीज़ को या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वहाँ एक कोच आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रांसफॉर्म करने में.
1: और कोच क्या, हम तो कहेंगे हर चीज में गुरु होना तो बहुत जरूरी है ना. तो आप भी एक गुरु ही हैं जो दिशा दिखा रहे हैं, चाहे फिर वो वेट लॉस की जर्नी किसी की क्यों ना हो, तो वो बहुत जरूरी है. सो आपके जितने भी, आप इंडिया में ही करते हैं, इंडिया से बाहर भी आपके कुछ हैं क्लाइंट्स?
0: फिटर बहुत सारी कंट्रीज में कर रहा है, मोर देन 100 कंट्रीज. तो मेरे पास बहुत सारे मेंटीज जो है NRIs भी हैं
1: जी,
0: जो बाहर रह रहे हैं, और उनके लिए स्ट्रगल्स और भी ज्यादा हैं. समझिए, जब मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें घर के काम, उनके बच्चे, और वर्किंग वेमेन है, और बहुत सारे पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन है, हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ये वहाँ सक्सेसफुल ज़्यादा देखा है, जहाँ पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की जर्नी समझते हैं, क्योंकि इसमें आपको हेल्प चाहिए. इंडिया में तो हमें फिर भी हाउस हेल्प या पेरेंटल हेल्प भी हो जाती है, और यहाँ पे लाइफ ईजियर है थोड़ी सी, शायद मैं ये कहना चाहूँगी. ये मैं अपने जैसा मेरा, मैं देखती हूँ मेंटीज के साथ काम करती, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कह रही हूँ. बट फिर भी अगर आप बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है.
1: बिल्कुल. तो सिमरन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुमेन के लिए क्यों इतनी जरूरी है, स्पेशली इंडिया में जहाँ मिथ्स बहुत ज्यादा हैं?
0: तो मैंने जैसे आपसे शेयर किया, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या सार्कोपीनिया, जहाँ पे मसल लॉस बहुत इजीली हो ही रहा है 30s के बाद, रफली 1%, या फिर मैंने आपको बताया कि 5 से 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से अफेक्टेड है, 80% से ज़्यादा वुमेन है. और दूसरी बात, इंडिया में ये इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें लगता है घर के काम तो हम कर ही रहे हैं
1: जी.
0: बहुत सारी वुमेन जो वर्किंग है, जिन्हें हम नॉन वर्किंग बता देते हैं, वो वर्किंग से भी ज्यादा वर्किंग है. घर के काम उनके खत्म नहीं होते, फिर भी वही है जो स्ट्रेंथ लूज कर जाती हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है झाड़ू पोछा कर देना या घर में कुकिंग कर देना या बच्चों की सारा दिन हेल्प करना, तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन समझिए ट्रेनिंग और काम एक ही चीज नहीं है.
1: अच्छा,
0: तो ट्रेनिंग मतलब हर मसल को, कहाँ आपका मसल जॉइंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसको ट्रेन कैसा कर सकते हैं. तो मसल को आप कुछ ऐसा समझिए जैसे कि एक इलास्टिक बैंड है, आप उसे खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं छोड़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप हर मसल को, भले ही वो चेस्ट मसल, शोल्डर मसल, बैक मसल, ग्लूट मसल, सब मसल्स को हम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे इलास्टिक बैंड को अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे उसके कुछ कुछ रेशे आपको दिखने लगेंगे, ऐसे ही मसल के भी फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं.
1: अच्छा,
0: अब बॉडी अगर आपको एक चोट भी आए तो रिपेयर करेगी ना, नेचुरल प्रोसेस है. ऐसे ही जब आपने मसल को ट्रेन किया माइंडफुली कि मुझे आज ये मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, जो कि झाड़ू पोछे से या घर के काम से अकेले नहीं हो पाएगा, तो जब हमने माइंडफुली मसल्स को ट्रेन किया, आज मुझे यहाँ ट्रेन करना है ताकि उनकी रिकवरी भी हो पाए, रोज मैं एक ही काम करके ट्रेनिंग नहीं कर सकती, तो उसके बाद बॉडी उसको रिपेयर करती है, रिकवर करती है. उसके लिए हमें प्रोटीन इनटेक भी अच्छा चाहिए. तो वेट लॉस में इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कम खाने से वेट कम हो रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि आपका मसल कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है.
1: अच्छा, कुछ लोग सिमरन ऐसे भी होते हैं जो जिनकी डाइट बहुत कम होती है, बट वो बहुत मोटे क्यों होते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा. तो अगर हम मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे या नहीं रख रहे हैं, तो हमारा BMR, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है. यानी कि बॉडी जो एनर्जी बना पा रही है हमें प्रोटीन से, कार्ब से, फैट से, वो बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि उसे पता है आप स्लो खा रहे हैं, आप कम खा रहे हैं, तो वो प्रिजर्व करती है. अब जब बॉडी ने मेटाबॉलिक रेट ही कम कर दिया और आप वैसे भी मसल ट्रेन नहीं कर रहे थे, आप किसी भी तरीके का फैट डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे थे जहां आपने ट्रेनिंग नहीं की थी, यानी अपने आपके फैट से ज़्यादा आपका मसल गया. आपने देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चल चल कर या खाना कम खाकर वेट लॉस करते हैं, तो आपने जैसे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, आप जैसे मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ये चीज़ आपको उनमें नहीं दिखेगी. वो एक बड़े एप्पल से एक छोटा एप्पल बन जाएंगे, लेकिन फैट जहाँ था वहीं रहेगा. तो जब हमारा मसल ही कम हो गया, हमारा BMR नीचे आ गया, अब हमारी बॉडी को कैलोरी रिक्वायरमेंट ही कम है, हम जितना भी कम खा लें बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. इसीलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेन करें. ट्रेनिंग से आपकी बॉडी को पता चलेगा इन्हें प्रोटीन्स और मसल्स की ज़रूरत है. अब वो जो डेफिशिएट या आप 200-300 कैलोरी कम खाकर जो कर रहे थे, वहाँ फैट लॉस कर पाएगी और आपके मसल्स को बचा पाएगी.
1: आज तो मतलब हमें बहुत नॉलेज मिल रही है आपके थ्रू, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे तरीके से आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं. जनरली जो लोग होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, बिल्कुल ही नहीं पता हमें. जिसने आपने इतनी इसमें, आप कह रहे हो कि पढ़ाई भी की है और बहुत आगे आप और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं. डेफिनेटली हमारे लिसनर्स को आज बहुत ही ज्ञान की बातें मिल रही होंगी.
0: धन्यवाद.
1: सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच सिमरन। तो सिमरन, अभी आपने हमें बहुत सी बातें बताई, अब एक यहाँ पे मेरा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो ये बॉडी बिल्डिंग में आप किस तरीके से गए और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने इसके लिए कितनी मेहनत की, इसके बारे में बताइए।
1: मैंने जैसे बोला कि मेरी जर्नी की शुरुआत तो एक नेसेसिटी से ही हुई कि मुझे अब खुद के लिए कुछ तो करना ही है, मुझे अपने आप को चेंज करना ही है, यहीं से शुरुआत हुई। लेकिन जब आप जिस जर्नी में जाते हैं, आप अपने आसपास का वैसा ही माहौल ढूंढते भी हैं, आप और लोगों की तरफ देखते हैं जो आपके जैसे जर्नी पर हैं, तो वहाँ मुझे पता चला ICN के बारे में, आई कॉम्पीट नेचुरल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे वेमेन एंड मैन आते हैं नेचुरली ट्रांसफॉर्म कर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। और कैसे करा के लिए, तो मैं बोलूँगी इसके लिए बहुत डिसिप्लिन लगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन हो, चाहे आपका वर्कआउट हो, साथ में आप अपनी फैमिली और अपने काम को भी हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, मेंटीज को मैं हैंडल कर रही हूँ, तो काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, ये फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है आपको उस लेवल तक जाना जहाँ पर आप एक, जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच जाते हैं तो न्यूट्रिशन वाइज भी आप काफ़ी कम कैलोरी पर होते हैं, उस बॉडी की शेप के लिए जो आपको वहाँ प्रेजेंट करना है, आपके मसल्स की विजिबिलिटी के लिए, तो वहाँ मेंटल चैलेंजेस बहुत होते हैं। बट मैंने इसे काफ़ी इन्जॉय किया, मैं अपने आप को जान पाई कि मैं कितना स्टेबल और कितना कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ या कितना डिसिप्लिन ला सकती हूँ अपने अंदर।
0: और आप कितने घंटे मेहनत करते थे इसके लिए, मतलब दिन में कितनी, मतलब बोला जाए तो कितने आवर्स आप देते थे?
1: देखो, जनरली तो मैं 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, और हफ्ते में 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा मैं अपने गोल्स के हिसाब से चेंज करती हूँ कभी कभी। लेकिन ICN के टाइम पर मैंने 2.5 घंटे के आसपास वर्कआउट, और फिर अलग से मुझे अपने वॉक के लिए जाना या फिर ट्रेडमिल करने के लिए, कुछ HIIT के लिए जाना, वो भी मैंने साथ में किया, तो उसमें भी मुझे 1-1.5 घंटा शाम को भी डिवोट करना पड़ता था। एंड देन जैसे मैंने कहा कि मेंटल चैलेंज है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन बहुत प्रिसाइज होता है बॉडी बिल्डिंग में, तो वहाँ भी काफ़ी मेहनत लगती है।
0: जी सिमरन, आज की बिजी लाइफ में और आज का ये जो दौर आ गया है, इसमें हम देख रहे हैं ये PCOS और PCOD और थायराइड की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और छोटी छोटी गर्ल्स में भी, मतलब 15-16 साल 20 साल, मतलब इस एज में भी लड़कियों को हो रही है और बड़ी एज की लेडीज को भी है। सो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और किस तरीके से इससे हम बच सकते हैं?
1: जी, तो गौरी, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने मुझे पूछी है। मैं खुद आपको बताऊंगी, आई थिंक 2008 में मुझे पता चला था मुझे PCOD है, तो और आज की भी अगर मैं बात करूँ, तब आई थिंक अराउंड 10% वेमेन इससे अफेक्टेड थी। आज इंडिया में लगभग 17% वेमेन PCOD से अफेक्टेड हैं।
0: अच्छा
1: जी, और इसमें जानने वाली बात ये है, 17% से मतलब है दिस इज़ नॉट रेयर एनी मोर, ये रेयर कंडीशन तो नहीं है, यानी कि ये इतना कॉमन हो क्यों रहा है, ये हमारे लाइफस्टाइल, ये हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब आप डॉक्टर के पास भी अगर जाएंगे या जानेंगे PCOD के लिए हम क्या करें, जो आपने मुझे पूछा, तो आपको बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस करो, जो मुझे भी बोला जाता था। मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरा वेट तब हालांकि 55 के आसपास ही रहा होगा 2008 में
0: जी।
1: तब भी वो मुझे कहते थे थोड़ा वेट लॉस करिए, प्रोटीन ऐड करिए, प्रोटीन कैसे खाइए, क्या खाना है मुझे, तो बोलते थे चिकन खा लो, मैं थी ही वेजिटेरियन तब।
0: अच्छा,
1: तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे प्रोटीन्स ऐड करने हैं, तो ये कुछ ट्रबल्स थी वहाँ पर और जो आज भी हैं। तो लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करिए बोल दिया जाता है, लेकिन कैसे करें नहीं पता। तो जो 5 चीज़ें हम अभी बात कर रहे थे, यू नो, वही है इसका भी आंसर, कि अगर हम न्यूट्रिशन प्रॉपर खाएं, जहाँ अगर आप क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन नहीं भी ले रहे, बहुत सारे लोग हैं जो, हर किसी को शायद वेट लॉस नहीं करना, लेकिन अगर मैं PCOD थायराइड्स की भी बात करूं, तो अगर हम एक न्यूट्रिशन प्लेट ऐसा बनाएं जहां हमारे हर मील में कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आ जाए, है ना, हम वेजिटेरियन सोर्स, नॉन वेजिटेरियन सोर्स किसी से भी वो ले सकते हैं, तो अगर हम 20-25 ग्राम प्रोटीन, अच्छा फाइबर, 1/4 प्लेट को हम फाइबर यानी अच्छे सैलेड से या सब्जी जो हम घर पे बनाते हैं वहाँ उससे कवर करते हैं, एंड देन 1/4 पोर्शन कार्ब, अगर हम ऐसी प्लेटिंग भी फॉलो करना शुरू कर दें और वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि मसल सिर्फ मांसपेशियाँ जो हैं उन्हें हम ऑर्गन कहते हैं, मसल्स भी एक ऑर्गन है जो आपका मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा बीएमआर अच्छा होगा, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर हाई है तो बॉडी एफिशिएंसी से उससे एनर्जी बना पा रही है जो आप खा रहे हैं। तो यानी कि आपका खाना जो है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है, उसमें वैसे भी प्रोटीन ज्यादा है जो आपकी रिकवरी में यूज हो रहा है। कार्ब्स या फैट्स को हम थोड़ा लिमिटेड रखें, बंद नहीं करना है, ना तो आपको आटा ना दूध ना चावल कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। इवन इन पीसीओडी आई वुड से यू डोंट रियली नीड दैट, यू नीड टू बैलेंस योर प्लेटिंग।
0: हाँ जी, क्योंकि हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं बिल्कुल चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने, वो छोड़ दो।
1: देखो, मैं तो आती हूँ एक पंजाबी फैमिली से और ऑनेस्टली अगर आपने बोला कि आप मेरी कुछ रील्स देखते हैं, मैंने रिसेंटली भी डाला, मैं आज भी नाश्ते में परांठे खाना पसंद करती हूँ। लेकिन हाँ, वो परांठे मेरी मम्मी की तरीके से नहीं बनाए जाते, वो परांठे एक सिंपल रोटी की तरह या कुछ स्टफिंग वेजीज की अगर डाल देते हैं, बीच में ऊपर हमने 2 ग्राम घी रखा, इस तरीके से वो बना के, एंड फिर उसको हम पेयर अप करते हैं हाई प्रोटीन के साथ, है ना। हम उसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं, हम उसमें टोफू ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, हम एग्स ऐड या वे प्रोटीन हमने ले लिया और कुछ नहीं, तो ऐसी बैलेंसिंग की हमें जरूरत है।
0: मतलब चीजें वही है, बस तरीका
1: बदल गया, स्ट्रक्चर आ गया जो मेरी बॉडी के लिए सही है, कितना मुझे प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो और कुछ नहीं, जितना आपका बॉडी वेट है कम से कम उतना ग्राम प्रोटीन तो खाइए। ये तो आरडीए रिकमेंडेड है कि अगर मैं आज 60 किलो की हूँ तो 60 ग्राम तो मिनिमम मुझे खाना चाहिए। ये कोई थ्राइविंग नंबर नहीं है
0: जी,
1: ये सर्वाइवल नंबर है कि अगर आप ये भी नहीं खा रहे तो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट नहीं कर रहे। और आप हैरान हो जाएंगे इंडियन प्लेटिंग्स देखकर कि उसमें आपको बहुत मुश्किल से पूरे दिन में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा।
0: हाँ जी।
1: तो कैसे हम कहें कि हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा? ट्रेनिंग हम करते नहीं, झाड़ू पोछा है, घर का काम को हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझ लेते हैं। तो अगर हमारा मसल जा रहा है, ऊपर से हम प्रोटीन खा नहीं रहे, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो इस तरीके की कंडीशंस, और पीसीओडी एक मेटाबॉलिक हेल्थ कंडीशन है। अगर पीसीओडी है तो आप समझिए ये पूरा क्लस्टर है, आप उसमें जाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे और चीजों के साथ जुड़ के,
0: थायराइड,
1: इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ये एक क्लस्टर में मेटाबॉलिक कंडीशंस की आप क्लस्टर में फंसेंगे। मुझे भी पीसीओडी के काफी सालों बाद फिर थायराइड हो गया, फिर हाइपोथायराइड में वो आ गया जहाँ मैं 125 mg की पिल ले रही थी। लेकिन देखिए, यही लाइफस्टाइल, यही 5 चीज़ें फॉलो करते करते मैं आज पीसीओडी से भी बाहर हूँ। मैं बहुत गंदा एक्ने हुआ करता था मेरे फेस पे, फिर सूटिज्म, एक्ने, एंड देन थायराइड का पिल, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो।
0: एंड आजकल एक दो चीजें बहुत ही कॉमन है कि फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मेलिज्मा बहुत ज्यादा कॉमन है, और हेयर फॉल तो पूछिए ही मत। मतलब कुछ यहाँ का पानी भी बहुत ही हम अच्छा पी रहे हैं, लेकिन कितने भी आरओ लगा लो, क्या किस भी कंपनी के लगा लो, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का भी है कुछ फर्क, पानी वगैरह का।
1: हम जो ह्यूमन है ना, हमें अपनी गलती का दोष कहीं और डाल देना बहुत आसान लगता है। तो जहाँ हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, जहाँ हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, तो हम ढूंढ रहे हैं सबसे ईजी क्या है, शायद कॉर्पोरेशन ने पानी ही खराब दिया है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो कि यू नो आप सॉल्टी वाटर यूज़ कर रहे हैं, आप हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग से अच्छा हो जाता है। आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज करके तो देखिए, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपको पेन फ्री हार्मोन बोलते हैं उसको, हमारे डोपामिन रिलीज होंगे, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, पूरा दिन काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब वो सब चीज़ें सही रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमें स्ट्रेस को भी कम करना है तो हमें एक स्ट्रक्चर लाइफ बनानी पड़ेगी, भले ही आप कितने भी बिजी हों, आप कर सकते हैं
0: जी। और ये जो स्लीप की बात आपने की, तो क्या 8 घंटे की ही जरूरी है या 6 में भी काम चल सकता है?
1: कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि हम रिकवर करें, डिपेंड करता है। कुछ लोगों की नेचुरली नींद 6 आवर्स होती है, कोशिश करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं, अगर हम उसको कहीं से बैंडविड्थ बढ़ा सकते हैं, रात का नेटफ्लिक्स कम कर सकते हैं, या फिर हम चीज़ें टाइमली वाइंड अप कर सकते हैं, बच्चों को हम रूटीन पे जल्दी बेड पे डालें, ताकि हम अगर आधा घंटा खुद के लिए लेना भी चाह रहे हैं हम थोड़ा जल्दी जाएं। लेकिन हम तो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, और सुबह आपके पास उठने की शक्ति नहीं है। ये आपको बता रहा है कि आपको सोना चाहिए, और ऐसा नहीं आपके पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। मैं भी इन्हीं 24 घंटे पे जीती हूँ, जहाँ यही 100 मेंटीज़, 120 मेंटीज से भी कनेक्ट करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, 2 घंटे जिम में भी देती हूँ, टाइमली सोती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि 8 घंटे की नींद भी पूरी कर पाऊँ।
0: जी, तो मतलब 8 घंटे की नींद ज़रूरी है।
1: हाँ, नहीं हो रहा है तो 6.5-7 घंटे तो पहुँचिए, वहाँ तो पहुँचिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड। लेकिन स्लीप ना बहुत कंपाउंडिंग चीज़ है, हमें लगता है 5 दिन 5-5 घंटे सो के सैटरडे संडे मैं ज़्यादा सो लूँगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आज अगर मेरे फ़ोन की बैटरी 100 थी जब मैंने उसे चलाना शुरू किया, अगले दिन में 50% 30% पे वो भी डिम हो जाता है एंड वो आपको बताता है कि अभी रिकवरी चाहिए और वो बैटरी जो है वो लो होती जा रही है। सो अगर मैं अपनी बॉडी की भी बात करूँ, जहाँ आपने पूरी एफिशिएंसी से डे 1 शुरू किया, वहाँ जहाँ पे आप डे 2 पे पहुँचे, आपकी बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी 80-70% है क्योंकि आपने रिकवर नहीं किया। फिर दूसरे दिन उस थकी हुई बॉडी से, जहाँ ऊपर रेड बैटरी हो चुकी है 20%, उस थकी हुई बैटरी से जब आप अगला दिन निकाल रहे हैं तो आप और ज़्यादा थक रहे हैं। तो जहाँ शायद उस दिन 8 घंटे की ज़रूरत या 7 घंटे की ज़रूरत थी, आप सोचें कि कल 2 घंटे फालतू सो लूँगी, आप नहीं रिकवर कर पाएंगे। वहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स, सेरोटोनिन लेवल्स, आपकी कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाएगा। आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फिर PCOD या थायराइड जैसी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी।
0: जी सिमरन, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमारे लिसनर्स को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बातें आपसे जान के समझ के, क्योंकि वो जो एक तरीका है आपके समझाने का, तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे आप बता रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर, और काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे लोग आज, इवन मैं भी हो रही हूँ, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
1: थैंक यू गौरी।
0: सिमरन, अभी हमने बात की PCOD, PCOS, थायराइड, और आपने जैसे खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, सो क्या डायबिटीज भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिवर्स हो सकती है? मतलब हम सुनते हैं बहुत से एड्स भी आते हैं कि हो सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो, तो ये कहाँ तक सच है ये चीज़ या फिर मिथ है?
1: नहीं, ये बिल्कुल मिथ नहीं है। मैं खुद बहुत सारे ऐसे मेंटीज़ के साथ काम कर रही हूँ और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस भी मैंने अपने ऐप पर या अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे हैं, जहाँ पे हमने डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया है, जहाँ HbA1c 7-8 से नीचे लाकर हम 5.1 नॉर्मल रेंजेस में लेकर आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है आप ये कब शुरू कर रहे हैं। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, आज 7-8 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है
0: जी।
1: और बहुत बड़ी बात यह है कि 50% लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में जब आता है, धीरे धीरे धीरे जब कंडीशन बहुत बढ़ जाती है, तब जाके इस चीज़ का डायग्नोसिस होता है कि आपको शुगर का प्रॉब्लम है। तब तक आपके ब्लड वेसल्स या आपके बाकी के ऑर्गन्स भी काफ़ी अफेक्ट हो चुके होते हैं
0: जी।
1: तो एक तो अपना रूटीन में खून की जाँच, अपनी बॉडी की कंडीशन का पता लगाना 3-6 महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए। जहाँ तक बात रिवर्सल की है, लाइफस्टाइल से काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। हाँ, अगर आप इंसुलिन पे पहुंच गए हैं या कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो टाइम ज़रूर लग सकता है, बट ये नॉट डूएबल नहीं है। डेफिनेटली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके ही ठीक किया जा सकता है।
0: और अब तो हम देख रहे हैं बहुत यंग एज में भी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है बहुत यंग एज में भी आने लगी है धीरे धीरे, तो वो कुछ नहीं है, वो वही पैटर्न है जो हमारे पेरेंट्स फॉलो करते आ रहे हैं और बोलते हैं अरे हम भी तो दाल चावल रोटी खा के पूरा दिन काम कर रहे थे, तो तभी तो उनको ये कंडीशंस थी। हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स को 40 के बाद 50 के बाद उनके एनर्जीज नहीं है, उनके इधर उधर हर जगह पे पेन है, और फिर भी हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, हम भी तो यही, तो वही तो गड़बड़ है, वहीं तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वहीं तो लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। आज की लाइफ तो और भी सिडेंट्री हो गई है, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो वो फिर भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी, हमारी लाइफ तो और सिडेंट्री होती चली जा रही है। तो यहाँ कुछ घंटे अपने लिए निकालना और अपनी डाइट को मैनेज करना, और वेट लॉस भी उसके अंदर एक पार्ट आ जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के क्लस्टर में फंसे हैं, तो वेट भी डेफिनेटली काफ़ी ऊपर होता है मोस्टली लोगों का। तो अगर आप लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, आपका HbA1c, आपके शुगर लेवल्स भी नीचे आ सकते हैं और आते हैं। जैसे मैंने कहा, मसल्स आपके एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी बाकी की चीज़ें जो बॉडी की हैं वो खुद से सुधरने लगती हैं।
0: जी, मतलब डायबिटीज़ से हम शुरू होने से पहले ही बच भी सकते
1: बच हैं। तो सकते हैं 100%। तो जब अगर हमें आज कोई कंडीशन नहीं है तब हेल्थ के बारे में सोचना और भी ज्यादा जरूरी है, ताकि ये सब जब आए, जैसे मैंने आपको पोरस बोन्स के बारे में बताया, ये तब पता चलता है जब 60-70 की उम्र में गिर जाते हैं और पता चलता है कि हड्डी तो जुड़ भी नहीं रही, पोरस बोन्स थी आपकी, बहुत जल्दी से कोना लगते ही फ्रैक्चर आ गया। तो अगर वही ट्रेनिंग आप 30-40 आप बाहर की वेमेन को देखिए कैसे उनकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ट्रेनिंग। मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, काफी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, जहाँ बैटल रोप हो रहा है
0: जी।
1: एक तरफ में साड़ी वाली सारी जो हमारी गांव वाली विलेज वाली जो वुमेन है, जिन्हें हम कहते हैं ये तो ताज़ा घर का खाना पीना और अच्छा भैंस का दूध लेती हैं और घी ले रही हैं, वो सारी विमेन अच्छी हट्टी कट्टी विमेन जिन्हें हम बोलते हैं कि ये हेल्दी हैं, हम ऐसा ही बोलते हैं। और जहाँ दूसरी तरफ हमें लीन बॉडी विमेन दिख रही हैं ट्रेन करती हैं, जो शायद नहीं बोलूँगी डेफिनेटली, तभी वो इन विमेन से जल्दी वो बैटल रोप में जीत गए, क्योंकि वहाँ मसल की इंपॉर्टेंस है। घर के घी दूध की ज़रूरी ठीक है, आप ले रहे हो जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, लेकिन जहाँ आप ट्रेन करेंगे तो वहाँ विन विल बी डेफिनेटली योर्स
0: जी। और साथियों अब वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, और म्यूजिकल ब्रेक से आने के बाद फिर से कोच सिमरन के साथ अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कोच फिटनेस, जो हमें हमारी बॉडी हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सी चीजें बता रही हैं।
1: तो सिमरन, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारे बहुत से लिसनर्स हमारे शो को सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच को, तो उनमें से बहुत से ऐसे भी होंगे जो हमारा शो सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे और वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से या तो डर रहे होंगे बट डेफिनेटली करना चाहते होंगे अपनी जर्नी स्टार्ट, कि उन्हें भी अपना वेट लॉस करना तो होगा। और आजकल 70% लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते ही हैं।
2: बिल्कुल।
1: सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, बिना वेट ट्रेनिंग के भी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं?
2: गौरी, मैं उन्हें एक ही सलाह देना चाहूँगी कि शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, एक प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेनिंग के बिना वेट लॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, शायद रिजल्ट और भी तेज़ होगा। ये जानकर आपको बहुत अलग लगेगा कि फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए बोल ही क्यों रही हूँ, लेकिन जब आप ट्रेन करते हैं, देखिए, हमें वेट लॉस करने के लिए एक कैलोरी डेफिशिएट करना पड़ता है, यानी कि मेरी बॉडी को अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 कैलोरी खाना शुरू किया और मुझे लगा कि जो 200 कैलोरी का डेफिशिएट मैं कर रही हूँ, इसमें मेरी बॉडी फैट लॉस कर पाएगी, मैंने कम खाना शुरू किया। लेकिन होता क्या है, बॉडी के लिए स्टोर्ड फैट को मेटाबोलाइज करना उससे ज़्यादा ईजी है आपके प्रोटीन से एनर्जी बनाना, यानी मसल से एनर्जी बनाना। तो वजन तो आपको स्केल पर गिरता हुआ दिखेगा, तो ये जो स्केल का ऑब्सेशन है, इसको छोड़कर अगर हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि बॉडी गेट्स अ रिस्पांस कि हमें मसल की रिक्वायरमेंट है। याद है मैंने आपको ब्रेकिंग ऑफ फाइबर के बारे में बताया, तो वहां जब बॉडी उसको रिपेयर कर रही है, अभी बॉडी को सिग्नल है डेफिशिट का, अभी बॉडी को सिग्नल है रिपेयर का, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का, अब वो फैट को यूटिलाइज कर पाएगी आपके वेट लॉस के लिए। दोनों में फर्क क्या है, स्केल पे वजन तो गिर रहा है लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट का फर्क है। तो बहुत सारे लोग ऑन एंड ऑफ की जर्नी में फंस जाते हैं, वो वेट लॉस करते हैं, शायद वहां मसल लॉस ज्यादा था, आपका बीएमआर, आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है अगर मसल नीचे जाता है, तो अब वो मुझे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट ही कम हो गई, तो ऐसे लोग बाद में आते हैं, सिमरन मुझे तो हवा भी लग जाती है और पानी भी लग जाता है। क्योंकि उन्होंने मसल लॉस कर दिया, स्केल पे तो वजन गिरा लेकिन ना तो वो सस्टेन रहेगा, ना वो लॉन्ग टाइम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे,
1: नहीं कर पाएंगे।
2: जहां मैंने ट्रेनिंग किया, मैंने बॉडी की ट्रेनिंग से बीएमआर थोड़ा अपना बचाया या बढ़ाया, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट आज भी ज़्यादा है और मैं अब थोड़ा सा भी अभी डेफिशिएट कर रही हूँ तो मेरी बॉडी रिजल्ट दे रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रेनिंग ज़रूरी है, अगर आप शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहते हैं, आप डेफिनेटली कम खाना खा के कर सकते हैं, जो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, जो आई थिंक हम में से 90% लोगों ने ट्राई किया ही होगा कि आज कम खाना खाता हूं, या मैं तो फास्टिंग, या सिमरन मैं तो खाना ही नहीं खाता फिर भी मेरा वेट नहीं जाता। इसे अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि कम कैलोरीज में भी कैसे सर्वाइव करना है, वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। तो आप 200-300 कैलोरी का डेफिशिट करते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप ऐसे प्लान्स पे चले जाते हैं जो 1200 कैलोरी, क्या आप 1200 कैलोरी खा के लिटरली सस्टेन कर सकते हैं थ्रू आउट लाइफ? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ट्रेनिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, छोटे से डेफिशिट से अगर आप वेट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स भी अचीव करेंगे और सस्टेन कर पाएंगे उस वेट लॉस को, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।
1: जी, तो लिसनर्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो थोड़े टाइम वाला, 3 महीने कम होगा, देन उसके बाद फिर सेम। और सिमरन, हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग बोलते हैं हम तो बस दिन में एक ही मील लेते हैं शाम को 6:30 बजे या 6 बजे, तो ये क्या इससे वेट लॉस होता है?
2: सेम चीज़ है कि अगर आप सिर्फ कम खाना खा रहे हैं और चाहते हैं कि वेट लॉस हो जाए, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं कि मैं तो 12 घंटे का फास्टिंग कर दे रहा हूँ, है वो भी कैलोरी डेफिशिट ही है। कैलोरी डेफिशिट के काफ़ी तरीके हैं कि या तो आप कैलोरी नाप तोल के ले रहे हैं आपको क्लॉक से, तो मेरी बॉडी को ये नहीं पता है कि 7 बज गए हैं, अभी चावल जो है वो 800 कैलोरी बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो एक स्ट्रक्चर दिमाग को देने के लिए, मैं जो मेंटली नहीं कर पा रही हूँ क्वांटिफाइड डाइट कि मेरे को इतना राइस लेना है या इतना राइस नहीं लेना है, तो मैं उसको टाइम से बांध देती हूँ। तो टाइम से बांधिए या आप क्वांटिटी से बांधिए, करना तो आपको डेफिशिट ही है। और अगर आप बहुत ही कम, यानी कि एग्रेसिव डाइट पे चले जाएंगे, तो भी बॉडी सर्वाइवल मोड यानी जो मैंने आपको बताया अडैप्टिव थर्मोजेनेसिस, अडैप्टिव बॉडी अडैप्ट कर जाती है. और अगर आप बहुत बड़े बड़े डेफिशिट्स क्रिएट करेंगे, एग्रेसिव डाइटिंग करेंगे, तो ये बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी प्लैटियो हिट करेंगे. फिर आप यही बोलेंगे कि हम तो एक ही मील खाते हैं लेकिन वेट तो जाता ही नहीं.
1: और बट मुझे लगता है कि उससे बॉडी अंदर से वीक होती है.
2: बिल्कुल होगी अगर आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, सो हम बात कर रहे हैं मैक्रोस की, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उतना ही जरूरी है. क्योंकि आपकी बॉडी का फंक्शन, जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिंस की रिक्वायरमेंट है, वो आप एक सिंगल मील से कैसे कवर कर पाएंगे. तो वो बहुत जरूरी है कि हम अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखें.
1: जी, तो सिमरन हमने आपसे बहुत सी बातें आज सीखी सुनी और काफ़ी हमारे लिसनर्स आज इंस्पायर भी हो रहे होंगे ये सब सुन के कि वेट लॉस जर्नी अगर उन्हें शुरू करनी है तो किस तरीके से वो करें. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. सो अब हम करेंगे एक रैपिड फायर राउंड, तो आप रेडी हैं उसके लिए?
2: जी बिल्कुल.
1: ओके, सो सिमरन, डाइट या वर्कआउट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
2: दोनों, बैलेंस इज रिक्वायर्ड.
1: कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग?
2: स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टर्म.
1: ओके, चीट मील या डिसिप्लिन?
2: डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी.
1: अच्छा, स्मार्ट आंसर. मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट?
2: जो आप सस्टेन कर पाए.
1: नाइस. एक फिटनेस मिथ जो आप तोड़ना चाहेंगी?
2: कि कम खाना खाने से वेट लॉस हो जाएगा.
1: वाओ, ये तो सुपर. थैंक यू सो मच. तो सिमरन, अब लास्ट में हमारे लिसनर्स जो ये शो आज सुन रहे हैं, क्रिएटिव मंच पर आप आई हैं, क्योंकि क्रिएटिव मंच पे क्रिएटिव फील्ड के लोग आते हैं, और मैं तो ये मानूंगी कि आपने भी जो ये चीज़ की, ये कला ही है आपकी, जो आपने अपनी बॉडी को, क्या इतना वेट था और इतना खूबसूरत अब आपने बनाया है, तो ये भी एक कला ही है, फिर चाहे वो अलग तरीके से, अलग जरिए से बनाया है. सो अभी तक हमारे शो पर म्यूजिशियंस, डांसर्स, फैशन इंडस्ट्री के भी लोग भी आए हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम क्रिएटिव मंच में एक फिटनेस कोच आई हैं. तो सिमरन, आप हमारे जो लिसनर्स अभी हमारा ये शो सुन रहे हैं, उन्हें आप एक क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे?
2: देखिए, जैसे आपने बात की कला की, जी, बहुत सारे कला, हर एक अपनी फील्ड से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो अगर हम कला की ही बात करें, जो भी लिसनर्स आज सुन रहे हैं हमें, उनका भी कोई ना कोई फील्ड है, और उस फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए है वो है उनका गोल.
1: जी,
2: तो ऐसे ही जब हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर हम अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म एक थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है लेकिन वो खुद ब खुद आ जाती है, तब जब हमारे पास कुछ गोल है और उसे अचीव कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर हमें पता है. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बेसिक पांच चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, जो एक स्ट्रक्चर हमें बनाना चाहिए, वो शेयर करूं. और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना एक गोल क्रिएट करिए, उस गोल को देखिए, आप वीकली अपना प्रोग्रेस लीजिए, नॉट ओनली थ्रू वेट बट थ्रू इंचज ऑल्सो, और उसको रखते हुए आप आगे चलते जाइए. और एग्रेसिव अप्रोच मत रखिए, ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको एग्रेसिव कैलोरी डेफिशिट की ज़रूरत है. बैलेंस रखते हुए, छोटे से डेफिशिट के साथ, लिटिल बिट स्टिम्युलेशन ऑफ मसल्स के साथ, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं.
1: जी, थैंक यू सो मच सिमरन, इतना अच्छे तरीके से आपने हमारे लिसनर्स को मैसेज दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
2: थैंक यू सो मच गौरी फॉर कॉलिंग मी हेयर. मैं भी फर्स्ट टाइम किसी टॉक शो का हिस्सा बनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये शेयर कर कर. और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो आज सुन रहे होंगे, अगर मैं कुछ 10% लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ उनकी जर्नी में, या उन्हें स्ट्रक्चर दे पाऊँ, या उन्हें एक पाथवे बता पाऊँ कि कैसे करना है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ. और अगर कोई इसमें मेरी गाइडेंस या हेल्प लेना चाहे तो वो मुझे फिटर ऐप पे सर्च कर सकते हैं, सिमरन कौर, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच. आई एम ऑल देयर टू गाइड देम. एंड मैं बहुत धन्यवाद करूँगी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा.
1: थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच. एंड हम आशा करते हैं फिर से आपसे जल्दी मुलाकात हो और ऐसे ही बहुत सी अमेजिंग बातों का ज्ञान हमें और हमारे लिसनर्स को मिलता रहे. सो साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी इसी शो में, क्रिएटिव मंच में. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
3: हाय, आई एम दिग्मांशु धूलिया, यू आर लिस्निंग टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
4: तुझे भी मैं करा दूं तमन चे पे दिस.
3: हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ एंड राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। हमारा शो हर एपिसोड बहुत खास लेकर के आता है जहां पर हम आपको कुछ वैल्यूज देने की कोशिश करते हैं। सो वी ट्राई टू डिकोड मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स, मल्टीपल स्किल सेट्स, जहां पर आपके लिए एक टेक अवे हो सकता है कि यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी थिंग्स इन अ वन सिंगल शो। आज का शो हमारा अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल टीम यहां पर बैठी हुई है। जो टीम है ये है खरोंच, एक वेब सीरीज आई है जो यूट्यूब पर आ चुकी है ऑलरेडी, और बहुत सुंदर सुंदर कलाकार हैं, बहुत सुंदर काम किया है सभी लोगों ने, उसकी पूरी जो कास्ट है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। खरोंच वेब सीरीज का नाम है, इसको डायरेक्ट किया है रजत शर्मा ने, लिखा भी रजत शर्मा ने है, और प्रोड्यूसर है इसके पंकज पलवलिया। पंकज भाई खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं और अभी यूट्यूब की तरफ उन्होंने रुख लिया है अपना। साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं मॉन्टी, मॉन्टी जो कई बार हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, कई दफ़ा आप इनकी आवाज़ हमारे रेडियो के माध्यम से सुन चुके हैं, हरियाणा के बहुत अच्छे कलाकार हैं, पगड़ी के नाम से इन्हें बहुत जाना जाता है क्योंकि पगड़ी बांधने में बहुत मशहूर हैं। साथ साथ दो और कलाकार हैं हमारे साथ, हल्लू भाई जिनका ओरिजिनल नाम हरविंदर है लेकिन मुझे मना किया गया है हरविंदर नाम ना लूँ क्योंकि हल्लू नाम से लोग जानते हैं, एंड साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं सोनू भाई। सबसे पहले मैं आप चारों का स्वागत करूँगा, शुक्रिया आने के लिए।
4: थैंक यू,
5: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगा पंकज भाई आपसे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, लोगों को आपके बारे में क्या पता होना चाहिए, इस टाइम पूरा फरीदाबाद और कुछ हिस्सा गुड़गांव का आपको सुन रहा है।
4: जी बेसिकली तो हम एक कंटेंट क्रिएटर ही हैं और फनी कंटेंट हम बनाते हैं, कॉमेडी की रील हमने स्टार्टिंग की थी बनाने की, तो उसको बनाते हुए काफ़ी टाइम हो गया था तो हमने सोचा कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, उसके लिए हमने फिर से एक बार टीम जोड़ी, अपनी टीम बढ़ाई और उसके बाद में हमने ये जो वेब सीरीज है इसमें हमें भाई मिले थे रजत शर्मा जी जो पहले भी काम कर चुके हैं, बॉलीवुड तक भी वो काम कर चुके हैं, तो उनके साथ उनके सानिध्य में मिलकर और टीम का हमारा अच्छा प्यार बना करके हमें एक बहुत ही प्यारा सा एक प्रोजेक्ट लेकर के अभी आए हैं।
3: जी जी, हेलो भाई आपसे मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं, अपने शब्दों में बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई।
6: मैं भी एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भाई के साथ रहता हूँ, भाई मेरे बड़े भाई भी कह सकता हूँ, गुरुजी भी है मेरे जिन्होंने हर चीज़ मुझे सिखाई है, ऐसे ऐसे करना एक्टिंग वगैरह जो भी, जो आज मैं खरोंच के लिए यहाँ पर आया हूँ तो भाई ने मुझे एक ऐसा अहम किरदार दिया है जो मैं बता नहीं सकता, आप सभी को देखनी पड़ेगी उसके लिए वेब सीरीज खरोंच यूट्यूब पे जाकर। आज के टाइम में हर कोई रील तो बना ही रहा है तो हमने सोचा कुछ हम अलग दिखाएं आपके लोगों को।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंडी जी आपसे बात करना चाहूंगा, आप बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं।
5: सबसे पहले तो सारे मानव रचना के जितने भी लिसनर हैं सारे ने मेरी राम राम। इसमें हमने खरोंच वेब सीरीज जो कि यूट्यूब चैनल सत्या साचा फिल्म पर आई है, इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं, एपिसोड 1, 2 और 3। अच्छा बीच में से देखोगे तो स्वाद भी नहीं आवेगा, आपने शुरू तो देखोगे जब मेरा लगेगा कि भाई इसका मतलब सिस्टम है क्या, ये स्टोरी क्या है, और जैसे एक बॉलीवुड लेवल पे एक मूवी में वेब सीरीज में काम होता है उससे भी अप लेवल का काम करने की पंकज भाई, रजत भाई ने, सुभाष भाई ने, देसी भाई ने टीम में काम करने की कोशिश करी है और इसी में एक छोटी सी अहम भूमिका मेरे को भी निभाने का मौका मिला है।
3: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने कुछ कुछ ग्लिम्पसेस देखे थे उसके तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब वो दिखाई दिया वहाँ पर कि प्रोडक्शन कितना अच्छे लेवल का आप लोगों ने किया है, मतलब जनरली बहुत अच्छा था। पंकज भाई मेरे आपसे एक प्रश्न रहेगा, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को कुछ नहीं पता है खरोंच के बारे में।
4: जी जी जी,
3: आप अगर इस कहानी को समअप करके इस तरीके से हमारे लोगों को बता सकें कि वो देखने पर मजबूर हो जाएं तो प्लीज़ इस कहानी का थोड़ा बहुत एक ट्रेलर अपने मुंह से बताइए।
4: ये एक जो वेब सीरीज है क्राइम के ऊपर आधारित है, इसमें क्या होता है कि ये एक गांव की स्टोरी है और इसमें जो हमारे जो मेन किरदार है उसके साथ किसी टाइम में कुछ गलत होता है तो वो चीज़ एक सस्पेंस के तौर पे अभी हम लेके चल रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन इसमें क्या है कि इस गांव के अंदर कोई भी अपराध नहीं हो रहा है पिछले 5 साल से किसी भी प्रकार का कोई अपराध, लेकिन ऐसा कोई स्थान होता नहीं है जहां कुछ ना कुछ अपराध नहीं हो, तो अपराध क्या है कि वहां पर जो एक बाबा हैं और सरपंच हैं उनके अंडर में कोई भी चीज़ें थाने तक नहीं पहुँच पा रही है, प्रशासन के पास नहीं पहुँच पा रही है, वो दबा रहे हैं सारी चीज़ों को जो भी कुछ गाँव में हो रहा है, तो उस चीज़ की जो आज के टाइम में रियलिटी भी होती है कहीं कहीं जगह पर, आप देखोगे आप थोड़ा सा बैकवर्ड में जाओगे तो वहाँ पर यही होता है कि पंचायत वगैरह में यहाँ पर दबा के या किसी भी प्रकार से प्यार से भी और उससे भी आदमी को रोक दिया जाता है, तो इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे उनको हम त्रुटि बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार की कमी बोल सकते हैं, उनको दिखाने की मेन कोशिश इसमें की गई है। और क्राइम ऐसा है कि इसमें जो मर्डर हो रहे हैं, जितने मर्डर होंगे उसमें सस्पेंस इतना है कि ये ही नहीं समझ में आएगा आपको लास्ट तक कि ये मर्डर कर कौन रहा है। और अभी हम आपको ये बता भी नहीं सकते, उसके लिए आपको अभी स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा वो सारी चीजें। तो ये इसका मेन।
7: ऑल राइट, गो चेक इट आउट, द नेम ऑफ द सीरीज इज खरोंच। जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे और रोहित शर्मा नाम का कीवर्ड यूज करेंगे, सो यू विल गेट इट। एंड फॉर दैट पार्ट यू हैव टू वॉच द एंटायर सीरीज, सो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली मर्डर कौन कर रहा है। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें मुझे करनी है, खासतौर पर कॉन्टेंट क्रिएटर्स जब यहाँ पर आते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है पर्सनली। विल टॉक अबाउट ऑन सो मेनी थिंग्स, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड फील लाइफ।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, आई जस्ट होप आपको मजा आ रहा है। अगर ये गाने आपको पसंद आए तो हमें बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर खरोंच जो सीरीज है उसकी टीम मौजूद है, और खासतौर पर कंटेंट क्रिएशन की यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन मेरा अगेन पंकज भाई आपसे रहने वाला है। प्लीज हमें बताइए कि कॉन्टेंट क्रिएशन की जो आपकी जर्नी हुई, कब शुरुआत हुई, कब आपको ऐसा लगा कि ये मुझे करना है और ऐसे करना है?
1: ये स्टार्टिंग में इसका तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ हमें मतलब इस लाइन में भी जाना है। जो एक्चुअल बात है तो उस टाइम क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था तो छुट्टियां मिल गई थी और गांव में रहने का टाइम मिल गया था, फ्री टाइम था, और उस टाइम टिकटॉक चलता था, अभी जो बैन है तो

0: ने बताया सेम ऐसे ही मेरा सिस्टम है। लॉकडाउन लगो, लॉकडाउन ने बहुत सारे क्रिएटर निकाले हैं। उस टाइम हम पबजी खेलते थे और टिकटॉक थी, तो वैसे ही नॉर्मली रील बना लेते थे। फिर मुझे पंकज भाई के बारे में पता चला, उनकी भाई भी रील बनाते, क्यों ना मैं भाई गैल टीम में रहने लगूँ। तो मैंने भाई से संपर्क किया, भाई ने बताया कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो फिर हम साथ में रह के रील बनाने लगे।
1: पंकज भाई, बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं क्योंकि अब कंटेंट क्रिएशन एक फुल फ्लेज्ड इकोनॉमी निकल के सामने आई है, जहां पर आपको पैसा भी उसका मिलता है, जहां पर आपको काम भी उससे मिलता है। बहुत सारे लोग इस टाइम पर जो हमारी आवाज सुन रहे हैं वो कंटेंट क्रिएट करना भी चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे, कैसे शुरुआत की जाए, हाउ टू फिगर इट आउट?
2: ऐसा होता है, स्टार्टिंग में तो हमें बहुत आसान सा लगता है कि चीज़ें हमारे पास बहुत सारे इतने कंटेंट है, हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना किसी भी लाइन की, या फनी हो या हमारा कोई व्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो फिर लगता है कि अब यार सारा कुछ खत्म हो चुका है इस पृथ्वी पे, इस चीज़ की कुछ बची नहीं है चीज़ें। तो इसमें क्या है कि सबसे मेन है कि टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप इस चीज़ में कर रहे हो तो साइड में भी अपना कुछ कर रहे हो तो उसको करते रहो। अगर प्रॉपर इस पर डिपेंड हो जाओगे तो फिर उसमें दिक्कत आनी पॉसिबिलिटीज हैं कंटेंट क्रिएशन में। दूसरा ये है कि अगर जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमारा भी यही था कि स्टार्टिंग में हम भी अच्छा कर रहे थे, बाद में हमें लगने लग गया था कि अब कैसे करें आगे। फिर मुझे एक वेब सीरीज थी स्टेज ऐप की, मेवात, वहाँ काम करने का मुझे मौका मिला था, तो उससे बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी थी वहाँ पर कि किस प्रकार से होता है। कि समझ लो कि थिएटर तो हमने नहीं किया, लेकिन उस जैसी चीज़ें बहुत सारी हमें सीखने के लिए मिली थी। तो जो भी भाई इस लाइन में अगर ट्राई कर रहे हैं तो उनसे यही कहूँगा कि अगर अपना जो काम आप कर रहे हो साइड में उसे जरूर करते रहें।
3: बहुत सुंदर।
1: तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हो, इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत आसान है, हो जाएगा। जब आप प्रोसेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अब प्रोसेस में घुस चुके हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है हर काम में दुनिया के, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट, फिर वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, वो एक्चुअल जर्नी होती है। जस्ट परस्यू दैट पर्टिकुलर ड्रीम एंड उस तरीके से आप वहाँ से निकल गए। अगर वहाँ तक आप पहुँच गए उस प्रोसेस तक जहाँ पर आपको ये जादू ही लगने लगता है सब, वहाँ से एक्चुअल एक यात्रा की शुरुआत होती है। चीज दैट पार्ट। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम शोमिया की बात करेंगे। और कुछ बातें हैं जो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, मॉन्टी से जानना चाहेंगे, पंकज भाई से बात करना चाहेंगे। विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। फील गुड, फील लाइव।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,

0: एक और बार अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं आरजे सागर, शो यहाँ पर चल रहा है वॉइस ऑफ यूथ एंड राइट नाउ यू लिसन टू रेडियो मानवश्रम 107.8 एफएम खरोच। वेब सीरीज की टीम हमारे बीच में मौजूद है जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ। आइए अब आगे अपने इस कारवां को लेकर के चलते हैं बातचीत के। और अगला प्रश्न मेरा मोंटी से रहने वाला है। मोंटी आप बताइए थोड़ा सा, आप क्या करते हैं एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम खरोच?
1: देखिए खरोच तो अब हमने अब करी है, उससे पहले से ही आप को मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी टीम को, रेडियो मानवश्रम की टीम को, कि हम शुरू से ही मतलब हरियाणवी चीज़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में रहे। तो मैं थिएटर भी करता था कॉलेज टाइम पे, मैंने धीरे धीरे देखा कि थिएटर में मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना डांस में आता था, खासकर फोक डांस में, हरियाणवी फोक डांस। तो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मज़ा आने लगा, करने लगा, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझने भी लगा। फिर पता चला कि इसमें आगे मैं कुछ और अच्छा बड़ा कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने एक टीम बनाई, टीम बना के मैंने अपना एक खुद का एक ग्रुप तैयार करके उसको बाहर लेके जाना, दूसरे जगहों पर जाना, पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में जाना, विदेश में जाना बच्चों के साथ। बड़ा अच्छा लगता है, हमारी टीम के आर्टिस्ट भी खुश होते हैं, घूमना भी मिल जाता है और काम भी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। हमें जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़े होंगे तब तक हमें ये पता होगा कि माता पिता की सेवा क्या है, बड़े छोटों का आदर सम्मान क्या है। और जो अपनी संस्कृति को छोड़ के उससे परे हो जाता है, तो आपने कई चीज़ें शहरों में सेक्टरों में ये देखी होंगी कि एक ही जगह पे सास ससुर मतलब बहुत बड़ी से बड़ी फैमिली के मेंबर और छोटे मेंबर, बहू बेटी सब ऐसे रह लेते हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप संस्कृति से जुड़ोगे तो हमारे जो बुज़ुर्ग कहते आए कि वही बहू मतलब वही ससुर की खाट वही बहू का पीसना ऐसे कुछ कहते हैं, तो वो इज्जत नहीं रह जाती। तो उन चीज़ों को हमने हरियाणवी अपनी संस्कृति में जब हम बड़े इसमें घुसे तो समझ में आया कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारा आदर सम्मान करने का तरीका क्या है। उसी के साथ मैं थोड़ी सी दो बातें पंकज भाई ने बताई थी अभी खरोच के लिए कि मतलब एक ऐसा गांव है जहां पर पुलिस के पास कोई केस जाता ही नहीं है, लेकिन अगर आप आज से मैं कहूंगा आप सन 2000 से अब तक ऐसी बहुत सी चीज़ें रही हैं कि गांवों से लोग शहरों में गए हैं, गांवों में अभी भी रह रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, पंचायतों में फैसले नहीं होते। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। पहले जो पंचायतों में पंच होते थे वो परमेश्वर होते थे, मतलब भगवान का रूप माना जाता था और वो सही फैसला करते थे। उनको परख करने की बड़ी अच्छी टेक्निक थी कि कौन गलत है और कौन सही। और ये सच है कि आज वो टेक्निक होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। आज हमारे पास तो मतलब पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी ही नहीं, तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ बना दी, AI एक ऐसी चीज़ आई है जिससे बहुत सारी चीज़ों का काम भी ख़त्म हो रहा है। तो अब इतना कुछ होने के बाद भी लोग साफ साफ फैसला नहीं करना चाहते, तो इसलिए अब लोग पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि अब जब आपको कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा तो आप कहां जाओगे? तो इसीलिए कानून बनाया है, कानून के पास जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है, देखिए बहुत सारे लोग शायद सुन के मेरी बात को बुरा भी मान जाएं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस के पास जाने के बाद भी इंसान को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अब सामने कौन बंदा सही है कौन गलत है ये फैसला इंसान नहीं करता, कागज करते हैं। जिसके पास सबूत है वो सही है, चाहे उसके वो गलत हो या सही हो वो सही है। और ऐसे बहुत सारे लोग आज भी अंदर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर भी अपना समय काट रहे हैं बेचारे, जिनकी कोई गलती नहीं है और बिना गलती के भी वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खरोच के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें भी इसमें वही जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेंगी। मैंने वो चीज़ महसूस करी है 3 एपिसोड में और अभी तो कारवा बाकी है।
0: बिल्कुल ज़रूर आपको खरोच देखनी चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि आपने संस्कृति का एक मुद्दा छेड़ा है, तो क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग हरियाणा में बैठे हुए हैं और हम सब लोग हैं भी हरियाणवी, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये ज़रूर जानना चाहूँगा पंकज भाई आपसे भी, मोंटी भाई आपसे भी, और आप दोनों के लिए भी फ्लोर ओपन है। ऐसा क्यों हुआ है कि बाकी तमाम जो कल्चर्स हैं, गुजराती कल्चर है, मराठी कल्चर है, बंगाली कल्चर है या पंजाबी कल्चर है, हर कल्चर को हमने कमर्शियल लेवल पर देखा है, बट अभी बीते कुछ टाइम से हरियाणा भी थोड़ा सा उठ रहा है हरियाणा कल्चर, मैं इस चीज को अग्री करूंगा। डांडा न्योली आड़ा सुमित पारता है, ये सारे अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं ये इसको लेकर के जा रहे हैं थोड़ा ऊपर लेवल पे। पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणवी कल्चर को इतना लेट क्यों नवाजा गया है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ पंकज भाई आपसे है, खास तौर पे क्योंकि आप पलवल से हैं, मैं खुद पलवल से हूँ, हमारे यहाँ की जो भाषा है पलवल फरीदाबाद की इसको अभी भी नहीं समझा गया है। आज भी अगर आप हरियाणा सुनेंगे तो आपके मुंह में वही आएगा कि केकरा है, कड़ेजा है, लेकिन एक्चुअली
2: हमारी ब्रिज में आ जाता
0: है, हमारा ब्रिज टच है, उसको हरियाणा में नहीं गिना जाता।

0: है। तो दो क्वेश्चन है मेरे।
1: पहला तो ये है कि जो अपने हरियाणा की है ये भाषा नहीं है, ये बोली है। और बोली में भी हमारे अंतर है, क्योंकि एक साइड में तो बागड़ आ गया जो हमारा महेंद्रगढ़ साइड है, वहाँ की भाषा अलग है, फिर रोहतक की अलग है, फिर थोड़ा सा हम चलेंगे केथल और करनाल की, और फिर हमारा तो बिल्कुल ये गुड़गांव से आधा गुड़गांव लगा लो फरीदाबाद और पलवल का तो पूरा ही बिल्कुल ही भाषा ही अलग है उनकी, फिर भी कहीं ना कहीं टच हो जाता है। और कारण क्या रहा है कि हमारी जो लेट इस चीज़ पे हुई है कि हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा जो ग्रो की है तो उससे हमें भी दिखना शुरू हो गया है, लेकिन हमारा जो सिनेमा है उसने बहुत लेट टाइम से स्टार्ट किया है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हाथ है कि अभी थोड़ा सा हम जो दिखने लग गए हैं सभी जगह। अब आप देखोगे तो हमारे जो एक्टर हैं, पहले क्या होता था कि कुछ भी जाकर के बॉलीवुड में बोल दो भाई के कर रहा है, तो मतलब कि उसमें आपका हरियाणवी टच होना चाहिए, के बोल दो बस, ये होता था। अब जैसे हमारे जयदीप अहलावत भाई हैं वो क्लियर प्योर हरियाणवी बोलते हैं, पहले इनको अलाउड नहीं था। हमारे यहाँ से ही एक एक्टर थे, अभी गदर में भी उन्होंने काम किया था, हमारे गुरुजी भी हैं संदीप शर्मा जी, तो वो बता रहे थे कि ऑडिशन के लिए एक बार खुला था कि हरियाणवी बोली का एक बंदा चाहिए, तो वहाँ पर उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि जो लड़का दिल्ली से था जिसने बस ये बोला था अरे के कर रहा है, तो वो आदमी सिलेक्ट कर दिया इन्होंने, जब अपनी हरियाणवी बोली ना जी आपकी नहीं चल पाएगी। तो दौर ऐसा भी था कि वहाँ पर इन चीज़ों को जानते नहीं थे, अब क्या है कि थोड़ा सा सिनेमा भी रियलिस्टिक पे आ चुका कि उनको रियल चीज़ चाहिए, जहाँ की जो भाषा है वो ही चाहिए, तो उस चीज़ से भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मैं मानता हूँ कि हमारे जो सिनेमा जो लेट से चला है, लेकिन अभी चौपाल और स्टेज ऐप ये वगैरह इन्होंने थोड़ा सा उठाया है इस चीज़ को जो देखना शुरू हुआ।
2: देखो बिल्कुल पंकज भाई ने बहुत सही बात कही है, कहते हैं कि घाट घाट पे पानी बदले कोस कोस पे वाणी। हर घाट पे आप जाओगे, किसी कुएं का पानी मीठा है तो उसी के बगल में दूसरे कुएं का पानी खारा भी हो सकता है, और ऐसा ही कुछ हमारे हरियाणा के साथ है। हम जब किसी भी क्षेत्र में, अब जो हमारे हरियाणा का ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात करें, हमसे पहले बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बना के बैठे हैं, लेकिन समय का दौर ऐसा आता है। देखिए एक तो हमारी वाणी को, हमारी जो बोली है उसको अब लोग पसंद करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के बाद दबी हैं भाई। बॉलीवुड इंडस्ट्री डाउन चली गई थी, हॉलीवुड इंडस्ट्री तक डाउन गई, पंजाब इंडस्ट्री गानों के मामले में सबसे आगे चलती थी, धीरे धीरे वो भी डाउन गई, और एक ऐसा दौर आया कि हरियाणा का जो आदमी है ना वो आप कहीं भी देख लेना, मैं ये नहीं कहता सिर्फ भारत के अंदर, विश्व के अंदर कहीं भी रह रहा होगा ना, उस वो इतना बेहतर से अंदर से इतना स्ट्रांग होता है कि मतलब उसको जल्दी से बीमारी नहीं पकड़ती, वो जल्दी से थकता नहीं है, हार नहीं मानता। तो करते तो हम भी आ रहे हैं पीछे से, हमारे जो बहुत पुराने जो हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से जो कलाकार काम कर रहे हैं वो भी करते आ रहे हैं, अब हम हमारे बाद पहले कुछ आए हैं, फिर अब जैसा कि पंकज भाई ने बताया हम भी आए हैं। ये एक ऐसा दौर है कि हर किसी का एक दौर आता है, अब लोगों को जाके समझ में आ रहा है कि यस भारत के अंदर हरियाणा स्ट्रांग है, हरियाणवी स्ट्रांग है, अब हरियाणा की बोली को बॉलीवुड में भी तवज्जो मिल रहा है, वरना पहले हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट बॉलीवुड में काम करते हैं उन्होंने अपनी भाषा छोड़ी है। जैसा कि आपने बताया था अभी कि आप भी पलवल से हो और आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपका जो रोजगार है, आप बुरा मत मानिएगा, आपका जो रोजगार है वो हिंदी और इंग्लिश की जो भाषा है उसको बोलने से है, और पंकज भाई ने, रजत भाई ने, देसी भाई ने इस चीज़ की बहुत अच्छी पहल करी है कि वो जो चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अब चाहते तो हम बेशक पलवल में शूट कर रहे हैं, खरौच कोई पर्टिकुलर पलवल का या फरीदाबाद का नाम नहीं है, एक वेब सीरीज का नाम है जिसे आप यहाँ हरियाणा के अंदर भी बैठ के देख सकते हो, पंजाब के अंदर बैठ के भी देख सकते हो, और यूट्यूब तो विश्व में चलता है, विश्व के किसी भी कोने में जाके बैठ के देख सकते हो, लेकिन उन्होंने इस पे अपनी भाषा में काम कराया। आप जब इसको देखोगे तो इसमें जो है हरियाणवी, जो आप रोहतक की तरफ जो पश्चिम बेल्ट है उसकी तरफ चलोगे तो खड़ी बोली जो बोलते हैं अड़क अड़क, कई बार मैं भी बोलता हूँ, वो भाषा नहीं है जो हमारी मातृ बोली है, हम जो बोलते हैं, जो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं, जिनसे हमने जीवन पाया है, जो हमारे माता पिता बोलते हैं हमारे, वो भाषा हम इस खरौच वेब सीरीज में बोल रहे हैं। और यही कारण है कि हमारे, आप देखोगे कि आसपास का जो हमारा लोकल एरिया है लाइक पलवल मेवात तक, इधर नुहू मेवात तक, इधर आपका फरीदाबाद तक, गुड़गांवा तक, आपका नवेडा गाजियाबाद तक बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है अकॉर्डिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। तो ये कमी है, हरियाणा का आदमी अपने आप को सर्वप्रिय बताता है तो उसी के बगल में दूसरा भी हरियाणवी बैठा उसको तवज्जो नहीं देना चाहता। यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्री नीचे थी। अगर हरियाणवी इंडस्ट्री ऊपर आ रही है तो अब इसका कारण ये है कि धीरे धीरे आप ये चीज़ नोट करोगे कि हरियाणा के कलाकारों में एकता बढ़ रही है और इसीलिए लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब माँ बाप भी आगे बढ़ के आ रहे हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब उसमें उनको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखता था। तो ये कारण है हरियाणा लेट ग्रो कर रहा है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात है और मुझे लगता है कि इसका इतिहास भी बहुत रिच रहा है हरियाणा का। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दादा लक्ष्मीचंद जैसे साहित्यकार हरियाणा में हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस सुरेश वादकर साहब जो बॉलीवुड में इतने सारे गाने गाए हैं, उन्होंने भी हरियाणवी इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी। उनका एक गाना था मेरे पाछे पाछे आवण का, कौन सा मतबल तेरा सा, वादकर साहब की आवाज में है। इसके अलावा भाल सिंह एक कलाकार हुए थे, दिलराज कौर एक कलाकार हुई हैं, कोशिश की गई है, चंद्रावल जैसी फिल्में बनी हैं, धाकड़ छोरा जैसी फिल्में बनी हैं, बट उसके बाद वो चीज़ें गिनी चुनी ही आपको चीज़ें उंगलियों पर याद होंगी कि हाँ। ये हुई हैं। आप ऐसे बल्क में चीज़ें नहीं बता सकते हो कि हाँ इतना कुछ हुआ है। ठीक है, देर है दुरुस्त आए, बट अब लकीली वो टाइम आ रहा है यहाँ पर कि लोग इस बोली को, इस भाषा को अडेप्ट करने लगे हैं, आप लोगों को मजा आ रहा है। लेकिन अभी मैं ये बात बोलूंगा कि जो आप हरियाणवी सुनते हो वो हरियाणवी अभी भी आप वही सुन रहे हो जो खड़ी है। पलवल फरीदाबाद की भाषा ब्रिज टच है जिसमें प्योरली बोला जाता है कहाँ जा रहो, कहाँ कू जा रहो, उसके वेरिएशन आपको हर जगह पर नजर आएंगे।
2: यस,
0: लाइक दिस। सो आई एम डन विद माय क्वेश्चन, मेरे सवाल यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ, पंकज भाई, मोंटू भाई, हल्लू भाई, सोनू भाई, आप कहना चाहते हो प्लीज फील फ्री।
1: तो हम यही कहना चाहेंगे जितने भी हमारे श्रोतागण इसको सुन रहे हैं तो एक बार जा करके इस वेब सीरीज को जरूर देखें और ये एक फैमिली वेब सीरीज है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी अपशब्द यूज नहीं किए गए हैं और इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना है। हमारा प्रयास यही रहा है कि हम जो ये OTT पे भी कर सकते थे, ये इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे सभी जो हमारे जो लोकल एरिया है तो वो सभी इसको देख पाएं और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के साथ में, और देखें और अपना जो भी आपको लगता है कि हम क्या चीज़ इसमें अलग से कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी या क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।
2: आप मतलब अपने अपनी लाइफ के लिए फ्री हैं, आप हमें बता सकते हो। मैं बार बार, हम जो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, उसमें भी ये चीज़ें हम बोलते रहते हैं कि अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो या जिसको हम सुधार सकते हों या कोई भी चीज़ हम अच्छी कर सकते हों, तो सभी रेडियो मानव रचना 107.8 से मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो ज़रूर एक बार जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ पैसे से खरीद के देखने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए फ्री में करी है तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हम जान सकते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी वेब सीरीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अलग अलग आर्टिस्टों के लिए भी बोल सकते हैं किसकी आपको क्या चीज़ बेहतर लगी, किसकी क्या चीज़ बेहतर नहीं लगी और क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े गुरुतुल्य आर्टिस्ट बैठे हुए हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सहायता कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। उन सबका स्वागत है और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं पंकज पलवलिया भाई का, देसी सुभाष भाई का, देसी के नाम से उनको जानते हैं, सुभाष बहुत बीमार है वरना वो भी साथ आते, और रजत, स्पेशली रजत शर्मा भाई का, कि इतना अच्छा प्यार और आशीर्वाद मिला कि हमें भी काम करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उसमें मैं मोंटी शर्मा केतन शास्त्री का करेक्टर कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, मतलब मैं एक पत्रकार हूँ उसमें। और स्पेशल थैंक्स रेडियो मानवरचना का, सागर भाई का, आरजे सागर का, जो हमें इतना कीमती समय दिया और आपके स्टूडियो में आके हमें लोगों तक अपनी बात और आवाज़ पहुँचाने का मौका मिला। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मोंटी भाई। मैं भी यहाँ पर आप लोगों से बात बोलना चाहूँगा, जाइए जाकर के खरोंच चेक करिए, आपको अच्छी लगे, आपको अच्छी ना लगे, आपको कोई चीज़ बेहतर लगे, कोई बहुत अच्छी लगे, कुछ बहुत ख़राब भी लग सकती है, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्योंकि देखिए, इट टेक्स सो मच करेज टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल। अगर एक पूरी टीम मिली है जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, अपना टाइम दिया है, इतने एफर्ट्स मारे हैं, तो जाकर के मुझे लगता है कि एक बार देखनी जरूर चाहिए आपको। आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो बात आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन एटलीस्ट कलाकारों की रिस्पेक्ट के लिए, उनकी इज्जत के लिए एक बार जाकर के चेक जरूर करिएगा खरोच।
2: और एक और बात है भाई, देखो अपनी देसी भाषा में कह रहा हूँ, बिल्कुल जा भाषा में, मैंने यह फिल्म में काम करे हूँ तो बात इतनी सी है कि केतन शास्त्री जरूर देखिए और बताइए कैसे हिसाब किताब रहे हो, अगर कोई खराबी लगी हो तो आप बताइए सुधारेंगे। बाकी पंकज भाई ने शुरुआत में ही जो धक्का से लगवाए हुए रहता
1: ये लाइन कटवाएंगे हम।
0: जी बिल्कुल, गो चेक इट आउट, दिस इज खरोंच ऑन यूट्यूब अवेलेबल, जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर अपने शो को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। तो आज हमने खरोंच टीम से बात करी, जहाँ पर मोंटी भाई, पंकज पलवलिया भाई, हल्लू भाई और सोनू भाई, चार लोग हमारे बीच मौजूद थे और हमने कोशिश करी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर टचअप करने की। प्राइमरली हमने बात करी हरियाणवी कल्चर की, हमने बात करी कंटेंट क्रिएशन की, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बात करी इस पर्टिकुलर वेब सीरीज। फिलहाल इसी नोट पर चलते हैं, अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच पंकज भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मोंटी भाई, थैंक यू सोनू भाई, थैंक यू हल्लू भाई, शुक्रिया आप सभी का। ऑल राइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज आरजे सागर साइनिंग आउट।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था सीताफल के बारे में, सीताफल केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और ये पाचन तंत्र को एकदम मजबूत कर देता है और शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक रसायनों और फ्री रेडिकल्स के बचाने में भी बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिलाओं को सीताफल खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये एनीमिया को कम करने और गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, त्वचा को स्वस्थ बनाने, बालों को पोषण देने और शरीर की कमजोरी दूर करने में भी उपयोगी माना जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण बाजार में सीताफल की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करके अच्छे दाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सीताफल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो जानना जरूरी हैं, जैसे इसकी बुवाई कब होनी चाहिए या इसका सही समय क्या है या फिर जलवायु कौन सी होनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सब का जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़ है। हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है। सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते, इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था। उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का। तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना। तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए। अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे। अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे। अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंतिम नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है जहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई। कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ, कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है, आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते। तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच ले रहा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, इसको करेंगे क्या लेके। आदमी का सिर किस काम आता है, अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या, ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या। तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है, दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे, तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरण में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं। इसका नाम झुकाना है, सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है, मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा इस सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए, सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं, पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं, ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर, अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं, सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों में, अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं, और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं। ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी, अब क्या करूं, व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं, ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण, मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे, अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें।
1: मैं करूंगा,
0: लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा।
1: मैं तो करूंगा,
0: लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी।
1: सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती।
0: तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु सांस। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक पी जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता। वो तो कहता, आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की पग ध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है, मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं। शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो
1: कार में बैटरी की भांति है। यात्रा शुरू हो जाती है लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है। इस घड़ी में वो झुक जाता है लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाए और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्र धनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुको, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो, अब बिल्कुल मिट जाना। मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत, देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी, फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क से अधिय है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पे श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई, मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी तुम्हारी श्रद्धा को परखो। तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं, अक्सर समझना जिसने सच में ही नानक पे श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पे श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती और नानक पे श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पे श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ, साफ साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उसी एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक तो उठ गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। ईसा ने तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जचती होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी गली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिससे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी आसान है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर पर भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर पर भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा? मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उसके अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा। और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं। बाइबल पढ़ते रहे हो तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा? ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है और भूख लगी है और मरा जा रहा है और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां है। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होने पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात? तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने? क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं, तो ये तो भारी प्रसन्नता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे, जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो, वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवेरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा, आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनसुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनसुका, आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो, पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साथियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्पमात्र बनते, ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का? बुद्ध ने पूछा। राजा और भी सच्चा है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्पमात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी। तुम गिरोगे, कटोगे, मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे, ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हृदय जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो। क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है। उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए। तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उघड़ती हैं। पहली परत, आंखें, हाथ, नाक, कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पर भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पर भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साथ और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है। उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफ कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया, तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है। लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपद वासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपद वासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए, जब झगड़े ही शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे।

की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: यार हम है।
1: अरे कहाँ पलटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
5: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे। और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
4: And then again, mindsets हैं कि criminals कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो supposedly लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
5: लेबलिंग,
4: हाँ,
5: अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया, कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
4: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
5: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है, तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम, तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
4: Because I empathized with that victim.
5: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है, कोई मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर। रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है, लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
4: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
5: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे. हमें नहीं करना. सो कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
4: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
5: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इंफीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे, तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे, उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं, तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
4: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
5: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा, तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
4: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
5: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है, वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम, यू नो, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
4: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
5: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे, तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान, जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है, तो वो आपको भी सही perspective में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चली जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है, या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
4: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हम आपस वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में,
5: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
4: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
5: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ. लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके हैं. अपना सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग टिल व्हेन?
4: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
5: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
4: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ लेते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
5: ओम शांति.
4: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर, हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिप्रेक्ष्य क्या हो?
5: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
4: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
5: क्षमा कर दो, कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट। सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं। तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है, हमें इससे निकलना होगा। और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ। अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर। सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए। आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं। तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
4: मैं ही करूँ,
5: मुझे करना। अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी। क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी। तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है। तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं। से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया। अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाते हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा। तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस एक्चुअली। मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे। नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या।
4: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है।
5: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं, वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव। सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है। और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं।
4: पेन में हूँ,
5: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है. आई हैव टू मूव ऑन, टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
4: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
5: Aapko pata hai mere saath kya hua? And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte hai na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua? Mere saath kya hua? We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
4: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized जो, खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हमें कोशिश कर सकते?
5: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ दैट इज नाउ ओवर. अब मुझे फोकस सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
4: वही हो रही होती है,
5: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
4: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
5: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
4: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
5: ट्रू.
4: बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
5: right, but we're not really helping.
4: Yes.
5: यू नो हेल्प एट दैट टाइम वुड मीन एम्पावरमेंट. लेकिन बार बार कह कर के हाय आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वे सेइंग कि अभी सब गलत है. यू नो, तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
4: बहुत बहुत धन्यवाद.
5: ओम शांति.
4: ओम शांति.

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में, ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सकें। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवा कर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे, शोभा बढ़ाने के लिए हिमालय के घर में। अब लीना जी, और विवाह की क्या तैयारियां वहाँ चल रही थी? यह तो अद्भुत अलौकिक विवाह था जिसे देखकर देवता तो प्रसन्न होते हैं, हम तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया सुनने मात्र से। और लग रहा है कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दिव्य दृश्य रहा होगा वो जिन्होंने इसका दृश्य में शामिल हुए, जो विवाह में शामिल हुए। अब आगे किस प्रकार से यह विवाह चला और क्या तैयारियां और हुई, वह सब हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए, हमें भी।
1: बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जीवन ही सफल हो गया
0: जी।
1: तो शिव पुराण ऐसी कथा ही है, ऐसी अद्भुत कथा है जो रामायण की तरह